आज हम चर्चा कर रहे हैं मोर पंख पर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, एक बात और आपने गौर भी किया होगा कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकौड़े घर में दाखिल नहीं होते, यानी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करती है। आज की सुबह हम एक ऐसे पंख की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ता है ना ही बोलता है, फिर भी हजारों दिल में रंग भर देता है। जी हाँ, मोर पंख, जिसमें इंद्रधनुष छुपा है, शांति छुपी है और एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया बसी है। कभी श्री कृष्ण के सिर का ताज बनता है तो कभी किसी संत की पिच्छी, कभी आंखों को सुकून देता है तो कभी मन को गहराई देता है। मोर पंख हमें सिखाता है, चुप रहो फिर भी चमको, झुको फिर भी मुकुट बनो, त्याग करो फिर भी सबसे सुंदर दिखो। तो चलिए, आज की पहली किरण के साथ हम जीवन के उन रंगों को अपनाएं जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को सजाते हैं।

आप तैयार हो जाएं एक ऐसी उड़ान के लिए जो पंखों से नहीं सोच से भरी है, मोर पंख जैसी, बिल्कुल हर रंग से भरी हुई सोच। चलिए अब आपको एक और कहानी की ओर लेके चलते हैं, एक मोर पंख और भगवान। एक बार एक छोटा बच्चा था, नाम था आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, लेकिन मन बेचैन रहता था। वो रोज भगवान से सवाल करता, भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ हो आप, क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। एक दिन वो पास के जंगल में गया और रास्ते में उसे एक चमत्कारी मोर पंख मिला और रास्ते में उसे एक चमकदार मोर पंख मिला। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। रात को सपना आया, एक तेज प्रकाश हुआ और उसी मोर पंख से भगवान की आवाज आई, बेटा जिस मोर पंख को तू सिर्फ एक सुंदर चीज मानकर बैग में रख लाया है, उसी में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। आरव चौंका। सुबह उठते ही वो ध्यान में बैठ गया और मोर पंख को निहारने लगा। वो सोचने लगा, हर रंग है पर कोई शोर नहीं, मतलब बिना बोले भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो, मौन में भी प्रभाव होता है। दूसरी बात आरव के जहन में आई, पंख झड़ता है पर मोर रोता नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, त्याग के बाद भी सुंदरता बनी रह सकती है। फिर आरव ने सोचा, सभी रंग मिलकर ही बनते हैं सुंदर, कोई एक नहीं चमकता, मतलब सामूहिकता, सहयोग और संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण ने मुकुट पर उसे जगह दी क्योंकि वो हल्का था, सुंदर था और अहंकारी नहीं था, यानी ईश्वर उन्हीं को सिर पर बिठाते हैं जो सरल और समर्पित होते हैं। आरव ने उस दिन के बाद से ईश्वर से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो मोर पंख को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर किसी रूप में नहीं पर हर रंग, हर पंख, हर मौन में मिलते हैं। जैसे मोर पंख सिर झुकाकर मुकुट बनता है, वैसे ही जीवन में नम्रता और समर्पण ही असली शोभा है।

आप सुन रहे हैं अपना सुबह का आध्यात्मिक शो पहली किरण, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मोरपंख की। तो चलिए मोरपंख के और भी गुणों से आपको रूबरू कराते हैं इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मयूर पंख से माना जाता है कि नवग्रह की विपत्तियां जो होती सारी दूर हो जाती हैं। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नौ ग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। वो कथा ये है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि प्राचीन काल में संध्या नामक एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई सारी वरदानी शक्ति प्रदान की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी नौ ग्रहों की कहानी। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। अब चलते हैं मोर पंख के उन सभी रंगों की ओर जो अपने अंदर जीवन के हर एक सार को समेटे हैं। सबसे पहला रंग नीला, जो है शांति और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, और इससे ये समझ आता है कि ये रंग सत्य, असीमता और भक्ति का प्रतीक है। मोर का मुख्य रंग नीला श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हरा, जो कि प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग जीवन संतुलन और करुणा को दर्शाता है। दिल के चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ाव रखता है हरा रंग। बैगनी रंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक। ये ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है। सुनहरा यानी गोल्डन रंग दिव्यता और जागरूकता का प्रतीक। ये ब्रह्म ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। पीला रंग बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। मानसिक स्पष्टता, सूर्य की तरह आशावाद और आत्मबल का रंग माना जाता है पीला रंग। भूरा व ताम्र रंग स्थिरता और धरती से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। ये संतुलन और वास्तविकता को दर्शाता है। रूट यानी जड़ चक्र से जुड़ाव रखता है। अब आते हैं काले रंग की ओर। इसको गहरा नीला रंग भी बोला जाता है। रहस्य, शक्ति और मौन का प्रतीक। ये आत्मनिरीक्षण और गहराई का प्रतीक है। अज्ञात की सुंदरता है। तो कितने सारे रंगों को अपने एक छोटे से, हल्के से और सुंदर से पंख में समाहित करता है मोर। अब जान लेते हैं कि इन सभी रंगों का हमारे किन चक्रों से जुड़ाव है। मूलाधार चक्र, जो भूरे रंग या ताम्र रंग से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नारंगी रंग से संबंधित है। मणिपुर चक्र, जो पीले रंग से संबंधित है। अनाहत चक्र, जो हरे रंग से संबंधित है। विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि संबंधित है बैगनी रंग से। सहस्त्रार चक्र, जो सुनहरे या फिर उज्जवल प्रकाश से संबंधित है। तो इस तरह से हमारी पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को और हर एक रंग को अपने आप में समाहित करके रखता है मोर पंख, जो देखने में तो एक साधारण सी वस्तु जैसा है, पर ये जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रंगों का अद्भुत संगम है। इसमें हर रंग छिपा है और हर रंग हमें एक नई दिशा देता है।

मोरपंख। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मोरपंख को भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं में इसका अलग अलग महत्व भी है। हिंदू धर्म में मोरपंख भगवान कृष्ण का आभूषण है। कृष्ण के मुकुट में मोरपंख होता है, जो प्रेम, करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे पहनकर वे प्रकृति और जीवन से जुड़ाव दिखाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाशक माना गया है मोरपंख। मोरपंख को घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। वास्तु दोष निवारक है मोरपंख। वास्तु शास्त्र में मोरपंख का प्रयोग दोषों को दूर करने में होता है। विशेषतः मुख्य दरवाजे पर मोरपंख लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है मोरपंख। सरस्वती माता के वाहन मोर को कई किंवदंतियों में माना जाता है कि सरस्वती माता का वाहन हंस के अलावा मोर भी है, इसलिए मोरपंख ज्ञान और कला का प्रतीक भी माना गया है। बौद्ध धर्म में मोरपंख का महत्व बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है मोरपंख। जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार मोर को करुणा और ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इसका पंख सज्जनता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है मोरपंख। बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मोर सांप यानी विष को खा जाता है और फिर भी सुंदरता में रहता है। ये बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नकारात्मकता और सकारात्मकता के अनुसार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में मोरपंख का महत्व अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन संत मोरपंख से बनी पिच्छी यानी झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे। ये करुणा और जीव दया का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन का संकेत माना गया है मोरपंख। सिख धर्म में मोरपंख का कोई विशेष धार्मिक विधान नहीं है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक और शस्त्र सज्जा में कभी कभी मोरपंख दिखते हैं, जो सौंदर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर इन सभी के सारांश के रूप में जानेंगे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और वास्तु उपायों के लिए अपनाया जाता है मोरपंख, जिसको आध्यात्मिकता, प्रेम और सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा विषहरण क्षमता रखता है मोरपंख, जिसे विवेक और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म में पिच्छी यानी अहिंसा उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो करुणा और जीव दया का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार इसका प्रयोग बहुत ही सीमित माना गया है, परंतु सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है मोरपंख। तो मोरपंख हर एक धर्म के अनुसार बहुत ही उपयोगी माना गया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के पहले या दौरान कुछ लोग मोरपंख को कपड़ों के साथ पहनते हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भी जहन में ऐसा ही कुछ आया और फिर मैंने खोजबीन की, जिसपे मुझे निष्कर्ष रूप में ये पता चला कि ये परंपरा विशेषकर सिया मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम धर्म और मुहर्रम की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, लेकिन सिया मुस्लिमों के लिए ये शोक का महीना होता है। 10वीं तारीख को यौम आशूरा आता है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ये दिन त्याग, बलिदान, सत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। अब मोरपंख का इससे क्या संबंध है? मोरपंख करबला के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक परंपरागत तौर पे माना गया है। भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों में सिया मुसलमान अलम यानी ध्वज लेकर जुलूस निकालते हैं। अलम के साथ जो झंडियां या कपड़े लगे होते हैं, उनमें अक्सर मोरपंख या मोरपंख के आकार के तावीज या सजावट दिखाई देती है। हजरत अब्बास से जुड़ी मान्यता के अनुसार
हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, जिन्हें बाबुल हवाज और शेरे करबला भी कहा जाता है। मान्यता है कि उनके अलम यानी झंडे की शान को मोर पंख से सजाया जाता है, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। इसलिए मुहर्रम के पहले लोग मोर पंख को कपड़े या टोपी के साथ पहनते हैं, जो श्रद्धा, शोक और प्रतीकात्मक इज्जत के रूप से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि मोर पंख पहनने के भावार्थ क्या हैं। मोर पंख शांति, साहस, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। काले या हरे रंग के कपड़े के साथ में इसको धारण करने से माना जाता है कि ये शोक यानी काला, इमामों की विरासत यानी हरा, इस रूप में दिखाया जाता है। पहनना या लगाना, इसको धारण करना एक श्रद्धांजलि और करबला के बलिदान की याद माना जाता है। पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम में मोर पंख पहनने की कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकतर स्थानीय संस्कृति, सिया परंपरा और इज्जत की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। मुहर्रम में मोर पंख का पहनना एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि है, हजरत अब्बास की बहादुरी और करबला की पवित्रता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में।

अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलूंगी, जो कि मोर पंख पर ही आधारित है। एक सुंदर, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनने वाले हैं उसी शो में जो आपका पसंदीदा है। जी हाँ, भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, मेरे यानी आरजे आकांक्षा के संग। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मोर पंख वाला उपहार। सादगी, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ाव दिखेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्हा बालक कृष्ण प्रेम में डूबा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खिलौने, लेकिन उसके पास था एक मोर पंख। हर दिन वो पंख अपने माथे पे लगाकर खुद को कान्हा समझकर नाचता, मुस्कुराता और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से ढेरों बातें करता। लोग कहते पागल हो गया है, पर नंदू कहता, मोर पंख वाला कन्हैया मेरा दोस्त है और दोस्त से तो बात होती है ना। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया, जिसका नाम है जन्माष्टमी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। नंदू के पास कुछ नहीं था, बस वही पुराना पंख। उसने उसे सजाया, साफ किया और भगवान के चरणों में रख दिया। वो बोला, कान्हा, सब लोग तुम्हें सोना चांदी चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पंख है, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सिर से मुकुट गिर गया था और वहाँ वो नंदू वाला पंख खुद ब खुद उड़कर जाकर टिक गया। लोग चकित रह गए। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का प्रताप है। उस दिन से मंदिर में हर साल उसी मोर पंख की प्रतिकृति भगवान को पहनाई जाने लगी। नंदू अब भी वैसे ही है, सादा, मासूम, पर भगवान के सबसे करीब। ईश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, उन्हें चाहिए भक्ति भाव और सच्चा प्रेम, और मोर पंख उसका प्रतीक है। तो चलिए फिर बांके बिहारी लाल को याद करते हैं और सुनते हैं ये बांके बिहारी वाला भजन।

अब जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर पंख का क्या महत्व है। वैज्ञानिक कारण है कि मोर पंख के रंग वास्तव में रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण नहीं होते, बल्कि एक विशेष तकनीक से बनते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोर के पंखों की सतह पर माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जो प्रकाश को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन सतहों पर गिरती हैं, तो अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी आदि। इसलिए जब आप मोर पंख को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो रंग बदलते हैं, और ये इंद्रधनुषी प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं प्रकृति की दृष्टि से, जानते हैं मोर पंख का महत्व। मोर पंख रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर की पहचान और आकर्षण का माध्यम है, खासकर जब वह नाचता हो। नर मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर यानी मोरनी को आकर्षित करता है। ये एक प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और संदेश देने के लिए भी होते हैं, जैसे जानवरों में ताकत, सुंदरता या उपस्थिति दिखाना। अब चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर और जानते हैं कि मोर पंख का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मोर पंख के ये विविध रंग जीवन के हर भाव का प्रतीक है, जैसे नीला रंग शांत व कृष्ण का प्रेम, हरा रंग समृद्धि व प्रकृति का प्रतीक, सुनहरा रंग दिव्यता व ज्ञान देने वाला, बैंगनी रंग रहस्य और ध्यान में गूढ़ता लाने वाला। कहा जाता है कि मोर पंख में सातों चक्रों यानी एनर्जी चक्रास के रंग समाहित हैं, जिससे ये संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर सजाया। ये सौंदर्य, विनम्रता, ज्ञान और प्रकृति से एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार विज्ञान के तौर पर अगर हम देखें तो मोर पंख स्ट्रक्चरल कलरिंग से प्रकाश का खेल है। प्राकृतिक रूप से देखें तो आकर्षण और संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक रूप से देखें तो सातों चक्रों और जीवन के रंगों साथ ही साथ में आत्मिक संतुलन बनाने में पूरी तरह से उपयोगी है मोर पंख।

अभी हमने बात की मोर पंख की, अब थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और मंथन करेंगे। मोर पंख हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को अपनाओ, चाहे वह सुख का हो या संघर्ष का, क्योंकि जब सभी रंग एक होते हैं तभी आत्मा इंद्रधनुष बनती है। कभी आपने मोर पंख को गौर से देखा है? उसमें कोई एक रंग नहीं, दर्जनों रंग होते हैं, नीला, हरा, सुनहरा, बैगनी और जाने कितने। पर क्या ये सब रंग रंगों की दवात से आए हैं? नहीं, ये रंग आते हैं प्रकाश के खेल से, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रंग हमारी दृष्टि में होता है। विज्ञान कहता है ये स्ट्रक्चरल कलरिंग है, बिना रंग लगाए भी ये प्रकृति की ऐसी पेंटिंग है जो हर कोण से नया रूप दिखाती है। प्रकृति कहती है ये एक संदेश है, आकर्षण का, चयन का, जीवन का। मोर इन रंगों से न केवल खुद को सुंदर बनाता है बल्कि प्रकृति के साथ संवाद करता है। आध्यात्म कहता है मोर पंख वो है जिसमें सभी चक्रों के रंग छुपे हैं। ये नृत्य करता है तो लगता है ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर सजाया, क्योंकि ये सिर झुकाकर सिर सजाता है। क्या हम भी अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकते? सोचने वाली बात है। रंगों की कहानी है, पंखों की जुबानी है, ये मोर का उपहार नहीं खुद ईश्वर की निशानी है। ना रोशनाई ना कूची, ना रंग की पहचान, फिर भी हर रंग बोले मैं हूँ इस जीवन का ज्ञान। कभी नीला बनकर शांति दे, कभी हरा बनकर संजीवनी, कभी सुनहरा बनकर जगाए प्रकाश की प्रेरणा। ये पंख नहीं जीवन के रंग हैं, जो हमें हर रूप में अपनाना सिखाते हैं। तो चलिए अपने जीवन को इन सभी रंगों से भरते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और आगाज करते हैं एक नई सुबह का। तो आइए अब इस मोर पंख से मंथन की ओर चलें, एक ऊर्जावान विचार और एक ऊर्जावान संदेश की ओर, जो सुनने वाले के दिल दिमाग को झकझोर देने वाला है और उसमें भर देने वाला है रोशनी। किस तरह की? कई सारे रंगों की, जो आपके जीवन में हर तरह से होती ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी नाराजगी, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू के रूप में। तो ये सारे रंग जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या हो जाता है?

दुख को किसी और की ताकत में बदल सकते हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात है। कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर रूप तुम्हारे सबसे कठिन त्याग के बाद सामने आता है ना? तो आज का मंथन बस इतना कहता है, जीवन को रंग दो मगर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। दिखो सबसे सुंदर मगर सबसे शांत रहकर, और जब समय आए त्याग का तो मोर की तरह मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा त्याग किसी और के मुकुट की शोभा बन सकता है। तो किसी की मुस्कान बने, किसी के मुकुट की शोभा बने, किसी के जीवन को आसान करें। अभी आप सुन रहे थे अपना रेडियो आध्यात्मिक कार्यक्रम जिसका नाम था पहली किरण। मैं थी आपकी रेडियो साथी आरजे आकांक्षा। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। आज का विषय था मोरपंख, जो हमें सिखाता है बहुत सारे रंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इन सभी रंगों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

यू, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा?
1: और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

0: A very good morning to all of you. आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने आरजे अदनान. आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम. ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन. और देखिए ना भाई, 203 दिन से काफी ज्यादा मेहरबान है ये मौसम, और आज इस कदर मेहरबान था कि शुरुआत ही बारिश के साथ हुई. बारिश और ठंडी हवाएं, और जस्ट अभी देखिए धूप में निकलना शुरू हो गई है. फिलहाल ये मौसम तो बदलता रहेगा, लेकिन ये जो बदलाव में आपको एक ठंडापन मिलता है, ये औसम होता है और इसका कोई जवाब नहीं. फिलहाल आज संडे की शुरुआत जो हुई है वो परफेक्ट हुई है, यानी बारिश के साथ. और आपको पूरा फील आया है कि भाई चलो आज तो बारिश हो रही है, आज वैसे भी छुट्टी है. एंड उठने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि भाई चलिए पकौड़ी चाय क्यों ना शुरू किया जाए आज के नाश्ते के साथ. सो परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि आज तो पकौड़ी बनती है बॉस. इतना बढ़िया सा मौसम और सोंधी सोंधी पकौड़ियाँ, है क्या बात है. तो इसी पकौड़ियों के छन्ने के बीच में आपको ले चलते हैं आज के लाजवाब, बेहतरीन, खूबसूरत से और बहुत ही गहरे थॉट ऑफ द डे की तरफ. और बताते हैं कि आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है, आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और आज का संडे स्पेशल थॉट आपको क्या देकर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में.
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो आइए ले चलते हैं आज के खूबसूरत से थॉट को, आपको रूबरू कराते हैं। और आज का थॉट क्या कहता है ये जरूर बताते हैं। दरअसल आज का थॉट कहता है कि चीजों का, लोगों का और बातों का, तीन चीज है, चीजों का, लोगों का और बातों का लंबे वक्त तक याद रह जाना वरदान भी है और अभिशाप भी है। जी हाँ, आज का थॉट ऑफ द डे यही कहता है। आज का थॉट कहता है कि चीजों का, लोगों का और बातों का लंबे वक्त तक याद रह जाना वरदान भी है और अभिशाप भी। सो भाई, अब ये तो हमारी लाइफ में दोनों ही हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज तक लाइफ में बनी हुई है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक हमारे साथ हैं, और लोग हैं वो भी। तो भाई, चाहे चीज हो, लोग हो या बात हो, इसका लंबे वक्त तक याद रह जाना एक तरह से बहुत बड़ा वरदान भी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी है, और एक तरह से कर्स भी है, अभिशाप भी है। क्योंकि अगर ऐसी कोई खुशनुमा सी यादें हैं तो हमारे संग चलती है, हम उसको अक्सर याद करते रहते हैं और हम बेहतर फील करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने उन मुश्किल दौर में भी कैसे खुद को संभाला था, कैसे कोई हमारे लिए खड़ा था, किस तरह से हमने चीज़ों को जिया था, क्या वक्त था, क्या दौर था, ऐसा भी सोचते हैं। एक होता है अभिशाप, कुछ ऐसी यादों में जिसको हम याद नहीं करना चाहते, जो बहुत दूर दौर की होती है, और वो हम उसमें फंसे से रह जाते हैं। हम कुछ भी शुरुआत करते हैं ना जाने कि हमको वैसे ही कुछ ख्याल आता है कि कहीं कुछ वैसा ही ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं, इस तरह के ख्यालात से दो चार होते रहते हैं। तो एक तरह से ये अभिशाप भी है अगर हम ऐसी चीज़ों को अपने जहन में रखे हुए हैं जो बहुत वक्त तक हमको डराती है और हमारी इस वक्त मौजूदा खुशियों को भी ख़त्म करती है। क्योंकि हम इन्हीं दो फेर में हमेशा फंसे रहते हैं, चाहे वो आने वाला कल हो या बीता हुआ कल हो, और लाइफ इन दोनों के बीच में रहती है। लाइफ कहती है आई एम हेयर, यानी मैं आज में हूँ, मैं अभी में हूँ, जस्ट इसी मोमेंट में हूँ, दिस इज योर लाइफ। बीत गया वो जा चुका है, आने वाले का पता नहीं है। अभी जो कुछ चल रहा है, जो कुछ है, वही आपकी लाइफ है। और आपकी लाइफ का आज एक बेहतरीन संडे है। क्यों? क्योंकि आज के मौसम ने इसकी शुरुआत औसम करा दी है, और आज ये और भी ज्यादा खूबसूरत सा हो गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। तो चलिए भाई, क्यों ना फिर हम अपनी उन लाइफ की मेमोरीज को याद ही रखें जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे लिए वरदान जैसी हैं, जिनको याद रखने से बहुत सारी मेमोरीज, प्यारी प्यारी वाली, अच्छी अच्छी वाली याद आ जाती है। हालांकि यादें तो हर तरह की होती है और याद भी आती हैं, लेकिन हावी किन चीज़ों को हम करते हैं ये हम पे सच में डिपेंडेंट होता है। तो चलिए, ये ज़रूर आप समझ लीजिएगा कि भाई आखिर क्या ऐसा होने वाला है जो हम आगे ले जाने वाले हैं, कौन सी ऐसी यादें हैं जिनको हम अपने साथ बहुत आगे तक ले जा रहे हैं या ले जाना चाहते हैं, ये सारी बातें। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए है और पूरी तरह से है। अब चलते हैं फिलहाल आपको लेकर के खूबसूरत से गाने की तरफ। और ये सॉन्ग जो है आप काफ़ी वक्त बाद सुनने वाले हैं, इवन आपको पसंद भी आने वाला है। और अब चलते हैं, देखते हैं कि भाई इस थॉट ऑफ द डे पे आपका रिएक्शन क्या आता है, यानी आप मानते क्या है, क्योंकि आपका मानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो इस थॉट को सुनने के बाद आपका अपना थॉट क्या है ये ज़रूर बताएं। और एक बार वापस से ये खूबसूरत सा रोमांटिक सा मौसम आप सभी लोगों को मुबारक, आज की बारिश भी आप सभी को मुबारक।

0: the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: Heal me, and of course, ये इस तरह का मौसम अक्सर हील करता है. हील मतलब ये है कि कोई भी हम कैसे भी वक्त में हो, कैसे भी विचारों में हो, लेकिन ऐसा मौसम आता है, ऐसा लगता है कि हम हील हो गए, हमें हमारा ट्रीटमेंट मिल गया, मतलब रूह की ग़िज़ा मिल गई. ऐसा लगता है खाना तो मिल जाता है, लेकिन जो मन को सुकून मिलता है, जो उसकी खुराक होती है, वो यूं ही नहीं मिलती, और वो मिलती है कुछ इसी अंदाज में. एंड ऑफ कोर्स, चलिए फिलहाल चलते हैं आपको ले करके अगले सॉन्ग की तरफ. एंड ऑफ कोर्स अगला सॉन्ग आएगा, लेकिन उससे पहले हम ले जाएंगे आपको आज के मैसेजेस की तरफ.
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो भाई सीधे आ गए हैं चैट बॉक्स की तरफ और देखते हैं चैट बॉक्स पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चैट बॉक्स से पहले हम वेलकम करते हैं उन सभी का जो फ्रीक्वेंसी से हैं, उनका भी जो रेडियो गार्डन से अलग अलग राज्यों से गोंडा एफएम को सुन रहे हैं, इसके अलावा उनका जो वर्ल्ड वाइड दुनिया के हर कोने से एप्लीकेशन के जरिए सीधे जुड़े हुए हैं और लाइव आरजे से बातचीत भी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स हमारे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के लिसनर्स का। अब देखते हैं कि भाई उसी ऐप पर चैट बॉक्स पर आकर के कितने लोगों ने क्या कुछ लिखा है, उस जानिब भी बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम बता दें, मैसेज जो आया है वो सविता दुबे जी का आया है और आपने लिखा है, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और आज चूंकि लाफिंग डे की याद दिला दी है सविता दुबे जी ने, आपको भी हैप्पी लाफिंग डे, हा हा हा हा। रवि मौजूद है, लिखा है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। प्रबल मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू प्रबल, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आर के श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग अर्जुन नाथ जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड इसके बाद जो है लिखते हैं कि हाँ, ठंडा मौसम है, पकौड़ी का तो आनंद आता ही है चाय के साथ में। देखा, हमने भी कहा था भाई ये मौसम ज़बरदस्त होता है। एंड इसके अलावा कायनात हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। अब देखते हैं आप लोगों के भाई थॉट पर रिएक्शंस क्या क्या आए हैं, आपने क्या क्या रिएक्ट किया है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन आज के थॉट ऑफ द डे पर आया है वहाँ से शुरुआत करते हैं, और वो है आरके जी का कि जी मैं आपके सुविचार, आपने जो बताया, अच्छी यादों को संजोना और बुरी यादों को भुलाकर आगे बढ़ना एक स्वस्थ मानसिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात की इम्पोर्टेंस को समझा है, और कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि हाँ, जो यार बुरी यादें हैं उसको छोड़ दिया जाए, मतलब अच्छी यादों को ले करके आगे बढ़ लिया जाए, दैट्स वेरी गुड। एंड इसके बाद जो है प्रबल लिखते हैं, वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। सविता दुबे जी ने लिखा है, आज का सुविचार बहुत ही प्यारी बात बताई, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस थॉट लिखा है कायनात ने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद रीता पाठक जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, टुडेज थॉट इज़ वेरी ट्रू, क्या बात है, थैंक यू। सो इतना प्यारा, इतना ट्रू थॉट था और मुझे तो इतना अच्छा लगा कि भाई ऐसी यादें जो हमारी ज़िंदगी को गुलजार बना रही हैं, क्यों ना उसको हमेशा संजो के रखा जाए, और कुछ ऐसी यादें जो कि अब जा चुकी हैं और वो बुरा दौर था, तो क्यों ना अब उसके पार आ जाया जाए, यानी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स और कर्स दोनों हैं, अब किस पे ज़्यादा आपको जाना है ये आपको खुद ही तय करना होगा।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आज का दिन ऑफ कोर्स इसलिए ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम हंसी दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, सो ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऑफ कोर्स दिन भर हंसा करती ही हा हा हा हा हा। अच्छा, ऐसी भी हंसियाँ होती है जिसको आप हमेशा याद रखते हैं। क्योंकि अभी कल की बात है, मैं बाहर था और मैंने, इवन परसों की बात है, परसों मॉर्निंग की, यस ऑफ कोर्स अर्ली मॉर्निंग की बात है कि मैं सो के उठा और उस घर में जिस तरह की हंसी मैंने सुनी, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब एक तो होता है कि भाई स्टार्टिंग में हम लोग मुर्गे की बांग से उठते थे, फिर दूसरा मम्मी के चिल्लाने से, अभी क्या होता है कि व्हीकल्स के शोर से, हॉर्न वगैरह से या किसी की चहल पहल से उठ जाते हैं। पर अगर आप किसी की हंसी से उठे और एकदम यूनिक हंसी हो, ज़रा सोचिए, बिल्कुल यूनिक, मतलब आप सुने और आपको लगे कि आह क्या बात है, एक ऐसी मोटर है जो ना बहुत पुरानी ना बहुत नई है लेकिन स्टार्ट हो गई है, तो कैसा लगेगा। सो ऑफ कोर्स मेरे साथ तो परसों का ये किस्सा है मॉर्निंग का, और मुझे आज इस स्पेशल डे याद भी आया कि कई लोग होते हैं बहुत अलग अलग तरह से हंसते हैं, इवन आपके एरिया में भी होंगे, आपके कॉन्टैक्ट में भी होंगे, और आप उन्हें बड़े अच्छे से जानते होंगे, और आप चाहते भी होंगे कई बार कि भाई ये कोई ना कोई ऐसी हम बात कहें जिससे ये हंसे और हमको वही हंसी सुनने को मिल जाए। तो ऑफ कोर्स उन लोगों को जो ये बेचारे जुगाड़ में लगे रहते हैं, उल्टे सीधे जोक्स मारा करते हैं कि सामने वाला हंसे तो उसकी हंसी को सुन पाए, प्लस उन लोगों को जिनको हंसना सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, खुल कर हंसते हैं, उन सभी को आज की हंसी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे मुबारकबाद उन लोगों को भी जो हंसते नहीं बस कर जाते हैं, सो ऑफकोर्स उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सो आज ऐसे स्पेशल डे है और मुझे लगता है कि आज की कॉलिंग प्रोग्राम में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आप लोग शेयर करने वाले हैं अलग अलग तरह के लोगों की हंसी जो आपने अभी तक ऑब्जर्व की है, आपने सुनी है अपने आसपास, और ऑफ कोर्स उससे आपका दिनचर्या जो है बदल गया है। ऐसी ऐसी हंसी, ऐसी ऐसी हंसी कि आप सुन करके आपके होश फाख्ता हो गए कि ओ माय गॉड, ऐसे भी हंसी होती है क्या। तो हाँ, एग्जिस्ट करती है, कई तरह की हंसी एग्जिस्ट करती है, वही तो आज आप कॉल इन प्रोग्राम में हमसे बताने वाले। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स एक बार चलिए दिल खोल कर दे देते हैं भाई हास्य दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और सुनते हैं ऑफ कोर्स ये वाला रोमांटिक सॉन्ग।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त ऑफ कोर्स आरजे अदनान। सो चलिए भाई, आज का मुद्दा तो कुछ ज़्यादा ही अलग है। क्यों? क्योंकि भैया आज जो है वो हम विश्व हास्य दिवस को ले करके चल रहे हैं और विश्व हास्य दिवस पे आज हम हंसने हंसाने की बातें कर रहे हैं। भाई वो लोग जो ऑफ कोर्स अपनी हरकतों से या फिर अपने ऐसे जोक्स से, इवन कई बार आपने ऐसा महसूस किया कुछ लोग ऐसे जोक्स मारते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब जो बस उसके ख़राब होने की वजह से लोगों को हंसी आ जाती है। मतलब वो जोक तो सफल नहीं होता बट उसका जो फेल्योर होता है उसको काफ़ी लोग अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो अक्सर आप सुनते हैं और आप उससे चिर परिचित हैं। सो जैसे एक दो आवाज़ें मैं आपको सुना देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और ये सब आवाज़ें जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंडी रहती है, जिसमें से एक आवाज़ ये भी है। हाँ जी, ये सुना है आपने। इसके अलावा दूसरी, देखा। सो इस तरह की बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जिसको आप सुनते हैं। और फिर भाई नाना पाटेकर साहब को हम कैसे भूल सकते हैं। सो ये मजनू मजनू बन के आपने सोचा होगा और सुना होगा और काफ़ी ज़्यादा आपने इस हंसी को एंजॉय भी किया होगा। और फिलहाल इस तरह की बहुत सारी कॉमिक आवाज़ें हैं जिसमें से एक ये भी है। सो ऐसी कई सारी हंसी की आवाज़ें हैं जो आपको कई सारी रील्स में हंसाती रहती है और ये आवाज़ें आप अक्सर रील्स के अंदर सुनते होंगे, उस पर हंसते भी होंगे। सो ऐसे सच में लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग तरह से हंसते हैं और सिर्फ उनके हंसने के तरीके से ही भाई मज़ा आ जाता है और न जाने कितना सारा एंजॉयमेंट हमको मिल जाता है। फिलहाल ये तो बहुत कॉमन सी हंसी है, लेकिन इसके अलावा जो हमने परसों खुद सुना था वो काफ़ी यूनिक थी और मुझे लगता है कि आप अलग अलग तरह से जो सुनते हैं वो काफ़ी अलग अलग होती है। और जैसे कि एक बहुत ही अलग हंसी का आपको एग्जाम्पल हम दे तो आपको एक और हंसी ऑफकोर्स याद आने वाली है। एक और हंसी भी आप बहुत अच्छे से सुनने वाले हैं और वो है ये। सो ऐसे कई तरह के लोग हैं जो अलग अलग अंदाज में बातचीत करते करते हंसते हैं और इस तरह से हंसते हैं कि वो हंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स इस तरह की हंसी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन यार देसी हंसी जो ऑफ कोर्स हम लोग कहीं अपने मोहल्ले में या फिर रिश्तेदारी में या फिर किसी गांव में जा करके सुनते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आपको क्या लगता है ये आप भी बता सकते हैं। और आज हंसी इसी की बातों में काफ़ी ज़्यादा हंसी हो रही है और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरह हमें लगता है हंसते रहना चाहिए। हंसने में सच में कोई टैक्स नहीं लगता और बुरा भी नहीं माना चाहिए, ज़बरदस्ती का नहीं, लेकिन जब हंसी आए तो आप खुल करके हंसते रहें क्योंकि ज़बरदस्ती का कई बार लगता है यार, कई बार ये है बस ऐसे ही है। सो खुल कर हंसिए, मतलब अगर आपको हंसी आ रही तो आप खुल के हंसिए, उसमें कोई टैक्स फ़िलहाल अभी तक तो नहीं आया है फाइनेंशियल ईयर में कि भाई इस बार से इतनी हंसी पे, इतने किलो हंसी पे हमें टैक्स लगाना है, ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं आया। तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको बताया कि भाई आज हम आपकी ऑकवर्ड वाली हंसी भी सुनने वाले हैं कॉल इन प्रोग्राम में, तो आज कॉल इन प्रोग्राम में हंसने के लिए तैयार हो जाइए और ऐसी हंसी को आप ज़रा याद कर लीजिए जो काफ़ी अलग तरह की महसूस होती है और आप अभी तक सुनते आए हैं और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप उसको जब भी सुनते हैं जिस शख्स को तो आपको उनकी याद आ जाती है। एंड फिलहाल हम चल रहे हैं अगले सॉन्ग की तरफ और अगला सॉन्ग ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा वायरल और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सॉन्ग है क्योंकि आज हम इतना खूबसूरत सा मौसम शुरुआत हुई तो इस मौसम के मद्देनज़र रखते हुए भी सॉन्ग्स लगातार सुनते चले जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं आज हास्य दिवस के बारे में। तो एक बार वापस से आप सभी को
हास्य दिवस की बहुत बहुत

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में? क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतरौला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाई टुनटुन जी का नाम आपने सुना है? नहीं, अरे टुनटुन यानी वही उमा देवी जी जो पुरानी फिल्मों में और पहली भारतीय कॉमेडियन कहलाती हैं। अब आप सोचेंगे ये टुनटुन जी आखिर कौन है, इनके बारे में तो आपको पता भी नहीं है। तो चलिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि ये टुनटुन उर्फ उमा देवी आखिर कौन है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

जिसने पूरी दुनिया को हंसाया वो खुद कभी दिल से मुस्कुरा भी नहीं सकी। जी हाँ, दर्द से भरी थी भारत की पहली, ऑफ कोर्स आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन आपको आज यही बताने वाले हैं टुनटुन देवी जी के बारे में, भारत की पहली फीमेल कॉमेडियन की जिंदगी। सो आखिर कौन है ये टुनटुन देवी और क्या है इनकी कहानी? कहानी दिलचस्प है। उमा देवी, जिन्हें दुनिया ने नाम दिया टुनटुन, उत्तर प्रदेश के एक गरीब घर में पैदा हुई और बचपन में ही किस्मत ने ऐसा वार किया कि जमीन के झगड़े में माँ बाप दोनों छिन गए। रिश्तेदार के घर नौकरानी बन करके दिन काटे। चूँकि पढ़ाई नसीब में नहीं थी, खुद से पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और फिर एक सपना देखा कि एक दिन रेडियो पर मेरी आवाज़ गूंजेगी, और वही सपना इन्हें खींच लाया माया नगरी मुंबई, जहां म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद अली साहब से सीधी शर्त इन्होंने रखी कि आवाज़ नहीं सुनी तो जान दे देंगी ये अपनी। फिर क्या था, ये पागलपन ही था जो इनका पहला ब्रेक बन गया। जी हाँ, और रिकॉर्ड किया अपना पहला गाना, अफसाना लिख रही हूँ तेरे इंतज़ार का। जी हाँ, सो ये उमा देवी उर्फ टुनटुन जी की कहानी है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई कहाँ इतना बेहतरीन गाना, कहाँ इतनी प्यारी आवाज़ और हम कॉमेडी से कैसे जोड़ रहे हैं? तो आपको बताते हैं, दरअसल ये कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती है, यहाँ से तो शुरू हुई है, लेकिन किस्मत ने चूँकि मोड़ ले लिया। फिर उसी दौर में लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी नई आवाज़ें आईं और इंडस्ट्री उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ गई, लेकिन ये फिर से लौटी। इस बार उमा देवी यानी उर्फ टुनटुन जी गाने के लिए नहीं आई, बल्कि इंडिया को हंसाने के लिए आई। जी हाँ, जब कॉमेडी सिर्फ मर्दों के लिए लिखी जाती थी, जिस दौर में अपने टैलेंट से खुद के लिए इन्होंने जगह बनाई। और दरअसल ये टुनटुन नाम जो है किसी और ने नहीं, ऑफ कोर्स सुपर स्मार्ट, या नाम दिया टुनटुन दिलीप कुमार जी ने। बिल्कुल 150 के करीब फिल्में की, लेकिन लोग इनके हुनर पर वजन पर हंसते थे। नए चेहरे फिर से आए, धीरे धीरे पर्दों से गायब हो गई। उनके आखिरी

मुरीद हैं तो आप भी ऑफकोर्स ज़रूर बताइए चैट बॉक्स पर कि उमा देवी और फुटुनटुन यानी भारत की पहली फीमेल कॉमेडियन की ये दर्द भरी दास्ता कैसे रही, क्योंकि उन्होंने दुनिया को तो हंसाया पर उनकी लाइफ इससे परे थी। और हमको अक्सर जो दिखता है हमको लगता है कितना अलग है। हम लोग कई बार देखे हुए पर विश्वास करते हैं लेकिन देखा हुआ हर बार सही हो या ऐसा ही हो ये बिल्कुल भी कतई सही नहीं बात है, है ना। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ देखा है, समझा है, जाना है तो आप भी बता सकते हैं। और वैसे भी अब वक्त हो गया है आपके स्पेशल शो गायका गुंडा विद आरजे अदनान की तरफ चलने का, तो आइए सॉन्ग के जस्ट पार वापस आते हैं और देखते हैं कि भाई किन किन लोगों की हंसी आपको हंसाती है और कौन सी ख़तरनाक हंसी आपने सुनी थी, क्या आप उसको हंस करके भी बताने वाले हैं। नंबर वही है 6393 9331649।

इश्क दी चाशनी, क्या बात है। सो गाना तो चाशनी वाला है और आज माहौल हंसी वाला है और सुबह रोमांटिक वाली है। तो भाई इतने सारे रंग जो है वो आज के ही संडे स्पेशल में नजर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए ये डे कितना ज्यादा स्पेशल है। तो चलिए इस स्पेशल डे में क्यों ना आपको इन्वॉल्व करते हैं और सीधे सीधे आपसे जुड़ करके सीधे बात करते हैं और देखते हैं भाई इस वक्त हमारे साथ कॉल इन प्रोग्राम में कौन है जुड़ा, ऑफ कोर्स, और उनको

0: हंस करके बताना पड़ेगा कि अभी तक उन्होंने कौन सी बड़ी ही ऑकवर्ड सी हंसी सुनी जो आज भी उनको काफ़ी ज़्यादा हंसाती है, और आज वो भी थोड़ा सा डेमो दे करके हम सभी को हंसाने की कोशिश करने वाले हैं। हाँ जी, हेलो हेलो।
1: खुशियों भरी रात थी, मुस्कुराती हुई सुबह, आपकी आवाज सुनते ही हम सब हो गए अलर्ट मोड। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और ये हैं, जहाँ तक मैं आवाज से पहचान पा रहा हूँ, अनु है, राइट?
1: जी सर।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। अनु, कैसी हैं आप?
1: हम तो बहुत अच्छे
0: हैं। हर बात बोलने के बाद बीच में पीछे उसके हा हा हा लगाना पड़ेगा। चलिए वापस से बोलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये बताइए कि भाई, आज तो विश्व हास्य दिवस है, तो ऐसी कौन सी हंसी है जो आपको सबसे ज्यादा अलग लगती है, किसकी है?
1: सबसे अलग?
0: हाँ जी, सबसे अलग लगती है।
1: माही जी।
0: कौन? Who is माही?
1: मेरी सिस्टर है।
0: अच्छा, आपकी सिस्टर है, तो उनकी हंसी में ऐसी कौन सी अलग बात है जो आपको लगता है कि काफी अलग है मेरी बहन की हंसी और आपको काफी हंसाती है?
1: सर, उसकी मासूमियत और उसकी शरारत और उसके हंसने का अंदाज भी एकदम हटके है।
0: अरे थोड़ा सा आप हटके सुना सकती हैं कैसा हंसती है?
1: नहीं सर, हम उसके हंसने सुना पाएंगे?
0: थोड़ा सा,
1: अगर हम उसके हंसने सुना दिए तो फिर हटके क्या रहेगा?
0: नहीं, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं। अरे बस आंखें बंद करिए, शुरू हो जाइए और बाकी हम लोग झेल लेंगे, कोई बात नहीं।
1: अभी भी मैं तो हंसी रही हूँ।
0: ये तो आपकी हंसी है, ये तो सुना हुआ है। हम माही की हंसी सुनना चाहते हैं आपसे कि भाई ऐसी क्या यूनिकनेस है माही की हंसी में?
1: माही पता नहीं कैसे हंसती सर, मैं नहीं हंस पाऊंगी, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छा हंसती है सर। वो सर पता है, जब कोई चीज चोरी करती है या कुछ भी, मतलब उसको छुपाना रहता है, तो उसके पेट में खुजली होती रहती है, और जैसे ही हंसती है तैसे ही जान जाओ उसका चेहरा, देखते ही जान जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है।
0: तो गलत बात है भाई कि आप उनका भेद खोल देते हैं उनकी हंसी के जरिए, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
1: वो छुपा नहीं पाती है कुछ भी।
0: वही कह रहे हैं, आप छुपा ले जाओ और माही छुपाना चाहे तो उनकी हंसी भाई सब कुछ खोल के रख देती है, तो ऐसे कैसे?
1: सर सच में वो कुछ भी झूठ बोलेगी, स्कूल की बात हुई या कोई चोरी की या कुछ भी हुआ तो वो हंसते ही पकड़ी जाती है। एक दिन ऐसा हुआ, मम्मी ने उसको 10 रुपए दिए, अब वो लाके मुझे भी बोलती है दिए तो पैसे मुझे पड़े मिले, हमके पड़े नहीं दे गई। हाँ अभी मैं बाहर गई, देखो मैं आज कितना लकी थी कि तुरंत ही मुझे पैसा मिल गया। हमके अच्छा वो हंस रही थी और मुझे हंसी से ही गड़बड़ लग गया, फिर पता चल गया, पूछने लगी तो कहा मम्मी ने लिया है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: लेकिन मतलब, बहुत पूछने पर बताई।
0: हाँ मतलब इस तरह से पकड़ी जाती है माई।
1: हाँ
0: ओके, चलिए एक बार आप अलग तरह की हंसी हंसी कुछ भी, या अगर मान लीजिए कि अगर किसी बिल्ली को हंसना होता तो बिल्ली इंसानों की तरह आखिर कैसे, किस आवाज में हंसती?
1: बिल्ली जैसा मैं नहीं हंस पाऊंगी।
0: अच्छा, तो डॉगी जैसा?
2: पाव पाव।
1: नहीं।
0: फिर
1: डॉगी तो आप, और तो आप जैसे हंसोगे, मैं तो डॉगी जैसे कहां हंस पाऊंगी?
0: किसके जैसे हंसोगे आप?
1: मैं अपने जैसे हंसूंगी।
0: हां हंस के बताइए। हाँ जी,
1: मेरे हंसने पे आवाज नहीं निकलती है।
0: ऐसा कौन हंसता है तो हंसने से ज्यादा रोना लग रहा है?
1: नहीं, रोती तो नहीं हूँ, मगर एक चीज जरूर है कि घर में सब लोग हंसते हैं, मेरी सिस्टर है वो हंसती तो बहुत जोर जोर से हंसती है, तो सब लोग बाहर से लेते हैं तो उसको डांट पड़ती। और मैंने इस पे एक काम किया, खास ध्यान दिया कि मेरी हंसी की आवाज बाहर न जाए, मुझे डांट न मिले, और जब उसको डांट मिलती है बाहर से, भैया कोई भी मम्मी आके डांटती है, उस वक्त भी मुझे हंसी लगी रहती है, पर किसी तरीके से संभाल लेती हूँ, और फिर बाद में बहुत हंसती हूँ कि देखो मैं तो बच गई और सबसे ज्यादा मैं ही हंस रही थी, और डांट जिसको मिला जो थोड़ा कम हंस रहा था।
0: सही बात है। नहीं थोड़ा सा संभाल के इस बार आप लोग दोनों हंस लिए थे, तो जापान में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था, तो प्लीज थोड़ा संभाल करें। ओके ठीक है
1: जी सर।
0: ओके थैंक यू सो मच अनु।
1: और एक बात सर, मैं ना पिछले एक साल से आज का इंतजार कर रही थी, आज के दिन का।
0: पिछले एक साल से इंतजार कर रही थी आप, क्यों, ऐसा क्या था आज के साल मेरे?
1: सर पिछले साल में मेरे साथ बहुत बड़ी शरारत हुई थी।
0: क्या हुआ था?
1: जो जिस सर से मेरी बात हो रही है यही सर मेरी कॉल उठा लिए और बहुत देर तक कुछ बोले ही नहीं, और एक दो बार मैंने हेलो बोला, कुछ नहीं बोले, तो मैं भी खामोश हो गई। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद जाके बात किए, बोले, तो मैंने भी सोचा था इस बार ना मैं अभी तुरंत ही नहीं बोलूंगी।
0: असल में कहते हैं ना कि जब कोई टेंशन आ रही हो तो गहरी सांस ले, तो हो सकता है वो टाइम हमने गहरी सांस में लिया हो।
1: नहीं पता था।
0: नहीं हमें पता था ना।
1: और सर एक बात और, आप ना बृहस्पतिवार के रात में आंधी आई थी, तो क्या आप आंधी में उड़ गए थे? इतना दूर आपको ढूंढा, बहुत दूर रहा।
0: हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो थे बनारस नगरिया।
1: तो इसका मतलब आप आंधी के साथ ही चले गए थे?
0: आंधी इधर आई, बीच में हम निकले, उधर बनारस से आंधी निकल चुकी, फिर हम बनारस पहुंचे। मतलब हम सफर के दौरान थे जब आंधी आ रही थी, और हमें आंधी का कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हम इधर से निकल
1: गए। आपको ना ट्रेन से जाना पड़ा, ना बस से जाना पड़ा, आप आंधी के साथ चले गए थे?
0: नहीं नहीं आंधी के साथ नहीं, आंधी के साथ तो आपके जाने का प्लान था, लेकिन अब खैर आप रुक गई। इस बार आंधी ने कहा था, इस बार आंधी ने कहा था, इस बार तो लेके जाएंगे इस बवाल को हम।
1: आपको ऐसा क्यों लगा कि आंधी अनु को ही लेकर जाएगी?
0: हाँ वो ढूंढ ही रही थी।
1: सब लोग यही बोलते हैं कि आंधी तो अनु को लेकर जाएगी।
0: तो सही बोलते हैं आप, सीरियस लिया करिए बात को, बिल्कुल बिल्कुल लिया करिए आप, आपकी हरकतें ऐसी है कि आंधी के साथ ही ले जाए। हाँ जी सच में ये मेरी ब्लेसिंग्स है।
1: और सर एक बात और, हमने ना कल बहुत बड़ी शरारत की थी, लेकिन तो सामने वाले को पता नहीं चला, मैं एक सो सुन रही थी और एक सौ नहीं था, गुड मॉर्निंग गोंडा ही था।
0: अच्छा हमें लगा 100 सुन रही थी, हमने कहा 100 200 कैसे सुन सकते हैं आप, एक बार में एक ही सो सुन सकते हैं।
1: आप कहे सो गुड मॉर्निंग गोंडा, जो हमारा सो ना 100 से ज्यादा हो गया, अभी तो बहुत सो हो गया, अभी गिनती नहीं की है कितना हुआ है। लेकिन कल हम 10 बजे ट्यून किए, तो यहाँ पे गाना ही गाना आ रहा था, तो हमको नहीं पता चला कौन है। अब देखिए गाना ही गाना आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं आया है, तो हमने कहा क्या करते क्या करते, कैसे पता चलते, फिर हमने कहा अभी कॉल करते हैं, अभी कॉल करेंगे ना स्टूडियो में कोई होगा तो कॉल उठाएगा, होगा ही नहीं तो कौन उठाएगा। तुरंत ही मेरी कॉल पिक हो गई, तो हमने सोचा, तो फिर हमने ये नहीं बताया लेकिन कि हमने तो चेक करने के लिए कॉल किया, हमने कहा अरे बहुत देर से आपकी आवाज नहीं सुनी थी, रेडियो की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ गाना गाना आ रहा था, तो हमने कहा देखिए मैम का हाल चाल क्या है, क्यों रेडियो की आवाज नहीं आ रही है।
0: मतलब
1: और मैम को कुछ पता ही नहीं चला कि हम तो चेक कर रहे थे।
0: चलिए कोई नहीं, इस वक्त मैम सुन रही है, मैम को पता चल गया, आइंदा से वो आपसे बहुत सतर्क रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है।
1: सर ये तो सच है, मैं सुनते रही होंगी।
0: बेशक बेशक, एंड थैंक यू सो मच अनु।
1: इसके लिए मैम से सॉरी, लेकिन सच में सर मैं मतलब कि चेक करने के लिए कॉल किया था, पर मैम से बात हो गई तो भी ठीक ही था, अच्छा ही था।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए आप भी।
1: हाँ बात है, मैं ना मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था, मैंने रिचार्ज करवाया और मैं संडे का इंतजार कर रही थी बहुत बेसब्री से, मैंने बताया एक साल से इंतजार कर रही थी, तो रात में मैं सोच रही हूँ अगर सर नहीं आए कल भी तो मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, अभी मैं रिचार्ज नहीं कराती, अगर अभी करा लिया और सर भी नहीं आए तो मेरा कितना बड़ा लॉस होगा, फिर मैं क्या करूंगी, सर को कैसे भरपाई कर पाऊंगी, इतना बड़ा लॉस। लेकिन फाइनली जब सुबह आपकी आवाज सुनी तो सुकून की सांस ली, नहीं होगा
0: भी तो बच गई। कोई बात नहीं, जब हम कभी ना आए तो 5 बाल्टी हैंडपंप से पानी निकाल के उसकी भरपाई कर सकते हैं आप, डोंट वरी।
1: 5 बाल्टी में नहीं होगा, अभी ज्यादा से लगेगा।
0: ओके थैंक यू सो मच, चलो थैंक्स टू कॉलिंग।
1: आपके नहीं, अब एक बात और।
0: हाँ जल्दी बोलिए प्लीज, कई सारी कॉल्स आ गई हैं लगातार हमारे पास में।
1: सर अभी आपके लिए ना एक गाना भी है।
0: ओके
1: एक लाइन। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है मगर तुझसा नहीं देखा होगा, जिस तरह से मैंने तेरी राहत की है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा।
0: यूं किसी ने हमारे लिए ऐसे नहीं गाया होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: परसों नहीं देखा था, कई दिन का देखा था।
0: बेशक बेशक, एंड थैंक यू सो मच गाने के लिए भी और बातचीत के लिए भी, बहुत अच्छा लगा अनु, थैंक यू सो मच।
1: ओके सर, बाय
0: बाय, टेक केयर। सुबह ये तो थी हमारे साथ में अनु जो हमसे बातचीत कर रही थी। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई कौन है इस बार। हाँ जी, हेलो, आपका नाम क्या है आप बता सकते हैं?
2: मैं सविता दुबे हूँ।
0: और मैं अजय अदनान हूँ। तो बड़ा सीरियस बात हो रही है।
2: हाँ, सीरियस तो हो ही रही है, क्योंकि मैं एक साल पहले की बात बता रही हूँ आपको।
0: अच्छा।
2: जिस बात मन ही मन हंसी आ रहा था, एक साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं का ही टाइम था, और मैं आपका घर चांद के पहाड़, जो आपका घर पे रहते हैं, चांद के पहाड़ के उस पार में गई थी, आपका घर ढूंढने के लिए। आपका एक दोस्त बंधु था, वो भी मासूम।
0: अच्छा।
2: आपको वीडियो, आपका वीडियो मैंने मोबाइल पे दिखाई, तो बड़ा ये तो रहता है यहाँ पे, पर वो साल में एक बार आता है, रहता है नहीं है यहाँ पे, लखनऊ रहता है, साल में एक बार आता है। तो मैं बोला जो भी हो, साल में एक बार आता है, इसका घर कहाँ है? तो बाद में दूसरों को बोल के बताया कि इनका घर दिखा दो। वो बात नहीं, मुझे हंसी, मैं मन ही मन हंस रही हूँ। साल में एक बार आता, साल में एक बार आता है, तो फिर गुड मॉर्निंग गुंडा कौन करता है?
0: कौन करता है?
2: मन ही मन में सोचे हाँ। वो भाई बंधु को मैं आज भी नहीं पहचान पाऊंगी।
0: अच्छा।
2: पर उसने जो बात बोला ना, वो ही मेरा मन में कि इस साल में लखनऊ रहता है, लखनऊ में टीवी पे खबर पड़ता है, साल में एक बार आता है गोंडा।
0: अच्छा।
2: मैं मन ही मन सोच रही हूँ, साल में एक बार आता है तो फिर गोंडा का शो कौन करता है? यही मेरा दिमाग में चल रहा था।
0: ये कोई पड़ोसी है मेरा, ये कोई पड़ोसी है मेरा, जो मेरा
2: पड़ोसी है, पर थोड़ी दूर वाली पड़ोसी है, ताकि अच्छा। आपको बारे में उतना पता नहीं है कि आप यही पर ही रहते हैं। अब साल में एक बार आते गुंडा।
0: ये पड़ोसी है, पड़ोसा है, किससे बात किया था आपने?
2: पड़ोसा से, एक पड़ोसा से बात की थी, 25 साल का लड़का था।
0: असल में जिधर रास्ते पे आपने पूछा था, उधर रास्ते पे हम साल में एक ही बार जाते हैं, इसलिए उनको एक ही बार दिखते होंगे, बाकी हम अलग अलग रास्ता होता मेरे आने जाने का ना, इसलिए आप समझे। आप
2: नहीं, उसी रास्ते से आप आते जाते, आपको कभी कभी देखता होगा शायद।
0: हाँ, हो सकता है वही एक साल में एक बार ऐसे झांक झांकते होंगे, खिड़की पे बैठते होंगे, इसलिए
2: देखा होगा।
0: हाँ, इसीलिए ऐसी अच्छी सी बातें उन्होंने बता दी। खैर, और बताइए कैसी हैं आप?
2: और मैं अच्छी हूँ, और मुझे तो हंसी का कारण तो आपका ही शो से बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि आप पूर्णिमा मैम से बातें करते थे, तो एक बात मेरे को बहुत हंसी आया था, आपने बोले थे कि प्लास्टिक के कढ़ाई में पकौड़ा कैसे तला जाता है, इस बात से मैंने लोटपोट हो गई थी। जी,
0: तो पता चला कैसे तला जाता है प्लास्टिक की कढ़ाई में पकौड़ा?
2: अरे उसको पता नहीं चला, मुझे हंसी से लोटपोट हो गई थी। और दूसरी बात है कि रीता पाठक जी बहुत ही मासूम है, कुछ बातचीत के दौरान आपसे पूछा था कि भैंस का सिंह होता है, उनका भी बात पे लोटपोट हो गई थी।
0: अच्छा, नहीं हमने पूछा था कि उन्होंने पूछा था,
2: उन्होंने पूछा था भैंस का सिंह होता है, ऐसा बोला।
0: अच्छा, मतलब वो इतनी सीधी है बिचारी, वो जान नहीं पाई थी कि पूछ रही थी भैंस का सर सिंह होता है कि नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको, होता है कि नहीं होता है?
2: भैंस हमारे खूंटी पे बांधा है तो पता नहीं है, तो होता तो है,
0: पता नहीं है, होता तो है, अभी तक देखा ही नहीं आपने इतने साल से।
2: अरे पता है, हमारे ही आंगन में बांधा है, तो भैंस का मैं नहीं देखूंगी।
0: तो भैंस बंधा है, सिंह बंधा है, क्या बंधा है?
2: भैंस बंधा है।
0: तो भैंस में सींग है कि नहीं, हमारा तो सवाल ये है ना, तब से बहुत देर से हम पूछ रहे
2: हैं। है तो टेढ़ा टेढ़ा है।
0: टेढ़ा है? कहीं गिर गई थी क्या बचपन में भैंस आपकी?
2: नहीं, उसका सींग का वैसे ही आकार का होता है, भैंस का सींग तो टेढ़ा ही होता है, सीधा टेढ़ा टेढ़ा ही टाइप का होता है।
0: अच्छा, नहीं हमने एक बार एक महिला को देखा था, वो भैया कह रही थी भैया थोड़ा सा सीधी सींग वाली देना, तो हमें लगा ये सीधी सींग कौन सी होती है भाई।
2: मार्केट में सुने होंगे?
0: मार्केट में ही सुना था हमने, ये ऐसे हुनरबाज लोग मार्केट में ही मिलते हैं।
2: हाँ, हमारे गोंडा में ही मिलते हैं।
0: हमारे गोंडा में ही मिलते हैं। आप जरा ये बताइए, गोंडावासी हो चुकी हैं आप, ऐसी कौन सी हंसी है जिसको आपने सुना और बड़े अलग लगी, और वो फिलहाल आप हंस के बताने की कोशिश करने वाली हैं?
2: अरे मैं हंस के कैसे बताऊंगी, तो लोग हंसेगा।
0: अरे तो हंसाना ही तो है आज विश्व हास दिवस पे, और क्या करना है? कौन आपको देख रहा है वहां से, कैसे आप हंस रहे हैं?
2: उस तरह से थोड़ी ना हम हंसा पाएंगे जिस तरह से वो हंसाती है सबको,
0: कोशिश कर सकते
2: हैं। आकांक्षा मैम को ही देख लीजिए किस तरह से हंसती है हंसाती है सबको।
0: जिसकी भी आपको करना है करके आप बता सकते हैं हंसने का तरीका।
2: अरे मैं नहीं कर पाऊंगी डुप्लीकेट हम किसी को नहीं कर पाते हैं।
0: अच्छा आप अपना खुद कब बहुत खतरनाक हंसती है बता सकते हैं आप?
2: मैं खतरनाक हंसी? इनका ही पापा का ही ऐसे ऐसे हरकतों की कभी तो गुस्सा आता है कभी गुस्सा के बाद हंसी भी आ जाता है ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं।
0: और वो कैसे?
2: वो कैसे कि पानी में निकल जाएगा बारिश होगा तो भी निकल जाएगा। एक मना करे कि पानी आज ही हो गया पानी में निकला धड़ाम से गिर गया। मैं मना करते जा रही हूँ पानी में ही जा रहा था। अच्छा। गिरा है आप बताइए।
0: आपने मना किया था कि मत जाइए?
2: हाँ कि बारिश गिर जाए। अरे ये तो है चंचल बोलते रही ना। हाँ हाँ हमसे आपसे चार गुना ज्यादा चंचल है। चला गया जैसे ही गया पैर पिछल के गिरा वो सोचिए कि कम लगा कम पे ही।
0: आपने हेमा मालिनी जी की तरह रोका होगा सुनिए जी मैं नहीं जाइए आगे नहीं गिर जाएंगे आप। और वो बेचारे अमिताभ बच्चन की तरह। हाँ फिर कैसे बोला था आपने?
2: इससे नहीं बोले थे हम लोग कि मत जाओ अभी अभी
0: बात है। अब बोलेंगे अरे नहीं भाई हम तो हमेशा निकलते हैं चाहे कीचड़ हो बरसात हो या आगे जानवर।
2: हेलो हेलो
0: हाँ जी हाँ जी
2: हमारे बनारसी बाबू बन के आए थे चलो गाना गा रही है खई के पान बनारस वाला।
0: ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ कर ले कॉल मॉर्निंग शो में हंस ले बबुआ ओ हंस ले बबुआ ओ गोंडे वाला। देखा
2: बहुत तो बढ़िया बबुआ का हंसी चाहिए। हमें तो बबुआ से कुछ नहीं चाहिए हमें तो बबुआ से खाली मुस्कान बने रहे बस यही चाहिए।
0: क्या बात है बबुआ मतलब ये जो लोग सुनने वाले हैं लिसनर्स की हम बात कर रहे हैं?
2: नहीं हम तो आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, हमें तो बबुआ का खाली हंसी चाहिए बस और कुछ
0: नहीं। बबुआ मतलब
2: हमें तो मुस्कुराते रहे।
0: अच्छा तो मुस्कुराते रहे। So, आज वैसे हंसने वाला दिन है और लिटरली आपने पिछले साल की बात बता दी और फिलहाल अपने हस्बैंड की हरकत बताई जिसपे आपको काफी हंसी भी आती है और आप खुद भी काफी अलग अलग अंदाज में हंसती हैं।
2: अब देखिए मुझे देख के दुनिया हंसता है मुझे देख के जैसे मुझे देख के लोग हंसता है और क्या।
0: अच्छा ऐसा क्या आप हरकत करती हैं कि आपको देखते ही हंस देते हैं लोग?
2: देखते नहीं नाम ही सुनते ही मेरा कुछ अलग है ना इस दुनिया से थोड़ा अलग हूँ भीड़ से थोड़ा अलग हूँ ना इसीलिए हंसी आता है। ठीक है ना घमंडी हूँ ना नचेरी हूँ ना ही कुछ हूँ अलग ही हूँ
0: अलग
2: हंसी आ जाता है।
0: काफी ज्यादा अलग हैं आप गोंडा शहर से भी काफी कई किलोमीटर अलग हैं इसलिए आप अपने को अलग मानते हैं राइट?
2: नहीं गोंडा नहीं हूँ झंझरी से 9 किलोमीटर दूर हूँ।
0: झंझरी से चलिए बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही खुश रहिए ये हम दुआ कर दें आपके लिए। बहुत सारा आशीर्वाद आपको और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके।
2: शुक्रिया मुझे भी खुशी हो जाती है।
0: बिल्कुल थैंक यू सो मच।
2: खुशी में मेरे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है।
0: बेशक सही कहा।
2: शुक्रिया
0: थैंक यू सो मच। और ये थी हमारे साथ में सविता दुबे जी जिन्होंने हमसे बात किया और बताया कि भाई किस तरह से उनके हस्बैंड की हरकत पर वो हंस लेती हैं और आज विश्व हास्य दिवस मना रहे हैं। आप अगर ऐसी कोई हंसी जो आपकी खुद की ही काफ़ी ज़्यादा अलग हंसी हो जिसको सुन करके पेड़ों के परिंदे उड़ जाते हो जिसको सुन करके अच्छे खासे बच्चे डर के घर के अंदर चले जाते हो महिलाएं दरवाज़ा बंद कर लेती हों घोड़े कपकपाने लगते हों और सन्नाटा पसर जाता हो अगर ऐसा कोई मंज़र है तो आप भी उस तरह हंस के हमको दिखा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रेडियो की आनस्थली पर। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो सर गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल है?
3: बढ़िया बढ़िया आप बताइए।
0: बहुत बढ़िया
3: मौसम
0: बहुत बढ़िया
3: तो बहुत आशिकाना हुआ आज।
0: कौन काना हो गया मतलब क्या हो गया?
3: मौसम है आशिकाना आपने
0: हाँ ए दिल जरा अच्छे से खाना नहीं क्या बोलने जा रहे थे आप?
3: Nothing, sir.
0: कुछ तो बोलने जा रहे थे आप बहुत मासूम है। ये सविता जी ने बता दिया आप बहुत ज्यादा मासूम है।
3: मैं आपका डाइवर्ट कर रही हूँ माइंड कह रहे हैं आपका थॉट ऑफ द डे बहुत रियल था बहुत अच्छा था।
0: थैंक यू सो मच। वैसे आप हंस के बताइए
3: मैं कैसे हंसती हूँ, मुझको पता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो नकली वाली हंसी है,
0: बहुत ज्यादा नकली हंसी। ओके, कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी हंसी है जिसको सुन के आप बहुत ज्यादा हंसती हैं? कोई आपके रिश्तेदार में, रिश्तेदारों में
3: नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो एक जो इनका पिक्चर आया था अमरीश पुरी का मुगैबो खुश हुआ वाला, उसमें मैं बहुत डर जाती थी।
0: अमरीश पुरी का कौन सा डायलॉग सुन करके आप हंस जाती थी?
3: हंसते में हंसते वाला उन्होंने कोई डायलॉग ही नहीं बोला आज तक जीवन में, मुझको नहीं लगता।
0: और भाई उसी किसी बातें करते हैं अमरीश जी, हमारे अमरीश जी हमारे बहुत खास दोस्त है जी। ओके, तो ये बताइए, जैसे आज विश्व हास दिवस है और इतना खास दिन है, ऐसी कौन सी हंसी है जिसको सुनकर हंसी नहीं खौफ आता है? ऐसी भी कुछ हंसी है क्या?
3: बताया तो मैंने मुगैम्बो खुश हुआ वाली।
0: मुगैम्बो खुश हुआ, आप खुश नहीं हुए? आप खुश नहीं हुए, आप जेलस हुआ ना?
3: आप जेलस हुआ?
0: No, I am not absolutely wrong. You are wrong.
3: नहीं सर, मैं क्यों जलिस होंगी भाई किसी से?
0: अच्छा, तब ठीक है। नहीं, हमें लगा
3: लोग हो जाते हैं कभी कभी।
0: आखा, क्या बात है, कैसे आपसे जलिस हो जाते हैं? चलिए फटाक से इसका सबूत दीजिए।
3: अरे क्या ही बताएं,
0: आप बता दीजिए।
3: सब चीज ऑन एयर हो जाएगा सर।
0: नहीं, बता सकते हैं, बता सकते हैं, आप बता सकते हैं।
3: किसी का दिल दुख जाएगा।
0: किसी का दिल दब जाएगा? कहाँ
3: दब नहीं, दुख जाएगा।
0: अच्छा, दुख जाएगा। ओके ओके, ठीक है।
3: जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए,
0: काला नमक छिड़कना चाहिए,
3: होने के लिए छोड़ देना चाहिए उसे।
0: नहीं, हमें भी लगता है, जैसे ये व्हाइट वाला ना छिड़क करके अगर काला नमक छिड़क दे तो थोड़ा सा गर्मियों में फायदेमंद होता है। चलिए,
3: देर से मैं सर फोन मिला रही हूँ, आपने मेरा फोन नहीं पिक किया, सबसे पहले मैं ही फोन करना शुरू की हूँ।
0: कितनी देर से मिला है आपने?
3: 9:58 से ही मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आपने किसी और का फोन पिक कर लिया। मैं सोची मैं आज बात ही नहीं करूँगी, जाओ।
0: अरे, लेकिन फिर भी आपने किया, ऐसी क्या बात?
3: हम नहीं करने वाले थे बिल्कुल, लेकिन फिर डाइवर्ट क्यों हो गया माइंड, कैसा लगा देखते हैं, अगर इस बार उठा तो उठा वरना कैंसिल। आज की बात कैंसिल।
0: आपके पास पेंसिल?
3: आज के बाद आपसे आज की बात कैंसिल हो जाती अगर ये फोन ना पिक होता तो।
0: आपके पास है पेंसिल? आपके पास है पेंसिल?
3: पेंसिल है मेरे पास।
0: हाँ, तो फिर
3: ये वाली, आई हैव मेनी ऑफ द पेंसिल।
0: हाँ, सो ये वाली बात कैंसिल। ओके, आपके पास है पेंसिल, ये बात कैंसिल। ऑफ कोर्स, तुकबंदी बना करके ये रिस्क हटा रहे कि आप दोबारा कॉल नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप दोबारा करिए, दोबारा करिए।
3: लेकिन उसमें काफी देर से फोन के पास रहना पड़ता है ना, मॉर्निंग टाइम जानते हैं कितना बिजी रहता है।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, एक असिस्टेंट आप रख सकते हैं संडे संडे।
3: अरे मेरी बहन है, वो अपने काम में बिजी है। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं, मैं तो सभी की असिस्टेंट बन जाती हूँ घर में, मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता कभी।
0: अच्छा, ये बात है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल आपने आज का थॉट सुना था, आज का थॉट आपको क्यों अच्छा लगा?
3: मैंने सुना क्योंकि वो बहुत ही मतलब सही बात थी कि बातों को भूलना भी बहुत अच्छा होता है, कुछ जो आपकी खट्टी यादें होती हैं, जो बुरी यादें होती हैं, उनको भूलना भी बेहतर होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में नहीं भूल पाते, मेरे जैसे लोग, चीजें भुलाने में बहुत टाइम लगता है। तो उसका दोनों पहलू है, अच्छा पहलू भी है और बुरा पहलू भी है।
0: बिल्कुल, लाइफ ऐसे ही चलती है, बस हमने यही कहा था कि हम जैसे हम ऐसी चीजों को ज्यादा जहन में बसा लेते हैं जो हमारे साथ बुरी हुई होती, तो उसको लेकर के हम अच्छा भी नहीं करते हैं, या डर जाते हैं, या सोचते हैं क्या ही करें, इसमें भी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए।
3: लेकिन सर पता है, मैं फील करती हूँ कि मतलब जो मतलब उसकी बुरी यादें तो कहेंगे, जैसे मेरी मम्मी का जाना मेरे लिए मतलब आज तक जीवन में इससे बड़ा दुख मेरे लिए कोई रहा नहीं होगा। मेरी माँ मेरे सामने ऐसे ही मतलब अचानक सदन चली गई, तो हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। सोचते तो है, वो सारा इंसिडेंट बिल्कुल बैक टू बैक आता रहता है, लेकिन फिर दिल को समझा लेते हैं कि चलो क्या ही कहें, बहुत ज्यादा उनको कष्ट नहीं मिला शरीर से, आत्मा बहुत इजीली उनके बॉडी को छोड़ के चली गई। मतलब अपने चलते फिरते बातचीत करते सडन ऐसा हुआ, तो वो एक सडन वाला तो है कि मतलब हम लोग को थोड़ा सा भी इल्म नहीं था कि अगले पल में ये होने वाला है।
0: बिल्कुल,
3: तो यही सब चीजें हैं कि मतलब वो लोग बहुत बेचैन रहते हैं जो बातें भूल नहीं पाते। मैंने लिखा भी है चैट में, लेकिन शायद आपने देखा नहीं या उसको पढ़ा नहीं अभी।
0: अभी चैट बॉक्स की तरफ नहीं गया जी, बिल्कुल।
3: वो लोग बहुत ही वाकई में बहुत बेचैन रहते हैं जो हर बात याद रखते हैं, उनको हर बातें याद रहती ही है।
0: करेक्ट, सही बात है। वैसे आज आपने जो अपनी रियल वाली हंसी हंसाई है वो ज्यादा अच्छी लगी हमको, जो आपने बताया था। थैंक यू। और ये रियल हंसी
3: गाना गाना चाहूंगी
0: प्लीज,
3: आज मैं खुद तैयार की हूँ।
0: क्या बात है, सुनाइए।
3: याद किया है मैंने
0: जी, बिल्कुल
3: गाएं।
0: हाँ जी गाइए।

0: क्या बात है, आवाज बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया गाते हैं आप, और इसी तरह आपकी आवाज बनी रहे और इस तरह आप गाते रहें, और काफी लोगों ने तारीफ किया है, सबने कहा बहुत अच्छा लगा, एंड लिटरली आपने बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू,
0: थैंक्स टू यू, और दोबारा बाय बाय, ठीक है, जरूर। सो भाई, ये तो थी हमारे साथ में रीता पाठक जी, जिन्होंने हमसे बातचीत किया। अब चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, और बहुत ही उम्दा गाना आपने सुनाया, इवन मैं रात में अक्सर सोने से पहले इस गाने को ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि ये गाना कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हो जाता है।

0: कहिए कैसे आना हुआ?
1: डॉक्टर साहिबा, ये लीवर में बहुत दर्द पता नहीं क्यों रहता है।
0: शराब पीते हो?
2: ओह नो।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल, मंगाइए लेकिन फैग थोड़ा सा छोटा मंगाइएगा, बड़ा फैग नहीं पी पाते।

से मेरे बारे में वो सारे सच। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: हां जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो 11.89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब चलते हैं सीधे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद और उनको आज लाफिंग डे के मौके पर क्या कुछ है कहना। हां जी, हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग टू यू। अपना नाम बता दे हमारे श्रोताओं को।
1: सर, पूर्णिमा बोल रहे हैं।
0: पूर्णिमा तो परसों थी ना, बुध पूर्णिमा।
1: जी बिल्कुल, परसों थी और आज भी है।
0: इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन पूर्णिमा थी ऐसा कोई हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, बट उस वक्त हम गंगा घाट पे अस्सी घाट पे मौजूद थे और सामने से पूर्णिमा का चांद और आरती हो रही थी।
1: कितनी खूबसूरत बात है सर, ऐसा मैंने भी फील किया जब मैं बनारस गई थी।
0: करेक्ट। एक तो वो चांद लाल लाल सा, उसकी फिर लालिमा पानी में गंगा में पूरा, और फिर घाट पे हो रही आरती, और फिर तेज तेज ठंडी हवाएं क्योंकि मौसम भी इधर चेंज हुआ है, और पूरा खुला घाट। अब जरा सोचिए क्या नजारा रहा होगा, शाम ढल रही है चुकी है।
1: और सर कहीं अगर उसमें बोटिंग करने लगो तो और ज्यादा मजा आ
0: जाएगा। राइट राइट राइट राइट। बोटिंग हम करने का सोचे थे बट मुझे लगा कि शायद मेरा मोबाइल ज्यादा भारी है तो बोट पे कोई दिक्कत नहीं।
1: वैसे एक बात तो है, मतलब बनारस की जो शाम होती है मेरे हिसाब से मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, इनका सभी लोगों को लगती होगी।
0: एग्जैक्टली, लोग कहते हैं बनारस की सुबह लखनऊ की शाम, मुझे लगता है कि नहीं, बनारस की सुबह बनारस की शाम दोनों ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लिटरली बहुत खूबसूरत है।
1: और जब भी बनारस घूमना हो तो मेरे ख्याल से शाम को घूमना चाहिए।
0: नहीं, मेरे ख्याल से शाम में पहुंच करके पूरी रात वहां रहना चाहिए और सुबह देख कर फिर आना चाहिए।
1: घाट की जो आरती होती है ना सर, एक अलग ही जगह पे आपको पहुंचा देती है, मन में बहुत सुकून रहता है।
0: बेशक, सही कहा आपने। तो आप अपना हालचाल बता दे, कैसी हैं आप?
1: जी पहले आप बताइए केम छो।
0: पहले हम बताएं केम छो, अच्छा उसके बाद आप क्या बताएंगी छो?
1: पर मजा मान छो।
0: कितना मोजा माछे?
1: अभी तो सर मोजे में नहीं है, नंगे पैर हैं किसी किचन में।
0: अच्छा। ये बढ़िया था गुरु। ओके, तो आज लाफिंग डे के मौके पर मैं जानना चाहूंगा सबसे यूनिक हंसी आपके लिए कौन सी है?
1: तारीफ बताऊं या वैसे नॉर्मली?
0: जैसा आप चाहें वैसे बताएं।
1: तो मुझे सबसे ज्यादा हंसी अच्छी लगती है वो है फ्रेंड की है, अंकित। उसकी हंसी जब भी मैं देखती हूँ तो मासूम सी हंसी और प्यारी सी हंसी, तो मुझे जब मैं सबकी हंसी कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है उसकी हंसी सबसे बेस्ट है।
0: क्या क्या
1: मैं अपनी हाँ। जब मैं अपनी हंसी देखती हूँ मतलब मुझे खुद रियलाइज नहीं होता लेकिन मेरी दीदी ऐसा करती है, बड़ी मत हंसा करो सबके सामने।
0: क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: वो कहती
0: इतनी कीमती है?
1: नहीं नहीं, कहती बहुत अजीब है, प्लीज मत हंसा करो, अकेले में हंसा करो।
0: क्यों, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतनी भी अजीब है।
1: नहीं, मुझे मेरी खुद की हंसी कैसी मुझे आज तक नहीं पता, अब उसको या तो रिकॉर्ड करके सुनूं, बट मैं जब हंसती हूँ तो खुले मन से हंसती हूँ।
0: रिकॉर्ड
1: नहीं देखती कि सामने वाला कौन क्या सोच रहा, भाई हंसते हैं, हंस रहे हैं, हंसी है तो जाहिर सी बात हंसेंगे ना।
0: जाहिर सी बात है भाई, हंसी को रोकने वाली बात तो है नहीं।
1: और हंसी जब रोक रोक के हंसो तो फिर क्या हंसा, जब खुले मन से पूरा मुंह खोल के हंसो और अंदर से जब तक आंखों से आंसू ना निकले, पेट दर्द ना हो, तो वो हंसी किसी हंसी के काबिल नहीं रहती।
0: और क्या, और वो रोक के हंसने वाली तो दूसरी तरह से होती है। ऐसे करके कुछ लोग हंसते ना।
1: वो तो मैंने आज तक हंसी तरह से कैसे हंसा जाता है, मैंने ट्राई नहीं किया।
0: मतलब वो रुक रुक के चलने वाली अलग ही हंसी होती है, वो अलग ही प्रकार होता है उसका।
1: जी
0: तो किसी की तरह हंस के बता सकती हैं आप कि ऐसे कुछ इस तरह की हंसी मुझे काफी अजीब लगती है?
1: तो मुझे सबसे यूनिक हंसी जो लगती है और सबसे फनी हंसी लगती है वो राजपाल यादव की लगती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में।
0: राजपाल यादव की लगती है?
1: जब वो हंसता है, इनफैक्ट जब वो सीरियस रोल करता है या कॉमेडियन रोल करता है, कुछ भी रोल करे तो मुझे लगता है वो हमेशा कॉमेडियन ही रहेगा। बहुत अलग तरह की हंसी है, वो शब्द भी बोलता है तो उसके शब्दों में मुझे हंसी झलकती है, ऐसा लगता है।
0: अच्छा, पक्का?
1: बिल्कुल।
0: तो एक डेमो करके आपको सुनाया कि देखिए किस तरह की हंसी हंसते हैं राजपाल यादव।
1: आप करके बताइए कि मेरे से नहीं होगा।
0: नहीं नहीं, मैं करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ आपको।
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है
1: जी,
0: तैयार हैं आप?
1: बताइए सर, मैं भी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ।
0: ओके, सो राजपाल की आपने कहा वो कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वो कॉमेडी ही कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि भाई ये कॉमेडी है या नहीं। ओके, सो ये चुप चुप के की एक सीन का है और जिसमें ये हंसते हैं, तो और एक डायलॉग आपको और भी याद होगा।
2: मैं तो कुछ नहीं समझ रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता। इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता।
3: ये भगवान क्या
1: रोटी
0: है ना, रोटी वाला। तो कुछ ऐसे सीन है जो
1: उसमें एक और सीन है जब वो शराब पीता है तो कहता है, शायद ऐसा कुछ कहता है कि लोग पी के ज्यादा अच्छे दिखते हैं, शराब पी के दिखते हैं, आज तक मुझे नहीं समझ में आया। ऐसे कुछ उसमें सीन है मतलब, लेकिन वो कपड़े धुलने वाला सीन बहुत अच्छा है। उसमें पूछा जाता है कि किसको कपड़े धुलने आते हैं, तो वो कहता है मुझे मुझे आता है, मुझे आता है।
0: कहता है ये इसको दो, कह रहा नहीं नहीं नहीं ये बहुत महंगे कपड़े हैं, ये तुम ही धुलोगे। ये भगवान, ये क्या जुल्म है।
1: मुझे जब सर हंसना होता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। एक तो मैं अलग ज्यादा, मुझे लगता है कि मैं जब अकेली होती हूँ तो और अच्छे से हंसती हूँ, तो मुझे एक्चुअली हंसना होता है।
0: एक्चुअली हंसना होता है,
1: हाँ। या तो फिर मैं अपनी पुरानी बात है, जो मैंने हरकतें कुछ ऐसी की हुई जो मैं अगर सोच भी लूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो मुझे हंसी आ जाती है। और दूसरी बात है, जब मुझे कोई मोमेंट नहीं मिलता, किसी रीजन का वेट नहीं करना होता, तो मैं क्या करती हूँ, फोन में राजपाल यादव एक है और एक परेश रावल, मैं उनको देख लेती हूँ, तो मुझे वैसे इतनी हंसी आ जाती है कि मैं क्या बताऊँ।
0: अरे बाबा।
1: और इस हेरा फेरी मूवी, मतलब जब भी आप देखो ऐसे वेलकम हुआ, हेरा फेरी हुआ, मतलब मुझे हंसी का कोई रीजन नहीं देखना होता है, या फिर किसी से बात करनी, या फिर कोई मुझसे बात करे तब मैं हंसू, मैं खुद से सर्च करके या ढूंढ के हंसी लेती हूँ।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आता है। एक चेन्नई एक्सप्रेस अगर आप देखते हैं तो ट्रेन वाला सीन, मतलब कोई बंदा ना भी अगर हंसना चाहे, बगल में बैठा हो, कैसा भी माँ हो, बस हंसने लगेगा, ये तो पक्का है।
0: ये बात तो सही है। तो हंसी के लिए आप बहाने ढूंढते हैं या हंसी आ जाती है फिर बहाना बन जाता है?
1: अरे हंसी क्या, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि किचन में हूँ, अगर फोन ऑन कर लिया गलती से, या मतलब जानबूझ के, या मेरी छोटी बहन आती है कि दीदी ये देखो ये कितना फनी सा है, तो मतलब उसी में तो जो ठहाके हो, तो मुझे लगता है गैस पहले बंद कर लो, पहले हंस लो।
0: अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा हुआ है कभी कि आपके नॉर्मल एंट्री लेते ही, आपका चेहरा देखते ही कोई बहुत तेज तेज हंसने लगे, फिर आप कहें यार ये क्या था भाई, यो का था, ऐसा कभी आया है?
1: मेरा चेहरा इतना खराब है क्या?
0: नहीं, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई ऐसी चीज आपकी ही याद कर रहे होते हैं, आपकी बात चल रही होती है और आप अचानक से वो एंटर कर जाए, अब सबके सब देख के हंसने लग जाते हैं बहुत तेज तेज।
1: हुआ है तो।
0: आपके साथ भी हुआ होगा, कोई हो सकता है एंटर किया हो, आप देख करके बहुत तेज हंसे होंगे, क्योंकि कॉमन बात है, ऐसा हो जाता है। क्या हुआ था ऐसा बताना चाहिए? अच्छा, प्रैंक कॉल्स होती है?
1: हाँ, ये ऐसा करते हैं, जब मैं सामने से एंटर करती हूँ तो कुछ ऐसा चिढ़ा देते हैं, कुछ कह देते हैं, जब मैं होती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ, मेरा पैर वहीं पर रुक जाता है, और इतने ठहाके मारते हंसते, मैं सोचती हूँ कि इसने क्या बात कही जो इतना हंस रहे, मुझे हंसी नहीं आ रही है। फिर जब मैं एंटर करती हूँ तो कहते हैं रुक जा आ जा, बताती हूँ क्या बात है, मैंने इस बात से तेरी हंसा था। फिर मैंने कहा तो मुझे क्यों नहीं पता, मैं भी हंस लेती, अब चलो दोबारा रिपीट करूँ, तो ऐसा होता है।
0: चलिए इसी बात पे जोरदार हंस दीजिए जरा।
1: सर मैंने जो अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन आप हंसोगे या क्या सोचोगे मुझे नहीं पता, मैं बता दूं।
0: हंसी हम रोक के रखे, चलिए बताइए आप।
1: तो एक ऐसा इंसिडेंट मैंने किया है, मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं जब भी वो बातें सोचती हूँ या बताती हूँ तो लोग इतना हंसते हैं, सोचते हैं कि क्या बताऊं। तो ये हुआ था 2 साल पहले की बात है, 2024 की लास्ट की बात है ये, और शायद यही मौसम था। तो क्या हुआ ना, मैं शॉपिंग करके आ रही थी अपने घर पे, तो घर पे मम्मी थी, फ्रेंड दीदी थी।
0: अच्छा।
1: दोपहर का टाइम था, लगभग 2 से 3 का टाइम था और धूप काफी थी, तो सड़क पे कोई दिख नहीं रहा था, और जिस ऑटो से मैं आ रही थी उसकी बैटरी खत्म हो गई। अब जबकि उसकी बैटरी डेड हो गई तो मुझे रास्ते में उतरना पड़ा, लगभग 2 किलोमीटर था।
0: नहीं तो आप बैठी थी इसीलिए बैटरी खत्म हुई, क्या हुआ था मतलब?
1: नहीं नहीं, मैं अकेली थी और लास्ट में उसने कहा, मैंने कहा भैया आगे छोड़ दीजिए। अच्छा। बोले कि दीदी बैटरी तो खत्म हो चुकी है, या तो आप दूसरा रिक्शा कर ले, अब यहाँ मैं इसको रिक्शा को खड़ा कर रहा हूँ और मुझे भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तभी मैं वापस जा पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उतर गई और मेरे हाथों में, दोनों हाथों में शॉपिंग बैग थी, और दोनों, क्योंकि हाथ खाली नहीं था, मैं क्या करूँ, मैंने स्टॉल से अपना चेहरा ढका हुआ था अच्छे से, मुझे प्यास भी लगी हुई थी, अब मेरा हाथ भी ना खाली रहे कि मैं, अब मुझे कोई दिख भी नहीं रहा था कि मैं किससे हेल्प लूँ, कोई और तो कोई बाइक वाला। फिर बहुत टाइम बाद मैं चलते चलते जब थक गई, बहुत टाइम बाद 2 बाइक आ रही थी, तो एक आगे थी एक पीछे थी, तो एक बाइक को मैंने हाथ दिया तो बाइक वाला जो है रुका नहीं, रुक मतलब आगे जाके रुक। सेम उसी टाइम पे दूसरी बाइक आ रही थी। अब जो दूसरी वाली बाइक ने पहली वाली बाइक देखा कि नहीं रुक रहा है तो वो भी आगे जाके पीछे मुड़ा, और जब पीछे मुड़ा तो वो रुक गई, और जैसे ही वो दोनों बाइक रुकी आपस में टकरार हो गई। जब आपस में टकरार हो गई तो जानते सर क्या हुआ, सुनिए बात। मुझे वही अच्छा वजह क्या थी मुझे आज तक नहीं पता चली। मैं पहली वाली बाइक नहीं रुकी जब, तो मैंने दूसरी वाली बाइक से हेल्प। अब दूसरी वाली बाइक ने सोचा कि पहली वाली बाइक ने हेल्प नहीं की तो मैं क्यों रुकूं। फिर दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे को पीछे मुड़ के होता नहीं लड़कों का कि बाइक खड़ी करके देखने लगते हो थोड़ी देर के लिए, तो वो जब दूसरे आपस में टकरा गए और टकरा के खंधी में गिर गए खाई में। अब भगवान का शुक्र है कि वो तार नहीं लगा हुआ था, मतलब तार निकला हुआ था लगा था लेकिन लपेट के कहीं अलग पड़ा हुआ था, तो जगह काफी थी तो वो बेचारे खाई में गिर गए। तुम लोग खाई में गिर गए, वो कह रहा पहला वाला बाइक वाला कह रहा दूसरे वाले बाइक से तुम काहे रुके, तो दूसरा बाइक वाला कह रहा तुम क्यों नहीं रुके, तो पहले वाला बाइक निकालो मुझे क्या पता वो कौन है, तो दूसरे वाली बाइक ने कहा तुम्हें नहीं पता तो तुम आगे जाके क्यों रुके, वहीं बहुत केयर करनी चाहिए। तो दूसरे वाले बाइक ने कहा लड़की के एक लड़की के चक्कर में हम दोनों बात खाई। गलती मेरी कहाँ पे मेरे आज तक मैं वहां से भागी, मैंने कहा अगर मैं मेन सड़क होता या हाईवे होता तो मजा पक्का कस्टडी में ले लेते पुलिस वाले। मैंने वहां से इतनी तेज वन टू का फोर किया, मैंने कहा भागो पूर्णिमा यहाँ से
0: आप बिना लिफ्ट के भागे।
1: मैंने लिफ्ट के लिए सोचा था। तो अंकल एक मतलब बूढ़े अंकल आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बिटिया क्या हुआ ये दोनों कैसे गिर गए। मैंने कहा अंकल आप जानते हैं आजकल का जमाना कितना खराब है, फास्ट राइडिंग कर रहे थे तो गिर गए होंगे, किसी का दोस्त क्या, हम भी देख रहे
0: थे। गलत बात
1: तो है, लेकिन मैं जब घर पहुंची मैंने मम्मी की बातें बताई तो मम्मी ने थोड़ा सा मुझे डांटा। मम्मी ने कहा कि ऐसा अगर तेरे साथ कुछ हो जाता तो अकेली थी, तुम्हारे दोपहर का टाइम था लड़ाती हुई धूप थी। दीदी ने भी मुझे डांट लगाई, बोले तुम्हारी हरकतें ना आज तक मतलब सच में तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो। मैंने कहा दीदी मेरी कोई ऐसी हरकत नहीं थी ना, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी, मैंने तो उनसे हेल्प मांगी थी। वो अब बताइए उसी सड़क से जा रहे थे, फिर रास्ते में मुझे मिले भी, दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे, मुझे हंसी आई। मैं घर के एकदम पास में पहुंच गई थी, मैंने कहा बताओ भैया लिफ्ट दे देते तो क्या चला जाता आपका, तो बाइक थी कोई एक बैठा देता, ये तो सारे बाइक थे हेल्प कर देते।
0: नहीं तो फिर वही होता कि दोनों बाइक वाले अगर एक साथ चलते तो एक टांग उस पे एक टांग उस पे, और फिर आप भी ऐसे सारा जमाना।
1: लेकिन सर मैंने जब बात होती अपने दोस्तों को, जब बैठे हम लोग मिले बातें बताई तो मेरे दोस्तों ने यार आज से तेरी हरकतें मतलब सच में तो कभी कभी बहुत रेयर चीजें कर देती। मैंने कहा यार मेरी ऐसी कोई गलती नहीं थी। अब एक बात बताओ, मैंने स्टॉल बांध के रखा था, मैंने उनसे हेल्प मांगी, वो अच्छे से उनको पता होगा ना कि जब शॉपिंग बैग से इतने जाहिर सी बात है लड़की मार्केट से आई, रास्ता दूर है घर छोड़ दे क्या प्रॉब्लम है, उसी रास्ते से जा रहे थे उनका पेट्रोल भी बच जाता।
0: सही बात है, लेकिन ये जो दो टांग पर जो बाइक चलाने वाला सीन है वो मुझे याद आ रहा है अब, कि अगर आप दोनों से एक साथ लिफ्ट मांग दे। हाँ।
1: मुझे सबसे ज्यादा हंसी ये बात है कि पहला वाला बाइक नहीं रुका तो चलो दूसरा वाला रुक जाएगा, और दोनों रुके भी हेल्प ही देने के लिए आए थे रुके थे, लेकिन जो उनमें आपस में टकरा हुआ बाइक की टक्कर लगी और जो दोनों नीचे गिर गए, जो एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम काहे नहीं रुके, तो कह रहा तुम काहे नहीं रुके, तो कह रहा तुम्हें आगे जाके रुकने की क्या जरूरत थी, तुम पहले बिठा लेते।
0: नहीं वैसे ये काफी फनी था, ये काफी फनी था।
1: जब ये सुन रियर कैसे मैं जब भी मैं आंखें बंद करती ये सोचती हूँ, या फिर मुझे थोड़ा सा भी ख्याल आता है बेचारों का चेहरा, और उन्होंने शादी में जा रहे थे,
0: शादी बर्बाद हो गई बेचारों
1: शादी में जा रहे थे। किसी तरह से ये तो बहुत ज्यादा मतलब खाई नहीं थी, ज्यादा गहराई नहीं थी, तो मतलब गिरे और अपने आप को संभाला, बाइक उठाई अपने अपने दोनों लोग आगे, मैं बागी वहां से मैंने कहा था फुट लो यहाँ से।
0: नहीं सही बात है, नहीं तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं।
1: मम्मी ने कहा मतलब तुम, मैंने कहा मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं छोड़ देते तो क्या हो जाता, गिर गए देखो भगवान ने उनको उनकी सजा दे दी।
0: करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था ये इंसिडेंट जो आपने हमसे साझा किया, और आइंदा हम यही कहना चाहेंगे स्पेशली जो भी लिफ्ट लेने वाले, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, ऐसा आइंदा आप किसी और के साथ ना करें, किसी और के।
1: मैं
0: आपको नहीं कह रहा हूँ, वो जो हो गई चीजें उस पर हम बता रहे हैं, गलती तो आपकी कोई नहीं थी बेशक।
1: और वैसे भी एक चीज है मैंने नोटिस की मेरी लाइफ में, मुझे जितने भी लोग मिले अच्छे ही मिले हैं, चाहे वो मेल हो, मतलब फीमेल की तो मैं कम ही बात करूँ, मेल जितने मिले मुझे सच में अच्छे मिले हैं और काफी हद तक मेरी हेल्प भी की है हर चीजों में हर जगह पे।
0: बेशक।
1: तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। जो लोग कहते हैं कि लड़के अच्छे नहीं होते, मैं ऐसा नहीं मानती, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब आपकी कोई हेल्प करे तभी वो अच्छे है।
0: करेक्ट।
1: कभी कभी बिना रीजन के भी लोग अच्छे आपको मिल जाते हैं, चाहे वो सफर हो, चाहे वो रास्ता हो, कहीं भी हो।
0: करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच पूर्णिमा साझा करने के लिए इतनी सारी बातें।
1: थैंक यू सर, बाय
0: बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी पूर्णिमा, और इनकी वजह से दो दो बाइक सवार जो है वो गड्ढे में जा कर के गिर गए, और भैया ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। खैर लड़के तो भोले ज़्यादा होते ही हैं, ऐसा तो कहा भी जाता है ना। चलिए आते हैं चैट बॉक्स की तरफ और बताते हैं क्या क्या मैसेजेस हमारे पढ़ लेने के बाद में आए हैं, कौन कौन मौजूद हैं और क्या कुछ लिखा है आपने। तो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, और नेक्स्ट जो था वो रीता पाठक जी का था मैसेज, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। इसके बाद सविता दुबे जी ने भी किया था, सुप्रभात सर लिखा है आशु मिश्र जी ने लखनऊ से, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है और आपने जोक्स भी मेंशन किया है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। शैलेंद्र जी खजुराहो मध्य प्रदेश से हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड इसके बाद बढ़ते हैं तो गीता श्रीवास्तव जी भी हैं, गुड मॉर्निंग आरजे, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड यस, इसके बाद बढ़ते हैं उद्यालक शर्मा हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू उद्यालक जी, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। एंड यस सविता जी गई भैंसिया पानी में, अच्छा नाइस। प्रबल भी मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू प्रबल, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। दीपक जी है हथिया गढ़गोंडा से, गुड मॉर्निंग आर्जना से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। नगेश्वर मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। इम्तियाज़ मौजूद हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। अभिषेक पांडे जी हैं UP 43। और चलिए फिलहाल अब आज आपसे वादा कर लिया था हंसाने का और हंसाया भी, फिलहाल अब चलते हैं आपसे विदा लेकर के, क्योंकि चलने का समय आ गया है। आज का शो लाफिंग दिवस वाला कैसा था हमको ज़रूर बताइएगा। ये गाना एंजॉय करिए, एक से दो मिलते हैं आपके ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM वाले शो में।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सी लेटर एलिगेटर भाई, कुछ तो याद आ रहा है इससे। आज का मौसम आपको कैसा लगा? वैसे दीदी मैं तो आ रही थी, रास्ते में अटक गई थी मौसम एंजॉय करने के लिए।
1: कहाँ पे अटक गई थी?
0: बस कहीं हवाएं चल रही थी और बड़ा प्यारा लग रहा था, और आसपास के जो फ्लावर खिले हुए थे ना, इस टाइम सूरजमुखी काफी खिला हुआ है,
1: बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि पूरा वातावरण पीले रंग से भर गया हो, चारों तरफ सूरजमुखी ही सूरजमुखी दिखाई दे रहा
0: है ना। और ऐसे ही खूबसूरती,
1: यही चीजें जो है मौसम को और खुशनुमा बनाती हैं।
0: और भाई खुशनुमा से मुझे याद है कि भैया आप आ चुके हैं आपके अपने जी संडे स्पेशल शो यानी कि हम्टी डम्टी विद गीता दी में। और जब हम्टी डम्टी की बात होती है तो फिर वो नन्हे मुन्ने बच्चे भी आपको याद आ जाते हैं जो आपके घरों में, आपके घरों की रौनकों को बढ़ाते हैं।
1: तो इसीलिए तो हम बैठ गए यहाँ पे, अपने जितने भी लिसनर्स हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, जैसे भी है वो हमारे प्यारे प्यारे लिस्नर्स हैं, उन सभी को मैं सुबह की राम राम बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
0: सुबह की राम राम, क्या बात है भाई, सुन के भी सुकून मिल रहा है। और आज का मौसम तो कुछ इतना प्यारा था कि मुझे तो लगता है हर किसी ने आज चादर जरूर ओढ़ी होगी।
1: बिल्कुल, मैंने खुद ओढ़ी।
0: अच्छा ये भी सही है। फिलहाल मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ आज कौन सी कहानी है आपके पास में, क्योंकि बहुत मतलब उलझा हुआ मेरा मन है और मैं कुछ सुकून का सुनना चाहती हूँ।
1: तो आज मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी, दो प्यारे बच्चों की कहानी।
0: दो प्यारे बच्चों, अच्छा दो प्यारे आपने जो लगाए मुझे याद आ गया, दो बैलों की कथा। मतलब बच्चों को मैंने बैल नहीं कहा, बात दूसरी है, घर वाले मान लेते हैं कि अभी
1: बहुत जो भी ये जो समय होता है ना कि 2 साल से लेकर के और 6 साल 8 साल तक के बच्चों का, ये बहुत प्यारा समय होता है। मतलब बचपन जीने का वास्तविक टाइम यही होता है।
0: बेशक बेशक बेशक,
1: किसी की ना उन्हें चिंता होती है ना कुछ फिकर होती
0: नहीं, नहीं,
1: है
0: होती
1: बस
0: है।
1: खेल खेल खेल और एंजॉयमेंट।
0: नहीं नहीं मैम, चिंता होती आप ही तो नहीं जान पाई हैं, उन टॉफीज की, उन चॉकलेट्स की और वो पैसे जो हमको मतलब बचपन में हमको पॉकेट खर्च के लिए मिलते हैं।
1: इससे मुझे याद आया ना कि जैसे मैं मामा जी के घर, नानी जी के घर जाया करती थी ना, तो फिर चलते समय हमारे यहाँ एक प्रथा है ना, रिवाज कि बच्चों को कुछ ना कुछ जरूर देना, बच्चों के इवन बड़ों को भी कुछ ना कुछ जरूर देना।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे ही मुझे पैसे मिलते थे ना, मैं गिनना शुरू कर देती थी कि मामा ने इतने दिए, मामी ने इतने दिए, नानी ने इतने दिए, तो उनको मैं काउंट करती रहती थी मन ही मन में
0: जी,
1: क्योंकि मम्मी तुरंत ले लेती थी।
0: हाँ,
1: तो मेरे पास पूरी जानकारी रहती थी मुझे कितना पैसा मिला है।
0: ओके।
1: और जैसे ही मैं बस या ट्रेन या गाड़ी में बैठती ना, बता देती मुझे इतना पैसा मिला है, मुझे पूरा का पूरा पैसा चाहिए।
0: मतलब आप बचपन से ही अकाउंटेबिलिटी में एक्सपर्ट रही हैं।
1: तो मम्मी कहती थी मैंने भी तो दिया है, मैं उतना काट लूंगी।
0: ये मम्मा लोग की ये जो मतलब बैंक बैलेंस मेंटेन करने वाली हैबिट है, वो उसको तो सैल्यूट है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं भी इतने दिनों से गायब थी, लोगों ने काफी मिस किया और मैं भी गई हुई थी मामा के यहाँ। और आपको बताऊं, मैंने जो पैसे इकट्ठे किए उससे मैंने जो मेरी उधारी थी, मतलब किसी की 5,000 तक की उधारी थी, मैंने पूरी चुकता कर दी।
1: तो तुमने लड़ झगड़ के मम्मी से ले जो लिया।
0: हाँ नहीं, मेरी मम्मा तो मेरे से कभी लेती नहीं, कहती है कि बिट्टियों का धन नहीं लेते, हम तो देते भी तो नहीं लेती हैं वो।
1: मेरी मम्मा तो तुरंत ले लेती थी, उस पर बड़ा झगड़ा होता था, क्यों ले लिया, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, कहती थी देखो ये कैसे झगड़ रही मुझसे जैसे ये कमा के लाई हो।
0: अच्छा हाँ ये भी बात सही है। और RBI वाले भी सोच पे अभी लगे हुए हैं कि भाई पैसे छापे हमने और दुनिया की औरतें और मतलब बहु बेटियां चिल्ला रही हैं कि मेरा पैसा मेरा पैसा, सोचने की बात है। चलिए फिलहाल चलते हैं आज की स्टोरी की ओर, और हम जानना चाहेंगे कि हमारी गीता दी के पास में आज कौन सी स्टोरी है। वाकई मैं थोड़ी सी आलस्य के मूड में हूँ, कारण है मौसम, कारण है सफ़र की थकान और कारण है कुछ और भी, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी मैम प्यारी सी स्टोरी में सुनाएंगी, हो सकता है लास्ट टाइम की तरह मेरा मूड इस बार भी रिफ्रेश हो जाए।
1: बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
0: ओहो चलिए फिर चलते हैं उसी स्टोरी की ओर।
1: तो एक बार की बात है, एक 6 साल का नन्हा सा बच्चा था और उसके साथ उसकी 4 साल की एक छोटी सी बहन थी, और दोनों बाजार में साथ साथ घूम रहे थे, जा रहे थे। गर्मी की छुट्टियां जैसे अभी होने वाली हैं वैसे उन दोनों के लिए हो चुकी थी, और दोनों भाई बहन बहुत खुश रहते थे। मालूम उनके हाथ में क्या था?
0: टॉफी?
1: ना ना, उनके हाथों में कुछ सीपें थी जो उन्होंने सुबह समुद्र के किनारे खेलते हुए इकट्ठा की।
0: ओहो, आपने तो स्टार्टिंग में ही सुकून देना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है भाई, समुद्र का किनारा और सीपे, मजा आ गया।
1: तो उन सीपों को वे बहुत कीमती समझते थे, जैसे किसी खजाने से कम नहीं। वैसे मैं भी उन सीपों को आज भी बहुत पसंद करती हूँ।
0: और मैं तो इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि आम का सीजन आ गया और उसको छीलने के काम आएंगे।
1: तो रास्ते में चलते समय अचानक लड़के ने देखा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वो रुका और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी थी। वह बड़ी ध्यान से एक सुंदर सी गुड़िया को देखे जा रही थी। और वह गुड़िया भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक थी। गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने, घुंघराले बालों वाली और मुस्कुराती हुई गुड़िया थी वो। लड़का उसकी आंखों की चमक की ओर को पड़ गया और बिना कुछ कहे बहन के पास गया और बोला, कुछ चाहिए क्या? बहन ने धीमे से मुस्कुराकर कहा कि वो गुड़िया की ओर उंगली उठा करके उसने इशारा किया। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दुकान के अंदर ले गया। दुकानदार जो एक बूढ़ा व्यक्ति था और बहुत ही अनुभवशील व्यक्ति था, वो चुपचाप देख रहा था कि लड़के ने गुड़िया उठाई और धीरे से काउंटर पे जाके पूछा, इस गुड़िया के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे अंकल? तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से बोला, बेटे तुम बताओ कि तुम उसके लिए कितना पैसा दे सकते हो? लड़के ने तुरंत अपनी जेब से सारी की सारी सीपें निकालकर काउंटर पे रख दी।
0: कितनी मासूमियत है।
1: वे लगभग 10-12 चमकती हुई सीपें थीं। कुछ बड़ी थीं, उनमें से कुछ छोटी भी थीं, पर बच्चे के लिए ये सब अनमोल थीं।
0: बेशक।
1: वह उत्सुकता से दुकानदार की ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो ये काफी है ना। दुकानदार ने उन सीपों को बड़ी गंभीरता से गिनना शुरू किया, जैसे वो असली पैसे गिन रहे हों। वह हर सीप को ध्यान से देख रहे थे, मानो उनकी चमक और मूल्य को परख रहे हों। फिर उसने 4 सीपें अलग रख दी और बाकी लड़के को लौटाते हुए बोला, बेटा ये 4 सीपें इस गुड़िया की कीमत से भी ज्यादा हैं। ये बाकी तुम रख लो, ये तुम्हारी बचत है।
0: क्या
1: अब लड़का बहुत खुश हो गया। उसने बाकी सीपें अपनी जेब में संभाल कर रखी और बहन को वह गुड़िया थमा दी। बहन की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देकर उसका दिल भर आया। दोनों भाई बहन हाथ में गुड़िया लिए प्रसन्न मन से दुकान के बाहर चले गए। यह सब देख रहा दुकान का एक सहायक बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, स्तब्ध रह गया। उसने दुकानदार से पूछा, अरे मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले दे दी? दुकानदार ने शांत मुस्कान के साथ उसको बताया, उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ सीपें हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए उसकी सारी जमा पूंजी है। उसे नहीं पता कि पैसों का मोल क्या होता है, लेकिन जब वह बड़ा होगा और इस दिन को याद करेगा तो उसे एहसास जरूर होगा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। और शायद इसी एहसास से वह भी एक बड़ा अच्छा सा इंसान बन सकता है।
0: क्या बात।
1: दुकानदार की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। उसकी एक छोटी सी भलाई एक बच्चे के मन में हमेशा के लिए एक सुंदर याद बनकर रह गई थी, जो शायद उसे जीवन भर यह विश्वास दिलाती रहेगी कि दुनिया में अभी भी अच्छाई जिंदा है, अभी भी अच्छे लोग हैं दुनिया में। तो ये कहानी मुझे बहुत कुछ सिखा गई है कि सच्चे मूल्य हमेशा पैसों से नहीं तौले जाते हैं। कभी कभी मासूमियत, भावनाएं और प्रेम ही उनका सबसे बड़ा मूल्य होता है।
0: बेशक। और सच कहूँ अगर मैम, मैं अपने तजुर्बे से, तो सबसे जो खूबसूरत चीज़ है इस दुनिया में वो मासूमियत ही है।
1: बिल्कुल। अब बच्चों की मासूमियत देखिए, उसको कितनी भा गई कि उसने बिना पैसे की वो गुड़िया उनको दे दी। तो और कुछ सुनना है?
0: बेशक आज सुनना है, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया। और बचपन में आप ले जा करके उसके बाद में आपने जो इमोशनल मतलब लम्हात उड़ेले हैं, तो मैं चाहती कुछ और हो जाए।
1: तो चलो, मैं तुम्हें कान्हा बहुत पसंद है ना?
0: बेशक बहुत पसंद है। और इस जगह पे तो मैं इमोशनल होना पसंद भी करूंगी।
1: कान्हा की कहानी सुनाती हूँ मैं तुम्हें।
0: बिल्कुल।
1: तो वृंदावन की पावन भूमि पर एक बार की बात है, नंदलाल यानी श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में बहुत मगन थे और उनकी शरारतों से तो पूरा गोकुल ही आनंदित हो जाता था। लेकिन कभी कभी उनकी माँ यशोदा को उन्हें अनुशासन में रखने के लिए डांटना ही पड़ता था।
0: हाँ ये भी है।
1: एक दिन कान्हा ने माखन चोरी की।
0: अरे और फिर वो कब नहीं करते थे।
1: और फिर अपने सखाओं के साथ मिलकर खूब शरारत भी की। जब माता यशोदा को ये बात पता चली तो वे हाथ में छड़ी लेकर के कान्हा के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। रुक मैं भी बताती हूँ तुझे, रुक मैं भी बताती हूँ, रुक जा कान्हा रुक जा। कान्हा हंसते हंसते भागते रहे और गलियों से निकलकर खेतों की ओर दौड़ पड़े और भागते भागते वो एक कुम्हार के पास जा पहुंचे।
0: हे भगवान, पूरा गोकुल हिला दिया।
1: जो मिट्टी के घड़े बना रहा था।
0: हाँ।
1: अब कान्हा ने घबरा कर कहा, कुम्हार काका, मेरी मैया मेरे पीछे आ रही हैं।
0: अरे बाप रे,
1: मुझे कहीं छुपा लो वरना वो छड़ी से मारेंगी। कुम्हार ने जैसे ही बालक कृष्ण को देखा तो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जैसे ये स्वयं परमात्मा आए और उनसे छिपने की जगह मांग रहे हैं। अब उनके हृदय में तो भक्ति उमड़ पड़ी।
0: हाँ।
1: उन्होंने तुरंत एक बड़े से मटके को उठाकर कान्हा को उसके नीचे छुपा दिया। थोड़ी ही देर में माता यशोदा वहां पहुंची और बोली, अरे कुम्हार भैया, क्या तुमने मेरे कान्हा को यहाँ आते हुए देखा है? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अपने काम में लगा हूँ। अब माता यशोदा आगे बढ़ गई। अब मटके के नीचे छुपे कान्हा बोले, कुम्हार काका, अब मुझे बाहर निकालो। तो कुम्हार ने प्रेम से कहा, प्रभु इतनी जल्दी भी क्या है?
0: अरे बाप रे, ये तो फंस गए कान्हा।
1: पहले मुझे एक वचन दीजिए। कान्हा मुस्कुराए, कहो क्या चाहते हो कुम्हार भैया, कुम्हार चाचा जी? तो कुम्हार भैया वो बोले कि प्रभु मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से अगर मुक्त करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा।
0: अरे बाप रे।
1: अब कृष्ण निकलना चाहते थे सो उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कहा, तथास्तु, तुम्हें जरूर मुक्ति मिलेगी। लेकिन कुम्हार यही नहीं रुका, उसने फिर कहा, प्रभु मेरे परिवार को भी मुक्ति मिलनी चाहिए।
0: मेरा भी तो पूरा मोहल्ला और गांव भी लेके आएंगे।
1: कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, उन्हें भी मोक्ष मिलेगा काका।
0: अरे वाह।
1: अब कुम्हार ने तीसरी शर्त रख दी।
0: ये खत्म होगा सिलसिला या नहीं?
1: प्रभु जिन बैलों ने इस मिट्टी को ढोया है और जिनकी मेहनत से ये घड़े बने जिनके नीचे आप छिपे हुए हैं, वे भी मैं चाहता हूँ कि वे बेजुबान प्राणी हैं, उन्हें भी मुक्ति दीजिए। कृष्ण की आंखों में करुणा और प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारा हृदय बहुत ही दयालु है, जाओ उन्हें भी मोक्ष मिलेगा। अब कुम्हार ने अंतिम शर्त रखी, बोले, प्रभु मेरी एक और विनती है आपसे, जो भी इस कथा को सुन रहा हो या सुना रहा हो या पढ़ रहा हो
0: ये सबसे बढ़िया है,
1: उसे भी 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए, आप मुझे ऐसा वचन दीजिए।
0: आज तो मैं धन्य हो गई।
1: ये सुनकर कृष्ण बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, जाओ तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण होंगी। तो जब सभी वचन पूरे हो गए, मिल गए, तब कुम्हार ने मटके को हटाया और कान्हा को बाहर निकाला। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उनके हृदय में अपार शांति आनंद भर गया। कहते हैं कि उसी क्षण से और उनके परिवार को दिव्य मुक्ति मिल गई। तो क्या कहती है ये कथा, हमें क्या सिखाती है?
0: अपार शांति और मुक्ति।
1: कि भगवान को बल या चालाकी से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से ही जीता जा सकता है।
0: बिल्कुल, और अनंत सुख की प्राप्ति भी की जा सकती।
1: देखो आकांक्षा, कुम्हार ने तो कोई तपस्या नहीं की, ना कोई यज्ञ किया,
0: और हम लोग को भी तार दिया।
1: उसने तो केवल निष्कपट भाव से भगवान की सेवा की और बदले में समस्त चीजों के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त परिवार के लिए कल्याण मांगा।
0: और तो काफी अच्छी स्टोरी रही भाई। मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ तो आज बहुत प्यार होगा। और आपने तो वाकई दिन बना लिया।
1: है ना कि जो अपने लिए नहीं मांगता है सबके लिए मांगता है भगवान, उसकी सबसे पहले सुनते हैं।
0: सबसे पहले सुनते हैं। और हम लोग के यहाँ तो कहावत भी होती थी कि पहले के टाइम पे जब वो दिया जब बुताते नहीं थे, मतलब उसको बुझाते थे, तो उस टाइम पे मतलब एक लाइन बोलते हैं, मे बी आपने सुनी हो, बोलते थे जाओ दिया करो कैलाश, लक्ष्मी आओ हमारे पास, नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नाग बाबा के बेल बाढ़े, बड़वा डुड़वा भैया बाढ़े, ओकरे पीछे सबके बाढ़े, सबके पीछे हमरो बाढ़े।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में मानते हैं कि बढ़ंती होती है, क्योंकि हम जब दूसरों की भलाई सोचते हैं तो ईश्वर हमारे पहले करते
1: हैं। अपने से पहले हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। जब भी हम ईश्वर के दरबार में खड़े हों, हाथ जोड़कर, अपने लिए नहीं, अगर हम दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं तो वो हमारा जो प्रेम होता है, जो भक्ति होती है, वो निष्कपट होती है, उसमें कोई लालच नहीं होता है, तो भगवान तत्काल उसको सुन लेते हैं।
0: तत्काल सुनते भी हो, और अगर आप हमेशा इस चीज़ को अपने हैबिट में उतारते हैं तो आप कितने भी मुसीबत में हो, एक अलग सी वाइब्स आपको फील होती है कि कोई है जो आपकी मदद कर रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: ये तो बहुत बड़ी बात है भाई।
1: तो कैसी लगी आज की कहानी, आप चैट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं।
0: जी हाँ, तो जब तक आप बताते हैं तब तक हम चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे साथ में कितने सारे बच्चे आए हैं, और वो हमारी गीता दीदी बस आपको कुछ ही क्षणों बाद बताएंगी। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए आपका अपना शो। जी हाँ, संडे स्पेशल हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, और हम गए नन्हे मुन्नू को लेके आते हैं।
2: Those tractors. Fun.

0: One tractor.
1: लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
6: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं,
1: तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

0: जी हाँ, सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। तो सही बात है कि भाई आज हमारी सरगम पे सातों स्वर के अलावा बहुत सारे स्वर जुड़ रहे हैं। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ आर्यन सिन्हा फाउंडेशन ग्रुप के बहुत सारे बच्चे आ गए। फिलहाल तो हम बच्चों का इंट्रोडक्शन बाद में कराते हैं, लेकिन अभी हमारे जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, वो बहुत देर से बड़ी मासूमियत से हमारी ओर देख रहे हैं कि दीदी आज क्या अनाउंस, बोल ही नहीं रही मेरे बारे में, बोल ही नहीं रही है, क्या सानिध्या। तो चलो भाई हमारे साथ सानिध्या, ये तो आप जान ही गए होंगे।
1: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: अरे वाह, आराध्या भी है हमारे साथ। और
2: गुड मॉर्निंग मैम।
0: अरे वाह, आज हमारे साथ क्या नाम है बेटा आपका?
2: मैम जागृत शुक्ला।
0: जागृत शुक्ला भी है, और साथ ही साथ सत्यम जी भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ श्लोक हैं, तन्मय हैं, और ऋषभ हैं, बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ हैं। हम इस तरीके से काउंट नहीं कर पा रहे, जैसे एक बाढ़ सी आ चुकी है बच्चों की। अब मैं किसको मौका दूं, किसको ना दूं, लेकिन भाई सानिध्या के गुस्से से मैं बहुत डरती हूं, और वो तो बिल्कुल एकदम से बस मेरी तरफ यूं देखती है कि दीदी अभी मैं तुमको खा जाऊंगी। तो भाई खाना नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। जल्दी से तुम सुना दो, क्या सुनाना चाहती हो?
1: जंगल पे एक तोने में चुपचाप अटेले खामोश लेते थे, कुछ सोच रहे थे मिस्टर उछल राम खरगोश। टहल ढूंढ कर आते थे रोज देर से अपने इधर, बीवी थी नाराज बहुत, बोली आज रहो बाहर। बंदर मामा ने देखा जो उनको इस तरह उड़ास, उतर पेड़ से आए वह बिस्तर उछल राम के पास। सुनी पूरी बात दे फिर लाए एक नारियल तोड़, बोले ले इस तो जाओ भाभी ते पास हाथ जोड़। खुश हो जाएं भी फौरन पातर यह वह ये उपहार, वरना बने हुए सन्यासी धूमोगे तुम बेतार।
0: अरे वाह, धूमोगे तुम बेतार। तो भाई देखिए, जंग आज उछल राम जो खरगोश है, उनकी बातें हमारी सानिध्या ने बताई हैं कि जो चुपचाप अकेले लेटे रहते थे और कुछ सोचते थे और विचारते थे, आज वो मिस्टर राम खरगोश उछल रहे हैं। क्यों उछल रहे हैं? सारी बातें उन्होंने बता दी है कि आज उनकी बीबी बहुत नाराज थी, बोली घर के बाहर रहना, अंदर मत आना। तो ये बात बंदर मामा ने देखी, और इस तरीके से वो उदास होकर पेड़ से उतर करके आए और मिस्टर राम के पास, उनकी पास पूरी बात मतलब सुनी और उनके साथ रहे। फिर एक नारियल तोड़ के लाए, उनको खिलाया। कितनी अच्छी कहानी इस कविता में छिपी हुई है। तो बस यही हमेशा सानिध्या ऐसे ही सुनाती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं उसकी कि एक तो तोतली बोली मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यों आकांक्षा?
3: बिल्कुल, और ये तोतली बोली ऐसे लगता है कि जैसे कोई तोता उठ के और सुबह सुबह बोला है, हाँ मिठू राम मिठू राम।
0: बहुत अच्छा बोलती है, इसकी बोली से हम इतना खुश हो जाते हैं, बाकी बातें तो दिमाग से उड़ी जाती है, केवल इसकी बोली जो है वही दिमाग में रह जाती है कि कैसे बोल रहे। बच्चों की यही लैंग्वेज होती है, बहुत अच्छी लगती है।
3: अच्छा, कई दफा ऐसा भी लगता है कि हम इतने बड़े तो हो गए, लेकिन काश हम भी इतना प्यार से तुतला पाते।
0: कभी देखा ना कांचा, कभी कभी हम भी तुतलाने लगते हैं इसके साथ।
3: अच्छा। तो आपको भी क्या किसी ने टॉफी चॉकलेट दी?
0: यही तो बात है, सानिध्या मुझे चोरी छुपे कुछ दे देती है अपने में से बचा करके।
3: सच्ची, हमको नहीं पूछा कभी।
0: तो चलो चलते हैं, बस इसी कड़ी में हमारे साथ आराध्या हैं, और आराध्या आज आप क्या सुनाने वाली हैं?
1: दीदी कहानी है।
0: अरे बाप रे, आराध्या की कहानी, चलो सब सुन लेते हैं। क्यों?
1: छोटी कहानी बड़ी सीख। एक दिन एक गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गया। उसने शिष्य से कहा, इस पानी में एक कंकड़ फेंको। शिष्य ने वैसा ही किया। कंकड़ गिरते ही पानी में लहर उठी। गुरुओं ने मुस्कुराते और पूछा, अब बताओ यह कंकड़ कहाँ गया?
0: अरे वाह, अब कैसे बताएं?
1: शिष्य ने बोला, गुरु डूब गया। ठीक वैसा ही हर बुरा काम जो हम
0: करते हैं
1: वे हमारे मन डूब जाता है, मन में डूब जाता है।
0: मन में बस जाता है। हाँ,
1: और समय अपने पर
0: भाई ठीक से याद करके नहीं आया। बहुत गुस्सा है हमें, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो कहानी ये है, क्या बोल रही है ये धीरे धीरे,
1: की तरह बाहर आकर हमें परिवर्तन करता है।
0: परिवर्तन करता है। देखिए क्या गुरु ने समझाया कि जैसे उन्होंने पानी में कंकड़ फेंका ना, तो बीच में कंकड़ जाके गिरा है ना, और पता नहीं चला। इसी तरीके से अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको पता नहीं चलता हमने क्या गलत किया है ना। तो एक गुरु ही होता है जो उस काम के बारे में बताता है, ये काम बच्चा तुमने बहुत गलत किया है, गंदी बात है ना।
1: जी दीदी।
0: तो कभी
3: जैसे
0: भी
3: सानिध्य ने आपके चॉकलेट दिया हमको नहीं दिया है, बहुत गलत किया है।
0: बहुत गलत बात है सानिध्य। क्या कह रही है आकांक्षा दीदी कि आपने हमको चुप्पे से चॉकलेट दे दिया और अपनी आकांक्षा दीदी को नहीं दिया, ये बुरी बात है ना। तो चलो भाई अब हमारे इसी बच्चों की मैं एक बड़े बच्चे हैं हमारे साथ जिनका नाम है सत्यम तिवारी
4: पांडे।
0: सत्यम पांडे जी ये जो हैं हमारे साथ राम आर्यन सिन्हा फाउंडेशन ग्रुप से आए हैं और इन्होंने ज्ञान विज्ञान की प्रतियोगिता में भाग लिया था और जिनमें इनका 13वां स्थान, यानी कि ये ए ग्रुप में ये थे। और पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना सक्सेस प्राप्त किया, इतना ज्ञान विज्ञान जैसी प्रतियोगिता। मुझे तो ज्ञान विज्ञान कहने में ही डर लग रहा है आकांक्षा।
5: थैंक यू दीदी।
3: कहते हैं ना कि विज्ञान वो शिक्षा है जो करके सीखनी चाहिए, आपने कभी मुराही की ही नहीं तो आपको डर लगेगा। अब हम बच्चे हैं तो
0: बोलते हैं ना ज्ञान विज्ञान, तो मुझे अंदर से डर लगता है ये ज्ञान विज्ञान, तो थोड़ा मेरा साइंस जो है बहुत अच्छा नहीं था। तो आज हमारे सत्यम जी का साइंस बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने इसमें जो है महारत हासिल की है और ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेकर के एक ग्रुप की श्रेणी में ये प्लेस को प्राप्त करे हैं। और चलो चलते हैं इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो सत्यम जी आप कौन सी क्लास में हैं?
5: मैम क्लास 9th में इस बार गए हैं।
0: अच्छा इस बार गए हैं 9th में, तो 8th पास करके ये बच्चा 9th क्लास में गया है।
5: जी दीदी।
0: आगे आप क्या बनना चाहते हैं?
5: मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ।
0: तो बायो के करीब जा रहे हैं आप, बायोलॉजी लेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं लेकिन आपका ध्यान जो है डॉक्टर की तरफ जा रहा था, थोड़ा सा बायो की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा।
5: जी दीदी।
0: तो ये हम पूछना चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों के मंच पे आए हैं तो ये बताइए कि कुछ सुनाना चाहेंगे?
5: हाँ मैं एक मतलब छोटी सी कहानी याद करके आया।
0: ओहो देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो कहानीकार बनके ही पैदा होते हैं। जिस तरीके से मैं कहानीकार हूँ बच्चे भी देखिए, आराध्या भी कोशिश कर रही है अभी से कि मैं कहानी सुनाऊँ दीदी की तरह। तो चलो आज हमारे बीच में सत्यम जी हैं, उनसे थोड़ी सी छोटी सी एक मोरल स्टोरी सुन लेते हैं।
5: जी देखिए कहानी का विजन ऐसा है दीदी कि दो मतलब एक बाप बेटे हैं, उनके पास एक घोड़ा है।
0: घोड़ा है
5: जी। तो मतलब बाजार में उसे टहल रहे हैं, बाजार में भाई लोगों की भीड़ रहती
0: है। बिल्कुल रहती है।
5: और विजन ऐसा है कि बाप जो है वो घोड़े पर बैठा हुआ है और बच्चा पैदल चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे रास्ते में मिलते हैं तो बोलते हैं ओफो कितना मतलब बेकार बाप है, देखो अपने बच्चे को पैदल चलवा रहा है और खुद घोड़े की सवारी कर रहा है। तो बेटा बोलता है कि पापा आप एक काम करो, मतलब पापा बोलते हैं कि बेटा तुम आओ ऊपर बैठ जाओ, मैं आके नीचे घोड़े को हाँकता हूँ, देखो लोग क्या कह रहे हैं कि मैं बेकार बाप हूँ। बच्चा बोला अच्छा ठीक है। अब बच्चा ऊपर बैठ गया और पिताजी नीचे चल रहे हैं। अब फिर आगे से कुछ लोग और आए।
0: उन्होंने कहा कितना क्रूर बाप है।
5: हाँ उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा बेटा है, मतलब बेटा
0: कैसा कितना क्रूर बच्चा है,
5: कैसा बेटा है कि अपने बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है और खुद घोड़े की सवारी कर रहा है। अब क्या होगा? फिर बेटा बोला अच्छा पापा आप भी आके बैठ जाओ, हम दोनों लोग घोड़े के साथ चलते हैं। अब दोनों लोग भाई घोड़े पे बैठ गए। अब रास्ते में फिर वैसे लोग मिले और बोलते हैं कि देखो कितने क्रूर बाप बेटे हैं कि बेचारे घोड़े के ऊपर दोनों के दोनों बैठे हैं।
0: अच्छा,
5: बेचारे
0: घोड़े की किसी में भी संतुष्टि नहीं है।
5: हाँ, संतुष्टि नहीं है, मतलब घोड़े की क्या हालत हुई है। तो अब बाप बेटे फिर परेशान। तो बाप बोलता है कि चलो हम पैदल चलते हैं, घोड़ा भी पैदल चलेगा,
0: कहेंगे मूर्ख है सबके सब।
5: दोनों उतर जाते हैं। फिर कुछ दूर पैदल चलते हैं, आगे कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं देखो मतलब कैसे मूर्ख बाप बेटे हैं कि घोड़ा साथ में है फिर भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दीदी कि जो इंसान है इन्हें कभी खुश नहीं कर सकती, ये हमेशा कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहेंगे। हमें बस अपने धर्म अनुसार और जो अच्छी चीजें पॉजिटिव वे उन्हीं मार्ग पर चलना चाहिए, और लोगों को संतुष्ट करना हमारा काम नहीं, वो जल्दी संतुष्ट नहीं होते।
0: कुछ तो

0: बेकार की। तो ये है दुनिया, यहाँ पे जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। मैंने भी बचपन में ये कहानी पढ़ी थी, पर इसमें घोड़े की जगह गधा था।
1: पर मैंने जब पढ़ी थी इसमें घोड़ा था।
0: घोड़ा था। तो चलिए, बहुत अच्छी आपकी कहानी थी, और सीख मिलती है कि भाई हमको परवाह नहीं करनी चाहिए, हमको जो करना है वो करते रहना चाहिए। तो अब हमारे बीच में है
1: जागृत
0: शुक्ला जी, वो क्या सुनाने वाले हैं आज हमको?
2: मैम, आज हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाना चाहते हैं, हमारे भाई सत्यम पांडे की तरह।
0: चलिए आपकी भी कहानी सुन लेते हैं।
2: तो हमारी कहानी ये है कि दो मुर्गा और एक बाज। एक बार की बात है कि दो मुर्गा एक पहाड़ी के लिए लड़ रहे थे।
0: किसके लिए लड़ रहे थे?
2: एक पहाड़ी के लिए, कि ये पहाड़ी
0: अच्छा पहाड़ रहने के लिए, कि ये हाँ, मेरी है, ये मेरी है।
2: हाँ, तो उन्होंने आपस में बात की कि जो जीतेगा वो इस पहाड़ी का राजा बन जाएगा। तो दोनों पूरी जी जान लगा कर आपस में लड़ रहे थे।
0: अरे वाह।
2: अंत में एक मुर्गे की जीत होती है और एक बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो जिसकी जीत हुई वो अपना जश्न मनाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता है और अत्यंत खुशी से उछल उछल कर सबको बताने लगता है, मैं जीत गया, मैं इस तरह हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने अपनी इस
0: जीत हासिल
2: कर ली है। तो इसी को देखते हुए वो उछल रहा था और ऊपर से एक बाज जा रहा था। उसने देखा कि ये मुर्गा उछल रहा है पहाड़ी पे, उसने तुरंत आया और मुर्गा को झपट्टा
0: मारा,
2: दूर लेके चला गया। इतने में ही जो दूसरा मुर्गा था वो देखा कि अब ये तो गया, अब मैं चलता हूँ, राजा बनता हूँ पहाड़ी के लिए, और वो पहाड़ी पे चल कर राजा बन गया। उसके बाद इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि अत्यंत घमंड सेहत के लिए भी हानिकारक होता है।
0: धन्यवाद। अपने बल पर, अपनी बुद्धि पे बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करना चाहिए।
2: जी,
0: तो ये कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत इम्प्रेसिव थी। और देखिए फिर से जो है सानिध्या बोल रही, मैं दीदी, मेरा दीदी, मेरा नंबर आ गया। तो चलो सानिध्या, आगे क्या सुनाने वाली हो तुम?
1: बहुत एक्साइटेड रहती हैं सानिध्या।
0: हाँ, सानिध्या बहुत, अरे ये इनके पास खजाना है।
3: प्रातः थी पहली किरण जब धरती से आम सताती है, नींद भरी इन आंखों में नई उमंग जगाती है, चिड़ियों की मधुर चहक सुन जैसे दुनदुनाता है, सपनों की दुनिया छोड़कर जीवन फिर मुस्ताता है, ठंडी ठंडी हवाओं में एक सुतून सा छाया है, हर एक नई शुरुआत में ईश्वर का ही साया है, उठो बड़ो तुझतर दिखाओ
0: जी,
3: दिन में फिर आवाज दी प्रातः की पहली किरण जब जीवन की नई राह।
0: तो बहुत अच्छी कहानी, देखिए बताइए कि भई प्रातः काल की जो पहली किरण होती है, जब वो खिड़की पे आ करके धीरे से एक ना, जैसे ही सूरज निकलता है तो एक किरण से आती है, तो वो कहती है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मैं जाग गया हूँ, आप भी जाग जाओ। और देखिए चिड़िया कितनी, उनको तो कोई नहीं जगाता है, और फिर भी वो जग जाती हैं, और फिर सुबह ही सुबह चिड़ चिड़ चिड़ चिड़ चिड़ चिड़ चिड़ की आवाज़ें, तो वो भी कहती है देखो मैं जाग गई हूँ, तुम क्यों सो रहे हो, तुम भी उठ जा, है ना सानिध्या। और उसके साथ ही साथ जैसे आज का मौसम बहुत ही खुशगवार था ना, कितनी ठंडी ठंडी सुबह से हवा चल रही, रात में बारिश जो हुई थी मजा आया था ना। तो जब भी बारिश होती है तो मुझे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि उसके बाद का जो मौसम होता है, वाह क्या कहने। तो बस यही है कि
3: मेरा बर्थडे तो जुलाई में पड़ता है।
0: अरे तब तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, अरे तब तो मेरी पार्टी मिस हो जाएगी, मैं क्या करूंगी, बारिश में कैसे आऊंगी, बताइए आप ही बताइए सानिध्या। आपका तो बर्थडे जुलाई में, अभी तो जुलाई बहुत दूर है, इतना पानी बरसता है जुलाई में ना, बाढ़ आ जाती है।
3: दीदी छाता लेके आ जाएंगे।
0: अच्छा छाता लेके याद आएंगे, ठीक है भाई छाता लेके आना पड़ेगा, तो हम एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा कलरफुल छाता लेंगे और उसको पार्टी वेयर बना देंगे, उसको लगा करके हम सानिध्या के घर जाएंगे और वहाँ पार्टी इंजॉय करेंगे, क्यों आप लोग भी करेंगे ना।
1: जी जी जी दीदी।
0: तो सारे लोगों के लिए इंतजाम रखना सानिध्या, ओके। तो देखिए आज का दिन कितना अच्छा था ना, मजेदार, अभी मुझे अभी बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। तो ये क्या कहता है कि हमेशा जो है समय पर उठो, सूरज सिखाता है, चिड़िया सिखाती हैं और बहुत सारी सुबह की पवन जगाने आती है हमको, ठंडी ठंडी पवन के अब उठ जाओ और दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करो। तो बहुत अच्छी थी सानिध्या की पोयम। तो ये बताइए जागृति है ना,
2: जागृत
0: और आपको क्या क्या पसंद है?
2: मैम पसंद तो हमको बहुत कुछ है, खेलना और पढ़ाई करना ये सब तो हमारी रुचि।
0: इसके अलावा
2: मैम अभी आपको हमने कहानी सुनाई, कहानी सुनते हैं और अगर कहीं अवसर मिलता है तो सुना भी देते हैं जैसे अभी सुनाया।
0: हाँ बिल्कुल, यानी कि आपको नानी और दादी दोनों का सानिध्य मिला हुआ है। हाँ, इसीलिए आपकी कहानियाँ इतनी अच्छी हैं और मेरे ख्याल से सत्यम की भी कहानियाँ ये नानी दादी के साथ बहुत रहे हैं, इसलिए इनको भी कहानियाँ बहुत अच्छी तैयार हैं।
1: जी दीदी,
0: तो चलिए फिर आपसे फिर बात करते हैं। और हमारे साथ आ गए हैं हमारे छोटे से नन्हे से मुन्ने से क्यूट से श्रेष्ठकर, इनका नाम जानते हैं आप बच्चे क्या है श्रेष्ठकर? हम इनको कहते हैं श्रेष्ठकर इनको श्रेष्ठकर नहीं बोलते, हम इनको बोलते हैं श्रेष्ठकर, अच्छा काम करो अच्छा। तो देखते हैं आज से श्रेष्ठकर क्या अच्छा करने वाले हैं, क्या सुनाने वाले हैं। ये भी छोटे से कहानीकार ही है, मैं तो पहले ही बता देती हूँ ना, ये दीदी से इंस्पायर हैं कि दीदी मेरी कहानी सुनाती तो मैं भी कहानी क्यों ना सुनाऊं। क्यों
4: जी दीदी? दीदी आज मेरे पास एक और स्टोरी है हमेशा की तरह। एक पेड़ के दो मालिक।
0: एक पेड़ के दो मालिक?
4: जी दीदी।
0: अच्छा, तो बड़ी लड़ाई होगी।
4: अकबर बादशाह दरबार लगा कर बैठे थे, तभी राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते हैं और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते हैं।
0: जी,
4: पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक राघव है कि केशव है। क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार के पास पैसे दे देते थे।
0: अरे
4: अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री
0: बीरबल के
4: की
0: पास
4: सहायता लेने पहुंचा। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा, इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं। और समाचार देने के बाद छुप कर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए हैं, आम चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है। पर केशव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार भी होते हैं।
0: जी,
4: आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की आवाज सुनकर बीरबल को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आप आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए हैं, आम चुराने की फिराक में हैं वे। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त राघव अपने घर नहीं होता है।
0: फिर
4: लेकिन राघव आम देखता है ना, ताव फैरान लाठी उठाता है और अच्छा। पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लीजिए। फिर राघव जवाब देता है कि खाना भाग नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देता है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का वृत्तांत
0: राजा को बताता है।
4: अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं।
0: वाह।
4: तथा मालिक की बुद्धि पूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच ही तो है जो व्यक्ति परिश्रम कर के अपने किसी वस्तु या संपत्ति के का जतन करता है, उसे उसकी परवाह अधिक होती है।
0: क्योंकि देखो, उसने खाना छोड़ दिया, भूख लगी थी फिर भी उसने खाना छोड़ दिया और लाठी लेकर दौड़ पड़ा कि मेरे आम कोई चुरा ना ले जाए, तो वही अच्छा सच्चा मालिक है। और उसने कहा जी
3: मेरी बहन भी एकदम ऐसी है, मैं जो भी पढ़ती हूँ उसको वही चाहिए,
0: जो तुम्हें चाहिए वही उसको भी चाहिए। वो दावा करती है ये मेरा भी है दीदी, है ना? भाई देखिए, सानिध्या की बहन सानिध्या की हर चीज पे दावा करती है, ये मेरा है, इसमें मेरा भी हक है, तो दे देती हो तुम उसको?
3: दीदी मैं देती नहीं हूँ, पर वो थोड़ी छीन लेती है।
0: बताओ कितना उसके साथ अत्याचार होता है।
5: नहीं, इंसान खुद ही छीन लेता वो तो समझ आता है, खुद ही छीन लेती है, पहली बार सुन लेती
0: है। खुद छीन लेती है भाई, देखिए अब उसको खुद अगर वो छीनेगी ना तो मुझे बताना, मैं उसको दंड दूंगी। तो भाई देखिए, बहुत बातें हुई बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे बच्चे थोड़े से थके से भी अपने को महसूस कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले ले और मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। तब तक आप सुनते रहिए ये प्यारी प्यारी राइम्स और चले जाइए अपने बचपन में।

0: तो एक बार फिर से वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत सारे बच्चे फिर से हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। उसमें से हमारे बीच में बैठे हैं समर पांडे और इधर बैठे हुए हैं सत्यम जी, साथ में हैं ऋषभ और श्लोक और साथ ही साथ अतुल भी हमारे साथ हैं। तो ये हमारे सीनियर बच्चे हैं। जूनियर की टोली तो बाहर चॉकलेट खा रही है, लेकिन अभी ये सीनियर बच्चे हैं और देखते हैं ये आपका एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समर की ओर चलते हैं। समर जी कहाँ हैं आप?
1: जस्ट आपके बगल में।
0: नहीं नहीं, कहाँ हैं आप? मेरे बगल में होने का मतलब ये नहीं है, आप माइंड से आप कहाँ पे हैं?
1: मार्स गया था घूमने।
0: मार्स पे घूम रहे थे? मुझे भी ले चलो ना मार्स पे।
1: बस, इसीलिए तो वापस आ गया ना।
0: मुझे भी भाई, देखिए अकेले नहीं जाना है कहीं, मुझे साथ साथ लेके चलना है,
1: इसीलिए तो वापस आ गया।
0: तो चलिए आप सबको भी हम मार्स पे ले चलते हैं, और हमारे सत्यम जी देखिए मार्स पे सबको ले जाने वाले हैं।
1: तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक स्पेस सूट पहने हैं और एक पूरी नई दुनिया है जो पूरी पूरी रेड कलर की है और ठंडी है और बहुत सुनसान है, यानी कि
0: ठंडी भी सुनसान भी,
1: बहुत ठंडी है और बहुत सुनसान है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है। हवा है लेकिन बहुत कम हवा है, और वहाँ पे कोई आवाज करने के लिए है नहीं, इसलिए वो सुनसान है। तो हम बात कर रहे हैं कि मार्स के बारे में, और मार्स के बारे में यहाँ तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन से जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मार्स पे कभी पहुँच सके? क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, जितने भी दुनिया के बड़े वैज्ञानिक हैं एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के, वो सब चाहते हैं कि अर्थ, जब हम अर्थ को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, वैसे वो कर रहे हैं, तो जब हम अर्थ को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे तो और हम अगला किस प्लेनेट को बर्बाद करेंगे, तो वो मार्स को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जाएंगे वहाँ तक कैसे? तो स्पेस एक्स एक कंपनी है एलन मस्क की, वो चाहते हैं कि
0: एलन मस्क की कंपनी है,
1: एलन मस्क की जो स्पेस एक्स है, वो चाहते हैं कि हम कुछ सालों में मार्स पे 2050 तक मार्स पे स्टेबलिश हो जाएं, और हम इसके लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठा चुके हैं। जैसे
0: समर, एक प्लॉट मेरे लिए भी बुक कर देना।
1: हाँ, अरे होने दीजिए। वैसे मैंने कहा ना कि अभी हम लोग उसको बर्बाद ही करने जा रहे हैं, क्योंकि
0: मैं और मेरे बच्चों के लिए एक प्लॉट चाहिए, एलन मस्क को बोल देना।
1: हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। वो दीपेंद्र सर आए हैं, उनसे कह देंगी तो मिल जाएगा
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए हम मार्स पे सिर्फ जा रहे हैं। वैसे तो हमारे सबसे नज़दीक वीनस है, लेकिन हम मार्स पे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ उसकी बहुत खास प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत खास गुण हैं कि हम मार्स पे ही जा सकते हैं और मार्स पे ही हमको जाना चाहिए। इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि अर्थ तो हमारे लिए स्पेशल है ही है, यहाँ पे परफेक्ट टेम्परेचर है, लिक्विड वाटर है, ऑक्सीजन है रिच है, और मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि सन जो होता है वो सन से कभी कभी, क्योंकि हम कह रहे हैं, मैंने बताया था ना कि सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तो सन में कभी कभी बहुत सारा रेडिएशन निकलता है बाहर, उसमें सोलर स्टॉर्म आते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शील्ड की तरह काम करती है कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम बचे रहते हैं। और मार्स इसलिए क्योंकि मार्स पे पहली बात तो इन जो दिन धरती का एक पूरा दिन होता है वो होता है लगभग 24 घंटे
0: एक दिन, यानी कि जो धरती का
1: पूरा रोटेशन टाइम होता है, और मार्स का भी रोटेशन टाइम लगभग इतना ही
0: इतना
1: है,
0: जितना है हमारी
1: 24.6 आवर्स। तो ये तो बहुत ठीक चीज़ है। दूसरी बात कि हम वहाँ पे मार्स पे आइस के फॉर्म में वाटर है, तो वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही है कि आइस के रूप में वाटर है, तो हम वहाँ पे बच सकते हैं और आइस को डेफिनेटली लिक्विड में
0: चेंज कर सकते हैं,
1: अपने यूज में ला सकते हैं,
0: यूज में ला सकते हैं।
1: और मैंने अभी कहा ना कि वैसे तो सबसे नज़दीक वीनस है, लेकिन हम वीनस पे क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ये सब गैस जाइंट्स हैं। गैस जाइंट मतलब ये पूरे पूरे गैस के बने हैं, इसमें अगर आप ऐसे जाएंगी तो उस तरफ से पार निकल जाएंगी, उसमें लैंड नहीं है। तो
0: वहाँ पे लुका छुपी खेला जा सकता है।
1: हाँ, और मार्स पे सिर्फ मार्स ही हमारे नज़दीक में ऐसा प्लेनेट है जिसके पास लैंड है, वो ठोस सतह है, और मार्स इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ग्रेविटी के हिसाब से इवॉल्वड है कि हम ग्रेविटी में रह सकते हैं। तो धरती की ग्रेविटी का 38% मार्स पे है, यानी कि हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं क्योंकि वो सेम अर्थ की तरह तो नहीं है ना, इसलिए मार्स पे रहना एक्सट्रीमली डेंजरस है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है, है थोड़ी सी ऑक्सीजन है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो ही कह सकते हैं उसको हम। टेम्परेचर जो है उसका एवरेज टेम्परेचर वो है -60°C, जो यहाँ पे हम लोग गर्मी की वजह से परेशान रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर -60°C जो भी डेडली है। हम -30 के नीचे तो इवॉल्व कुछ भी कर ले, -30 के नीचे नहीं जा सकते स्पेस सूट के बिना। उसके बाद जैसे मैंने बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है वो सोलर स्टॉर्म्स को रोकती है, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब अगर सन से तूफान आया तो वो हवा वाला तूफान नहीं होता, वो रेडिएशन का तूफान होता है। वो सन से तूफान आया तो पूरा सफाया सब, और बहुत पतला एटमॉस्फेयर है, बहुत थिन एटमॉस्फेयर, जिससे प्रेशर भी बहुत कम होता है और इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो भी हम करेंगे वो ज़्यादा होगा, इसीलिए वहाँ पे इवॉल्व होना बड़ा मुश्किल है। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं इसके लिए, बहुत सारी स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा और इसरो ये सब मार्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन जो इंडिया ने भेजा था मंगलयान, वो सफल हुआ और उसने प्रूव दिया कि मार्स पे वाटर है।
0: तो सारे ये जो हैं कंट्रीज हैं ये कंपटीशन में लगे हुए हैं कि
1: वो कोल्ड वॉर जैसा है
0: बिल्कुल,
1: कि कौन मार्स पे
0: पहले जाएगा अपना झंडा लहराएगा।
1: वैसे नासा एक बार रोवर अपना उतार चुका है मार्स पे, लेकिन फिर भी वही बात कि इंसानों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कैसे रहेंगे वहाँ पे, मैंने कहा ना भी वहाँ पे रहना तो कुछ पॉइंट्स प्लस हैं लेकिन कुछ तो इम्पॉसिबल है
0: जी।
1: ऐसे है कि सर्वाइवल प्लान या तो उसमें हम कुछ ऐसे अंडरग्राउंड सिटीज़ जो साइंटिस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं कि बड़े बड़े अंडरग्राउंड सिटीज़ बनाएं या फिर उसको कवर्ड सिटीज़ बनाएं रेडिएशन से बचने के लिए। उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन करें, CO2 वहाँ पे है पर्याप्त है, तो वहाँ पे पेड़ जैसा कुछ अगर लगा सकें हम, वैसे लगेगा नहीं वो, तो उसको हम ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, और ग्रोइंग फूड बना करके वहाँ पे, और वाटर एक्सट्रैक्शन यानी कि जो बर्फ़ है उससे पानी निकाल सकें। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि लो ग्रेविटी है वहाँ पे, रेडिएशन है, आइसोलेशन है। वैसे प्रॉब्लम तो हर जगह है लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट
0: बस ये कि सर्वाइव
1: करने वाली बात है। तो इसका शॉर्ट आंसर कि ये पॉसिबल है लेकिन बहुत आसान नहीं है।
0: देखिए तो, होता क्या कि हम तो इस अर्थ पे रहते हैं कि जहाँ पे सारी सुख सुविधा हमें प्रोवाइड होती और उसके बाद मार्स पे जा करके एडजस्ट करना और सर्वाइव करना थोड़ा हमारे लिए दिक्कत भरा होगा।
1: मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले मार्स पे जाने से पहले अगर हम अर्थ को अपनी सुधार लें थोड़ा सा तो वो ज्यादा ठीक रहेगा,
0: बेटर तो यही रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम ऋषभ की ओर, और ऋषभ क्या सुनाने वाले हैं आज आप?
2: दीदी कहानी।
0: कहानी आज तो बहुत मैंने कहानी सुनी, मुझे याद नहीं कितने कहानी के नंबर हो चुके हैं, लेकिन एक कहानी और सुनते हैं।
2: एक घने जंगल में एक चंचल बंदर रहता था।
0: चंचल बंदर?
2: जी दीदी, उसका अच्छा। नाम था मोटू।
0: मोटू
2: उसी जंगल में एक सीधा साधा और दयालु हिरण भी रहता था, उसका नाम था सोना। मोटू बहुत चालाक था लेकिन उसकी एक आदत खराब थी, वह सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती करता था। एक दिन मोटू पेड़ पर बैठा स्वादिष्ट फलों का मजा ले रहा था, तभी नीचे से गुजरते हुए सोना को देखा।
0: सोना कौन था?
2: दीदी हिरण।
0: अच्छा सोना, सोना सोना कितना सोना है, फिर आगे?
2: अरे दोस्त ऊपर आओ, ये फल बहुत मीठे हैं, मोटू ने मीठी आवाज में कहा। सोना ने भरोसा किया और रोज मोटू के पास आने लगा, दोनों साथ समय बिताने लगे। लेकिन सच ये था कि मोटू को सोना की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोना रोज नदी पार करके नए नए फल ढूंढकर लाता था। दिन बीतते गए, एक दिन जंगल में शिकारी आ गया। सोना डर के मारे भाग रहा था और अचानक जाल में फंस गया। उसने मोटू को पुकारा, दोस्त मेरी मदद करो। मोटू पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था, पर उसने सोचा अगर मैं नीचे गया तो मैं भी फंस सकता हूँ, और वह चुपचाप पेड़ के पीछे छिप गया। सोना ने आखिरी बार आवाज़ दी लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक हाथी वहां से गुजरा, उसने सोना को देखा और अपने मजबूत दांतों से जाल तोड़ दिया।
0: अरे वाह,
2: सोना बच गया लेकिन उसका दिल टूट चुका था। अगले दिन मोटू फिर मीठी बात करने आया। दोस्त कल मैं डर गया था, इसीलिए। सोना ने शांत आवाज़ में कहा, जो दोस्त मुसीबत में साथ न दे वह दोस्त नहीं सिर्फ मतलबी का साथी होता है। यह कहकर सोना वहाँ से चला गया। मोटू पहली बार अकेला रह गया था और उसे अपनी गलती का एहसास
0: हुआ। तो देखिए बच्चों, कभी भी दोस्त का साथ कैसी भी परिस्थितियाँ हो नहीं छोड़ना चाहिए, वरना क्या होगा, मोटू की तरह अकेले रह जाओगे फिर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा,
3: नहीं छोड़ते।
0: अब वैसे तो हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, सब एक दूसरे का साथ देते, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते। मुझे तो इसी बात की बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे बहुत एक हैं, नेक हैं। तो चलते हैं हम श्लोक की ओर, और अतुल जी हैं जो साथ में एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाने वाले हैं। भाई देखिए, एक दिन के बाद हनुमान जयंती, नहीं नहीं बड़े मंगल की शुरुआत होने वाली है, तो सभी को बड़े मंगल की बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे एक हफ्ते बाद, इसलिए पहले से ही आप बड़े मंगल की बधाई हमारी ओर से ले लीजिए और हमारे बच्चों से एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुन लीजिए।
4: दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले

0: सहारा
1: और अपने
0: भक्तों का बजरंगी मान करते हैं, अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं
1: और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं।
2: भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, कितना भी तुम लोग की तारीफ की जाए, चलिए बच्चों तालियां तो हो जानी चाहिए, है ना, सुंदर हनुमान जी का भजन। तो अब हमारे साथ हैं हमारे छोटे साइंटिस्ट और हमारे विचारक महोदय, कहाँ, हाँ विचारक महोदय हमारे बगल में बैठे हुए हैं, अब हम इनको मंच देते हैं। तो चलिए किसको बुलाएं, अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं
3: दीदी, मंच किसको देंगे पहले?
2: अक्कड़ बक्कड़ करके देखते हैं किसको दे दूँ। हमारा तो अब यही है कि आप लोग कहते हैं मुझे मुझे मुझे, तो मैं तो अक्कड़ बक्कड़ करती हूँ, जिसके ऊपर बक्कड़ जाएगा उसको मंच दे दिया जाएगा। तो कौन आ रहा है, चलिए सर सत्यम जी तैयार हैं, कोई नहीं आ रहा है, हम सत्यम जी की ओर हमारा बक्कड़ हो गया, चलिए सत्यम जी।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हम सभी के साप्ताहिक कार्यक्रम हम टी डमटी विद गीता दीदी, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जी हाँ सोशल मीडिया। दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करता हो।
2: जी बिल्कुल, देखिए सारे लोगों के हाथ में जो है मोबाइल है।
4: जी दीदी, इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने हमारी दुनिया को एक क्लिक में जोड़ दिया है।
2: बिल्कुल,
4: लेकिन सवाल यह है क्या सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छा है या बुरा?
2: अच्छा भी है बुरा भी है।
4: जी दीदी, सबसे पहले बात करते हैं इसके अच्छे पहलू की। सोशल मीडिया हमें दूर बैठे लोगों से जोड़ता है, हम नई नई जानकारियां सीख सकते हैं, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा सकते हैं,
2: जी जी।
4: और कई लोग तो इससे पैसे भी कमा रहे हैं।
2: बिल्कुल, अब तो देखते हैं कि लाइक करो लाइक करो लाइक करो।
4: जी जी जी, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा पहलू भी है, सोशल मीडिया की ज्यादा आदत हमारे समय को बर्बाद कर सकती है।
2: बिल्कुल, ये पते की बात बताई।
4: जी दीदी, कई बार लोग दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझने लगते हैं, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है।
2: जी।
4: इसके अलावा फेक न्यूज और गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है।
2: जी, जी।
4: जो समाज के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
2: बिल्कुल आपने सही बात कही, तो ये तो है ही, हमारे बच्चे हैं उनकी आदत लग चुकी है, और बड़े नहीं छोटे बच्चे हैं जो अभी तो उन्होंने चलना भी नहीं शुरू किया, उनको आदत लग जाती है इसकी, वो बिना हम्टी डम्टी और क्या कहते हैं एक मोटा हाथी सुने खाना नहीं खाते हैं।
4: जी दीदी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा समय देने से बचें और हमेशा सही जानकारी पर भरोसा करें।
2: जी बिल्कुल,
4: अंत में बस इतना कहना चाहूँगा सोशल मीडिया एक साधन है, इसका सही या गलत होना हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त।
2: बहुत अच्छी जानकारी दी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये जानकारी, और हम आशा करते हैं कि हमारे लिसनर्स को भी ये काफ़ी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे छोटे साइंटिस्ट की ओर, यानी यश की ओर। आज यश क्या सुनाने वाले हो?
5: देखिए समय का हमारे पास अभाव है।
2: बहुत अभाव है भाई, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अभाव है, जल्दी से आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए।
5: आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कारगिल दिवस के बारे में,
2: कारगिल वॉर
5: के बारे में।
2: ओके ओके,
5: ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम बिना याद करें अपनी भारत की हिस्ट्री को नहीं जान सकते। अगर आप कारगिल वॉर को नहीं जानते तो आप भारत की हिस्ट्री को नहीं जानते। आज हम बात करने वाले हैं कारगिल वॉर की। 1999 की ये बात है, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। युद्ध लड़ा गया था कारगिल की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में।
2: जी।
5: मैं आपको बता दूं कि कारगिल सियाचिन ग्लेशियर के पास ही है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया के सबसे मोस्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वॉरफेयर जो एरियाज होते हैं उसमें से एक है। और सियाचिन ग्लेशियर जो होता है वहाँ पर युद्ध लड़ना किसी
2: बहुत ठंड होती है,
5: बहुत
2: ज्यादा ठंड होती है, जिसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है,
5: शरीर पूरा जम जाता है, लेकिन तब भी लड़ना होता है। और मैं आपको बता दूं इंडिया जो आर्मी होती है उसको स्पेशली ऐसा ट्रेन किया जाता है कि आप सियाचिन ग्लेशियर में लड़ पाएं। कोई भी दुनिया की आर्मी सियाचिन ग्लेशियर में नहीं लड़ सकती, लेकिन स्पेशली इंडियन आर्मी को ऐसा ट्रेन किया जाता है जो वहाँ पर लड़ सकती है। और कारगिल उसी के पास है, हिमालयास भी है, सबसे पहली बात तो ये, ऊंचाई भी लगभग 16,000 से 18,000 फीट की, मतलब जो हम लोग केदारनाथ जाते हैं वो लगभग 14,000 फीट का रहता है,
2: उससे भी ऊपर।
5: मतलब जो केदारनाथ है वो 14,000 से 20,000 फीट रहता है, और आप सोचिए उतनी ऊंची पे हम लोग चढ़ने में हमको दिक्कत पड़ती, वो लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं
2: जी बिल्कुल।
5: ये होती है। अब देखिए ये शुरुआत कैसे
2: ये
5: हुआ?
2: क्या है ये भारत के प्रति हमारा प्रेम है, हम देशवासियों का प्रेम है, अपने भारत को सुरक्षित संरक्षित रखने का जज्बा है।
5: बिल्कुल, देखिए सबसे मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी तक जितने भी लड़ाई हुई है उसमें से जो सबसे मेन कारण ये होता है वो कश्मीर का जो मुद्दा है ये वही होता है, और उन जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें भी एक ये जो मुद्दा था कश्मीर का ही मुद्दा था, और ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको अपना उनको मतलब दिया गया था, ये उद्देश्य था कि अपनी ज़मीन को वापस लेना, जो कि आज भी हम ले नहीं पाए, और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कलंक बना हुआ है कि हम वो कश्मीर अपने हिस्से में नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण तरीके से।
2: उसके लिए कितना बलिदान हुआ, कितना हमने युद्ध लड़ा है, लेकिन अभी भी अभी हमारे कब्जे में
5: अभी ऑपरेशन सिंदूर को भी एक साल होने वाले हैं जस्ट 9 मई को
2: जी।
5: तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हम उस देश से लड़ रहे हैं जिससे अभी तक हमें जीत जाना चाहिए था। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे बस में तो ये चीज़
2: तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे जो बलिदानी हमारे सैनिक थे उनको हम इसके लिए बार बार नमन करते हैं और उनके प्रति बहुत,
5: फिर वो चाहे कैप्टन विक्रम बात्रा हो, मनोज कुमार पांडे हो, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव हो, या फिर कोई भी हो
2: जी बिल्कुल,
5: जितने भी इंडियन आर्मी के सैनिक हैं बहुत ज़्यादा आगे हैं।
2: तो चलिए बस थोड़ा सा हमारे पास टाइम है 1-2 मिनट का, और हमारे साथ हमारे जो विचारक बैठ चुके हैं भाई, आज थोड़ा सा विचार को शार्ट कीजिएगा और जल्दी से अपनी बात कह दीजिए बिना देर लगाए।
6: तो नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप लोग सुन रहे हैं हमारा सबसे फेवरेट शो हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सन से रिलेटेड है।
2: ओ ओ,
6: और आज जो डे मनाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल सन डे, यानी कि आज अंतरराष्ट्रीय
2: सूर्य दिवस है।
6: तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस भीषण गर्मी में हम लोग को जो सबसे ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे
2: सूर्य देवता,
6: तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल सन डे है क्या। तो ये डे पहली बार 1978 में सेलिब्रेट किया गया था और इसे प्रमोट किया गया था, यानी कि इसे और इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था डेनिस हेयस ने। ये वही पर्सन थे जिन्होंने अर्थ डे को भी पॉपुलर बनाया था
2: जी।
6: और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में अवेयर करना, जागरूक करना। अब सवाल आता है कि सोलर एनर्जी हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है
2: भाई? तो है, बहुत है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। देखिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है वो खत्म होने
5: की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम धरती पे हैं, हमारी चीज़ जो है जितनी सब चीज़ें हैं वो सोलर पावर से ही आ रही
2: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
5: हमारी एग्जिस्टेंस ही सन से है, सन अगर ना होता तो हमारी एग्जिस्टेंस कोई मायने ही नहीं रखती।
2: और अभी बहुत बहुत बहुत लंबा हम उसको गिनती में तो व्यक्त नहीं कर सकते
5: जितनी भी चीज़ें हमारे
6: पास। देखिए सन जो है हमें हर सेकंड में इतनी एनर्जी देता है कि जितनी पूरी दुनिया साल भर में नहीं यूज़ कर पाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस एनर्जी का बहुत ही छोटा सा पार्ट यूज़ करते हैं। तो अगर थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक वे में बात करें तो सन बेसिकली एक जाइंट बॉल है। अगर हम लोग सन के बारे में बात करें जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, इसका जो कोर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, जो कि जब उसको मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। अब जैसे कि हम लोग आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सन का रियल यूज़ कैसे करें, तो बेसिकली हम लोग सोलर पैनल्स की मदद से।
2: हाँ, तो इस समय सन का एकदम एक ट्रेंड सा चल चुका है, हर एक की छत पे सोलर पैनल लगे हुए और अच्छी बात है। ये स्पेशली
6: विलेजेस में और रिमोट एरियाज में तो लगने ही चाहिए, जिससे कि जहाँ विलेजेस इतना मतलब अर्बन रूरल एरिया है उसको भी हम लोग एकदम मॉडिफाई करके सन की मदद से उसको और भी ज्यादा मॉडिफाई कर।
2: तो भाई बहुत अच्छी जानकारी दी है, और हमारे पास जैसे हमने बताया समय का अभाव है, हमारे चलने का टाइम भी हो रहा है, इसलिए हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि अगले संडे इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए
6: रेडियो 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
7: चलो भाई मन चुका है।
2: अभी ये गए हैं ना, एक टीम गई है ना, अभी
7: नहीं मिला।
2: आज बहुत सारे बच्चों का होना है ना। नमस्ते।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने संडे स्पेशल शो ओपन माइक, अपना टैलेंट, अपना एफएम, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अंदान दोपहर में हाजिर हो जाते हैं। भाई आज ही का दिन तो ऐसा होता है संडे वाला, जब आप कहते हैं कि दोपहर में ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है, आपके रेडियो से आती है क्योंकि हम ओपन लाइक लेके आते हैं। ओपन माइक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम भैया यहाँ का टैलेंट जो है शोकेस करते हैं। सो ये टैलेंट कैसा होता है, कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई बहाना अच्छा कर लेता है, कोई जोक्स अच्छे मार लेता है, तो कोई किसी की खिंचाई अच्छी कर लेती है। हालांकि आज हम किसी के मूड में नहीं, भी हम खिंचाई नहीं करने वाले। आज एक सरप्राइज लेके आए, बहुत बड़ा सरप्राइज अब से कुछ देर में आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज और है कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जुड़ गए हैं जो फर्स्ट टाइम आज हमारे साथ रेडियो पर बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु जी की, जो कि गुरु जी हमारे साथ में बैठे हैं। और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप, अपना हाल चाल बताइए।
1: वेरी गुड, बहुत अच्छे
0: अच्छे हैं आप, चलिए बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमारे साथ और भी कुछ पार्टिसिपेंट हैं। विमल बहुत दिन बाद आए हैं। विमल कैसे हैं आप?
2: सर बहुत बढ़िया हूँ मैं,
0: ब्लैक में अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं।
2: थैंक यू सर,
0: थैंक यू सो मच टू यू। सृष्टि भी आई है, सृष्टि आपका भी स्वागत करते हैं।
3: थैंक यू सर।
0: एंड हमारी लिसनर रीता पाठक जी,
4: हेलो सर,
0: आज स्कूल से छुट्टी निकाल करके स्पेशली आई हैं शो को एंजॉय करने के लिए। ओके, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि आज की बातचीत बहुत ज़्यादा सफल होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं अपने नए पार्टिसिपेंट से भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा इस बात पे भी हम गौर करेंगे कि आज हमारे बीच में कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे आ गए हैं जो ऑफ कोर्स जिन्होंने ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके सपने क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, और वो नन्हे मुन्ने जो है आगे जा करके क्या करने वाले, कैसे होने वाले, ये सब

0: कुछ हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बातें बता दीजिए।
1: जी मैं गोंडा से ही हूँ, विष्णुपुरी कॉलोनी से आया हूँ, गुरु प्रसाद पाठक
0: जी,
1: और एज ए जो है मेडिसिन जो है वर्किंग है।
0: अच्छा जी, तो दवाओं को खिलाने का काम आप कर रहे हैं?
1: जी जी, दवाओं का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। खाना तो जरूरत के हिसाब से होगा, जब आदमी मरीज बीमार होगा, जरूरत होगी तभी खाएगा।
0: बेशक, सही बात है। बहुत अच्छी बात आपने सही कही, और इसके साथ ही साथ अच्छी बात यह कि आप लिसनर भी हैं 89.6 एफएम के।
1: 100% लिसनर।
0: और मुझे लगता है कि जो रेडियो से जुड़े हुए होते हैं उनमें थोड़ा सा एक आर्टिस्ट हमेशा रहता है, क्या मानना है आपका?
1: थैंक, बिल्कुल, वेरी गुड,
0: बिल्कुल सही बात है, राइट, थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जो लोग रेडियो सुनते हैं वो जरूर एक विधा से जुड़े होते हैं, एक आर्टिस्ट,
1: उनका ज्ञान वर्धन होता रहता है और उनको तमाम नॉलेज जो है बैठे बैठे मिल जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हमारे यहाँ 24 घंटा चलता ही रहता है रेडियो, बंद नहीं होता।
0: क्या बात है, 24 घंटा आप रेडियो सुनते रहते हैं।
1: आपका एफएम तो बंद ही नहीं होगा।
0: मुझे लगता है आप भी सबसे बड़े आरजे बन जाएंगे फिर।
1: जी, जी, जी, जी।
0: सुनते सुनते
1: कहते हैं कि आशीर्वाद,
0: कंपनी डज इफेक्ट, यानी सोहबत का असर होता है
1: जी।
0: बिल्कुल सही बात है। तो हम चाहेंगे कि आज आप कुछ बातें हमारे श्रोताओं से जो कहने आए हैं, प्लीज उनके बारे में कुछ कहें।
1: हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो जाकी को सुने और इनके विचारों को अपने अंदर उतारें और इनसे प्रभावित होकर लोगों को भी अफेक्टेड करें, ये हमारा संदेश है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही आपने।
1: हमारी संस्था आगे सब लोगों के दिलों को छूती रहे।
0: वाह, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत प्यारी बात कही आपने, और ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है इस बात का कि भाई आपने कहा है कि कहीं ना कहीं रेडियो से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत प्यारी बात है। सो आइए फिलहाल चलते हैं अपने परफॉर्मर्स की तरफ और देखते हैं क्या लाए हैं। विमल, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या है आज?
2: सर वैसे तो एक गज़ल और एक कविता है
0: वैसे
2: आपके सामने।
0: और अच्छा, मेरे सामने और आरजे मनु के सामने जोक है वो।
3: अच्छा, जोक क्यों भाई, हमारे लिए भी वही गजल है,
2: आप सबके लिए और मेरे देश के लिए भी है,
0: क्या
2: मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्लीज हम चाहेंगे कि आप पेश करें आज ओपन माइक में।
2: जी जी जरूर। तो शुरुआत करता हूँ कि जो सच की बुनियाद पे खड़ा है वही मरेगा, जो सच की बुनियाद पे खड़ा है वही मरेगा, जो हारा हालात से खड़ा है वही मरेगा। वो लोग जिंदा रहेंगे जो हैं किसी के मुखबिर, वो लोग जिंदा रहेंगे जो हैं किसी के मुखबिर, जो अपनी आवाज़ पे खड़ा है वही मरेगा।
0: क्या बात है,
2: जो अपनी आवाज़ पे खड़ा है वही मरेगा। वो जल गए हैं कि जिनके सिर पे छतें नहीं थीं, वो मर गए हैं कि जिनका जीवन था सिर्फ रोटी, वही बचेंगे जो आग खुल के लगा रहे हैं, जो अब गरीबों के संग खड़ा है वही मरेगा। जो उनकी आंखों में डर था, डर का पानी था, मर चुका है, सही डगर को दिखाने वाला जो एक मानी था, मर चुका है, वही बचेगा जो चाटेगा इनके तलवे दुआ करेगा, वो अब जो इनके खिलाफ होगा वही मरेगा। कटेंगे जंगल न साफ पानी न खेत खलिहान ही बचेंगे, न कोई गंगा रहेगी गंगा न कोई इंसान ही बचेंगे, वही बचेंगे जो इनके मुजरों पे बांध घुंघरू तदिन करेंगे, वही बचेंगे जो इनके मुजरों पे बांध घुंघरू तदिन करेंगे, वो जो इनकी हरकतों का अजाब देगा वही मरेगा। उठा के देखो करों को अपने के जुल्म सहने की लकीर है क्या, ये जवान रगों में जो बह रहा है ये खून नहीं है ये खीर है क्या, ये जवान रगों में जो बह रहा है ये खून नहीं है ये खीर है क्या। बहो हवाओं में क्रांति बनकर अमर रहोगे, जो ऐसे हालात से डरेगा वही मरेगा, जो ऐसे हालात से डरेगा वही मरेगा। एक और अपनी गजल के चंद आसार पेश करूँगा।
0: बिल्कुल,
2: कि जैसे तुमने बना के रखा है इस तरह आस की नहीं चलती।
0: क्या बात,
2: जैसे तुमने बना के रखा है इस तरह आस की नहीं चलती, जैसे

0: चलती।
1: क्या बात है, वाह,
2: बहुत बात है, बहुत खूब है, तालियों के साथ इनकी गजल का
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत इनकलाबी अंदाज। और आखिरी पंक्ति आई तो मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा।
0: क्या बात है सर,
2: बहुत धन्यवाद। सर मिल सकता है लेकिन डर नहीं मिल सकता।
3: एक और अपनी शायरी आखिरी बोलूंगा उसके बाद।
1: जी प्लीज जी।
3: तेरे घुंघरू से शिकायत तो नहीं करता है।
1: ओके।
3: तेरे घुंघरू से शिकायत तो नहीं करता है। बढ़

0: मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विमल,
2: समा बांध दिया
1: आपने, अपने नाम का पूरा अर्थ समझा दिया, और ये इनकलाब जो पैदा किया है मोहब्बत का हो या बुराई के खिलाफ, बहुत उम्दा, बहुत तगड़ा,
0: धन्यवाद सर,
1: थैंक यू सो मच, और ढेरों दुआएं आपके लिए, बहुत सारा आशीर्वाद। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रीता पाठक जी की तरफ, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लंबा शो करने वाले हैं, आज हमारे पास सरप्राइज पे सरप्राइज है, और फटाफट से जब इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आएंगे तो एक बड़ा सरप्राइज जो कि आज एकदम नया होने वाला है वो आपके लिए है। रीता जी कैसी हैं आप?
3: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्या लेकर आई हैं आप हमारे शो?
3: मैं यही की जान लीजिए उपजी हुई ये मेरी अंदर की एक कला थी जो मैं खुद नहीं जान पा रही थी कि ये चीजें मेरे अंदर कितने अंदर तक दबी हुई थी
1: जी।
3: तो मैं अब लिखने लगी हूँ।
1: क्या बात,
3: बहुत तो नहीं लिख पाती, लेकिन हाँ जब समय मिलता है, जब थोड़ा से घर के कामों से
1: फ्री होते हैं तो
3: फ्री होते हैं तो बस लिख लेते हैं।
2: और मुझको लगता है इसमें डिजिटल मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो
3: इसको मैंने स्वीकारा है सर, डिजिटल मास कम्युनिकेशन का वाकई में बहुत बड़ा
1: कानून से बड़ा हाथ,
2: कानून से बड़ा हाथ डीएम से।
1: तो क्या लेकर आई हैं आज आप?
3: मैं एक चार लाइनें हैं।

0: मेरी प्यारी यादों के ऊपर
1: क्या
0: कि
1: बात
0: कुछ
1: है,
0: यादें होती हैं जो हमको जीवन भर गुदगुदा जाती हैं। जब भी हम उसको याद करते हैं,
1: जी
0: चाहे वो यादें अच्छी हों या बुरी हों, बुरी यादें तो आंखों में आंसू ले आती हैं,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: अच्छी यादें वाकई में हम लोग तो मैं तो बार बार उन यादों में ही खो जाना
1: जी
0: चाहती हूँ।
1: क्या बात है, पेश करिए क्या है आज।
0: जी, कुछ यादें चेहरे पर मुस्कान दे जाती हैं, कुछ यादें चेहरे पर मुस्कान दे जाती हैं, कुछ चुपचाप आंखें भिगो जाती हैं, कुछ यादें दिल के करीब रहकर भी अकेलेपन की साथी बन जाती हैं, बीते लम्हों की खुशबू बनकर हर सांझ में बस बस जाती हैं। वक्त गुजर जाए चाहे जितना भी, यादें ही हैं जो जिंदगी भर साथ निभाती हैं। ये मेरे अपने विचार हैं यादों को
1: क्या
0: लेकर
1: बात है,
0: कुछ, और
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत प्यारा
0: चार लाइनें और पेश करना चाहूँगी।
1: जी।
0: आकर्षण, जिसको हम कहते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन हो जाता है नॉर्मली भी, चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो या किसी व्यक्ति की आवाज़ हो या किसी व्यक्ति की बातें हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती
1: किसी
0: हैं
1: व्यक्ति की
0: अट्रैक्शन में।
1: कॉमेडी हो, आरजे मनु, मतलब एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है
0: तो मतलब बस चार लाइनें इसी पे मेरी हैं।
1: जी।
0: बहुत सी चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वे प्राप्त नहीं हैं।
1: वाह
0: बहुत सी चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त होना ही उनके प्रति आकर्षण का एकमात्र कारण है।
1: बहुत खूब,
2: क्या
1: बहुत
2: बात
1: प्यारी
2: है।
1: बात, बड़ी फिलॉसफी है इसके अंदर भाई,
2: हाँ।
1: बहुत बड़ी
0: लेकिन
1: फिलॉसफी
0: जैसे
1: है
0: ही, ध्यान से सुनिएगा आप
1: जी।
0: लोग, लेकिन जैसे ही वे प्राप्त हो जाती हैं, उनका मूल्य तत ही शून्य हो जाता है।
1: क्या बात
2: क्या
1: है,
2: बात है।
1: फैक्ट है। ओके
2: जॉन कीट्स एक बहुत बड़े पोएट हैं, अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी, ने कहा तो
0: जी
2: मैंने
0: जी
2: पढ़ा वो टू ए नाइटिंगेल, तो उसमें एक पंक्ति आती है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, यानी जिन आवाज़ों को हमने सुना है वो तो मधुर हैं लेकिन जिसको नहीं सुना है वो और भी मधुर है। तो जो प्राप्त है वो तो अच्छा है ही है और जो नहीं प्राप्त है वो उससे भी बेहतर है, ऐसी कल्पना की जाती है।
0: आकर्षण तभी
1: बेशक
0: तक
1: सही
0: बना
2: है,
0: रहता है जब तक वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अगला क्या है
0: मैंने परसों एक लिखा है, मेरी आरजू, मेरी
1: जी।
0: कई आरजू है जो बहुत सी आरजू अभी तक पूरी नहीं हुई हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: बस
1: जी
0: उसी के ऊपर मैं बस ऐसे बैठी हुई थी शाम को, बस मैंने कुछ लाइनें लिखी, चंद लाइनें,
1: जी जी
0: तो मुझसे उसको आप लोगों को सुनाना चाहूँगी।
1: प्लीज।
0: मेरी तू आरजू है, उसे ये नहीं है पता, वो मेरी होगी या नहीं ये मुझे नहीं है पता।
1: क्या बात है,
0: मेरी एक आरजू थी तुझे देखने की, लेकिन डरती थी इस जमाने से कि कहीं मेरे एहसास तुम्हारे लिए गले की फांस न बन जाए।
1: क्या बात है, वाह
0: तू
2: क्या
0: एक
2: बात
0: रीत
2: है।
0: है, तुझे निभाने की तमन्ना है, तू एक रंग है, तुझ में रंग जाने की तमन्ना है, तू एक एहसास है, तुझ में खो जाने की तमन्ना है, तू एक राज है जिसको सबसे छिपाने की तमन्ना है, तू एक राग है जिसे गुनगुनाने की तमन्ना है, तू एक विचार है तुझ में खो जाने की तमन्ना है।
1: वाह वाह वाह
2: क्या
1: वाह
2: बात
1: वाह,
2: है, वेरी
1: क्या
2: गुड वेरी
1: बात,
2: गुड। वाह राग
0: अब
2: बात
0: बस एक लास्ट मैं कहूँगी, उसके
1: जी
0: बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। दिल
1: जी
0: का बोझ, कुछ बातें होती हैं वो दिल पर एक बोझ बनी रहती हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती, इसलिए दिल के अंदर का बोझ समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, दिल कभी हल्का हो ही नहीं पाता। जुबा तो कह देती है सब ठीक है सब ठीक है, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, पर रूह चुपचाप उसे सहती रहती है।
1: क्या बात है,
0: फिर सब कुछ छोड़ देते हैं ऊपर वाले और वक्त पर, फिर सब कुछ छोड़ देते हैं ऊपर वाले और वक्त पर, क्योंकि जब इंसान खामोश हो जाए तो फैसले हमेशा ऊपर से आते हैं।
1: वाह बहुत
2: क्या
1: फैक्ट
2: बात
1: है,
2: है
1: क्या
2: यार,
1: बात है, बहुत प्यारा,
0: धन्यवाद।
1: बहुत फिलोसफिकल लिखना होता है आपका, बहुत गहराई से लिखते हैं, और आप यूं ही आपकी कलम सदा चलती रहे कोरे कागज़ पर और शब्द आप
0: बस सर आप
1: गढ़ते
0: ही
1: रहे।
0: लोग की दुआ है, बस आप ही लोग का
2: नहीं, और आपने
0: ऐसा।
2: जो अंतिम पंक्ति बोली उसमें बहुत फिलॉसफी है।
1: बिल्कुल,
2: मैं
1: बहुत
2: तो
1: बहुत
2: कहता
1: अच्छी
2: हूँ
1: शुरुआत
2: कि
1: से ही, बहुत अच्छा
2: जब
1: लगा।
2: तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे,
0: बिल्कुल
2: खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान है।
1: क्या
0: भगवान
1: बात
0: है,
1: है,
0: बहुत
1: बहुत प्यारा, बहुत
2: तो
1: प्यारा, बहुत
2: अगर
1: बढ़िया,
2: कहीं ऐसा सुलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ, तो छोड़ देना चाहिए ऊपर वाले पर।
1: बेशक सही बात है। फिलहाल हम छोड़ रहे हैं सृष्टि पर और देखते हैं कि सृष्टि क्या लेकर आई। सृष्टि क्या है?
3: शायरी।
1: ओके प्लीज, जो लाए हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कहें।
3: क्रोध बुरा होता है लेकिन कई बार उसे दिखाना जरूरी होता है ताकि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो सके। तुम चुप रहना या सहन करना हमेशा सही नहीं होता।

0: करता, खासकर जब कोई बार बार आपके साथ गलत व्यवहार करे।
1: बिल्कुल
0: सही समय पर अपनी बात रखना और सीमा तय करना भी जरूरी होता है।
1: बेशक।
0: एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधकारों से लड़ता है, तुम तो भगवान के दिए हो, तुम किस बात से डरते हो? हथेली पर रख के नसीब तुम क्यों अपना मुकद्दर ढूंढते हो? सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर से ढूंढते हो।
1: क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमारे चारों ही पार्टिसिपेंट ने आज अपना जो इम्प्रेशन डाला है वो बहुत लाजवाब है, बहुत उम्दा है। और फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले हमारी लास्ट पार्टिसिपेंट रिया हैं, इनको सुन लेते हैं, उसके बाद एक सरप्राइज तैयार है फौरन, बस 5 मिनट की और देरी है। रिया क्या लाई हैं आप?
2: सर एक शायरी है।
1: ओके।
2: वो भी मतलब लड़कों के ऊपर।
1: लड़कों के ऊपर है क्या? सर के ऊपर? अच्छा, कंधे के ऊपर। खैर बताइए।
2: जब दौलत भरी हो जेबों में तो आदमी की कभी जिल्लत नहीं होती। कि जब दौलत भरी हो जेबों में तो आदमी की कभी जिल्लत नहीं होती।
1: हाँ।
2: और एक मजबूरी है कामयाब होने लड़कों के लिए, और एक मजबूरी है लड़कों के लिए, सुनना है ना कामयाब मर्द की इज्जत नहीं होती।
1: ओहो, क्या बात है, ये तो आपने सोसाइटी के नॉर्म्स को तौल दिया है। और राइट, बहुत अच्छा। चलिए, आप यंगस्टर हैं, ऐसे ही सोच रखते हैं, ज़रूर अपनी एक नई सोच निकालिए, समाज से हट के भी सोचिए, अपनी खुद की सोच एक डेवलप करिए, ऐसी हम दुआ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुप्रसाद पाठक जी, रीता पाठक जी, सृष्टि, विमल एंड रिया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। एंड इस म्यूजिकल ब्रेक के जस्ट उस पार आते हैं और हम सरप्राइज लेकर के तैयार हैं।
3: सुनते रहिए रेडियो 106 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

वंदन नमन और स्वागत। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर के धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM जी। और हमने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले एक वायदा किया था कि जब हम लौटेंगे तो बहुत बड़ी सरप्राइज के साथ लौटेंगे। और कहा जाता है कोई सूरज बनाता है कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। बना तो लेते हैं लोग फूल कागज के, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो खुशबू बनाता है। तो खुशबू बनाना अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है। और कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्तित्व होते हैं, कोई चलता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है, कुछ कोई किसी रास्ते पर चलता है और कोई रास्ते को बनाता है। आज हम सभी के बीच एक ऐसे ही शख्सियत उपस्थित हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि अव्वल तो ज़माने में नहीं आप सा कोई और हो भी तो क्या हम और तस्लीम करेंगे। हम उनसे बढ़कर किसी को मान नहीं सकते। और अब बात करते हैं जिस पंग मुद्दे पर चल रहे हैं कि कुछ शिक्षा शक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, कुछ शिक्षा शक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, इस अशिक्षित समाज के विजधन फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया पर इनको आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा इनके मुंह पर मारा तो है। अज्ञान से प्रकाश की ओर तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये देश की परंपरा है। और अशिक्षा से शिक्षा की ओर हम चले हैं, कहाँ चले हैं इस बारे में बात करते हैं। आपकी होस्ट और दोस्त उन्नति नहीं है लेकिन आयुषी जी हमारे साथ।

0: है। और आयुषी जी अब आप बताइए क्या खास है एजुकेशन के मामले में?
1: सो देखिए, खास तो बहुत कुछ होता है आयुषी, से पहले हम बता दें क्योंकि डिजिटल मास कम्युनिकेशन का अभी जस्ट एडवर्टाइजमेंट हमने सुना जो कि लोगों को रोजगार तो दे रहा है और बदलाव ला रहा है, लेकिन बदलाव गोंडा में एक और ऐसी संस्था है जो काम कर रही है, आर एन सिन्हा फाउंडेशन। और वह ऐसी संस्था है जो आज को गढ़ते हुए सुनहरे भविष्य को बना रही है। कैसे? जनहित मेला, उस मेले में जिसमें आप अवधि बहुत पॉपुलर कलाकार्स को सुन चुके हैं, उनकी सिंगिंग सुन चुके हैं, उस गांव के लोगों को बहुत सारे कैंप का फ़ायदा मिल चुका है, इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी बार कदम से कदम मिला करके अपने डिपार्टमेंट्स वहां भेजे और लोगों तक उन सुविधाओं को पहुंचाया है। लेकिन उसी में एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होता है, वो है ज्ञान विज्ञान का। इस बार खास क्या है भाई? सारा सोचिए कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपके टीचर्स बनाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स बन के आते हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चनर जो यूएसए से बन के आया हुआ हो, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं, ना मैंने क्रैक किया है और ना मैंने ऐसे कोई एग्जाम दिया है। आयुषी तुमने दिया है क्या?
2: नहीं, अभी मैंने सुना तो था कि यहाँ होता है हमारे गोंडा में, लेकिन क्रैक तो कभी नहीं किया और ना ही कभी एग्जाम दिया है मैंने।
1: क्या लगता है कि अगर क्वेश्चनर दे दिया जाए यूएसए वाला, क्रैक कर सकते हो?
2: थोड़ा सा तो टफ होगा ही,
1: है ना, काफी टफ होने वाला है। लेकिन अब जरा सोचिए वो स्टूडेंट्स जो अभी महज एट्थ में है, नाइन्थ में है, टेंथ में है, इलेवेंथ में है, ट्वेल्थ में है, इन लोगों ने ऐसे क्वेश्चनर को न सिर्फ क्रैक किया बल्कि पोजीशन हासिल की और ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता में ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। पूरी बात क्या है आयुषी, आप बताएं।
2: बिल्कुल, तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई देखिए, आज संडे में मैं आई हूँ, यानी आपकी आरजे आयुषी आई है और कभी नहीं आती हूँ, लेकिन आज आई हूँ एक सरप्राइज़ के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त इस ज़िंदगी का ना आप आनंद भी उठा रहे होंगे। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे सिर्फ एक मेला ही नहीं लगता बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका भी होता है। जी हाँ, ये जगह है पयागपुर नौबस्ता गाँव, जो कि हमारे गोंडा से करीब 22 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर है एक प्राचीन स्थान, रामेश्वरनाथ धाम। ये एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही प्यारी सी जगह है। यहाँ पे हर साल 14, 15 और 16 फरवरी, मैं फिर से बता रही हूँ, 14, 15 और 16 फरवरी को यहाँ एक जनहित मेला लगता है। इस मेले का आयोजन आर एन सिन्हा फाउंडेशन कराता है, जिसकी अभी आरजे अदनान बात कर रहे थे, जो कि सरस्वती देवी नारी ज्ञान असली पीजी कॉलेज के को फाउंडर हैं। आर एन सिन्हा जी की याद में ये चलाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये मेला की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ घूमना फिरना ही नहीं होता बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, इंटरेस्टिंग बात। देखिए, आम मेले में हम जाते हैं, घूमते हैं, घामते हैं, खाते पीते, लेकिन सीखना शायद हम नहीं करते। लेकिन इस मेले की खास बात ये है कि आप यहाँ आके सीख भी सकते हैं। यहाँ एजुकेशन कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप होते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए झूले और फन एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं।
1: वाह, क्या बात है, मतलब ज्ञान भी और मस्ती भी, क्या संगम है। अभी तक सिर्फ हमने गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम सुना था, यहाँ तो सभी चीजों का संगम हो रहा है।
2: बिल्कुल, ये है ना थोड़ा सा अजीब कॉम्बिनेशन कि यार मेले में तो सब क्या करते हैं, जाते हैं, गाने सुनते हैं, झूला झूलते हैं, खाते पीते हैं, चले आते हैं, लेकिन ज्ञान तो मेले का पूरा पूरा अपोजिट हो रखा है।
1: लेकिन एक चीज मिस हो गई।
2: क्या?
1: इस बार मैं जा नहीं पाया 14, 15 और 16 फरवरी को, इत्तफाक की बात है।
2: अरे,
1: और बहुत मिस किया मैंने।
2: तो आपने साल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट आपने तो मिस ही कर दिया।
1: मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आयुषी के पास कुछ जानकारियां इस साल की है।
2: जानकारियां तो हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सबसे खास चीज तो बताई ही नहीं इस मेले के बारे में।
1: वो क्या है?
2: अरे भाई, ज्ञान विज्ञान मेला, नहीं जानते आप इसके बारे में?
1: ज्ञान विज्ञान मेला?
2: बिल्कुल, ये इसी मेले में होता है। देखिए, इसी में ये आयोजित होता है। इसमें बच्चों को मौका दिया जाता है अपनी नॉलेज दिखाने का, और इसको दो भागों में बांटा भी जाता है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। इस साल 2026 में जो मेला लगा था ना, उसमें जो कैटेगरी ए है उसमें 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स आए थे, और इस बार लगभग 90 बच्चे यहाँ पे आए थे जो कि 30 स्कूलों से आए थे।
1: 30 स्कूल से आए थे, वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात है।
2: और इनके लिए 50 सवालों का MCQ पेपर था, जिसमें साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी थे। और बात करें अब बैच बी, यानी कि हमारी कैटेगरी बी की, तो इसमें 11th और 12th के स्टूडेंट्स भी थे। इसमें लगभग 52 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जो कि करीब 20 कॉलेजेस से थे।
1: वाओ।
2: इनके लिए भी जो क्वेश्चंस थे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में थे, जो कि

0: साइंस और जीके से पूछे गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है?
1: क्या है?
0: अरे वही जो आपने बताया, इसका क्वेश्चन पेपर बन के आया था अमेरिका से।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये थोड़ा सा हो गया कि हमारे गोंडा के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात
1: बहुत बड़ी बात है।
0: और वो भी ये बाइलिंगुअल फॉर्म में था, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिससे कि बच्चों को आसानी हो लैंग्वेज समझने में और क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करने में।
1: क्या बात है, वाओ, इतना कुछ था इस बार इस मेले में, मतलब मैंने सच में मिस कर दिया। हालांकि अच्छा हुआ नहीं गया, पता है क्यों?
0: क्यों?
1: पता नहीं हमसे सॉल्व ना करा लेते।
0: हाँ, तब हम रह तो जाते। आरजी अदनान फंस जाते हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कितने मार्क्स आते 50 में से?
1: मुझे लगता है माइनस में जाते हैं। उधारी वाला मामला वैसे हम करते नहीं लाइफ में, लेकिन इसमें चले जाते हैं।
0: बिल्कुल। और आपको पता है कि हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने भाग लिया था इस जनहित मेला में, और ये कॉम्पिटिशन उन्होंने भी दिया था।
1: हाँ बिल्कुल दिया था, और वो बड़े हैप्पी फेसेस नजर आ रहे हैं, मतलब बोलने के लिए एक्साइटेड है कि बस आप लोग हटो, आने वाले आरजे तो हम ही हैं।
0: बिल्कुल भाई, जो अमेरिका से आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो आरजे से मुझे लगता है कि बहुत ही बेटर।
1: नहीं, मेरा एक सवाल है जिसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।
0: कौन सा?
1: कोई है जो मेरे सवाल का जवाब देगा? अच्छा, अब आप सोच रहे, सवाल तो पहले करें। ओके, सो स्मॉल सी कैपिटल सी से कितनी छोटी है? कितनी छोटी है?
0: सोचिए सोचिए क्या हो सकता है।
1: कौन है, कौन है मैदान में जो इस सवाल का जवाब देगा, अटेम्प्ट करेगा? नहीं पता ना? आयुषी,
0: शायद जितना कैपिटल ए और स्मॉल ए से छोटा है।
1: इतनी छोटी है। इतनी तो छोटी होती, मतलब आप उंगली में दिखा सकते हैं कि इतनी ही छोटी हो, इतने बड़े होते हैं।
0: अब आरजे अदनान अपने इस क्वेश्चन से, इस बहुत फनी क्वेश्चन से बहुत ही आगे। आरजे अदनान थोड़ा सा संभल के रहे, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। अगर इन्होंने पूछ लिया ना तो आप भी चुप ही रह जाएंगे।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो फिलहाल रैंकर्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन किस कैटेगरी से,
0: जी बिल्कुल,
1: किस रैंक में हासिल किया।
0: देखिए, जैसा कि हमने बात की थी कैटेगरी ए की, जो कि 8th, 9th और 10th क्लास से थे। अब इसमें फर्स्ट रैंक आई थी हमारे हर्षवर्धन मौर्य जी की।
1: क्या बात है,
0: जो कि तथागत बुद्ध इंटर कॉलेज से थे, और इनको मिली है 1500 रुपए प्रति माह का स्कॉलरशिप, जो कि एक साल के लिए इनको दिया जाएगा।
1: 1500 रुपए प्रति माह की 1 ईयर की स्कॉलरशिप, क्या बात है, वाओ, कांग्रेचुलेशन।
0: साथ ही साथ सेकेंड पोजिशन पे हमारे 3 स्टूडेंट थे, जिनका नाम है जागृत शुक्ला, जो कि सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल से थे, अनुराग गोस्वामी, जो कि सेंट जोसेफ, वो भी इसी स्कूल से थे, सेंट जोसेफ से, और फिर है मनीष कुमार, जो कि तथागत बुद्ध इंटर कॉलेज से थे। और उसके साथ साथ 15 स्टूडेंट को प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिला है।
1: लेकिन ये सेकंड रैंकर्स को क्या मिला, ये नहीं बताया
0: भाई। सेकंड रैंकर्स को भी बहुत सारी चीजें मिली, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सस्पेंस बनाए रखिए ना आप।
1: अच्छा,
0: हम चलते हैं हमारे 15 स्टूडेंट्स जिनको प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है उनके बारे में।
1: ओके, वाओ,
0: देखिए इनको भी कुछ कम नहीं मिला भाई, इनकी मेहनत के अकॉर्डिंग इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है। और बहुत सारे पुरस्कार में है 1000 रुपीज, जो कि एक वन टाइम पैसे हैं जो इनको पुरस्कार के रूप में मिले हैं।
1: क्या बात है, मतलब मिला सभी को
0: जी।
1: उनकी हिम्मत के लिए दिया गया, उनके हौसलों के लिए कि वो आए पार्टिसिपेट करें, और उनको पुरस्कार राशि दी गई। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार
0: जी। साथ ही साथ हमारे ये जो सेकंड रैंक वाले थे, जिसका सस्पेंस मैंने अभी आपको बना रखा था, इन लोगों को भी 1000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली है, जो कि प्रति माह उनको एक साल के लिए दी जाएगी।
1: ओ, एक साल तक 1000 रुपए की प्रति माह राशि, क्या बिल्कुल बात है।
0: और अभी इनकी लिस्ट यही खत्म नहीं होती। देखिए, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें विशिष्ट पुरस्कार भी दिया गया है,
1: स्पेशल
0: जी,
1: क्या,
0: जिनका
1: क्या
0: नाम है आराध्या पांडे, जिनका जो सेंट जोसेफ स्कूल से हैं, और साथ ही साथ अमन यादव, जो कि तथागत बुद्ध इंटर कॉलेज से हैं। इन दोनों को 1500 रुपए दिया गया है वन टाइम पेमेंट के रूप में।
1: क्या बात है, स्पेशल प्राइजेस मिलने वाले स्टूडेंट है भाई ये तो। आपने किस कैटेगरी के बारे में बताया
0: जी? ये कैटेगरी ए थी, और अब जल्दी से चलते हैं कैटेगरी
1: बी की तरफ,
0: जो कि जिसमें थे क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स। अब देखिए, फर्स्ट रैंक पे आई हमारी शिवी जायसवाल जी, जो कि CPM पब्लिक स्कूल से थी, और साथ ही साथ 2 बच्चे और इनके साथ थे, जो कि हैं प्रिंस मौर्य और शशांक भारती। ये तीनों ही बच्चे CPM पब्लिक स्कूल से थे,
1: और इनकी रैंक सेम थी
0: जी, बिल्कुल रैंक सेम। अब भाई, जब गोंडा जैसे जिले की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक ही इंसान फर्स्ट थोड़ा ना आएगा।
1: क्या बात है, बट मुझे लगता है इवेल्युएट किया है डायरेक्टर सर ने खुद, और वो भी इस वक्त मौजूद है।
2: थैंक यू सो मच आरजे अदनान एंड आरजे आयुषी। बहुत अच्छी

0: जानकारी दे रहे हैं आप इस प्रोग्राम के बारे में। ये बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग को इनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था, और जैसे कि आरजे आयुषी ने अभी विनर्स को अनाउंस किया, ग्रुप बी और ग्रुप ए के बारे में, ग्रुप बी के बारे में बात कर रही थी,
1: राइट सर,
0: तो प्लीज कंटिन्यू।
2: जी, ग्रुप बी जो कि हमारा, जिसे हम कैटेगरी बी भी कह रहे हैं, इसमें 5 विशिष्ट पुरस्कार वाले बच्चे भी थे, जिसमें से मैं अगर नाम बताऊं आपको तो विशाल मौर्य जो कि एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल से थे, साथ ही साथ अतुल कुमार, हिमांशु साहू, अंकित मौर्य और रवि मौर्य जो कि CPM पब्लिक स्कूल से थे जो कि वजीरगंज में पड़ता है, और इनको इनाम के रूप में 1500 रुपये मिले हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, मतलब इतनी सारी पुरस्कार राशि, ऐसा लग रहा है कि गोंडा का KBC चल रहा है।
3: अदनान सर, कहीं अफसोस नहीं हो रहा है कि काश आपने भी भाग ले लिया होता तो आज आपको भी कुछ मिल गया होता।
1: नहीं, अब आपके पीछे भंडारे में हम भी लगे थे ना उस दिन।
2: बस यही यही मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि काश मैंने भी ये कंपटीशन दे दिया होता तो शायद आज मेरा भी नाम आ जाता। क्या लगता है आपको, मेरा नाम आता कि नहीं?
1: नहीं, नाम तो नहीं आता, ये तो हम कॉन्फिडेंट है, जैसे हम अपने पे वैसे हम तुम्हारे पे भी है। लेकिन बात ये है कि इस एज में, इस क्लास में
2: जी,
1: जब शिक्षा कई बार पैसे की वजह से नहीं पूरी हो पाती है, उस दौर में एक एक साल के लिए स्कॉलरशिप देना पढ़ाई के लिए लिटरली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है आर एन सिन्हा फाउंडेशन का ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने वाला है। आयुषी,
0: तो
1: मैं बता दूं,
0: एक सवाल आपसे भी पूछने आ जाता हूं, आपको बहुत सारी नॉलेज है, रोज हम आपका
1: सर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं सर ब्रेक पे जा रहा हूं
0: इसमें जो बच्चों ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था वो बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है।
1: ओके,
0: कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है?
1: सर, रसोई गैस तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बड़ी मुश्किल से पाई जा रही है।
3: 78% पाई जाती
0: है। आरजे मनु बिल्कुल उस पे
1: नाइट्रोजन
0: है, नाइट्रोजन ही है,
1: नाइट्रोजन सही। अरे वाह, क्या बात है, अंधी पहली बार अच्छी मारा।
0: अच्छा, सबने गति और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन झटका, जर्क के बारे में भी सुना होगा, सुना है आपने? आरजे मनु आपने सुना है?
3: जी बिल्कुल सुना है सर।
0: आरजे आयुषी?
2: जी सुना है।
0: उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि गति का dx/dt जो गणित के बच्चे हैं, साइंस के, उन्होंने सुना होगा
1: जी,
0: और एक्सेलरेशन का d2x/dt स्क्वायर, तो जर्क मतलब झटके का क्या इक्वेशन होता है?
3: अब देखिए, हमको लगता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण परिवर्तन की दर को झटका कहते हैं। तुमने झटका क्या होता है ये बता दिया, फार्मूला आप निकाल लीजिए।
0: वाह, आरजे मनु को फर्स्ट प्राइज देना ही पड़ जाएगा लगता
1: क्या
0: है।
1: क्या बात है,
0: ये उम्र के हिसाब से ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, ये एक्सपायरी में अच्छा कर रहे हैं,
0: एक्सपायरी काफी अच्छा कर रहे हैं।
3: अरे भाई, पुरानी कश्ती को पाल लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया है, पुराना चावल बहुत मीठा होता है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, और आज ही हम पुलाव बनवाने जा रहे हैं।
0: अच्छा, तो एक लास्ट सवाल, इसके बाद अब और नहीं करेंगे, अब आरजे मनु इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको एक मौका और देते हैं।
1: आइए आइए, इस बार गए, इस बार आप गोइल।
0: DNA अणु की दोहराई जाने वाली संरचनात्मक इकाइयों में को क्या कहा जाता है?
1: क्या बात,
0: व्हाट आर द रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स यूनिट ऑफ DNA मॉलिक्यूल?
1: सॉरी, ऑप्शन है इसमें?
3: अगर ऑप्शन तो शायद RNA होना चाहिए।
0: नहीं, इसका सही आंसर है फैटी एसिड।
1: फैटी एसिड जो आप में बहुत ज्यादा है।
3: बिल्कुल नहीं है, सिरका बिल्कुल
0: नहीं है, ये तो सूखे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आरजे आयुषी, सॉरी आपके फ्लो को इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आप कंटिन्यू करो, और बच्चे भी आए हुए हैं जैसे, वो भी बहुत कीन हैं कुछ जाने के लिए।
1: बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे,
3: और भाई जितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है, USA से पेपर बन कर आया था, तो USA की कैपिटल क्या है बताएंगे कोई?
4: वाशिंगटन DC।
3: अब DC की फुल फॉर्म कौन बता सकता है?
0: हमें तो लगा गोंडा एरिया में जो खरगोपुर है वही।
3: अब बताइए, अमेरिका से हमारे सर आए हैं, अमेरिका का पेपर सॉल्व किया है, राजधानी का पूरा नाम बताइए, अमेरिका की कैपिटल का पूरा नाम,
1: जब जाएंगे वहां बता देंगे।
3: अच्छा ठीक,
1: डोंट वरी।
3: अभी अदनान सर बताने वाले हैं।
1: हाँ, अभी हम बताने वाले हैं कि भाई ये हमारे साथ में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने वाले हैं।
0: इनका कहने का मतलब है कि डीसी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दक्षिण कालीकट। वॉशिंगटन दक्षिण डीसी, वॉशिंगटन दक्षिण कालीकट।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द है, देसी राजधानी। करेक्ट, क्या बात
0: है। तो बच्चों को आगे
1: बिल्कुल हमारे साथ स्टूडेंट है आयुषी, चलते हैं स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले
2: मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कैटेगरी बी के एक रैंकर का, जिनका नाम है प्रिंस मौर्य। भाई इन्होंने रैंक फर्स्ट हासिल किया है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, नहीं नहीं सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। तो आपका
4: जी मैम धन्यवाद
2: जी। तो आपको कैसा लगा आपने फर्स्ट रैंक अचीव किया?
4: मुझे बहुत अच्छा लगा, सर का मार्गदर्शन से ये हो पाया है
2: जी। तो आपको डर लग रहा था?
4: नहीं, कोई डर नहीं था, सर ने सब कुछ बताया था कैसे क्या होगा, कैसे करना है, कितने समय में कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सब करने के लिए सर ने बताया था
2: जी।
4: उन्हीं के मार्गदर्शन से ये हुआ।
2: अच्छा, जैसे
1: हम तो थे भी नहीं वहाँ पे, हम तो बल्कि मिस कर रहे
2: हैं। सर ने आपको बताया था?
4: मिस्टर अरुण सर।
2: अरुण सर
1: की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरुण सर यहाँ मौजूद हैं और गार्जियन के रूप में वो यहाँ मौजूद हैं, और उनका सच में बड़ा मार्गदर्शन रहा बच्चों को आगे।
2: जैसा कि प्रिंस हम सब जानते हैं कि जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं तो कई लोग को होता है कि अरे भाई टीचर ही बनाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर बना ले, उसी में इंसान की हालत खराब रहती है। लेकिन जब ये पता चला कि अच्छा क्वेश्चन पेपर अमेरिका से बन के आ रहे हैं, तो आपका क्या हाल था? वो
4: नहीं मैम, पहले तो हमको पता ही नहीं था कि अमेरिका से बन के आ रहा है, जब हम लोग पेपर दे दिए तब बाद में
1: ये भेद खोला ही नहीं गया था।
2: मतलब हमला अचानक हाँ, हुआ था
4: हमला अचानक।
1: पहले नाम इनका राजकुमार था, लेकिन जब पता चला अमेरिका से आ रहा तो प्रिंस रख लिया तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया एकदम।
2: हाँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और तो आपको क्या लगता है कि ये करने में आपका सबसे मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज को करने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ?
1: इन्हीं का हाथ था, लिख रहे उसी से।
2: नहीं नहीं, इनको मोटिवेट करने के लिए।
4: हाँ मैम, वो सर का हाथ था और हमारे अंकल हैं, वो भी मार्गदर्शन करते हैं हमारा।
2: तो कह सकते हैं कि चीटिंग में सर और अंकल दोनों थे?
4: हाँ दोनों थे।
1: अरे जल्दी जल्दी में आप हाँ बोल गए, इन्होंने चीटिंग का नाम लिया।
2: अभी नर्वस है।
1: अभी भी कोई बात नहीं। प्रिंस कैसा था? कोई ऐसा सवाल जो आपको थोड़ा अजीब लगा हो प्रिंस की, लगाओ कि यार ये क्या पूछ रहा है?
4: नहीं वैसे तो कोई नहीं था, जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो जीके के प्रश्न से उतना वाकिफ नहीं रहते हैं।
1: अच्छा,
4: बस वही।
1: ओके
4: हाँ, और बाकी तो सब कुछ जो पढ़ाया गया था वही आया था।
1: अब इस पैसे का क्या करेंगे, अब ये जानना चाह रहे हैं?
4: हाँ ये भी अपने ही पढ़ाई में ही इस्तेमाल होगा।
1: पक्का ना?
4: हाँ।
1: और तो कहीं नहीं जाएगा?
4: नहीं और कहीं नहीं।
1: आइसक्रीम? आइसक्रीम
2: ऐसा नहीं होता है, स्टूडेंट्स को जब कोई इनाम मिलता है ना तो सबसे पहले उनके दोस्त आगे आते हैं कि भाई पार्टी, भाई पार्टी,
4: हाँ,
2: भाई
4: पार्टी, पार्टी, पार्टी। तो
2: दिए थे सबको उसी पैसे में, क्योंकि ऐसे ही राज निकलते हैं। तो कितने पैसे गए पार्टी में?
4: पार्टी में लगभग 1,000 रुपए।
2: अरे तो 500 बचे हो आपके पास?
4: नहीं 2,000।
2: अच्छा 2,000 मिले थे, ये तो
1: अभी 11 महीने का बच्चा हुआ ना।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, इंजॉय करें, इंजॉयमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत किया प्रिंस आपने, थैंक यू सो मच।
3: और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि पत्थर की चमक है, नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है।
4: जी धन्यवाद।
3: तो आपकी ये खून पसीने की चमक और निखरे, इसकी शुभकामनाएं रेडियो गणेश स्ट्रीट 9.6 FM परिवार आपको देता है।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रिंस, थैंक यू सो मच। ओके, एंड अब हम चलते हैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ और देखते हैं अगला पार्टिसिपेंट कौन है। भाई आपसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका?
5: सर मेरा नाम पलक शर्मा है।
1: पलक शर्मा है, ओके। पलक कैसा रहा एग्जाम आपका?
5: सर बहुत अच्छा रहा।
1: कैसे जाने हम बहुत अच्छा रहा?
5: सर मतलब कि आप परफॉर्मेंस से ही देख सकते हैं ना कि अच्छा रहा होगा।
1: अच्छा परफॉर्मेंस से हम देख सकते हैं?
5: यस सर।
1: आपकी बातों से भी तो हम देख सकते हैं।
5: यस सर।
1: ओके, क्या आपको डर नहीं लगा था?
5: सर लगा था।
1: गला आपका नहीं सूखा था? माउंटेन ड्यू पिया था?
5: अच्छा,
1: ऑलराइट। क्या किया था आपने?
5: सर मतलब कोई भी एग्जाम्स होते हैं जो कंपटीशन के, और फर्स्ट टाइम हम लोग कोई एग्जाम देने जाते हैं तो सबको डर लगता है, ये तो कॉमन है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये कॉमन ही है, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही हेजिटेशन होने लगता है।
1: ओके पलक, आपका क्या मानना है, जैसे रूटीन के एग्जाम्स होते हैं आपके स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन आप अलग से जैसे इसमें आपने अटेम्प्ट किया और आपने अचीवमेंट भी हासिल की, जो इस वक्त आपको स्टूडेंट हजारों लोग इस वक्त सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो पर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
5: सब मतलब फर्स्ट मैं अपने आप को मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं सबसे पहले खुद को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद मतलब जो इसमें मार्गदर्शन जो अच्छा दे रहे हैं वो मेरे टीचर्स हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर हमें स्कूल ना भेजते तो हम इतना अच्छा, मतलब भले ही टीचर्स अपना वो दे रहे हैं 100% ना, पर अगर बच्चे

0: स्कूल नहीं आ रहा है तो उसे कैसे मतलब इतना अच्छा वो मिल पाएगा।
1: करेक्ट।
0: तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को, उसके जस्ट तत्पश्चात मैं अपने स्कूल के टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी। मतलब हमारे इस मतलब डेवलपमेंट और इस हमारे सक्सेस में उनका सर्वप्रथम सबसे ज्यादा हाथ रहा है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात कही आपने, और सबसे पहले खुद को थैंक्स बोला, मुझे ये अच्छा लगा।
0: यस,
1: आप सबसे पहली यूनिट अपने लिए खुद है आप।
0: यस,
1: उसके बाद कोई है।
0: कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ही मतलब थैंक्स बहुत ही बोलती हूँ, क्योंकि
1: क्या
0: मुझे
1: बात?
0: मैं अकेले में जब बैठती हूँ तो मुझे अपने आप बहुत अच्छा लगता।
1: सुबह से अभी तक कितना थैंक्स बोला आप?
0: बहुत, मतलब यहाँ आते आते टाइम मैंने मन में बहुत बार बोल।
1: अरे आप आते आते हम नाश्ते में थैंक्स बोल के खाते हैं।
0: अरे वो तो नाश्ते के लिए
1: घी लगा के खाते हैं उस पे हम।
0: नो सर।
1: हाँ नहीं, लिटरली मतलब खुद को थैंक्स बोलना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। भला क्या करना चाहती है लाइफ में आप आगे?
0: सबसे पहले तो मतलब सक्सेस होना हर एक स्टूडेंट्स का काम होता है।
1: काम होता है,
0: होता है मतलब वो
1: काम तो झाड़ू वाला घर वाले लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
0: नहीं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, तो कुछ अच्छा मतलब हमें ड्रीम मेरा एक है जो कि यूपीएससी में आईएएस, तो मैं उसके लिए कुछ भी करना चाहूंगी, मतलब लेकिन कुछ ऐसा ही जो डिसिप्लिन के बाहर हो, डिसिप्लिन के अंडर में रह के ही मैं कुछ करना चाहूंगी अपनी लाइफ में।
1: ओके, बनने से पहले एक अलग विजन होता है, बनने के बाद कई बार देखते हैं लोग बदल जाते हैं, आपका क्या मानना?
0: नहीं, पर मेरा ऐसा बिल्कुल थिंकिंग नहीं है कि मैं बनने के बाद बदल जाऊंगी। मैं ऐसा अपने माइंड पे ऐसा फोकस करती हूँ कि और मैं ऐसा कभी ना हूँ, जिस तरह मेरा अभी वो है मतलब मनोभाव, वैसे ही मेरा आगे भी रहे।
1: क्या करेंगी बन करके आप?
0: मैं सबसे पहले अपने देश में जो कुरीतियाँ चल रही हैं उन पे एक्शन लूंगी।
1: ओके, एक सीधा सा सवाल, अगर बाय चांस पलक By chance, नहीं बन पाती है, भगवान ना करे, तो क्या वो जिस जगह जिस पोजीशन पे रहेंगी ईमानदारी से निभाते हुए भी देश सेवा करेंगी?
0: यस सर।
1: या सिर्फ रिग्रेट फील करेंगी कि मैं कर नहीं पाई?
0: नहीं नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये इसका दुख होगा कि मतलब मैं नहीं कर पाई, पर मैं अभी अपने मतलब अपने कंट्री के लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगी। मैं हमेशा एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाऊंगी।
1: Wow, that's very great. क्या बात है, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे हमारे युवाओं को। और मुझे लगता है कि आपकी तरह बाकी लोगों को भी अपने स्कूल कॉलेजेस से निकल करके बाकी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आए हैं रेडियो पे आप, कैसा लग रहा है?
0: सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हूँ, उतना मुझे नॉलेज नहीं था।
1: अच्छा,
0: पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: क्या बात है, थोड़ा हंसी अच्छे से। आज लाफिंग डे है भाई, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आज हास्य दिवस है, लिटरली है, मजाक की बात नहीं कर रहा है। आज संडे स्पेशली
0: सुबह से हंस रही
1: हूं, इसीलिए बाकी लोग नर्वस हो गए, सारा सबकी संती तो आप नहीं हंस लिया। चलिए बहुत अच्छी लग गया, थैंक यू सो मच पलक, बहुत बढ़िया आपसे बात करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, क्या नाम है आपका?
2: देव सिंह।
1: देव सिंह, कैसे हैं आप? ओके,
2: मस्त सर,
1: मस्त। हाँ भैया, आप तो ब्लैक चश्मा लगा के आए थे, आप तो वैसे भी मस्त हैं।
3: आप कुछ ले लीजिए इनसे ना
1: चश्मा।
3: नहीं, क्योंकि उनका नाम है देव सिंह, मतलब देते रहते हैं।
1: देव तो कैसा रहा?
3: कुछ लीजिए आप पहले।
1: ओके देव, आपने कैसा परफॉर्म किया, कैसा रहा आपका?
2: सर बहुत अच्छा था, मैंने कई कंपटीशन में बैठा था बट मुझे उसमें सफलता नहीं मिला, बट ये मेरा कंपटीशन में मुझे सफलता मिली।
1: ओके
2: बट मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपटीशन में, ये कंपटीशन में मैं सम्मिलित भी नहीं होता, बट मेरे डायरेक्टर सर मिस्टर अरुण सर मुझे फोन किए, बोले बेटा फॉर्म अभी टाइम बचा है, क्या फॉर्म आपका भर दें? तो उसमें मेरे फ्रेंड दीपक भाई मेरे बगल में खड़े हैं।
1: अच्छा।
2: उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया। हाँ। फिर मैं कंपटीशन में सम्मिलित हुआ, पेपर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: तो मतलब बाकी लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज सर फॉर्म भर दे आप, सर ये तो बॉस हो जाएगा।
2: हाँ। नहीं, मेरा फ्रेंड मुझे अगर कोई बात रहता तो मुझे जरूर इन्फॉर्मेशन देता।
1: तो आप सोते जानबूझ के हो कि फ्रेंड ही बताएगा, खुद से नहीं करेंगे?
2: ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सर के पास लगभग कोचिंग पढ़ता, तो उस टाइम था
1: वो लगभग कोचिंग पढ़ते, मतलब पूरी नहीं
2: पढ़ते, मतलब पढ़ते हैं, मतलब तो वहां पे थे तो उनको सर ने इन्फॉर्मेशन दिया था।
1: ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। तो आपको अटेम्प्ट करने के बाद अब कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा लगा,
1: मतलब मजाक से हटके, कि कभी जैसे अक्सर बच्चे होते हैं थोड़ा भागते हैं कि यार कंपटीशन कौन देगा, पढ़ाई लिखाई में फिर वह।
2: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कंपटीशन में सम्मिलित होने से।
1: बहुत बढ़िया, क्वेश्चन क्या था जो आपको अलग से लगा था?
2: देखिए मैं मेरा ज्यादा से ज्यादा मन पॉलिटिक्स में लगता है।
1: अच्छा।
2: तो उसमें पॉलिटिक्स के लगभग 3 क्वेश्चन थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
1: उसी 3 क्वेश्चन के सहारे आपने रैंक हासिल कर लिया?
2: रैंक नहीं, मतलब मैंने जो मैं अपने लाइफ में करना चाहता हूँ वो चीज मैंने क्वेश्चन देखा जब उस एग्जाम पेपर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है, क्या था कुछ बता सकते हैं उसके बारे में?
2: मतलब हमारे मतलब यूपी में मतलब कितने मेंबर ऑफ विधानसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, और
1: अच्छा।
2: कितने गोंडा में परिषद थे, इतने 3 क्वेश्चन थे।
1: MLAs, MPs कितने yes. हैं, और गोंडा में विधानसभा सीटें कितनी
2: जी?
1: है, कितनी है सीटें विधानसभा
2: गोंडा में?
1: हाँ।
2: गोंडा में 7 विधानसभा सीट है।
1: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और
2: आपको सातों का नाम भी बता सकते हैं?
1: नहीं, उसका नाम, हमें डीएम का नाम चाहिए।

0: का हमारे यहाँ इस समय ये क्या नाम है, प्रियंका निरंजन जी थी,
1: बिल्कुल थी नहीं अभी हैं,
0: यस
1: और अभी कमिश्नर हमारा जस्ट चेंज हुए हैं
0: जी,
1: अभी नई कमिश्नर कौन आई हैं
0: ये तो भी मैंने नहीं,
1: कोई बात नहीं, अभी हमारे ख्याल से डेढ़ दो हफ्ता ही हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल नई कमिश्नर आई है, सीडीओ उनका भी विदाई समारोह हो गया है, तीन तीन आईएएस ऑफिसर गोंडा में, तो एक दुर्गा शक्ति का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था गोंडा, अभी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, बट स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि पॉलिटिक्स बेहतर हो, पढ़ लिख कर पॉलिटिक्स में आना बहुत अच्छी बात है,
0: yes, sir.
1: बहुत बढ़िया, चलिए हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो आप पॉलिटिशियंस बनने वाले हैं,
0: यस सर,
1: ओके, तो पक्का विकास होगा ना,
0: बिल्कुल
1: आपका या लोगों का,
0: लोगों का होगा, पहले लोगों का होगा,
1: पहले लोगों का होगा, सेकंड वाले टर्न में आपका होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारे युवा हैं और जैसा कि इन्होंने नाम बताया देव, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, अच्छी बात है, हम आपके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, थैंक यू सो मच देव, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड चलते अपने नेक्स्ट पार्टनर की तरफ, आपका नाम क्या है
2: सर? दिव्यांशी मौर्य
3: जी, दिव्यांशी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने, जैसे मेरा क्या होता है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है और पहला ही क्वेश्चन नहीं आता है तो वहीं तो आधे से ज़्यादा इंसान वहीं फेल हो जाता है, क्या आपके साथ ये सिचुएशन हुई थी?
2: हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ, अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस पेपर को देख के, इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने, मुझे पता ही नहीं था, जब पेपर देने आना था तब सर ने बोला कि तुम्हारा फॉर्म भर गया है,
3: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत ज़्यादा, यस सर, यस मैम, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेजिटेशन फील हुआ बहुत ज़्यादा।
3: अच्छा तो वो कैसे आप निकले, दूसरे क्वेश्चन में राम बचाए कि नहीं बचाए?
2: बचा
3: अच्छा मुझे लगा कि नहीं, फरवरी में पसीना निकल गया होगा, निकला था?
2: नो नो
3: बिल्कुल नहीं, पेपर इजी था मतलब,
2: हाँ, एक मतलब बहुत... हमारे लेवल का था,
3: आपके लेवल का था मतलब...
1: आपके लेवल की एक चीज हम भी पूछ रहे हैं, अभी गर्मियों में बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, सो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
2: सर इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है,
1: अच्छा
4: नहाने
1: नहीं है।
4: चाहिए बताओ
2: नहाने से गर्मी
3: जी,
1: नहाने से गर्मी नहीं जाती है
2: सर, फिर
1: नहाने से खर्चा जाता है
2: सर।
1: मतलब हमारी बॉडी जो है वो सूखती है, पानी की कमी होती है, तो गर्मियों में हमको क्या करना चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए?
2: सर ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज पानी में घोल के पीना चाहिए, थोड़ा उससे भी फील अच्छा होता है, मतलब अच्छा लगता है।
1: बढ़िया बढ़िया बड़ी अच्छी बात है, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पी सकते हैं, yes, आप ये बता सकते हैं, आप पी रहे हैं पानी कि नहीं?
2: सर पीते हैं।
1: सुबह से कितने लीटर पिया आपने?
2: सुबह से टाइम ही नहीं मिला, यहाँ पर आए तो
1: सुबह से टाइम ही नहीं मिला,
2: टाइम मिला घर पे पिए थे, मतलब
1: घर पे नल लगा था, यहाँ लगा कि नहीं?
2: यहाँ लगा पर थोड़ा पता नहीं है इंट्रोडक्शन, मतलब यहाँ का कुछ पता नहीं,
1: नल से इंट्रोडक्शन पहले देंगे कि सुनिए सर हम यहाँ पे,
2: सर नल कहाँ लगा ये तो,
1: अच्छा ये
2: पता
1: नहीं,
2: नहीं पता।
1: कोई बात नहीं, आरजे मनु अभी आपको नल पे ले जाएंगे, क्योंकि एवरी टाइम पानी पिया करते हैं, हमारे यहाँ का वाटर लेवल नीचे चला गया इनके चक्कर में। खैर आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा था?
2: सर सभी क्वेश्चन फिलहाल बेहतरीन ही थे,
1: बहुत बेहतरीन थे। अगर पूछा जाता कि आपसे आपकी अपनी कोई दो कमियां बताइए तो आप क्या बताते?
2: सर पहली कमी तो मेरी ये है कि मतलब दो चार लोगों के बीच में जब मैं बोलती हूँ तो डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट फील होती है, और दूसरी मतलब जब कभी मान लो स्टेज पे जाना हो तो मतलब पैर बहुत ज़्यादा हिलता रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इससे,
1: बहुत तो ज़्यादा पेंच ढीले होते हैं पैर के, उसमें वैसे से हिला करते हैं,
2: ये हमें पीछा करने मतलब पीछे करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स करता है कि पीछे जाओ पीछे जाओ, लेकिन मतलब इसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए,
1: पैर से आगे निकल जाना ओके
3: चलिए आप आगे चल के क्या बनना चाहती हैं?
2: डॉक्टर।
3: डॉक्टर, चलिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो डॉक्टर बनने को से एक सवाल है, एक मेरा मेरी एक समस्या है उसका हल बता दीजिए, जैसे जब मैं आगे चलती हूँ या कहीं मैं चलती हूँ तो मेरे पैर हिलते हैं, और जब मैं बोलती हूँ तो मेरे होंठ हिलते हैं, तो ये कौन सी समस्या है?
2: ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है
4: और ये पागलपन का पहला लक्षण है।
2: हाँ
4: मतलब आप समझ लीजिए,
3: अच्छा इमेजिन करिए दिव्यांशी, अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है उसे आपने इंजेक्शन लगाना है आपने, और कहीं उस बच्चे ने गुस्से में वो इंजेक्शन आपको लगा दिया तो आपका रिएक्शन क्या होगा?
2: मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, मतलब
1: ऐसा लग रहा है कि आप फिर छोड़ेंगे नहीं
2: नहीं मतलब बहुत ज्यादा मतलब अलग ही होगा, हम उसको लगाना चाहते हैं उस मतलब उसने मुझको लगा दिया, प्रॉब्लम तो होगी ना,
3: रणभूमि में डॉक्टर वर्सेस पेशेंट होगा, आपको आप कैसा कहना चाहते हैं? तो युद्ध होगा पक्का
2: जी? नहीं मतलब
1: युद्ध नहीं होगा, कॉटन लगा के पहले सहलाएंगी
4: उसने सुई लगाई।

0: क्या बात है, सीपीएम का फुल फॉर्म बता दिया हमको,
1: चौधरी प्रसाद मौर्य।
0: चौधरी प्रसाद मौर्य, ओके। सो शशांक कैसे हैं, आपका हालचाल बताइए।
1: सर हम बहुत अच्छे हैं, आप भी बता दीजिए।
0: अभी तक जितनी हम शरारत कर रहे हैं, क्या लगता है हम कैसे होंगे?
1: एकदम जोकर की तरह।
0: जोकर की तरह तो हो सकता है, क्योंकि आरजे का काम होता है हंसाना।
1: यस सर,
0: दैट्स वेरी गुड। पुराना चश्मा मेरा ऐसा ही था, तो अब हम पुराने, कुछ पुराने बदले आपसे लेने वाले। खैर
1: सर, तो पुराना चश्मा लगा के आइए।
0: पुराने बदले के लिए, नए चश्मे से पुराना बदला ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, सो कैसा रहा आपका ये पूरा कॉम्पिटिशन?
1: सर बहुत अच्छा हुआ, और उसमें बहुत मजा भी आया।
0: ज्यादा मजा साइंस में आया या जीएस में आया?
1: मजा दोनों क्वेश्चन देख के आया।
0: दोनों क्वेश्चन सिर्फ देख के आया?
1: सर करने में भी मजा आया।
2: नहीं नहीं, आंसर देते वक्त तो हालत खराब होती है ना, देखने में तो मजा ही आ रहा होता है।
1: नहीं, जितना हालत खराब पेपर देने में नहीं, उतना यहाँ आ रहा है।
0: ईमानदारी से बताइए, मन ही मन में तो नहीं चला था पैसा ही पैसा होगा अगर क्रैक कर लिया तो, ऐसा कुछ
1: नहीं? सोच तो ये रहते कि फर्स्ट पे आएंगे, पर अभी आ नहीं पाए। इसके पहले भी जो एक पेपर हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें कुछ नहीं पाए थे,
0: उसमें कुछ नहीं
1: पर
0: पाए।
1: इस बार थोड़ा ज्यादा प्रयास था पाने के लिए।
0: तो जब कुछ नहीं पाते हैं तो क्या पाते हैं?
1: कुछ नहीं पाते हैं तो कुछ नहीं पाते हैं,
0: एक्सपीरियंस पाते हैं। आप जब भी अटेम्प्ट करते हैं कोई चीज, तो आप उसका तरीका पाते हैं कि इस तरीके से नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम ये तरीका अप्रोच नहीं होगा मेरा। जैसे बिन पढ़े अगर आपने एग्जाम दिया और फेल हो गए, आपके लिए ये नहीं कि आप फेल हो गए, अब ये है कि ये तरीका मेरा गलत था इसलिए मैं फेल हो गया। नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को दोबारा
1: नहीं दोहराएंगे।
0: अपने बारे में कोई बढ़िया सी एकदम इंटरेस्टिंग बात बताइए, जिसके जैसे आप बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमको लग बहुत इंटरेस्टिंग रहे, हमारी निगाह पहले ही सगड़ गई है आपको। ऐसी कौन सी बात है जो आपको शशांक को अलग बनाती है?
1: सर अक्सर स्कूल में काफी सारे कंपटीशन आते रहते हैं, हाँ। तो मेरा मन यही होता है कि मैं सब में भाग लूं, हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
0: सब में भाग लूं या सबसे भाग लूं?
1: नहीं, सब में भाग लेना चाहता
0: हूं। अच्छा, सब में भाग लेना चाहते हैं आप, तो मतलब लगभग सारे कॉम्पिटिशन आप अटेम्प्ट करते हैं।
1: यस।
0: ओके, आपको क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में?
1: यूपीएससी
0: करना है। क्या करेंगे उसके बाद?
1: उसके बाद सिलेक्शन होगा तो उससे आगे करेंगे।
0: उससे आगे करेंगे क्या करेंगे? मतलब आप प्रशासनिक सेवा में आने के बाद क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है?
1: पहले तो अपने जिले में जितने सारे गंदगी उसको हटाएंगे।
0: तो झाड़ू से हटाया जा सकता है, उसमें क्या है?
1: हर चीज झाड़ू से नहीं हटाया जा सकता है।
0: पहली चीज तो आपको आपके जिले में दी ही नहीं जाएगी पोस्टिंग, यूपीएससी का नियम है।
1: तो दूसरे जिले में जाएंगे तो वहां की गंदगी को हटाएंगे।
0: कुल मिलाकर के गंदगी हटाना, तो मुझे लगता है स्वच्छता अभियान से जुड़ना चाहिए।
1: बहुत सारी गंदगियां हैं जिलों में।
0: अच्छा, मतलब आपका कटाक्ष जो है वो सिस्टम पर है, जो करप्शन है उसको लेकर के आपने बोला, जो ये ना इंसाफियां हैं उसको लेकर के, या जो ऐसा वर्ग है जो परेशान है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों को लेकर के आप बोल रहे हैं?
1: यस सर।
0: चलिए बहुत बढ़िया, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, क्या करें? मतलब पढ़ाई के लिए जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो क्या करें?
1: वो भी सारे कंपटीशन में भाग ले, भाग ना ले, मतलब कि भाग ले।
0: भाग ना ले मतलब भाग ले, मतलब आपके कहने का मतलब पार्टिसिपेट करें,
1: और उसको ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करें।
0: फेवरेट गेम कौन सा आपका?
1: फेवरेट गेम वैसे तो बतियाना
0: है। अच्छा, हमें लगा बतियाना है। बतियाना भी हम लोग आरजेस का काम होता है, इसकी बाकायदा सैलरी मिलती है। चलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप भी प्रशासनिक सेवा में आए, और मजाक से हटकर कि आप भी देश सेवा करें, जो बेहतर है। जो चीज़ें आपने फेस की हैं कभी अपनी लाइफ में, स्ट्रगल आपके माता पिता ने कभी फेस की हो सिस्टम में, उन कमियों को आप दूर करने के लिए लगे रहें, ये हम जरूर चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
1: सर एक क्वेश्चन मेरा था
0: जी,
1: अगली बार हम लोगों ने पेपर दिया था आर.एन. सिन्हा फाउंडेशन,
0: पिछली बार अभी तो हम अगले साल पता नहीं रहे ना रहे, हाँ।
1: पिछली बार मैंने पेपर दिया था, तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी था दोनों का पेपर एक ही दे दिया गया था। अच्छा। तो जिससे जो हमारे बड़े भैया लोग थे और दीदी लोग थी, इन लोगों ने ही उसमें क्वालिफाई किया,
0: हाँ।
1: और उसमें हम लोग का नहीं आया,
0: हाँ।
1: तो ये कमियां बहुत थी उसमें।
0: नहीं, कमियां नहीं थी, ये था कि देखा जाए तो बड़े हो गए हैं या सच में मतलब बुद्धि का विकास हुआ है कि नहीं, इसलिए सेम दिया।
1: मैं घर से यही सोच के निकला था कि पहला

0: क्वेश्चन मैं यही करूंगा हाँ। पर भूल गया तो लास्ट में आ गया
1: लास्ट में आ गया। अच्छा वो याद आ गया क्योंकि आप हटने वाले थे। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ।
2: जी अपना नाम बताइए।
3: जीविका मौर्य।
2: जीविका जी, जीविका का मतलब क्या होता है आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी।
3: जीविका का मतलब रोजी रोटी इकट्ठा करना।
2: अच्छा तो आप अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करना चाहेंगी?
3: मैं तो रोजी रोटी के लिए मुझे डॉक्टर बनना है।
2: अच्छा अच्छा
3: तो
2: आपने जब ये कंपटीशन दिया तो आपको क्या लगा कि मतलब जैसे बाहर के लोग भी इसमें आए थे, काफ़ी हाँ। बड़े बड़े लोग भी आए थे, आपको क्या लगा कि मतलब जैसे कभी कभी होते नहीं कि हमारे सामने जब कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है या कोई बड़ा इंसान होता है जो बहुत अच्छा कर रहा होता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, अरे कि कहीं ये क्वेश्चन ना पूछ ले, और आप तो क्वेश्चन देने ही गई थी।
3: मुझे उस टाइम मतलब उस टाइम पे मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लगा था
2: जी,
3: क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पेपर देना, सुबह मुझे पता चला कि आप पेपर देने जाना।
2: अच्छा मुझे लग रहा है ज़्यादातर बच्चों को सरप्राइज मिला हाँ, यहाँ पे
3: पता ही नहीं था कि फॉर्म भरा है, तो सुबह पता चला कि हाँ
1: पता नहीं था फॉर्म भरा।
3: मतलब ऐसा हुआ कि मैम जो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, तो मेरा भाई वो शशांक मौर्य है ना, तो उसने
1: अच्छा,
3: अपने साथ मेरा भी फॉर्म भर दिया था, तो मुझे पता नहीं था कि
1: प्रशासनिक सेवा वाले भाई साहब। अच्छा अच्छा जान के जान।
3: तो मुझे पता नहीं, वैसे वहाँ गए तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पेपर भी दिया, पेपर काफी अच्छा था, बट थोड़ा डर तो बहुत ज्यादा था कि पहले बार आए हैं।
2: अच्छा अभी आपने कहा कि आप डॉक्टर बनेंगी तो आप क्या सोच के डॉक्टर, मतलब क्यों आपके दिमाग में आया कि इतने सारे प्रोफेशन के बीच मुझे डॉक्टर ही चुनना चाहिए?
3: डॉक्टर मुझे बचपन से ही पसंद है।
2: डॉक्टर कौन डॉक्टर पसंद है आपको?
3: कौन डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बनना मुझे पसंद है,
2: डॉक्टर
3: लोगों की मतलब मदद करना। ज्यादातर मैंने देखा कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ लोग ऐसे रहते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने पे भी लोगों को नहीं बचाते, तो मुझे ये डर लगता है कि मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बचा पाऊँ।
2: अच्छा और अगर आप नहीं बचा पाई, बाय चांस कि किसी की डेथ रास्ते में हो गई या सर्जरी के दौरान होगी, तो आपका क्या उस वक्त फीलिंग होगी?
3: फीलिंग तो बहुत बेकार होगी।
2: और उससे डील कैसे करेंगे आप?
3: डील अब जैसे सिचुएशन होगा उसी के हिसाब से तो मुझे भी रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जैसे सिचुएशन, अब किसी को कुछ हो जाता तो उसमें दुख तो होता ही है
2: जी,
3: मुझे
2: अच्छा,
3: भी बहुत होगा।
2: ये मैंने सुना है और ये मेरे अंदर भी है कि ज्यादातर लड़कियों को चीर फाड़ से बहुत डर लगता है, हाँ, खून से बहुत डर लगता है, तो आपको भी लगता है?
3: हाँ मुझे खून से तो वैसे भी बहुत डर।
2: तो फिर आप डॉक्टर कैसे बनेंगी?
3: अब बनना है तो कोशिश तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, खून है,
1: खून में रंग मिला देंगे, दूसरे कलर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
4: उनकी बात सुनकर मुझे एक बात याद आ गई कि एक डॉक्टर था तो पहला ऑपरेशन था तो उन्होंने फूलों की माला मंगाई, तो मरीज ने पूछा ये माला किस लिए, तो डॉक्टर ने बताया ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे लिए और अगर असफल हो गया
1: तो आपके लिए। बहुत बढ़िया। वैसे एक सवाल है जो आपसे हम बहुत कॉमन सी बात है और भी स्टूडेंट से हम जानना चाहेंगे, अगर आप रोड पे जाते और अचानक आपके सामने एक्सीडेंट होता है, कौन सा ऐसा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल करके हेल्प लेंगे मेडिकली?
3: मेडिकल के लिए?
1: मेडिकल के लिए
3: 108
1: किसका नंबर है?
3: ये एम्बुलेंस का।
1: गुड। और एक यूनिवर्सल मतलब नेशनली चलता है एक नंबर एम्बुलेंस का, उसका नंबर बताइए।
3: उसका नंबर तो फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है।
1: 102
3: 102
1: ओके। और अगर बाई चांस आप जा रहे हैं रास्ते में और कोई ऐसा है, ऐसी कोई हरकत कर रहा है जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो उस सिचुएशन में अगर पुलिस को बुलाना है तो कौन से नंबर पे आप डायल करेंगे?
3: 112
1: गुड, वेरी गुड। आग लग गई बाई चांस, मतलब सारी हम घटनाओं से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको पता होने चाहिए नंबर।
3: यस सर।
1: तो फायर का नंबर कौन सा है?
3: फायर
1: कौन बता सकता है फायर का नंबर, किसी को पता है? अगर आग लग जाए तो नहीं, गूगल पे सर्च करके वहां गूगल सर्च करोगे जब आग लगेगी?
3: नहीं ऐसा नहीं है।
1: आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टोल फ्री नंबर्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। खैर हम चाहेंगे कि इन नंबर्स के बारे में आप सभी स्टूडेंट, मैं सभी से कह रहा हूँ, 101 है राइट, सो इन सभी नंबर से आप लोग मुखातिब रहिए, वाबस्ता रहिए, जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इमरजेंसी नंबर्स है ये, याद होनी चाहिए एकदम रटे हुए। मम्मी रात में दो थप्पड़ मारे, हाँ 101 मतलब निकलना चाहिए मुंह से, इतना ज्यादा याद होना चाहिए। एंड आपके उज्जवल भविष्य की कामना आप करते हैं कि आप जरूर डॉक्टर बनिए। थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, क्या नाम है आपका?
5: माय नेम इज दीपक सावंत।
1: दीपक कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं आप मस्त हैं, स्माइल बता रही है आपकी। कैसा था एग्जाम आपका?
5: एग्जाम बहुत अच्छा था, उसमें एक क्वेश्चन था
1: हाँ।
5: क्वेश्चन था जो हमने एसएसटी से था।
1: अच्छा,
5: उसमें पता नहीं कैसा कुछ ऑप्शन नहीं पता चल रहा है।
1: हाँ,
5: तो हमने वहाँ उसमें लगाया था जो आंसर, वो हम जब घर पे जाके मिलाए तो हमारे समझ में नहीं, पता नहीं क्या आंसर था। तुम जब हम जब उसको देखे गूगल पे,
1: हाँ,
5: तो आंसर गलत था। फिर हमने देखा तो हमने कहा ये क्वेश्चन हमें आता था,
1: हाँ,
5: तो ये गलत करके चले,
1: गलत करके चले। कैसा लगा ऐसा?
5: अच्छा लगा।
1: अच्छा लगा।
5: आगे चल के अगर ऐसा अच्छा करेंगे तो अपने लाइन में सेटल नहीं हो पाएंगे अगर इस तरह।
1: ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती है। आपको रियलाइज़ अगर हो रहा है, यानी आपको फील हुआ गलत हुआ, ये अच्छी बात है। ये होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप क्या करना चाहते हैं आगे?
5: हम डॉक्टर बनना,
1: डॉक्टर बनना चाहते हैं। इंसानों के डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, जानवर के डॉक्टर भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा।
5: तो इंसान के डॉक्टर बनेंगे।
1: इंसान के डॉक्टर बनेंगे तो मतलब दवाइयाँ देना चाहते हैं BUMS करके या MBBS करके?
5: सर्जरी भैया हैं, MBBS चार्जर लड़के दोनों लोग।
1: अच्छा अच्छा, तो घर में तो पहले ही दो डॉक्टर्स हैं, फिर तीसरे क्या ज़रूरत है?
5: जरूरत
1: अच्छा जरूरत
5: है।
1: अच्छा अच्छा ज़रूरत है तो ओके, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको रुचि किन कामों में है? क्या कोई आपकी भी हॉबी है? क्या हॉबी है आपकी?
5: हमें डॉक्टर बनना है, न्यूरो डॉक्टर बनना है, जो हड्डी वड्डी में दिक्कत नहीं होता।
1: हाँ, अच्छा आप ऑर्थो में जाना चाहते हैं, हड्डियों के डॉक्टर? नहीं, मैं आपके इंटरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। हॉबी में कोई चीज़ पसंद, कोई गेम वगैरह है या घर में कुछ? गेम में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर किन चीज़ों में है आप? सिर्फ पढ़ाई है या पढ़ाई के अलावा भी कुछ होता है? मूवी वगैरह देखना, घूमना टहलना, शाम देखना, सुबह देखना, गाना गाना, गाना सुनना, बकवास करना, चाय पीना, छत पे टहलना, डायरी लिखना, किताब पढ़ना?
5: किताब।
1: अच्छा, चलिए बहुत कुछ है, खैर बहुत शौक है। एंड अच्छी बात ये कि अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर है तो ज़रूर रहिए। देखिए ज़िंदगी में कई सारे आयाम होते हैं, तो आपका पढ़ना भी ज़रूरी है, इवन आपका खेलना भी ज़रूरी है। जितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी उतनी ही प्रायोरिटी के साथ ज़रूरी है। एंड हम दुआ करते हैं कि आप ज़रूर डॉक्टर बनिए, एक अच्छे डॉक्टर बनिए। और ये स्माइल से अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो मुझे लगता है कि अलग से बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं ऑफकोर्स आने वाले और भी स्टूडेंट्स का है हमारे साथ में मौजूद हैं, और हमारे साथ एक फैकल्टी मेंबर भी हैं और जिनको इंट्रोड्यूस कराने वाली हैं आयुषी। आयुषी बताइए जिन लोगों का स्पेशल सहयोग है, लेकिन उससे पहले हम ये एक और स्टूडेंट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है?
6: सर सत्यम पांडे।
1: सत्यम पांडे, कैसे हैं आप सत्यम?
6: सर बढ़िया।
1: बहुत बढ़िया। कैसा हुआ था आपका एग्ज़ाम?
6: सर एग्ज़ाम अच्छा था और हमें पेपर देने भी अच्छा लगा, लेकिन एग्जाम अच्छा था, बस इतना कि नर्वस बहुत थे उसमें।
1: नर्वस बहुत,
6: क्योंकि जैसे जब कोई बड़ा अधिकारी आके बगल में खड़ा हो तो ये दिक्कत रहता है कि अब हम नहीं लिखेंगे, मतलब हाथ अपने आप रुक जाता है,
1: रुक जाता है,
6: कोई बगल में खड़ा हो जाए तो।
1: सो बहुत अच्छी बात कही सत्यम, ये हमारे साथ भी ये चीज़ हमने फेस की थी। ये कैसे ख़त्म हो सकता है?
6: सर हमें ज़्यादातर हमें कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपनी पोजीशन का पता चलता है। जैसे बहुत पढ़ लिया, उन्होंने बहुत पढ़ लिया, हमें लगता है कि अब हम ही हैं सबसे आगे, पर जब हम किसी कंपटीशन में उतरते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ हमारी कुछ बच्चों के बीच में हमारी क्या कीमत है, हम कितने पोजीशन पर हैं। तो हमें कंपटीटिव एग्जाम देने चाहिए और उससे हमारी पोजीशन हमें पता चलती है।
1: ये बहुत प्यारी बात कही कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप करिए करिए और सिर्फ करिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी है, और जिंदगी में आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे अगर इस नियम पे चलेंगे कि करो, डू,
6: प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
1: राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। आप क्या बनना चाहते हैं?
6: सर डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर।
1: डॉक्टर किसके?
6: सर ह्यूमन।
1: अच्छा, जानवरों के डॉक्टर बनना आपको लगता है जरूरी है कि नहीं? समाज को जरूरत है कि नहीं?
6: बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आजकल देखो अगर 100 पीपल हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं 100, तो उसमें केवल 1-2% होंगे जो जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। सब इंसान के पीछे पागल, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। और देखिए जानवरों की भी जरूरत है, जानवर भी बीमार पड़ते हैं, वो कह नहीं पाते कि हमें ये दिक्कत है, हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये वो ख़राब है, पर उनका डॉक्टर कोई बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता, ये तो है उनकी।
1: ये तो आपसे पूछ सकते हैं ना, अभी आपने भी तो वही कहा, आप नहीं बनना चाहते।
6: हाँ बिल्कुल,
1: क्यों नहीं बनना चाहते?
6: अब देखिए हम ह्यूमन के डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, उसमें उनकी मदद करेंगे। अब जानवर के बारे में होता इंटरेस्ट नहीं है बचपन से ही।
1: हमें लगा आप ये ना बोले कि अब तो इंसान और जानवर में फ़र्क ही क्या है। खैर जोक्स अपार्ट, तो बहुत अच्छी बात है सत्यम, हम आपके इस सपने को सपोर्ट करते हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी करते हैं। आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है?
6: सर अगर खेलने की बात है तो हमारा क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है।
1: अरे वाह क्या बात है।
6: बाकी तो और रीडिंग, इस बीच हम कहीं गए थे तो वहाँ पर एक अचानक सवाल हुआ मन में कि हमें कुछ लिखना है।
1: अरे वाह क्या बात है। लिखने की बात,
6: हाँ।
1: आपको अंदाजा है लिखने का अर्थ क्या होता है, कितना अच्छा महसूस होता है, कितना अलग आप महसूस कर सकते हैं लिखने से? शायद ये लिखने वाला ही समझ सकता है।
6: यस है।
1: तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये लिखने को आप बंद प्लीज मत करिएगा, आप बहुत अलग हो जाएंगे। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद सत्यम आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। साथ में हम चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। अपना नाम बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
3: माय नेम इज आराध्या सिंह।
1: आराध्या, आराध्या के बारे में भाई आयुषी कुछ पूछना चाह रही हैं।
2: जी आराध्या, जैसा कि मैं देख रही हूँ आप यहाँ बैठी थी, काफी लोग अब काफी टाइम से यहाँ बैठी हैं, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। काफी लोग इस छोटी सी छोटा सा इंतजार करते हैं, उसी में लोग कहते हैं अरे मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो आप अपने अंदर पेशेंस कैसे मेंटेन करके बैठी हैं?
3: पेशेंस मेंटेन करने पड़ते हैं अगर आपको कुछ करना है।
2: कैसे? आपके मन में ये तो आ रहा होगा ना, इतने सवाल आरजे अदनान पूछे जा रहे हैं, कहीं मेरे से बहुत टफ वाला ना पूछ ले।
3: हाँ थोड़े नर्वस थे, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाए रखना था।
1: सर का स्माइली चेहरा है तो इतना नर्वसनेस होती नहीं है।
2: नहीं सवाल नर्वस कर रहे हैं ना, स्माइल तो आप देखें बस बच्चों को नॉर्मल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बेशक, और ये बहुत अच्छी बात है।
2: जी जब आपने आराध्या ये एग्जाम दिया, ये कॉम्पिटिशन दिया आपने, तो आपको क्या लगा था कि आपके साथ आपको कोई फ्रेंड वगैरह था? तो आपको क्या लगा था कि वो उसका नंबर आगे आ गया तो मैं क्या करूँगी?
3: नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा था।
2: नहीं नहीं, जैसे देखिए काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है जब दो दोस्त साथ में पढ़ाई करते हैं किसी एक कंपटीशन के लिए, तो जब उनका रिजल्ट आता है उसमें बहुत अंतर होता है, तो दोनों की लड़ाई हो जाती है कि भाई पढ़ा तो एक ही जगह से था।
1: आयुषी अपना पर्सनल सवाल नहीं,
4: सीरियस का एक डायलॉग याद कीजिए
1: जी।
4: उसने कहते जब पेपर आता है तो उसने कहा था कि उस दिन हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में एक नई बात जानी, दोस्त फेल हो जाए तो तकलीफ होती है और टॉप कर जाए तो बहुत तकलीफ होती है।
1: करेक्ट, सही बात है।
4: तो ऐसा होता है क्या आपके साथ?
3: नहीं ऐसा नहीं होता।
2: ऐसा हुआ है कभी?
1: ऑलराइट, तो हम
3: अभी मेरे ठीक से फ्रेंड्स नहीं बन पाए क्योंकि
2: तभी सर देखिए तभी है ये
1: क्या बात है, तभी आप इन सब चीजों से दूर हैं। वैसे क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी पढ़ाई को लेकर के?
3: जितना पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा मैं रिवीजन भी करना चाहिए।
1: ओके
3: यही है।
1: ओके ओके, मतलब आप रिवीजन पे बहुत बिलीव करती हैं। yes. बहुत अच्छी बात है। और आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में?
3: UPSC एम्बिशन IAS।
1: क्या बात,
2: अच्छा अगर समझ लीजिए आपको एक दिन के लिए अनिल कपूर बना दिया गया, मतलब एक दिन का IAS बना दिया गया, तो आप क्या करेगी? गोंडा के लिए
3: हम जितने जगह जो पीछे है उसके लिए कुछ करेंगे। और
2: उसके लिए तो टाइम लेगा ना, आपको तो एक ही दिन का बनाया गया है।
1: एक दिन में तो घर जाके फोटो तो खिंचाएंगे।
2: एक दिन तो रिश्तेदारों का माला पहनाने में ही निकल जाएगा।
1: खैर ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको जरा सोचिएगा कि अगर बहुत कम टाइम हो और आपके पास पावर दिए जाए तो आप सबसे पहले किन चीजों पे काम करना चाहेंगे? ये एक सवाल था। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और साथ में हमारे आज ऑफ कोर्स इन सभी के कर्ता धरता और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपका हाथ रहा है कॉम्पिटिशन में।
2: जी तो हमारे बीच हैं इन सभी स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मेंटर कह सकते हैं या जिनसे इन लोगों ने इंस्पिरेशन ली है वो हमारे बीच हैं। तो हम सर आपका स्वागत करते हैं, आप प्लीज़ अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम मैम अरुण कुमार है, मैं CPM स्कूल में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ।
2: जी
1: क्या
2: जी,
1: बात है। आपके स्कूल से काफ़ी सारे बच्चे आए?
7: जी सर, हम लोग शुरू से हम लोगों का ये प्रयास रहा है, हमारे प्रिंसिपल महोदया श्रीमती पूनम कुशवाहा जी और प्रबंधक सर श्री रमेश कुमार मौर्य जी का ये शुरू से प्रयास, जितने भी अध्यापक हैं शुरू से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे बच्चे कंपटीशन में चाहे जैसा भी कंपटीशन हो उसमें 100% अपना दें, उसमें सफलता भी हम लोगों को मिलती है। हम लोग शुरू से ही स्कूल में ऐसे कंपटीशन आयोजित करते हैं, हर साल हम लोग स्कूल में ही कंपटीशन आयोजित कराते रहते हैं, शुरू से ही हम लोगों का लक्ष्य रहा है जिससे बच्चे कोई भी कंपटीशन दे तो उनके अंदर एक हेजिटेशन नाम के जो बच्चे भी बता रहे थे मेरा पैर कंपन करने लगता है या हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, ऐसी चीज़ें खत्म हो धीरे धीरे। अगर बच्चे धीरे धीरे कंपटीशन देते रहेंगे तो उनके अंदर सवालों को लेकर या और सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी, डर नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी।
1: क्या बात है। आर.एन. सिन्हा फाउंडेशन का ये जो कॉम्पिटिशन था इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल के माननीय
7: श्री डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एकदम ऐसे पहल की है जो पिछड़े वर्ग में एकदम ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पल बढ़ रहे हैं शिक्षा के प्रति एक अलग जगा रहे हैं और ऐसे कंपटीशन शायद ये पहले व्यक्तित्व हैं जो बच्चों के लिए ऐसी पहल किए हैं। मैं इन्हें लाख लाख शुभकामनाएँ और इनका शुक्रगुजार रहूँगा कि ऐसे प्रतियोगिता कराए हैं जिसमें एकदम जीरो लेवल के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करके एक अच्छा मुकाम अपनी पढ़ाई लिखाई सुधार सकते हैं। इनको छात्रवृत्ति पर दी जाती है जिससे ये अपने शिक्षा के प्रति और उन्नति कर सकते हैं।
2: अच्छा सर, आपने ये सारी चीज़ें बताई तो जैसे सभी बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और मुझे ऐसा लगता है जैसे हम आरजीएस के लिए अगर लिसनर कोई फीडबैक देता है या हमारी लिसनरशिप बढ़ती है, हमारा वर्क अच्छा होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और जैसे आपने इन बच्चों को पढ़ाया, आपने काफ़ी बच्चों ने कहा कि आपने ही इनका फॉर्म भरा और आपने ही इनको मोटिवेट किया इस कॉम्पिटिशन के लिए, तो आपको कैसा फील हुआ कि आपके स्कूल से इतने सारे बच्चे टॉप किए हैं?
7: जी, हमें बहुत अच्छा एकदम प्राउडफुल फील हो रहा है। लास्ट टाइम भी जब इस कंपटीशन में हमारे स्कूल के लगभग 15-20 बच्चे पुरस्कार के लिए चयनित हुए थे पिछले साल, इस ईयर भी कम से कम 15-20 बच्चे चयनित हुए हैं, तो हमारे पूरे स्टाफ को, हमारे प्रिंसिपल महोदया और प्रबंधक सर को बहुत ही प्राउड फील हुआ। हम लोग शुरू से ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते रहे बच्चे, इन फ्यूचर हम लोग कराते रहेंगे।
2: ओके,
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके साथ भाई हमारे पास एक और व्यक्तित्व है, अब चलते हैं उनकी तरफ। जी हाँ, आपका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा लगेगा कि अपना नाम आप स्वयं बताएं।
8: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है
4: जी।
8: मैं इस महान शख्सियत का जो ये फर्म है आर्यन सिन्हा फाउंडेशन, इसका वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ। मैं यहाँ जो कानूनी कार्य किए जाते हैं उसका मैं नेतृत्व करता हूँ, उसका प्रबंध करता हूँ और आर्यन सिन्हा फाउंडेशन में रह करके लोगों को, मतलब स्थानीय लोगों को भी लीगल सलाह देता हूँ।
4: वास्तव में मतलब ऐसी संस्था से जुड़ना जो जन कल्याण का काम करती है, उस संस्था में जुड़कर आपको कैसा महसूस होता है?
8: हमें तो बहुत इतना प्राउड है कि हमें इतना गर्व है कि अब क्या कहें, बहुत ही गर्व है मुझे इस संस्था से, क्योंकि ये जनहित संस्था है, कोई व्यक्तिगत संस्था है नहीं, जनहित के लिए चलाया जा रहा है। और हमें यदि ये गर्व है कि हमारे एरिया में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ये जनहित का कार्य कर रही है।
4: हाँ, मतलब एक बात होता है कि लोग बाहर निकले तो फिर अपनी मातृभूमि को छोड़ते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ,
8: ये एकदम कृतार्थ हो रहा है।
4: तो ये वो जो उस समय बोला गया था वो इस समय कृतार्थ हो रहा है, एकदम चरितार्थ हो रहा है।
8: जी, चरितार्थ हो रहा है, ये एकदम अक्षरशः चरितार्थ हो रहा है और लोगों को ये प्रेरणादायक भी है
4: जी। तो मतलब कुछ संदेश है जो आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
8: संदेश तो यही है कि लोग भी इस तरीके से प्रेरणा ले करके ऐसे कार्य करें जिससे समाज को बहुत बहुत लाभ हो और समाज लाभान्वित हो।
4: ऐसे कौन से काम हो सकते हैं आपके हिसाब से?
8: ऐसे काम हो सकते हैं, सोशल के बहुत काम हो सकते हैं, जन कल्याण के लिए, कहीं स्वास्थ्य के लिए, कहीं क्या नाम है, लीगल एड के लिए, कानूनी सलाह के। लोग बहुत गांव देहात में जानकार नहीं हैं, उनको इस तरीके से छला जाता है
4: जी।
8: तो ऐसी जानकारी दिया जाए कि वो अपने को बचा सकें। मतलब कहते हैं कानून की जानकारी ही बचाव होती है।
4: सही कहते हैं,
8: कानून अगर जानते हैं तो बचाव अपने आप हो जाता है।
4: क्या बात
8: तो
4: है?
8: इस तरीके से जन कल्याण कार्यकारी कार्य कराएं, अगर लोग भी इससे प्रेरणा लेकर के, तो बहुत अच्छा होगा, हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा।
4: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और जानकारी होनी चाहिए। तो आप लीगल एडवाइज़र हैं
8: जी, जी।
4: तो कहीं ना कहीं आपके संरक्षण में, आपकी देखभाल में आपकी संस्था फल फूल रही है। एक छोटा सा पौधा आगे चलकर एक वट वृक्ष बनेगा, एक विशाल वृक्ष बनेगा, ऐसी शुभकामना रेडियो 89.6 FM परिवार आपकी संस्था के लिए।
8: बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए।
4: बहुत बहुत प्रणाम आपको और चरण स्पर्श भी। जी हाँ, तो अब आपसे लेते हैं अनुमति, आसमान वाले ने चाहा तो फिर अगले रविवार को आपसे मिलेंगे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: 89.6 FM आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञान असली पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और घड़ी में वक्त हो चला है 2:34 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है ऑफ कोर्स 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली। भई बच चुके हैं 2:30 यानी कि आज आधा घंटा लेट हैं हम। और हम ऑफकोर्स लेट वेट तो चलता रहता है बॉस, लेकिन गानों को ढूंढ ढांढ के और एक शब्द के गाने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जिंदगी में होता है कभी ना कभी किसी ना किसी को एक बार इश्क विश्क प्यार व्यार। और इसीलिए आज की प्लेलिस्ट भी हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशली ऑन द वर्ड ऑफ इश्क, यानी कि एक ही शब्द जिसका नाम है इश्क, जो आप सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं है लेकिन इसका मतलब बड़ा डिफरेंट है। पर्यायवाची जैसे नाम लगते हैं इश्क विश्क प्यार व्यार मोहब्बत, लेकिन सबके अर्थ इतने इतने अलग होते हैं, इतने अलग होते हैं, बहुत डीप जाना पड़ता है शब्दों को समझने के लिए। लेकिन हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आज हम इन्जॉय करने वाले हैं बॉलीवुड में वो 20 गाने जो बने हैं इश्क के नाम पर और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, फिर चाहे वो हों आपके पार्टी सॉन्ग्स या फिर हों रोमांटिक सॉन्ग्स, 20 के 20 गाने हैं आउट ऑफ बॉक्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं एंड ऑफकोर्स हाई बीट एनर्जी के साथ। हमारा पहला गाना आपके लिए मौजूद है और आप मुझे पता है इस गाने को गेस कर लेंगे क्योंकि आवाज़ है सोनू निगम साहब की और नो एंट्री फिल्म से आया है हमारा पहला गाना। आप जरा गेस करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर कि आपने क्या गेस किया है। एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 20। हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड क्योंकि आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: इश्क दी गली विच नो एंट्री। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सोनू निगम और अलीशा चेन्नई की आवाज में नो एंट्री फिल्म से धमाकेदार हमारा सॉन्ग नंबर 20 इश्क दी गली विच नो एंट्री। और हम आपको बता दें भाई, ये गाना इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि आज भी ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, चाहे शादी हो चाहे पार्टी। और कल रात तो मैं किसी के बारात में भी सुनकर आ ही रही हूँ। फिलहाल आप सुन रहे हैं इंटर टॉप 20 और 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप इंजॉय कर रहे हैं इंटर टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट, जिसमें आज हम लाए हैं एक ऐसा सफर जो आएगा बॉलीवुड के इश्क का सफर। ऑफ कोर्स इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू इम्तियाज जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं इंटर टॉप 20 में। एंड आरजी उन्नति जी, आरजी आकांक्षा जी रेडियो पर कब आएंगी? भाई रेडियो पर तो वो आ गई हैं, ऑन एयर वो कल पक्का आ जाएंगी, ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ। लेकिन इसको बताने के लिए मुझे क्या मिलने वाला है ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भैया इंडिया टॉप 20 में आज है इश्क के ऊपर बहुत सारे गाने का मतलब है यानी कि 20 काउंटडाउन आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं। सॉन्ग नंबर 19 आपका इंतजार कर रहा है। सॉन्ग नंबर 19 के बाद हम चलेंगे आपके बॉलीवुड न्यूज़ की तरफ, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया टॉप 20 में होती हैं बॉलीवुड की बातें, न्यूज़, गॉसिप्स और कुछ चटपटे से गाने। तो आप इंजॉय करते रहिए। SRK और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया है खूबसूरत सा सॉन्ग, या फिर कहें एक आइटम सॉन्ग, जिसका नाम है इश्क कमीना। सिंगर की आवाज़ कौन से सिंगर है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन चैट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए सुनते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार नेक्स्ट बीट पर। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 19.

0: बटा लव इश्क बबुआ।
1: हां जी, इश्क बबुआ आप सुन रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। 2002 में रिलीज हुआ इश्क कमीना फ्रॉम शक्ति द पावर फिल्म। इसमें आपको नजर आई थी करिश्मा कपूर, लेकिन ये गाना फिल्माया गया था एसआर के और ऐश्वर्या राय के ऊपर, और आपने एंजॉय किया जबरदस्त हिट सॉन्ग को आपके अपने इंडिया टॉप 20 में। मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था भाई, हम आएंगे लेके चलेंगे आपको बॉलीवुड की तरफ। तो बॉलीवुड से एक तड़कती भड़कती न्यूज़ ये आ रही है कि थ्री इडियट 2 वापस आ रही है। भाई थ्री इडियट जो कि एक ओजी फिल्म है जिसको आज भी देखने से हम उबते नहीं हैं, अगर हर संडे वो लग जाए और हर संडे मुझे मौका मिले तो हम देख ही लेते हैं। हालांकि पीछे से मम्मी आके ज़रूर कहती हैं कि तो ना फिर शुरू हो गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम देखते ज़रूर हैं क्योंकि भाई मज़ा आता है रणछोड़ दास को देखकर, स्पेशली आमिर खान के रोल को देखकर। और हमारा दिल तो पागल है, दिल तो इडियट है, ऑल इज वेल बोल के सब कुछ हो जाएगा, और हम हमेशा ऐसा करते भी आए हैं। तो फिलहाल सुनने में आ रहा है कि आमिर खान ने कन्फर्म कर दिया है थ्री इडियट्स 2 वापस से आने वाली है राजकुमार हिरानी की डायरेक्टिंग के अंदर, और कहानी सेट होगी अराउंड 10 साल बाद की, यानी कि आपको रणछोड़ दास चांचड़ के बच्चे देखने को मिल सकते हैं उस कहानी के अंदर। तैयार रहिएगा, स्टोरी काफ़ी गजब की होने वाली है। थ्री इडियट जिस तरह से आई थी, जैसा उन्होंने लोगों का दिल जीता था, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी। इवन आपको हम बता दें, थ्री इडियट इकलौती ऐसी फिल्म है जो साउथ कोरिया में बड़ी पॉपुलर है, हर कोई उसको देखने के पीछे पागल रहता है। और आमिर खान की जब एज को गेस करने की बारी आती है, थ्री इडियट के वक्त उनकी एज कुछ 44 के आसपास थी और लोग उन्हें 23 के आसपास गेस कर रहे थे, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भाई जो इतना यंग दिख रहा है वो उनसे भी बड़े हैं एज में, और उन्हें बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल अब थ्री इडियट 2 आने वाली है, उसकी स्टोरी थोड़ी सी हटके होने वाली है, लेकिन डायरेक्टर साहब वही हैं, तो भैया मज़ा ज़रूर आएगा। आई होप कि हमारे रणछोड़ दास चांचड़ भी दिखाई पड़ जाए, क्योंकि भाई उनको, उनके बिना थ्री इडियट्स हो जाती है थोड़ी सी अकेली। वो जो ट्रियो था उसमें जो करीना का अंदाज था, ओ माय गॉड, लवली लवली लवली। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और सॉन्ग नंबर 18 आपका इंतजार कर रहा है, बापी लहरी का सॉन्ग असलाम इश्क माई यार। आप इंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगले गाने पर, अगली बीट पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 89.6 FM कोला शहर की धड़कन पर।
2: Radio Ganasthali 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.

0: भाई ये गानों के बीच में जो कव्वाली का सेशन रहता है ना, ये है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। और आप सुन रहे हैं सॉन्ग नंबर 17, इश्क है जिंदगी, जिंदगी प्यार है। और ये गाना है भाई इश्क है तुमसे, उदित नारायण, अलका जी और विनोद राठौड़ की आवाज़ में आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। म्यूजिक कंपोजर हैं हिमेश रेशमिया और गीतकार हैं समीर अंजान साहब। और ये एक ऐसी जोड़ी है जिसने एक के बाद एक हिट गाने बॉलीवुड को दिए हैं। आपको पता होगा भाई, जब हिमेश रेशमिया आते हैं तो कितने ज़बरदस्त सॉन्ग लेकर आते हैं, लोग कहाँ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हिमेश रेशमिया के गाने तो भूत प्रेत को भी अट्रैक्ट करते हैं। आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, एक बार आजा आजा आजा। इस गाने को न जाने कितने गांवों में, कितने ज़िलों में, कितने राज्यों में बैन कर दिया गया था, सिर्फ ये कह करके कि भाई हिमेश रेशमिया का ये गाना भूत प्रेत को भी इनवाइट करता है, जिन्नात बुला लेते हैं। और लोग सच में उस गाने को समझ चुके थे कि इस गाने को गाने से कोई स्पिरिट उनके ऊपर हावी हो जाएगी, इसलिए इस गाने को बैन कर दिया गया था। और समीर साहब की लिरिक्स ऐसी होती हैं जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला देने भर का काफ़ी होती है। समीर साहब के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, 90s के सुपर डुपर हिट जितने भी गाने हैं उनमें एक नाम समीर जी का ज़रूर आता है, समीर अंजान का नाम ज़रूर आता है। वो गाने आपने किसी भी फिल्म में देखे हो, किसी भी आपका जो फेवरेट प्लेलिस्ट होगी, आपकी पार्टी प्लेलिस्ट होगी, आपकी रोमांटिक प्लेलिस्ट होगी, आपकी सैड सॉन्ग्स प्लेलिस्ट होगी, कहीं ना कहीं 50 गाने ऐसे ज़रूर निकल कर आएंगे जिसका गीतकार होंगे, जिसके बोल लिखे होंगे समीर साहब ने। इतने खूबसूरती से वो लिखते हैं, इतने प्यारे तरीके से वो लिखते हैं कि हर किसी का दिल छू लेते हैं। फिलहाल अमरीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आते ही हमें दो इमोजी सेंड किए हैं। थैंक यू सो मच, एंड आपका स्वागत करते हैं हम विंटर्स ऑफ 20 में। भाई अगले गाने के लिए दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अगेन अलका जी की आवाज़ में होने वाला है। और अलका जी के साथ एक और सिंगर हैं, जब वो अलका जी के साथ आती हैं तो गाना अपने आप हिट हो जाता है। उनकी आवाज़ बॉलीवुड में बहुत अलग थी, जब वो नई आई थी तब लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया होगा ये कह करके कि भाई उनकी आवाज़ अलग है, लेकिन उन्होंने राजस्थान का वो अंदाज, वो जो टेस्ट था, वो जो वाइब थी, वो बॉलीवुड में लेकर आई। और अलका जी के साथ उन्होंने बहुत से हिट गाने दिए हैं। अब उनकी आवाज़ आपने अलग अलग गानों में सुना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अलका जी के साथ बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने जब मेल जोल बनाया है, गानों में गाया है, भाई क्या ही आवाज़ लगती है। आप उन्हें बाई शक्ल भले ही ना जानते हो, लेकिन आवाज़ से उन्हें ज़रूर जानते होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप आवाज़ सुनते हैं तो गैस भी कर लेंगे कि हम किस सिंगर की बात करें, किन मोहतरमा की बात कर रहे हैं। आप सुनने जा रहे हैं दिल का रिश्ता से साजन साजन, इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल सह नहीं पाया। तो इन्जॉय करते रहिए इस खूबसूरत से गीत को, खूबसूरत से लिरिक्स को। एंड प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भूलते हुए कि आज है संडे और संडे को लिंक्स नहीं ली जाती हैं, संडे को होता है सिर्फ इंडिया टॉप 20 का जादू। आप सुनते रहिए 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञानसली। आवाज़ है अपनी अर्जी उन्नति की, और इन्जॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 16, दिल का रिश्ता, अलका जी और ऑफ कोर्स एक और मिस्ट्री सिंगर जिनका नाम आप करने वाले हैं गैस।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: हां जी, तो आप सुन रहे हैं सॉन्ग नंबर 16 दिल का रिश्ता फिल्म से। एक आवाज थी अलका जी की जो आप सब जानते हैं, और दूसरी आवाज जिनकी थी भाई, उनके गाने आपने बहुत सारे सुने होंगे। चलिए, अगर आपको याद नहीं भी आता है तो हम कुछ आइडिया दे देते हैं कि आपने इनकी आवाज़ कहाँ कहाँ सुनी हुई है। तो हम आपको बता दें, बन्नो तेरी अखियाँ सुरमेदानी दुश्मन फिल्म से, परदेसी परदेसी फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी, छैया छैया दिल से, अंगूरी बदन जानवर से, और यूपी बिहार लूटने आई हूँ, ये आपने सुना होगा। सारे के सारे हिट गाने हैं, और इन गानों के पीछे एक आवाज़ है जिसने इस गाने को हिट बनाया है, और वो आवाज़ किसी और की नहीं, वो आवाज़ है भाई सपना अवस्थी जी की। भले ही वो रहने वाली उत्तर प्रदेश की हैं, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो बोली है, वो इतनी कड़क और इतनी बिंदास है कि उनकी आवाज़ में मांड और लोकगीत की टच आते हैं। इसीलिए उनको राजस्थानी फोक सिंगर के नाम से भी कई लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो लोकगीत का टच है, जो कड़कपन है, जो अंदाज है, जो बिंदास है, इतनी खूबसूरत है कि सपना अवस्थी को कई बार राजस्थानी, असामी और नेपाली गाने गाने को मिलते हैं। और भाई सपना अवस्थी अपने करियर का पूरा क्रेडिट देती हैं उन लोगों को जो उनके लिए गाने लिखना पसंद करते हैं। हम आपको बता दें, जब उन्होंने SRK और माधुरी दीक्षित के लिए गाना गाया था, वो वाला जो उनकी फिल्म में आया था, और आपको याद ही होगा एक ऐसा सॉन्ग जो माधुरी दीक्षित और SRK की फिल्म से आया था, हम तुम्हारे हैं सनम, सब कुछ भुला दिया, ये गाना आपको ज़रूर याद होगा। तो भाई जब ये गाना उनके लिए लिखे गए थे, तो किसी को आइडिया नहीं था कि सपना अवस्थी जी इसका क्रेडिट राइटर्स को देने वाली हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें भाई, सपना अवस्थी जी ने इनकी क्रेडिट नदीम भाई की रचना, रहमान साहब के गाने और उनका सपोर्ट बताया था। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों ने मिलकर गानों को इस तरह से लिखा जो मेरी आवाज़ को सूट करे। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं जो बहुत महीन हैं, बहुत पतली हैं, बहुत नाजुक हैं और बहुत खूबसूरत हैं, बट मेरी आवाज़ सबसे अलग है, सबसे हटकर है, थोड़ी सी बोल्ड है, थोड़ी सी कड़क है और अलग साउंड करती है। तो जो राइटर्स हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जो कंपोजर्स हैं, उन्होंने मेरे लिए जिस तरह से काम किया, मेरी आवाज़ को सूट करे ऐसे गाने लिखे, मेरी आवाज़ को जो पसंद आए वो म्यूज़िक बनाया, और उसके बाद जाकर मेरा ये गाना हिट हुआ है। और माधुरी दीक्षित और SRK मेरे लिए बहुत लकी हैं कि उनकी फ़िल्म से मेरा नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, फिर चाहे वो छैया छैया हो या फिर हो सब कुछ भुला दिया। ये दो गाने उनके बेहद ही पसंदीदा है, और उन्होंने सारे के सारे गाने हिट दिए हैं। भले ही आपने आइटम सॉन्ग सुने होंगे, कुछ लोकगीत टच आया है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, ये गाना भी उन्हीं की आवाज़ में है और आपने सुना भी होगा। फिलहाल के लिए ये छोटी सी बात थी सपना अवस्थी जी के नाम पर। एंड ओके, प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून छोटा भीम, गुड आफ्टरनून प्रबल मिश्रा जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं हम इंडिया टॉप 20 में। नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग की तरफ, यानी कि हमारे बैक टू बैक दो गानों की तरफ। आप सुनने जा रहे हैं तेरा इश्क बड़ा तीखा और तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। सुनते रहिए आप दो बैक टू बैक दो सॉन्ग्स आपके इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट में। मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 15।

0: तो जब तक आप एंजॉय कीजिए इस गाने को, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। आवाज है अलका जी की, सपना अवस्थी जी की, और जो मेल आवाज है वो है भाई उदित नारायण की आवाज। गीतकार हैं दीप कोहली और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद। अमीषा पटेल, अर्जुन रामपाल और बॉबी देवल की फिल्म, आपको पता ही होगा हमको तुमसे प्यार है, इस फिल्म में फिल्माया गया गाना है ये। हाँ जी, तो भैया आइए लेके चलते हैं आपको बॉलीवुड की तरफ। और बॉलीवुड में सुने आ रहा है कि विक्की कौशल वापस से आने वाले हैं बड़े पर्दे पर, लेकिन बात ये है भाई साहब कि वो आज नहीं आने वाले, वो कल भी नहीं आने वाले, वो आने वाले हैं अगले साल। फिलहाल के हम आपको बता दें, जुलाई 2026 यानी कि आने वाले कुछ महीनों में उनकी एक फिल्म है, उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि प्री शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें अपडेट ये है कि फिल्म होने वाली है महाअवतार। जी हाँ, फिल्म का नाम महाअवतार होने वाला है, जिसमें आपको विक्की कौशल नज़र आने वाले हैं, और इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी जनवरी 2027 से लेकर दिसंबर 2027 के बीचों बीच में। अभी तक फिलहाल टाइम कंफर्म नहीं किया गया है, बस इतना बताया है कि भाई 2027 की स्टार्टिंग से ही शायद उस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और उसकी प्रिपरेशन शुरू की जाएगी जुलाई 2026 से। तो विक्की कौशल को एक महाअवतार के रोल में देखने का तैयार हो जाइएगा भाई। उन्होंने बहुत सारे बायोग्राफी की हैं और उनको भी पता है, सभी लोग कहते हैं कि अगर किसी का फेस बायोग्राफी के लिए बेस्ट है तो वो है विक्की कौशल। जिस किरदार में जाते हैं उसके अंदर डूब जाते हैं और आप उनका एक चलता फिरता आईना नज़र आते हैं। तो भाई उनकी एक्टिंग को जितना ज़्यादा पसंद किया जाता है, जितना ज़्यादा मोहब्बत उनकी एक्टिंग को दी जाती है, उतनी ही इंतज़ार रहते हैं लोगों को उनकी लाइफ्स के बारे में जानने का कि भाई उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कैटरीना कैफ के साथ उनका क्या चल रहा है। ये सारी बातें भी उनके फैंस को जानना बहुत ज़रूरी लगता है और उनके फैंस अक्सर ट्वीट भी करते रहते हैं, मैसेजेस भी करते रहते हैं, इवन गूगल पे जाके विक्की कौशल के बारे में सर्च भी करते हैं, हाइट वेट सब कुछ सर्च कर लेते हैं। तो भाई फैंस की एक्साइटमेंट लेवल तो ऑफ कोर्स काफ़ी हाई होने वाली है। 2026 की शुरुआत से ही बात चल रही थी महाअवतार की और अब फाइनली 2026 के जुलाई से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाने वाली है। एंड हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं मुस्तफ़ा जी, जो मैं सुनते हैं सऊदी से, और ऑफ कोर्स आपका गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं मिंटर टॉप 20 में। आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 13 की तरफ, और सॉन्ग नंबर 13 में ख़ास बात ये है कि एक ऐसे भी एक्टर हैं जिन्होंने कभी शादी तो नहीं की है लेकिन शादी के सारे बैंगर्स उनके नाम पर है। उनके गाने जब भी आते हैं तो आपको भी पता है कि भाई उनके शादी वाले सॉन्ग्स बहुत खूबसूरत होते हैं। शादी हो, पार्टी हो, म्यूज़िक हो, धमाल हो, संगीत हो, मेहंदी हो, कोई भी रस्म हो, और अगर उनके गाने नहीं बजते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा साउंड करता है। हमारा डीजे वाले भैया भी कहते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक चाहिए तो इन जनाब के पास जाइए। उन जनाब का नाम आप गेस कीजिए और हम आपको सुनाते हैं उन पर फिल्माया गया इश्क चुनरिया उदित नारायण की आवाज में। सुनते रहिए इंटर टॉप 20 अपनी आर्चुनती के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 11.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर।
1: रेडियो 11.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: हाई बीट गानों के बाद अरिजीत सिंह की आवाज में ये सूथिंग सा सॉन्ग आई होप आपको पसंद आया होगा। सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं चैट बॉक्स में और आते ही उन्होंने स्टार्ट किया है डिस्को वाला डांसर यानी कि डिस्को डांस। थैंक यू सो मच। और लिखा है शुभ दोपहरिया अनुति मैम। शुभ दोपहरिया आपको भी। कैसी हैं आप? आपका स्वागत करते हैं टॉप 20 में। और इस आवाज़ को सुनने के बाद आज मेरी भी बीट जो है थोड़ी डाउन हो गई। अभी तक हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, लेकिन जैसे ही अरिजीत सिंह की आवाज़ आती है पता नहीं क्यों लेकिन कामनेस अंदर से आती है। तो भैया आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 11 की तरफ। और घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि वक्त है, अब 3:30 हो चुके हैं, बचा है सिर्फ हमारे पास आधा घंटा। जब भी मैं इंडिया टॉप 20 में कुछ बेहतरीन गाने चूज़ करके लेकर आती हूँ वक्त हमेशा मुझे धोखा देता है। आपको भी देता है ना, अब मुझे पता है। फिलहाल आप सुनिए हमारा सॉन्ग नंबर 11 और आपको आने वाला है काफ़ी मज़ा क्योंकि ये गाना है आपके लिए स्पेशल मेरी तरफ से डेडिकेटेड। इन्जॉय करते रहिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये गाना आपको लगा कैसा।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 11.

0: आंखों में आकर। और वन ऑफ माय फेवरेट लाइन है कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, और ये लाइन मुझे याद दिलाती है मेरी लिसनर सविता दुबे जी की, जो अक्सर आकर कहती हैं कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, है ना। तो मैं जब गीत आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर होगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं ये इश्क है जब वी मेड फिल्म से, श्रेया घोषाल की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का म्यूज़िक, फिल्माया गया है करीना कपूर और शाहिद कपूर के ऊपर। और हम आपको बता दें ये गाना वो है जिसको 9XM पर आप इन्जॉय किया करते थे उस वक्त में जब आपके पास फ़ोन नहीं था। नहीं था ना, मेरे पास भी नहीं था एक्चुअली। मेरे पास तो अभी 2025 या फिर कहें तो 2020 में आया है, जब कोविड चल रहा था। थैंक्स टू कोविड कि मेरे पास भी फ़ोन है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला गाना हम लेकर आए हैं कटरीना की। भैया करीना कटरीना में पहले हम रहते थे बड़े कंफ्यूज, और हमें लगता था करीना भी वही है, कटरीना भी वही है, रवीना टंडन भी वही है और दूसरी हीरोइन भी वही है। भाई मेरे दिमाग में ना थोड़ा सा लोचा अलग ही था। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 10 जब तक है जान यार रहमान का म्यूजिक इश्क शवा। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 10।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं इश्क शबा, राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज में यार रहमान का म्यूजिक और गीतकार यानी कि बोल है गुलजार साहब के। और आप सुन रहे हैं जब तक है जान फिल्म से इस सॉन्ग को, जिसमें भाई कटरीना की जो ड्रेस थी वो हर लड़की की पसंद थी और हर लड़की सोच रही थी कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब कटरीना वाली ड्रेस पहन के ज़रूर घूमेंगे। वो अलग बात है कि वो दौर आते आते अब हम टेडी बियर बन चुके हैं और हमारा बिल्कुल मन नहीं करता ऐसी ड्रेस पहनने का। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और हम आपको लेके चलते हैं ताल फिल्म से एक ऐसे गाने की तरफ। भाई ताल का जो एल्बम था ना वो इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया था कि थिएटर्स की डिमांड ये थी कि भाई उनके थिएटर्स में बड़े बड़े स्पीकर होने चाहिए ताकि ताल की सारे सॉन्ग्स को बहुत खूबसूरती के साथ फुल वॉल्यूम में एंजॉय किया जा सके। इसकी प्रमोशन किसी बॉलीवुड के एक्टर ने नहीं की थी, इसकी प्रमोशन किसी डायरेक्टर ने नहीं की थी, थिएटर्स के मालिकों ने खुद अपने पैसे डालकर अपने थिएटर्स में स्पीकर्स लगवाए थे ताकि ताल के एल्बम में जो भी म्यूजिक चल रहा है उसको वो एंजॉय कर सके। और एक गाना है उसका, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही प्यारा गाना है एंड ऑफकोर्स बहुत ही सूथिंग सा म्यूजिक भी है इसमें। तो आप इन्जॉय करते रहिए इस प्यारे से गाने को जो आपको 90s की तरफ लेकर जाएगा और आपको अपने गुजरे हुए पल, गुजरे हुए दिन और वो मेमोरीज याद दिलाएंगे जो आज उस वक्त आप इन्जॉय करते थे ताल के म्यूज़िक को। और आज भी भाई ये गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली रमता जोगी और ताल से ताल मिला आज भी पॉपुलर है। हैप्पी न्यू ईयर में भी इस गाने को दिखाया गया है और न जाने कितने रील्स आज भी बन रही हैं। तो ताल से आपका फेवरेट गाना कौन सा है ये मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड,
1: Radio Garasani 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 9.

0: जी, तो आप सुन रहे हैं आधा इश्क आधा है आधा हो जाएगा, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि अगला सॉन्ग तुम बिन फिल्म से इंतजार कर रहा है आपका अरिजीत सिंह की आवाज में। आप एंजॉय करते रहिए इश्क मुबारक, हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स।

0: हां जी, तो आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में तो मिंटू से इश्क मुबारक। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना है इमरान हाशमी का खूबसूरत सा सॉन्ग इश्क सूफियाना। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, यानी कि अगले गीत पर, अगले बीट पर, आपके अगले सॉन्ग की तरफ। तक की स्टूडियो में दीपक यादव जी, दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें हथियारगढ़ गोंडा से सुनते हैं, लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। थैंक यू सो मच एंड आपका स्वागत करते हैं मेरी टॉप 20 में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आवाज है आपकी अपनी आशीर्वाद की। इंटर टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 5 एंजॉय करते रहिए स्टूडियो।
1: Radio Gana 99.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 5.

0: आप सुन रहे हैं इश्क सूफियाना, और इसी के साथ आइए चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो शायद आपके दिल में भी बटरफ्लाइज लेकर आ जाए। भाई, श्रद्धा कपूर से पूछा गया था आशिकी 2 के रिलीज के बारे में, यानी कि वापस से रिलीज करने के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है और मैं कोशिश करूंगी प्रोड्यूसर से बात करने की और उन्हें सजेस्ट करूंगी कि आशिकी 2 को एक बार वापस से बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया जाए। उन्हें भी खुद को एक बार वापस से बड़े पर्दे पर देखने का बहुत मन कर रहा है। तो भाई, ये लाइन आई है श्रद्धा कपूर की तरफ से। तो अगर आप आशिकी 2 को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं और आपने अभी तक नहीं देखा है, तो विश कीजिएगा कि श्रद्धा कपूर की बात प्रोड्यूसर साहब मान लें और आपको बहुत जल्द आशिकी 2 बड़े पर्दे पर यानी कि सिनेमा हॉल्स के अंदर दिखाई दे जाए। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 4 एंड सॉन्ग नंबर 3 की तरफ। एंजॉय करते रहिए इश्क बुलावा एंड इश्क वाला लव। स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gala 39.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 4.

0: हां जी, इश्क वाला लव। और ये गाना आपको याद है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सुपर डुपर हिट फिल्म आलिया भट्ट की मासूमियत। और इसमें आपको वरुण धवन भी नजर आए थे, उनके साथ एक और एक्टर थे जो नजर आए थे। और ये लव ट्रायंगल का जो इतना खूबसूरत ट्रियो दिखाया गया था, क्या ही बात है। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर टू एंड सॉन्ग नंबर वन। सॉन्ग नंबर टू लेकर आए हम आपके लिए इश्क दे फनी यार लड़ गए यार, और सॉन्ग नंबर वन है इश्क जलाकर। और ये गाना आया है धुरंधर फिल्म से। फिलहाल घड़ी ने कर दिया है इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो आप करते रहिए एंजॉय इंडिया टॉप 20 के सुपर डुपर हिट टू सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर टू एंड वन बैक टू बैक। और अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शुक्ल ज्ञान असली में। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं 89.6 FM आपकी अपनी गोना शहर की धड़कन रेडियो ज्ञान असली। आपकी आशीर्वादी मौजूद है आप सभी के साथ ऑन एयर स्टूडियो में। एंड ऑफ कोर्स मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वाले शो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Ganasari 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 2.
2: Priya, तुझे I love you बोले कितना time हो गया यार?
3: एक किस तो बनती है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
5: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है, तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं, तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
7: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
6: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
7: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
6: जी।
7: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
6: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
7: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
6: जी,
7: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना।
6: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख न लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं, तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
7: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
6: जी,
7: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
6: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
7: जी आज दीदी
6: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
7: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
6: जी।
7: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
6: जी,
7: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
6: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
7: जी दीदी
6: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
7: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
6: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
8: हाँ जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी आरजू उन्नति और एक बार वापस से आ चुकी हूं आपके लिए लेकर क्लिनिक ज्ञानस्थली, आपके सुनने का स्पेशल वाला हेल्थ वाला प्रोग्राम सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी प्रोग्राम को स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानस्थली की इस खूबसूरत सी श्रृंखला में बात होती है आपकी सेहत की, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ और अब उसको मानना भी स्टार्ट कर दीजिए बॉस, क्योंकि भाई हेल्थ सच में वेल्थ होती है ना
9: जी। हेल्थ वेल्थ ही होती है और मुझे लगता है कि जो वेल्थ होती है या वेल्थ होनी चाहिए, एक्चुअल में सबसे बड़ी वेल्थ आपकी हेल्थ ही होती है। और इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट्स को ये बताता भी हूँ कि जब तक आप, मतलब मैं तो अपने जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में, उस लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर आप जब तक जीवित हैं तभी तक आपके ये सारे एसेट्स आपके काम है, जिस दिन आप मर जाएंगे। तो खैर, मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ के लिए और अपने जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी देने के लिए इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही होता है।
8: बिल्कुल, और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं ये है राहुल विश्वकर्मा की, जो कि हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट, हर संडे आपसे मुलाकात करते हैं क्लिनिक ज्ञानस्थली में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉलिंग नंबर है 6393316429, आई रिपीट 6393316429, दोनों, या फिर आप एप्लीकेशन के जरिए चैट बॉक्स में आकर अपने सवाल लिख सकते हैं। तो जब तक आपके सवाल आते हैं, आपको याद है पिछले हफ्ते हमने किस टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था और जाने से पहले हमने क्या टॉपिक बताया था?
9: जी मुझे बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है।
8: और काम कर रहे कि नहीं?
9: जी हाँ जी हाँ, आपके द्वारा दी गई एडवाइस मैं बराबर ले रहा हूँ। और इस बार मुझे लगता है कि हम चोकिंग जैसी एक गंभीर समस्या पर बात करने वाले हैं। और हाँ बिल्कुल, तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे आप अपने स्वास्थ्य जुड़े हुए समाधान पूछ सकते हैं। चोकिंग आज का टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है औरों को भी आप बताएं ताकि उनको भी ऐसे किसी समस्या का अगर कभी सामना करना पड़ता है तो कैसे उससे निपटना है। मुझे लगता है आज का ये शो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
8: बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मुलाकात आपसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं होती, कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसे होते हैं। अब भाई अगर हम बात करें कैंसर की, हार्ट अटैक की, तो ज़रूरी नहीं है आपको ये हर जगह देखने को मिले, हालांकि कॉमन तो बहुत होता जा रहा है, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, आप हर जगह नहीं देखते हैं। लेकिन चोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी नहीं पता है कब कहाँ कैसे किधर टपक पड़ेगी और कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, कब आपको लोगों की मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सही वक्त पे ना मिले तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता
9: बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा
8: आज के शो में जानेंगे।
9: बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो हम CPR के बारे में बात करते हैं कि अमूमन लोगों को CPR देना आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं कई बार एक पब्लिक प्लेसेस पे भी, तो मुझे लगता है कि CPR जितना इम्पोर्टेंट है या CPR देने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उनसे कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं चोकिंग जैसे प्रॉब्लम की। और मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी क्रिटिकल इमरजेंसी से निपटने के एटलीस्ट कुछ बेसिक्स तो पता होने चाहिए।
8: तो जब तक हमारे लिसनर्स अपने सवाल खोजते हैं, मुझे लगता है मुझे अपना पिटारा खोलना चाहिए और आपसे कुछ सवालात कर लेने चाहिए।
9: हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या प्रश्न लेकर के आई हैं और सबसे पहले आप किन चीज़ों के बारे में हमारे लिसनर्स को आप अवेयर करना चाहते हैं।
8: एज यूजुअल मैं हमेशा आपसे अपने टॉपिक के सबसे पहला सवाल यही होता है कि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करें वो एक्चुअल में क्या है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी चोकिंग क्या है और मेडिकल की भाषा में क्या इसको चोकिंग कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं।
9: देखिए चोकिंग एक बहुत ही, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग ये समझ रहे हैं ये किस बीमारी का नाम है। देखिए चोकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह की कंडीशन है, ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक तरह की कंडीशन है। चोकिंग जैसा कि नॉर्मल टर्म में भी, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में भी हम लोग इसको देखते हैं कि किसी चीज़ का फंस जाना या जाम हो जाना, ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो चोकिंग भी एक ऐसी ही समस्या है जब हमारे विंड पाइप और फूड पाइप, मतलब आप ऐसे कहें जो एसोफेगस होता है और जो लंग्स की पाइप होती है उसके बीच में एक जंक्शन होता है जहाँ से वो डिवाइड होती है। स्पेशली उस जंक्शन पे या किसी हमारे जो भी थ्रोट होता है गले के पास में, जब कोई भी खाद्य पदार्थ हम कुछ भी खाते हैं तो वो फंस जाता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि खाने पीने की ही चीज़ें फंसे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें या सिक्का कॉइन वगैरह भी मुँह में डाल लेते हैं और वो जा कर के चोक हो जाता है। ये एक कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है और विद इन फ्यू मिनट्स अगर हेल्प और इमरजेंसी असिस्टेंस नहीं मिलती है तो इससे डेथ भी हो सकती है।
8: बिल्कुल, और बच्चों में स्पेशली देखने को मिलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कैप मुंह में डाल लेते हैं, कभी सिक्के मुंह में डाल लेते हैं, और घर वाले जब तक पहुंचते हैं निकालने के लिए तब तक पता चलता है कि उनके गले में जाकर कहीं ना कहीं अटक चुका है और अब सांस बिल्कुल नहीं आ रही, चेहरा नीला पड़ चुका है, घर वाले परेशान हैं कि अब करें तो क्या करें। और सही वक्त पर यानी कि 4 से 5 मिनट के अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ रेट बढ़ जाती है।
9: जी बिल्कुल, ऐसा देखने को मिलता है और स्पेशली बच्चों में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बड़े होते हैं थोड़ा उनको प्रिकॉशंस और ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो बच्चों में चोकिंग की प्रॉब्लम अक्सर करके देखने को मिलती है।
8: अच्छा सर, आपसे एक सवाल करूंगी।
9: जी,
8: मैंने कई लोगों को देखा है जब उन्हें, कई लोग कहते हैं कि ओछू लग जाता है, कुछ ऐसा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं
9: जी,
8: जब कोई चीज़ गले में अटक जाती है और बहुत खांसी आना शुरू हो जाती है तो उसको शायद बोल रहा
9: है। हूँ हूँ कैसे एक वर्ड है, ठीक
8: है, अलग है, मेरा अलग है थोड़ा।
9: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
8: तो भाई इसमें ना एक होता है कि जब भी किसी के गले में कुछ अटक गया तो लोग हमेशा पीठ पर बहुत जोर जोर से मारते हैं और वो इंसान जिसकी अटका होता है वो कहता है अच्छा बदला निकाल रहे हो तुम मेरे गले में।
9: जी बिल्कुल,
8: ऐसा होता है क्या, मतलब अगर पीठ पे मारे तो मुंह से कुछ निकलेगा?
9: हाँ देखिए, अब इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पेशली मैं भी एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे भी लाइफ में, मैं जब छोटा बच्चा था तो ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं 5 रुपए का कॉइन निकल गया था।
8: क्या बात, और मैं रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ।
9: जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं वो 5 रुपए का कॉइन निकल गया था और उसके बाद वो चोक हो गया, मुझे ब्रीथ आना बंद हो गई, सांस मैं नहीं ले पा रहा था। फिर मेरी मदर ने, जो कि जो इंडियन मदर्स होती हैं वो मुझे लगता है कि आधा डॉक्टर और आधा MBBS जैसी डिग्रियां उनके पास,
8: वो उलट पलट करके ठोक ठाक के निकाल
9: वो
8: देती
9: तमाम समस्याओं का इलाज वो जानती हैं, तो उन्होंने मुझे उल्टा करके और मेरे पीठ पे कई सारे मतलब थपकियां दी या मुक्के जड़े, जिस भी आप भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। तो और इट मतलब ये इट रियली वर्क्स, ये काम भी करता है, और मतलब 2-3 घूसों के बाद जो है वो कॉइन मेरे माउथ से बाहर आ गया और मतलब सडन मुझे एक लंबी गहरी सांस मिली और मैं बच गया। मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं भी मर जाता।
8: शायद स्पाइनल कॉर्ड एक सिग्नल भेजता है कि अगर नहीं निकालोगे तो मैं पीछे से टूट जाऊंगा।
9: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये होता है। होता क्या है, देखिए इसके पीछे का जो फिजिक्स है या जो भी मतलब साइंस है वो यही है कि पीठ पे ऐसे झुका करके थपकियां देने से कभी कभी जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसा कि अभी आपका क्वेश्चन था कि इसको मेडिकल में और मेडिकल लैंग्वेज में कुछ और भी कहते हैं, पीठ पे थपकियां देने से जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसको बेसिकली इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन या मतलब विंड पाइप ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब हम थपकियां देते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो वाइब्रेशन से और लंग्स पे प्रेशर पड़ने के वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो तेज़ हवा के साथ बाहर हमारे माउथ से आ जाता है। और इनफैक्ट हमारे मेडिकल लाइफ की जर्नी में, मेडिकल लाइफ की हिस्ट्री में हमारे ऐसा भी हुआ है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, मतलब मुझे लगता है एक 2-3 महीने पहले का इंसिडेंट है। इसमें एक पेशेंट वो मार्केट में खरीद रहे थे मटर खरीदते वक्त उन्होंने, बहुत से लोगों की आदत होती है वो छील के एक दो दाना खा लेते हैं क्योंकि कच्चा मटर भी मतलब अच्छा लगता है खाने में, तो खांसी आने के वजह से या किसी कारणवश वो उनके फूड पाइप में ना जा करके वो उनके विंड पाइप में चला गया।
8: कहते हैं नाक में चला गया, वो बहुत जलन भी होती है उसकी बात।
9: जी जी बिल्कुल। तो वो विंड पाइप में जाने के बाद अब उनको मतलब कफ के ट्रिगर्स आने स्टार्ट हुए, खांसी आना स्टार्ट हुई और बहुत ज़्यादा खांसते खांसते फिर वहाँ से उन्होंने वो अपने घर आए। बहुत देर तक, मतलब मुझे लगता है आधे घंटे 45 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली खांसने के बाद उनकी सांस वगैरह भी फूलने लगी और तब उन्होंने मुझे कॉल किया। जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने इमीडिएटली उनको बताया कि इनको करवट लेटा दीजिए और बोलिए करवट लेट के खांसे। तो करवट लेटाते ही मतलब विद इन 15-20 सेकेंड्स उनको खांसी आई और खांसी के साथ ही वो पूरा का पूरा मटर का दाना बाहर आ गया। तो देखिए ऐसा होता है पीठ पे थपकी देने से झुका करके, या फिर इसका और भी एक टेक्निक होती है वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये करने से मतलब मुझे लगता है एक 40-50% ऑफ द टाइम्स, मतलब 10 में से 4-5 बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें झटके से बाहर आ जाती हैं।
8: बिल्कुल। और अगर अभी तक आप नहीं समझ रहे थे कि चोकिंग क्या है तो इस इंसिडेंट से आपको कन्फर्म हो चुका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप चावल खा रहे हैं और आपने एकदम खाते खाते सांस ले ली है तो खाना फूड पाइप में जाने की वजह से वो कहीं अलग ही चला जाता है और फिर आपको खाती है खांसियां, आपकी आंख लाल हो जाती है, पानी भी निकलने लगता है,
9: सांस फूलने लगती है,
8: उसी घर वाले पानी पिला रहे हैं, वो हाँ, काम भी नहीं करता है।
9: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उस टाइम पे पानी पिलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे कंडीशन में एस्पायरेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब वो पानी भी फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चला जाता है और इसके वजह से मतलब वो आगे चल के लंग्स का इन्फेक्शन या मतलब आपकी समस्याएं और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी।
8: इससे मुझे भी एक याद आता है, केस मैंने भी रीड किया था। हम लोग बचपन से कहते थे कि अगर पेट में कोई बीज चला गया तो उग जाएगा, और मैं इमेजिन करती थी कैसा लगेगा इंसान पेड़ लेकर घूम रहा है।
9: जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है सभी के बचपन की यादें हैं और मुझे भी ऐसा लगता था कि सर पे ऐसे पेड़ लगते हुए लोग घूमते होंगे, बट ऐसा कोई दिखता नहीं था।
8: बट एक केस मैंने ऐसा पढ़ा था कि मटर का दाना ही था और उनके लंग्स में चला गया, तो उसने वहां पे सच में ग्रो भी कर लिया, उसकी जड़ें निकल आई थी।
9: हाँ देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे इंसिडेंसेस जो मेडिकल लाइफ से बिल्कुल परे होते हैं और मतलब प्रीवियस हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा गया होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, कई बार होता है। और इसीलिए खाने पीने का और इन सब चीज़ों की बेसिक जानकारी इंसान को होनी चाहिए और मुझे लगता है वही करने हम यहाँ पर आते हैं।
8: बिल्कुल। चलिए अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पार्शियल चोकिंग और एक दूसरा जो कंप्लीट चोकिंग में क्या फर्क होता है, यानी कि कंप्लीटली चोक करना और हल्का सा पार्शियल जब हम पानी पूरी वगैरह खा के अटक जाता है।
9: बिल्कुल, बहुत ही
8: है?
9: अच्छा ये प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न को समझाने के लिए मैं आपकी उसी बात को कोरिलेट करना चाहूंगा जिसे आपने कहा कि ओछू चढ़ जाता है, जिसको कुछ जगहों पे हूसू भी कहते हैं, भाषाओं का थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए ये जो चोकिंग है, अब इसमें आपका जो प्रश्न है कि पार्शियल चोकिंग और कंप्लीट चोकिंग में डिफ्रेंसिएशन क्या है, जब कभी भी हम नॉर्मल कुछ चीज़ें खाते हैं, स्पेशली कभी कुछ ज़्यादा तीखा खा लेने से अचानक हिचकी वगैरह आने से वो जो फूड पार्टिकल होता है हमारे विंड पाइप में जब चला जाता है तो हमको खांसी आने लगती है, सांस ले पाते हैं हम बट खांसी आती है और सीने में जलन होती है, आँखों से पानी और ये सारी चीज़ें जो अभी आपने बताई, ये कंडीशन आपकी पार्शियल चोकिंग कहलाती है। जब कभी भी फूड का कोई फूड पार्टिकल का कोई बड़ा हिस्सा जब हमारे गले में जाकर के चोक हो जाता है, स्पेशली जो जंक्शन होता है हमारे यहाँ थ्रोट में, जब हम इंट्यूबेशन करते हैं, मतलब जब कोई पेशेंट बेहोशी की अवस्था में होता है तो हम उसे वेंटिलेटर जब लगाते हैं तो उसको देख करके हमें विंड पाइप में ही वो ईटी ट्यूब फिक्स करनी पड़ती है। तो उस जंक्शन पे जहाँ पर वो फूड पाइप और विंड पाइप अलग होता है, उस जगह पर जाकर के कोई बड़ा फूड पार्टिकल ब्लॉक कर देता है और इससे सांस बिल्कुल नहीं आती है, मतलब एकदम सांस अटक जाती है, इनफैक्ट पेशेंट बोल नहीं पाता है, वो तुरंत मतलब तड़पने लगता है और और इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। जब कभी भी कुछ भी खाते वक्त अगर कोई इंसान बोल ना पाए, अचानक से वो उठ के छटपटाने लगे, हाथ पैर पीटने लगे, तो ये समझ जाना चाहिए कि इसको जो है चोकिंग की प्रॉब्लम हो गई है।
8: और इसीलिए शायद मैंने बचपन से सुना है कि खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाते वक्त हम बात करते हैं तो हवा भी साथ में लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो लग ही जाता है कि या तो अटक जाएगा, या तो मिर्ची बहुत ज़्यादा लग जाएगी, या तो वो फूड पाइप की जगह पर हमारी ब्रीथिंग पाइप में चला जाता है।
9: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विंड पाइप में चला जाता है। और इसीलिए ये सारे इंडिकेशंस बताए गए हैं कि हमें खाना खाते वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए लोगों को।
8: ऑलराइट, तो फिलहाल मुझे याद आई आपने हिचकी की बात कही थी, तो हिचकी से मुझे याद है लोग कहते हैं जब हिचकी आती है तो कोई ना कोई याद कर रहा होता किसी का नाम, लो हिचकी बंद हो जाएगी
9: जी।
8: बट साइंस कुछ और कहता है हिचकियों को लेकर के, कि अगर हिचकी खाना खाते टाइम आ रहा है तो मतलब कुछ अटक चुका है आपके गले के अंदर। अगर नॉर्मली आना स्टार्ट हुआ तो हो सकता है सांस की कमी हो रही हो, जिसमें अगर 3-4 बार अच्छे से डीप ब्रीथिंग करके होल्ड करते हैं तो हिचकियां बंद भी हो जाती है। मैं आपसे हिकअप के बारे में जरूर जानना चाहूंगी कि मेडिकल साइंस में जब हिचकियां किसी को आती, क्या सच में कोई याद करता है या फिर पक्का कुछ अटका हुआ है?
9: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा आपने प्यारा प्रश्न पूछा कि क्या हिचकियाँ आते वक्त वास्तव में लोग याद करते हैं। ठीक है, अगर लोगों का ऐसा मानना है, ऐसी अवधारणा है, ठीक है, मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन देखिए इसके पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट हैं वो कुछ हटके हैं। जो हिचकी यानी कि जो हिकअप्स होते हैं, ये हमारे बॉडी का एक मैकेनिज़म है। क्या मैकेनिज़म है आप इसको समझिए। खाना खाते वक्त हमारे जो फूड पाइप होता है, हमारा जो एसोफेगस होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो खाने को हमारे मुंह से लेकर के पेट तक वो डिलीवर करता है। कभी कभार उसमें फूड पार्टिकल का कोई मटेरियल अटक जाता है, चिपक जाता है, उसको वापस से नीचे सरकाने के लिए, उसको स्लोप डाउन करने के लिए हमको हिचकियाँ आती हैं। ठीक है, ये फैक्टर तो एकदम क्लियर है। बट हिचकी इस एकमात्र फैक्टर की वजह से नहीं आती है। जैसे समटाइम्स क्या होता है कि मान लीजिए आपके फूड पाइप में कहीं जैसे छाले हमको पड़ते हैं, अगर वो छाले पड़ रहे हैं तो उस जगह पर थोड़ा सा स्वेलिंग होती है, पेन होता है, रेडनेस होता है, इसके वजह से हमारे बॉडी को ऐसे सिग्नल्स जाते हैं कि वहाँ पर कुछ फंसा हुआ है और उसके वजह से खांसी आती है, मतलब हिचकी आती है, जैसा कि खांसी में होता है। खांसी में जब हमको ड्राई कफ होती है, जब हमें कफ नहीं आ रहा होता है, तो भी हमारी बॉडी बार बार खांसती है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है। जबकि इसका रीज़न होता है कि हमारे गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन होता है ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो ठीक उसी तरह हिचकी में अगर आपके एसोफेगस में किसी तरह का छाला पड़ा है, किसी तरह का अल्सर वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी को ये लगता है कि यहाँ पर कुछ फंसा हुआ है, जिसके वजह से हिचकी आती है।
8: और बहुत हंसने के बाद भी तो आती है।
9: बहुत हंसने के बाद भी ऐसा हिचकी आती है। और एक तीसरा कारण है जो कि हंसने वाले रीजन में भी मिला जुला है, एक समस्या होती है जिसको GERD के नाम से जानते हैं और ये कहलाती है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज।
8: ओके, एंड ये है क्या?
9: हाँ, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज जो होता है, यानी कि GERD, ये हमारे पेट की संबंधित एक ऐसी समस्या है कि जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, तो फिर वो वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह से मिक्स होता है, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होकर के खाने को बोलस में कन्वर्ट करने का भी काम होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जहाँ से हमारा, मतलब आपने उस डायग्राम में देखा होगा, आप इमेजिन करते हैं तो, कि जहाँ पे फूड पाइप ख़त्म होती है और वो आम के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, आमाशय या स्टमक जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक्चुअली एक वॉल्व होता है। मतलब वो जब खाना आकर के उसमें ड्रॉप हो जाता है तो वो वॉल्व क्लोज हो जाता है। कभी कभी वो वॉल्व जो होता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे पेट में, अंकुचन और प्रकुचन की प्रक्रिया होती है, तो वो जो बोलस होता है, वो खाना होता है, वो कभी कभी ऊपर आ जाता है। जैसे कुछ लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि खाना खाने के बाद वो जब उनको डकार आती है तो खाने का कुछ अनाज के कुछ पार्टिकल्स या पानी वगैरह गले तक आ जाता है, माउथ में तक आ जाता है,
8: जब हम
9: ओवर ईटिंग वगैरह करने पे। तो ये ओवर ईटिंग करने पे होता है, बट कुछ लोगों को जनरली कॉमनली ऐसे हुआ करता है। ये समस्या कहलाती है GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। तो इस कंडीशन में भी हमको हिचकी की समस्याएं ज़्यादा आती हैं, मतलब ऐसा बार बार हिचकी आती है क्योंकि रिफ्लक्स के वजह से फूड पार्टिकल्स वो स्टमक से निकल करके और हमारे एसोफेगस में आके चिपक जाते हैं। तो ऐसे कई सारी मिली जुली चीजें हैं जिसके वजह से हमको हिचकियां आती हैं।
8: चलिए सर अब बात करते हैं पानी की। अब आपने कहा होगा पानी से किसको ही चोक हो रहा है, बट हमारे यहाँ पर एक लाइन है कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो कभी कभार फंदा लग जाता है और यहाँ पे गले में बहुत तेज दर्द भी होता है।
9: बहुत तेज दर्द होता है जी।
8: क्या कोई पानी से भी चोकिंग हो सकती है कभी? एंड ये खतरनाक हो सकती है?
9: बिल्कुल खतरनाक हो सकती है, और ये भी एक तरह की पार्शियल चोकिंग के ही अंतर्गत आएगा। जब हम पानी पीते हैं तो चूंकि जैसा खाना के साथ ये पॉसिबल है कि विंड पाइप में चला जाए फूड पाइप में जाने की अपेक्षा, ठीक उसी तरह ये भी पॉसिबल है कि पानी पीते समय वो भी विंड पाइप में चला जाए फूड पाइप में जाने की अपेक्षा। तो ये पानी पीते समय भी जो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज गले में दर्द होता है, वो भी यही कंडीशन होती है। पानी जो है वो हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाता है और उसके वजह से जो मतलब
8: okay, मैं आपको रोकना चाहूंगी।
9: ठीक है, हमारे कोई लिसनर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।
8: हेलो,
10: नमस्कार।
8: नमस्कार जी, आपका नाम?
10: राजकुमार तिवारी बोल रहे हैं।
8: जी राजकुमार तिवारी, आपका स्वागत
10: है। हमारे भी बहुत आती थी।
8: एक सेकेंड सर, मैं आपको राहुल सर से कनेक्ट करता
9: हूँ। जी, आपने आपका नाम राजकुमार तिवारी बताया।
10: जी जी,
9: बहुत बहुत स्वागत है। और आपने ये भी बताया कि आपको हिचकी बहुत आती थी।
10: हाँ आती थी, लेकिन जब हम खाते हैं तो हम जो उसमें मुँह में कवर डालते, छोटा छोटा डालते, पानी लेकर बैठते तो हिचकी नहीं आती।
9: ठीक है,
10: बार खाएंगे तो पानी देंगे।
9: अच्छा, देखिए वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित तरीका नहीं होता है, ऐसा करना हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ें खाया करें, और हिचकियाँ आने के लिए मैं आपको कुछ अच्छी हैबिट्स बताता हूँ जिनको आप फॉलो किया करें। पहली चीज़ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि खाना खाने के तत्काल बाद आपको लेटना बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ी दूर चलें, या फिर अगर चल नहीं रहे हैं तो बैठे रहें, बट लेटे हुए अवस्था में तो बिल्कुल नहीं जाना है।
10: खाना खाने के बाद कम से कम 10 राउंड लगाते हैं।
9: हाँ, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं आप। और इसके अलावा बाकी
10: खाना खाने के बाद कुदार भी चलाते हैं।
9: कुदार भी चलाते हैं, ठीक है। देखिए खाना खाने के तुरंत बाद कुदार वगैरह चलाना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा समय देना चाहिए खाने को पचने के लिए, एक आधे घंटे का समय भी देंगे तो अच्छा रहेगा।
10: 2-4 70 राउंड लगा लिया, उसके बाद में चला देते हैं तो खाना सही समय से पच जाता है।
9: सही समय से पच जाता है, ठीक है। फिर बाकी तो आप अच्छी डाइट्स का पालन कर रहे हैं, बट खाना
10: जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक खाना शरीर में पचता नहीं है।
9: अच्छा,
10: हाँ
9: ठीक है।
10: जब इंसान करता रहेगा, मेहनत का काम करता रहेगा, खाना समय से खाता रहेगा तो कोई बीमारी भी नहीं लगती है।
9: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि जब इंसान मेहनत करता रहेगा तो उसके खाने की पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी।
10: जी,
9: इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं आप तिवारी जी?
10: मैं बस इतनी जानकारी जानना चाहते थे बस।
9: ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो ज्ञानस्थली में कॉल करने के लिए। और हमारे एक लिसनर भी जुड़े गए थे हमारे साथ, उन्होंने भी बताया कि उनको हिचकी काफ़ी ज़्यादा आती थी, बट उन्होंने कुछ अच्छी हैबिट्स भी बताई जिनका वो पालन करते हैं। चलिए उन्नति मैम से जानते हैं कि अगला उनका क्या प्रश्न होने वाला है।
8: जी, हम पानी की बात कर रहे थे, पानी से भी चोकिंग हो रही है जिसको तो शायद हम पीते हैं अगर चोक हो जाए तो।
9: जी बिल्कुल, और मैं ये बता रहा था कि जैसा खाने के साथ ऐसा हो सकता है तो पानी के साथ भी ऐसा होता है। पानी फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में चली जाती है, और जिसके वजह से बहुत ही क्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब जो हमारी गला होता है, जहाँ से वो जंक्शन होता है जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप सेपरेट होती हैं, वहाँ पर बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके वजह से हमें दर्द महसूस होता है, और उसके बाद मतलब लगातार बैक टू बैक खांसियाँ आने लगती हैं।
8: चलिए अब एक और सवाल करते हैं हम आपसे, क्या किसी को अगर चोकिंग हुई है, किसी का गला चोक हो गया है, तो क्या हमें उन्हें पानी पिलाना चाहिए या फिर नहीं?
9: देखिए अगर पार्शियल चोकिंग है, जिसमें अगर कुछ तीखा वगैरह खा लेने से ऐसा हो गया है, जिसको लोग कहते हैं कि पानी सरक गया या खा रहे थे सरक गया, ओछू चढ़ गया, हूँसू चढ़ गया, तरह तरह की जो है टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, ऐसी अगर चीज़ें हैं तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी पीने में ध्यान रखें बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी,
8: सिप
9: करके, ताकि वो थोड़ा सा पानी आपके फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहे। अगर कंप्लीट चोकिंग है, मतलब ब्रीथ नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में पानी पिलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, और ऐसे कंडीशन में पेशेंट को पानी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
8: ओके, अच्छा सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जब भी हम मेडिसिंस खाते हैं एंड पानी भी पीने के बाद मेडिसिंस शायद वो पेट के अंदर भी चली जाती है लेकिन गले में फील होती रहती है कि यहीं अटकी हुई है
9: जी.
8: ये क्या चीज है?
9: देखिए अब बहुत सारी मेडिसिंस ऐसी होती हैं जो इमीडिएट डिसॉल्विंग होती हैं. इमीडिएट डिसॉल्विंग का मतलब ये हो गया कि वो मुंह में रखते ही मतलब जब पानी के कॉन्ट्रैक्ट में आते ही मतलब पानी के संपर्क में आते ही वो गलने लग जाती हैं. तो कई बार कारण ये होता है कि चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिटर इन टेस्ट होती हैं और वहाँ पे रखते ही वो मेल्ट होने लगती है तो उस दवा का मेडिसिन का कुछ हिस्सा वहाँ पर चिपका रह जाता है और हमें कुछ देर तक ऐसा फील होता है कि दवा वहीं पर अटकी हुई है.
8: बेशक. और ऐसा अक्सर होता है हम पानी पे पानी पीते जाते हैं कि शायद ये हट जाए, कुछ तो दिक्कत हो रही है.
9: जी जी बिल्कुल. बट थोड़ी देर में धीरे धीरे वो दवाई मेल्ट होकर के पूरी तरह से पेट में चली जाती है और ये आपको ऐसा फील होना भी बंद हो जाता है.
8: चलिए सर, अब मैं आपसे वो सवाल करती हूँ जिसकी जरूरत आई थिंक सबको है. सब समझ चुके होंगे कि चोकिंग क्या होती है लेकिन इससे बचना कैसे? अगर कोई आपके आसपास चोक हो जाता है या आप खुद ही हो जाते हो और आपके आसपास कोई है ही नहीं, उस दौरान इंसान क्या करे?
9: देखिए ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि अगर ऐसा हो जाए कि आपके आसपास कोई नहीं है तो
8: क्योंकि एक्चुअली कई बार ऐसा होता है हम घर पे अकेले होते हैं, कोई नहीं होता है और हम घर पे जब अकेले होते हैं तो खुराफाती दिमाग कहता है किचन में बहुत कुछ रखा है चलो खाया जाए.
9: जी बिल्कुल. देखिए सबसे पहले तो अगर बात इसकी की जाए कि हमें इसे बचना कैसे है तो इसका ध्यान रखें कि जब भी आप खा रहे हों छोटे छोटे निवाले खाएं. स्पेशली मैंने देखा है कि वो लोग जो बहुत जल्दी बाजी में खाना खाते हैं और ज़्यादा ज़्यादा खाना
8: एक ही बार में सब
9: जी जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो खाना कभी भी जब आप खा रहे हैं तो छोटे निवालों में खाएं, अच्छे से खाएं, देर तक चबा के खाएं. और इसके अलावा पानी पीने का भी ध्यान रखें कि खाना खाते समय चबाते वक्त और एक साथ पानी ना पिएं. बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जब खाना खा रहे होते हैं तो अभी खाना माउथ में उनके रहता है तो चबाते चबाते ही वो पानी भी पी लेते हैं. ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता है. आपको अगर पानी पीना है तो आप पहले उसको चबा करके पूरी तरह से ख़त्म कर लें, उसको निगल जाएं और उसके बाद पानी पिएं. इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए खाते पीते समय अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है चोकिंग जैसी समस्या से आप बच सकते हैं. अब अगर किसी को चोक हो ही जाता है तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि अगर किसी दूसरे को चोक हो गया है तो आपको उसकी हेल्प कैसे करनी है. देखिए अगर आप इसको समझाना चाहें मुझे लगता है कि हमारे जी बिल्कुल.
11: नमस्कार
12: जी, आपका स्वागत है क्लिनिक ज्ञानश्री में. आपका नाम बता दीजिए प्लीज.
11: श्री देवी प्रसाद
12: जी. देवी प्रसाद जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं. राहुल से कनेक्टेड है.
11: नमस्कार डॉक्टर साहब को.
9: जी नमस्कार देवी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
11: सर यही प्रॉब्लम है कि जैसे भोजन कर लो उसके बाद में
9: जी
11: कुछ देर बाद पानी पियो, उसके बाद में जैसे रहता है कि खाना पच नहीं रहा है सर. और मैंने बहुत डाइट किया, मतलब बहुत हर चीज को पालन किया लेकिन सही से आराम कोई मिला नहीं सर.
9: अच्छा.
11: और दूसरा सवाल ये है कि जैसे शरीर में थकावट महसूस हो रही है. और तीसरा सवाल है थोड़ा दांत का प्रॉब्लम है सर. जी
9: ठीक है देवी प्रसाद जी, आपने अपनी समस्याएं बताई. क्या आपने कभी अपने कुछ जो बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे LFT, थायराइड, ये सारे टेस्ट कराए हैं?
11: कोई नहीं कराया है.
9: जी बिल्कुल. मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे कि CBC, थायराइड प्रोफाइल और लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह, ये कुछ टेस्ट कराएं क्योंकि कई बार थायराइड से संबंधित समस्याओं में भी ऐसा हो जाता है. अब आते हैं आपकी समस्याओं के सिम्टोमेटिक निदान पे. तो जो आपको समस्याएं हैं उनमें आप मतलब जब भी आप खाना खाते हैं तो देर तक चबा के खाना, खाना खाने के बाद पानी देर से पीना मतलब तुरंत बाद पानी ना पीना, इन सभी चीज़ों का पालन करके थोड़ा सा उसमें बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं. बट अगर उसके बाद भी आपको ये अच्छी और हेल्दी डाइट्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको उसमें आराम नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि फिर आपको मेडिसिंस का सहारा लेना चाहिए क्योंकि कई बार किसी समस्या की वजह से, किसी कमी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हमको ऐसे लक्षण आते हैं.
11: जी सर.
9: जी तो मुझे लगता
11: है ऐसे कहने का मतलब है इस समय लगभग 15-20 दिनों से ऐसा हो रखा है कि अगर कहीं पर बैठ जाओ
9: जी
11: फिर उसके बाद में उठने में प्रॉब्लम हो रही है, और जब चला करो तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है, वैसे जोड़ों में दर्द रहता है, हाथों हाथ के गठिया उठिया में, हाथ पैर में, पूरे शरीर में दर्द होता रहता है। जब कोई दवा खा लो तो दवा जब तक आसार रहता है तब तक आराम रहता है सर।
9: अच्छा, आपकी उम्र कितनी है देवी प्रसाद जी?
11: लगभग 30-31।
9: 30-31 साल। देखिए वैसे ऐसी उम्र में ये चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा सामान्य तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि कुछ कैल्शियम की कमी वगैरह की वजह से, या फिर कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके वजह से ये समस्याएं आती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मिल करके और एक बार अच्छे से अपनी समस्याओं पर विस्तृत कंसल्टेशन करना चाहिए मुझसे।
11: जी
9: जी, तो ज़रूर।
11: हाँ, दाद वाला प्रॉब्लम के बारे में बताइए।
9: हाँ ठीक है, देखिए कई बार वो कुछ तरह के फंगल इन्फेक्शंस की वजह से और ऐसी समस्याओं की वजह से ऐसा होता है, कई बार हार्मोनल समस्याओं की वजह से भी होता है, बट ऐसी उम्र पर मुझे लगता है कि ये फंगल समस्याओं की वजह से या किसी प्रकार के संक्रमण की वजह से हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको खा करके आप इससे निदान प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो दवाइयाँ हम आपसे शेयर करें तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको शेयर कर दिया जाएगा।
11: सर छोटी मोबाइल चल रहा है हमारे पास में।
9: ठीक है, आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पे संपर्क करेंगे और वहाँ से हम फोन के माध्यम से भी आपको दवाइयाँ बता सकते हैं और आप दवाइयाँ कहीं नोट कर सकते हैं।
11: जी सर
9: जी, तो आप
11: और कहीं पर मिल सकता है?
9: जी वो दवाइयाँ आपको कहीं भी मिल सकती हैं, आप किसी भी जनरल मेडिकल स्टोर पे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं।
11: ठीक है सर, बताएंगे।
9: ठीक है, इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं आप?
11: और कोई जानकारी नहीं सर।
9: ठीक है,
11: आप आते हैं इसलिए हम बहुत आपसे आभारी हैं सर।
9: जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये कीमती फीडबैक साझा करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।
11: ओके बाय।
9: हमारे एक प्यारे से लिसनर जुड़े थे और इन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी हमारे साथ साझा की। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं उन्नति मैम अगला प्रश्न क्या पूछने वाली हैं।
8: जी अगला प्रश्न हम यही कर रहे थे कि अगर हमारे आसपास किसी को चोकिंग की प्रॉब्लम हो या फिर किसी ने कोई चीज खाई है और वो चोक हो जाए, तो हर किसी को तो हम उल्टा करके नहीं ठोक सकते हैं ना।
9: जी हाँ बिल्कुल,
8: बच्चे होते हैं तो उन्हें अपने कंधे पे लिटा के उनको उल्टा करके हम ठोक सकते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वीडियोस में ऐसे भी दिखाते हैं कि अगर आप चेस्ट के नीचे जहाँ पे आपकी पसलियां होती है उससे नीचे अगर आप प्रेस करते हो 3 सेकंड तो शायद वो निकल जाता है।
9: एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को और विस्तार में बताऊंगा आपको कि कैसे आप इन चीज़ों से किसी दूसरे को आप बचा सकते हैं चोकिंग जैसी घटना और समस्या का शिकार होने से। इसके लिए आपको कोई भी मान लीजिए विक्टिम है जिसको खाना खाते वक्त या कोई भी चीज़ गले में चोक हो गई है और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये चोकिंग है, जिसका लक्षण भी मैंने आपको बताया कि वॉइस नहीं निकलेगी, सांस नहीं आएगी, वो पेशेंट छटपटाएगा, अपने हाथ पैर पटकेगा और आपको इशारे में जो है वो आंखों में पानी भी आएगा और इशारे में वो बताने की कोशिश करेगा, आंखें बहुत देर तक वो कंटिन्यूअस खोल के नहीं रख पाएगा, ये लक्षण होते हैं। अगर ऐसा किसी भी विक्टिम के साथ आपको दिखता है तो सबसे पहले तो आप उसको पीछे से पकड़ें, जैसे जैसे एक इंसान किसी को सामने से हक करता है वैसे पीछे से आप उसको पकड़ें, और पीछे से पकड़ने के साथ ही साथ उसके जो दोनों पसलियां जहां पर बीचों बीच में आपस में मिलती हैं
8: वहां पर जहां डायफ्राम होता है।
9: जी बिल्कुल, जहां पर डायफ्राम होता है, और एक्चुअली वो डायफ्राम को ही प्रेस करना होता है, लेकिन अब हम डायफ्राम लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि मुझे लगता है कि डायफ्राम बहुत ही सरलता से लोग मुझे लगता है नहीं जानते होंगे। तो पसलियां जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर, चूँकि क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसके जस्ट नीचे हमारा स्टमक होता है, और वहाँ पर जहाँ पर आप हाथ रख रहे होते हैं पसलियां जहाँ पर आपस में मिलती हैं वो हमारा डायफ्राम होता है। तो वहाँ पर एक मुट्ठा रखने से, अगर आप ऐसे समझें तो एक मुट्ठा रख करके और दोनों हाथों से बहुत तेजी से पीछे खींचना है, इतना तेजी से पीछे खींचना है कि उसके पेट में जो कुछ भी है वो वॉमिटिंग कर दे, उल्टी कर दे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारा लंग्स भी कंप्रेस होता है, ठीक है, फेफड़ा भी कंप्रेस होता है, तो इससे फेफड़े के द्वारा जो एयर एक्सहेल होती है, मतलब हवा जो बाहर होती है, और कभी कभी पेट में जो भी बोलस है, जो भी खाना पानी खा रखा है, वो वॉमिटिंग के साथ साथ जो भी चोक का पार्टिकल है जिसने चोक कर रखा है वो हमारे मुंह से बाहर निकल आता है। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पीछे से हक करना है, पसलियाँ दोनों आपस में जहाँ बीचों बीच छाती के नीचे मिलती हैं वहाँ पर हाथ रखना है, मुट्ठा बनाना है ताकि वो मुट्ठा अंदर तक धंस सके, और दोनों हाथ लगा करके ज़ोर से अपनी तरफ खींचना है, मतलब उसको दबाना है पीछे, जितना तेज़ आप दबा सकते हैं, एक से दो बार में, तीन बार में आपको दबा देना है, क्योंकि अगर दो से तीन अटेम्प्ट में वो नहीं निकला तो फिर कभी कभी कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जितना आप पॉसिबल है दम लगा करके झटके से, वो भी दबाना नहीं है, बहुत ज़्यादा एक झटके से शॉक देना है ताकि वो जो भी पार्टिकल है वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाए।
8: चलिए बात करते हैं कि अगर किसी को चोकिंग होती है, कंप्लीट होती है, तो उसके पास कितना वक्त होता है मेडिकल तक पहुंचने के लिए।
9: देखिए, अगर किसी को कंप्लीट चोकिंग हो गई है और उसको किसी तरह की हेल्प वहां पर नहीं मिल पाई है, तो चूंकि उसके पास बहुत ही कम समय, एक 5 से लेकर 10 से 15 मिनट तक ही, मतलब आप अगर समझ सके तो 5 से लेकर 15 मिनट तक का समय होता है कि उसको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि कंप्लीट चोकिंग में ब्रीथ एकदम रुक जाती है और विदाउट ऑक्सीजन 5 मिनट से ज़्यादा इंसान नहीं जीवित रह सकता है, तो उसको इमीडिएट आपको सपोर्ट देना है, मेडिकल सपोर्ट देना है, और मतलब चोकिंग जैसे केस में मेडिकल हेल्प के आने तक वेट करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप खुद ट्राई करके और उसको खुद से उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मेडिकल हेल्प कितना भी फास्ट आएगी तो भी उसमें 10-15 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं, बट अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं और उसको आप डी चोक कर देते हैं तो इमीडिएटली उसको तुरंत राहत मिल जाएगी और वो आराम से फिर जा करके मेडिकल एडवाइस ले सकता है।
8: अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पड़ो के साथ तो हम पीछे से हक करके उनकी उस चोकिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा 5 महीने का 6 महीने का है, हम उसको उसके साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, उसकी तो पसलियां भी टूट जाएंगी
9: जी, बिल्कुल,
8: जान लगाते हैं।
9: जी बिल्कुल।
8: तो अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है और घर वाले सही टाइम पर पहचान जाते हैं कि बच्चे ने सिक्का बटन या फिर कोई भी ऐसी चीज निगल ली है, तो वो कैसे निकाली जाए?
9: देखिए, अब इसमें जो हमारे इंडियन मदर्स हैं उनका ही जी बिल्कुल यही टेक्निक सबसे ज़्यादा कारगर होती है। ऐसे कंडीशन में बच्चे को झुका करके, और ऐसा झुका करके कि जो उसका हेड का फेज हो वो पेट के फेज से नीचे आए लेवल, ठीक है, ऐसा करके और नीचे एक सपोर्ट दे करके पीछे ऊपर हाथ पे ऐसे थपकी बना करके और ज़ोर से थपकी मारना है, बीचों बीच सेंटर में थपकी मारना है, साइड में नहीं मारना है, और ज़ोर से थपकी मारना है, और ऐसा ज़ोर से थपकी मारने पर 2-3 थपकियों में वो बाहर आ जाता है चोक पार्ट।
8: और मैं आपको बता दूं कि मुक्का नहीं मारना है, पंचेस बना के मत मारिएगा, नहीं तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट
9: जाएगी। इसीलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि आपको थपकी मारनी है बट ज़ोर से मारना है ताकि वो वाइब्रेशन से और प्रेशन से वो चला जाए, और नीचे से आप हाथ लगा करके भी दोनों हाथों से मतलब प्रेशर दे सकते हैं।
8: ऑलराइट, तो फिलहाल ये सारे सवाल थे जो आपको जानने थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि चोकिंग को लेकर के अभी तक सोसाइटी में मिथ्स क्या क्या है?
9: देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रश्न नहीं है, और कई सारे ऐसे भी मतलब देखने को घटनाएं मिली हैं जहां पर चोकिंग को लोग समझ नहीं पाए हैं और कुछ दूसरा समझ करके वो लोगों ने कीमती वक्त गंवा दिया है। देखिए, चोकिंग को लेकर के कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये अटैक है, मतलब चोकिंग को और हार्ट अटैक को लोग मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का हार्ट अटैक है। कई बार पेशेंट्स ये बता भी नहीं पाते हैं, कई बार कई सारे केसेस में पेशेंट्स ने बताया है कि इशारे में बताया कि कुछ खाया है हमने, वो हमारे गले में फंस गया है, तो ऐसा लोगों ने समझ लिया है। बट कई केसेज में ऐसा भी पाया गया है कि लोगों ने उसको अटैक समझते हुए और उसमें कुछ भी ना करना ठीक समझा है। कई बार लोगों ने CPR देना स्टार्ट किया है। देखिए, ऐसे कंडीशन में CPR देना ठीक नहीं होता है,
8: एक्चुअली वो और ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा।
9: जी, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना समझिए कि जो चोकिंग होता है उसमें ब्रीथ कम्प्लीटली चोक हो जाती है, बट जो अटैक होता है उसमें ब्रीथलेसनेस होती है, शॉर्ट ब्रीथ होती है, सांस अटकती है बट सांस आती है।
8: बट हार्ट अटैक के ये भी तो सिम्टम्स होते हैं कि उनको पेन होता है, उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, और चोकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, खाते खाते कुछ अचानक से अटका।
9: बिल्कुल। और देखिए, जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है वो उठ के छटपटाता नहीं है, तड़पता नहीं है, वो बैठेगा, लेटेगा या गिर जाएगा, फेंट हो जाएगा, ठीक है।
8: इंसान वो खड़ा भी हो सकता है जिसको चोक हुआ, हाँ, है, वो बैठा भी हो सकता है।
9: बिल्कुल। और इनफैक्ट जो चोक वाले पेशेंट होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, वो सबसे पहले वो खड़े ही होते हैं, खड़े होते हैं, और ऐसा देखा गया है कि वो तुरंत हाथ पीटने लगते हैं,
8: क्योंकि
9: रिस्पॉन्स, ये बॉडी का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो तुरंत टेबल पे या जिस भी चीजें उनके पास अवेलेबल होती हैं वो उस पे हाथ जो है वो पीटने लगते हैं। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो इसके मतलब जो भ्रांतियाँ हैं वो यही हैं कि लोग इसको कभी कभी अटैक समझ लेते हैं, कई बार लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बार कुछ और तरह तरह की लोग बातें बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ मिली जुली चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं।
8: और मैं एक बार वापस से कहना चाहूँगी, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, जस्ट लाइक आप अंगूर खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले अंगूर को ढंग से खा लीजिएगा, उसको उछाल के खाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली अंगूर ही अटकता है क्योंकि हम उसको खेल में खाते हैं।
9: बिल्कुल बिल्कुल, खेल में खाते हैं। और चूंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है ओवल शेप्ड, ये एक ऐसा मतलब स्पेसिफिक होता है कि ये स्लिप करके और मतलब हमारे फूड पाइप में ही जाके फंसता है।
8: बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है हम टॉफीज को दिखा करके खाते हैं कि देखो हम तो बहुत अच्छे तीरंदाज हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो अचानक ऐसा होता है कि खाना रखना तो होता है दांत के नीचे, पहुंच वो गले में जाता है।
9: पहुंच वो गले में जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है।
8: और इसीलिए खाना खाते टाइम बातें ना करें। अगर आपके घर के बड़े लोग ही आपसे कहते हैं कि खाना खाते टाइम ज्यादा मुंह ना चलाएं, तो मतलब चबाने के लिए चलाएं, बातों के लिए
9: ना चलाएं। और मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े हैं उनको अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, उनको इसके बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादातर शिकार बच्चे बनते हैं।
8: बिल्कुल,
9: तो उन्हें ये समझाना चाहिए कि चोकिंग क्या होता है, ऐसे कंडीशन पे करना क्या है और इसे बचना कैसे है।
8: अच्छा सर, कोई अगर अकेले ही है और वो अगर ऐसी कंडीशन में कंप्लीट चोकिंग में फंस गया तो वो क्या करे?
9: हाँ देखिए, बिल्कुल ये अच्छी चीज है कि कोई अगर अकेला ही है तो वो ऐसे कंडीशन में क्या करे। देखिए, उसको जो अल्टीमेटली करना है वो ये है कि उसको अपने आप से वॉमिटिंग इंड्यूस करानी है।
8: अब ये वो कैसे करेगा?
9: जी, वॉमिटिंग मतलब इंड्यूस करानी है उसको, ऐसा करना है कि उसको वॉमिटिंग आए। इसके लिए कभी कभार क्या होता है कि फिंगर इंसर्ट करने के लिए, जो हमारे थ्रोट में फिंगर इंसर्ट करते हैं, इसके वजह से हमको तुरंत वॉमिटिंग आ जाती है। नीचे बैठकर अपने पैरों पर, जिसको साधारण भाषा में उकड़ू बैठना कहते हैं, तो ऐसे अवस्था में बैठ करके कई बार फिंगर इंसर्ट करके, मतलब आप जैसे भी ये कर सकते हैं, पेट पे एक बैग कंप्रेस करके, कई बार अपने पेट को मतलब जिस जगह पे है वैसे खुद भी कंप्रेस करके, और जैसे अनुलोम विलोम हम करते हैं अपने पेट को सडन अंदर खींचते हैं, ऐसा खुद से भी ट्राई करके हम अपनी जान बचाने का प्रयास कर सकते हैं।
8: ओके, तो भाई अगर आप अकेले हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, और किसी के साथ है तो ख्याल रखिएगा कि उन्हें चोकिंग है कि हार्ट अटैक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार हम करने तो कुछ अच्छा चाहते, वो कहते हैं ना, करने तो हम कर्म गए थे, हो कुछ और
9: वो कांड जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता
8: और ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअल कंडीशन यहाँ पर क्या बन रही है।
9: जी,
8: आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल, खाना आराम से खाइए, ज़्यादा शोर मचा कर नहीं खाइए, पानी भी बैठकर पीना ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ हम चाहेंगे अब आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोरा शहर की धड़कन, रेडियो कैनसली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग। एक्चुअली
9: ठीक है, दिन भी गुड ही है।
13: स्वागत।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: राम राम चाची।
2: राम राम बहनी। आज पधर का तू यही जून आएगे?

0: चलो उनके कमरवा ठंड हुई वही वल्ला जाई।
1: हाँ हाँ चला जाए।
0: चलो चलो चलो चलो, चलो, चलो, चलो। चटपटी चाची सूतिन हुई है, वह जब देखो तब सूतिन रहा थी,
1: दिन भर सोवा कर।
0: हाँ ये चाची अब कतना बहनी नट्टी फारी तब इनका हम गोहराई। ओ चाची चटपटी चाची।
2: अरे के है इतना चल्ला चिल्लात है बताओ, दोपहरिया भर खट खट पट पट खट खट पट पट हमार दरवाजा तू डर यही लोग।
0: तो हम का करी, तू तो अपन ठंडा चलाए के सूत जाती हो।
2: अच्छा तो दुलारी को हिम्मत ना है कि हमारा दरवाजा इसे खटखटा सके। हा?
0: हाँ तो हम पल्लवा तूर दिया भाई, खोल दिया।
2: बहनी एक दिन तू जो है डांट खाइयो
0: ठीक है कर?
2: अब ऐसे दरवाजा तोड़ी हो और तो, लोटन चाचा खल जाइए।
0: तब लोटन चाचा से हम बता देवे ना कि सूती रहती ठंडा कमर हम, तब ये सूती रहती तब ये खोलते नहीं पल्लवा हम चकरी।
2: चलो चलो अच्छा अंदर आओ, देखो एसिया चलत है ना।
0: लड़का
2: देखो समझा करो।
0: हाँ
2: एसिया जब चलत है ना
0: हाँ,
2: तो हमका दरवाजा दरवाजा सब बंद रखत पड़त है।
0: वो का है चाची
2: सब ठंडिया बाहर भाग जाई।
0: तो खोल दो हमारे घर तक चली जाए ठंडिया।
2: अच्छा
0: कि नहीं पदर का
1: सही बात है,
0: थोड़े पदर के घर चलिए, थोड़े हमारे घर है,
2: थोड़े घर का है क्या, पूरे गांव जा ही है सवा ठंडी ठंडी।
0: हाँ
2: खोल दे खिड़कियों खोल दे और सब दरवाजा खोल दे तो ना जान पई हो।
0: ये चाची हम एक ठो बोरिया ले आई सफेद रंग के।
2: हाँ
0: वही बोरिया में ही हवाइया भर दो अपने घर में जाई, ऐसे उली से दे तो हमारे घर ठंड हो जाए।
2: तो ठीक है जस जस जाओ तो कहो तुका समझाओ, बड़ा मुश्किल है।
0: तो हम काल जब अइबे तब ले अइबे एक ठो बोरा।
1: हां जी हम
0: ले ले आए।
1: ठीक ठीक
0: है। हां और इनके ही दरवाजा खोल दे तो हवाइया भर लीन जाए।
1: हां
0: और ठंड ठंड अपने घर वाले जाबे।
1: सही बात है चाची,
2: आज हमारा मूड बहुत खराब है।
0: ई कहा चाची मूड का है खराब।
2: देखो सिवमुआ है इतना जवाब दे लगा, इतना जवाब दे लगा, हम इतना समझाए थे कि ये सब नहीं ठीक है। अब बताओ जिका 9 महीना पेटे में रखा पालो जियाओ
0: हाँ।
2: और वो लड़का अगर कुछ बोल दे तब कितना खलत है,
0: बहुत खलत
2: है।
0: हाँ तब इतना
2: ममता है ये समझते नहीं है क्या कि हम ममता मारे का डांटित है फटकारित है कि तुहार जो है सब अच्छा रखो अपन व्यवहार अच्छा रखो है?
0: हाँ एक बात जान लो चाची कि अब आज कल के जो लौंडे लपाड़े बिटिए हैं वो सब ऐसा नहीं बाटे
2: ना ही, तो ये ना ही ठीक लागत है ना।
0: हाँ
2: कि पूरे जवाब दे दो।
0: हाँ तो ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है।
2: तो तनी समझाओ बहनी तू समझाओ है।
0: हम समझाए दे भाई समझाए दे भाई।
2: अब सवेरे हमारा रोवत बीता है।
0: अरे ये बस ये सना करो बहनी
2: का करी ऐसे जवाब कोनो दई दे।
0: हाँ
2: तो इतना खलत है कि हम
0: जवाब फाट
2: जाते
0: जगह 9 महीना कुखी हम रखे हो हाँ? और ते जो है चले सिखाए बोले सिखाए
2: और
0: ते जवाब दे।
2: वहाँ पर आज जो है मातृ दिवस कहा जाता है, आज मातृ दिवस है जाने की नहीं जाने
0: का होता है,
2: आज महतारी लोगों का दिन होता है जानो।
1: ठीक है इसे
0: तो महतारी लोग क्या करें,
2: अब महतारी लोग करें कुछ ना मतलब मनावा जात है उनका इज्जत दे के लिए और उनका सम्मान दे के लिए।
0: हाँ हाँ
2: तो एक दिन रखा गया है कि उनका कहा था मदर डे जानो, मदर माने माँ होता है
0: हाँ।
2: और डे माने दिन, महतारी का दिन।
0: तो हे चाची हमारे बगलियम कुल बतवात रहे
2: हाँ।
0: कि आज मर्डर डे है।
2: मर्डर डे नहीं मदर डे कहीं नहीं है
0: मर्डर यह है कुल कर सुनी लो। तो हमारे बजेंद्रवा कहिस कि यह दादी कुछ जानी हो तो हम कन का कहीं आज मर्डर डे है तू का मार डारब। तो ये का होता है हमारी कुल समझ में नहीं आवा कि का
2: हां बस हिंदर बहुत शैतान है।
0: हां
2: हां उनका समझाओ मर्डर डे नहीं होते मदर डे होते, उनका बताओ मदर माने माँ होता है।
0: हां
2: हां उनका समझाओ
0: मोरा ही की सोई जाए जानती
2: है नहीं नहीं हो सकता है लड़का है ना
0: हाँ,
2: छोट मुनि
0: ना जान पाई सो
2: हाँ, ना जान पाई सो तो
0: मदर डे का मर्डर डे कहीं
2: सुन ली सो।
0: हाँ कहीं कि आज मर्डर डे है
2: हाँ,
0: तो हम कह नहीं कुल नहीं होता, हम जावे अब अपने चटपटी चाची से पूछा का होता है
2: बताओ कि मदर डे होता है मर्डर डे नहीं होता है, हमें तो सुनेगा कि नवा डे निकल गया है
0: मर्डर डे है।
2: अमेरिका वाले का बतावे पड़ी एक डे हमारे गांव में जो है सचर गा है कहो तो मर्डर डे।
0: तो हम का करी वो है हमसे बताई चाची हम का करी कि मर्डर डे है आज आज ही आज मर्डर डे है।
2: अमेरिका वाले सुन ले तो यहो डे बनावे लगी है जैसे मदर फादर डे होता है मदर डे होता है
0: हाँ।
2: और तमाम डे होता है पेरेंट्स डे होता है
0: हाँ।
2: तो एक नवा डे निकला है मर्डर डे
0: हाँ। चाची

0: कोई खुटकावा है? पर अरे आवे दो, खुला तो है पल्लवा, बताए दो आ जाए अंदर।
1: ए, कोई कोई खुटकावा
0: है? वही आई गई कमत्ता, आई गई देखो।
1: अरे भैया कमत्ता बड़े दिन पे
0: कपड़वा देखो, कतना लाल लाल, कतना खूबसूरत पहने है। हाँ सितारे सितारे मर चमका था। अरे
1: वाह, राम राम राम। कहो बहनी हाल, कमता बहनी
2: बढ़िया बढ़िया। सब
1: कहा होत है आजकल?
2: आजकल
1: हाँ
2: आजकल फॉग चलत है। मिनट बंद कर दो मोबाइल।
1: अरे लड़के घर के बहुत जन बदमाश भी गए, देखो सेवा था चलाए है मोबाइल।
0: अब बताओ हम तो बोले नहीं सब मेरे से।
1: राम राम बहनी, राम राम।
0: ले भाई,
3: ये लड़के बहुत मोबाइल देखे लगे है।
1: ई देवरायन कहा हाल
3: तुहरे? तो ये लड़के बर्बाद हो जाते, ठीक है हाल हमारा?
1: हाँ हलिए सही कहा, तो आज जाना तुम बजिंदरवा। आज ये सुनो, आज जानी कहाँ है?
3: कहाँ है?
1: आज मर्डर डे है।
3: मर्डर डे?
2: मर्डर डे नहीं चाची,
1: हाँ
2: मदर डे।
0: कविता समझाओ इन्हें जरा।
2: मदर, मदर मतलब माँ, मातारी का मतलब दिन,
1: मतलब आज मातारी दिन है।
2: कहाँ से कहाँ पहुँचा दियो चाची? मदर डे
1: कहीं सम से लड़का
3: हमारे नतीय बोल रहे चाची, मदर मदर कुछ कर रहे, तो हम मारन दो झापड़।
1: ये हम आगे निकल गए थे
0: महतारी के, अगर गलत सुनो तो मारो।
1: यही मेरा महतारी
2: बहुत बढ़िया, लेकिन मदर डे केकते मनाए ली हुआ
1: बहुत बढ़िया। मार मार के,
2: मार मार के
3: हमें पता ही नहीं रहा चाची की ये सब हुआ था।
1: ये चाची तो हमारे लोग एक काम किन जाए, एक ठो वो मंगा लीजिए ना, जो गोल का सफेद सफेद होता है, खूब नरम नरम
2: केक।
1: हाँ हाँ वही पेक पेक
2: पेक नहीं केक।
0: हो दुलारी इनसे कोनो पार ना पाए पाई।
1: तो अब बहनी हम जो नवा सुने ने वहा तो कहा भाई?
0: बहनी केक होता है, पेक नहीं होता है।
1: अच्छा बहनी हम तो जानन की पियक होता है।
2: केक नहीं,
1: तो वहा मुलायम मुलायम नरम नरम होता है।
0: हाँ जो बर्थडे हम कटवा रहे हो ना, सफेद सफेद करीम लगी रहा था।
1: हाँ हाँ करीम खूब होता है, तो वहा हम लोग मंगाए के
0: हाँ काटा जाए
1: का जो है वो मंगा ली जाए, गनासी हो काट दिन लाए।
2: तो सही में उनका मर्डर
0: गड़ाजी तत्व ही मर्डर डे मनाए दिन,
2: पक्का मर्डर डे।
3: अब हे चाची हमें तनी भर ना देखियो का लायन है।
1: का लायो बहनी?
3: अरे यार देखो मोबाइल लायन है,
1: वहाँ खरीद ली चल रही है, बर्बाद हो गई।
0: अरे अबे इनका सीखे पड़ी हुआ ABCD ना जान पाई है।
1: तो तू लड़के मन के मोबाइल अपना चलाओ, तू चला लेती हूँ।
3: अब ले आयन है देखे थे यार,
1: चोराए लाई चाची, कोई भी चोराए लाई नहीं।
3: अबे चलाइबे देखी चलत है
1: या देखो, तब कोई चोराए लाई मार लाई कोई के
0: क्या कर रहे हो बहनी?
1: पत्थर को तो नहीं मार रहे हो?
3: पत्थर को ही
1: आए हुआ देखो।
3: राम राम चाची, क्या करे बुलाए लेते हमसे झगड़ा करे?
4: तो तू काहे हमका देखते हो? तू ना आओ, हम तो आईबे कर
3: तब क्या फोड़ ले।
4: हाँ आप क्या फोड़ ले
1: बहनी? कतना
0: देखो तो हमारे घरे आवा करो, दोनों जनी लड़ा ना
1: लड़ा ना करो, ठंड
0: लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं।
1: ये चाची
0: हाँ
1: ठंड का मरवा पाई जाती, दोनों जनी बौराई जाती,
4: नहीं लड़ाती रहती, हम नहीं रही था।
1: ये बहनी अब
0: देखो ए, सुनो हमरे घर में सभी आवत है, अच्छी अच्छी बातें सीखत है, गौनाई सीखत है, और तो दुनिया भर की बातें हम लोग करी थे। हाँ तो लोग आके लड़े एकदम लड़ाई तो मादा हो जाते हो मारे मुरे बा मादा।
1: तू तो तनी उम्रदार हो बहनी।
3: अरे तब का करे बहनी, छोट भोई के हम चल रहे थे,
2: दोनों की शक्ल देखे जैसे खून प्यासी।
1: हाँ जान पते अब तलवार लेके एक दूसरे मार दे हैं।
4: नहीं लड़ाती रहती तब
0: भला ही कहो कि लोटन चाचा दोपहरिया में नहीं हो
1: रहा
0: है। हमारे ऊपर जो कहा कि तुम्हार टिमिया जो है बड़ी खराब है,
1: बहुत ही खराब है।
3: बता आई ही चाची
2: टिमिया का?
0: टिमिया मतलब टीमें तो
1: टीमिया टीमिया टीमिया
0: टीमिया नहीं टीमिया कहे दादा।
3: हमारे यहाँ तो तीन ठो रखा है,
1: तीन धरा है हमारे धरा चाची जी, हमारे
3: घर रखा है
0: एक कमता। अब तू ही समझाओ, मैं गला दर्द करने लगा था।
2: टीम यानी समूह, सब लोग जो बैठे हैं समूह,
1: सबके मुंह
2: हम जाई थे बहनी, हम जाई थे
1: बहनी। जो सबके मुंह होता है वह है हमारे सबके है
2: समूह।
1: हाँ वह
2: समूह,
1: वही समूह जो सबके मुंह वह समूह। लो चाची हमारे हंसते जाती,
2: एक दिन अगर ये प्राथमिक विद्यालय में चली जाए पढ़ाने
1: क्या हम हाँ?
2: कल्याण
0: पहली बार जो ये परिभाषा बताई है
2: समूह की, यानी समूह
0: समूह
1: तब कतना बढ़िया। देखो समझ में हमारे आएगा आराम से।
0: चलो समझी रहो यार, समझी रहो के कमता
2: बड़ा मजा आता है, इसीलिए तो हम चले आते हैं जब फ्री बैठते हैं। जाई से चाची से मिले
1: नहीं करा तू बहनी, आओ
3: तनी
1: ठंडा पाई जा तू, अब कुछ खवाए पियाई दी हो आज ठंड में।
0: जब आओ तो बस खाए की बात करो।
1: ये चाची
0: पेट से बड़ा कुछ नहीं
1: हमरे है। अब बता दी फुर बात, हमरे लोग जब घर चली थे तब खाए पी के नहीं चली थे, चल बे चाची के ठंडम वल्लब और खूब दबाए खाब, यहाँ सोचे न
0: बताओ।
1: हाँ वो देखो तो आज बतोहिया आए बंद कर दी ठंडवा,
2: काहे ना बंद करी। सुनो हम हाँ। हम सोच रहे थे कि अभी हवा चली है, बारिश हुई है
1: हाँ।
2: तो अमिया सबके घर में ऊपर छतों पे गिरी होगी
1: हाँ।
2: तो अमिया
0: अरे टिकोरिया
2: आम का जो वो पन्ना चाची बहुत बढ़िया बना होती
1: हाँ भाई,
0: पिछली बार इनका सबका पियावा रहा है ना।
2: अच्छा
1: जो उबाल के घोरत
0: हुआ है वहा है
1: हाँ।
3: पन्ना नी अगर ये चौराहे के लायक दिस तो हम ना पी पाए,
1: ये लाए है पतरकवा लाए है।
3: अरे
1: अरे
0: दादा कहा हम जान दे दे
3: हम मोबाइलिया के जगह कुछ और तो बहाक मारे
1: हमारे हम कुछ हो तो हम बहाक
2: डंडा दे
0: भैया
1: छुपाए रहो
0: छुपाएगा
1: दादा इनके
0: दोनों
3: दिन घुस गए इनका दरवाजा के घर में घुसेड़ के बंद करके खूब लाठी मारा
0: अपराध ना करे
1: हुआ नहीं भाई तू का करे तू दादा
0: पुलिसिया पकड़ के ले जाए और कुछ नहीं हुई
3: लड़ते
1: हैं
3: बाकी सब बहुत
1: सीन करा दिन जाए
3: ना
2: चाची चाची वैसे हमारा भाई भी बैठा हुआ है
1: हाँ
2: हमारा भाई भी है साथ में
1: हाँ
0: भैया
1: भैया जगरे घरम जाई तेरे घरम माचिस लगाई दिया पक्का ही जान
3: यहाँ बात है चाची कोई अगर घर में हल्लू न पाई
1: हाँ
3: हल्लू ना दे
1: ये मार दी जाने तो चाची ये चोरवन का मार गिराई
0: तो एक बार मार तो गिराई रहा है
1: हाँ।
0: बताओ खुद बताओ
1: जबर दंग
0: के रतिया माँ खटर पटर भाई तो
1: हाँ
0: ये जाग गए
3: हाँ।
1: हाँ।
3: अरे हम सोवा दे हम दलनिया माँ
1: हाँ।
3: अब दलनिया के दरवाजा बंद कर भुलाए गए
1: हाँ।
3: ऐसे धीरे धीरे रहा चोरवा आवा खटपट खटपट किए तो हम सोचे के लाओ देखी के हुए गाय भाई कुकुर ना हुए
1: हाँ।
3: अब पता चला की चार थोड़ी मिला है
1: तोरे
3: पा छता पा कुकुर गाय भैंस चढ़ जाए अरे का पता तोरे घर से चढ़ जाए
1: तब फिर का भा बहनी तब का भा
0: अरे यहाँ बतावत रहे उठाई डंडा
1: हाँ।
3: दौराई मारी ये ना मारे
1: जो बहनी पातर पातर ही कौची घर से बने बाटी
0: बस नाम में की पता का है
3: दहिया पा ना जाए
1: हाँ अरे हरी जो डड़का होते हैं एक दरवा के वैसे ही बांटे क्या मारी लठियस लेके
3: चार चरवन का मारे ना हो तो विश्वास ना हो तो आई के लड़ लो खुदा ही पता चल
1: जाए ये सब बाजे हो ना मार डाली हमें सबका
3: बड़ी ए चाची कुछ बोले ना हमका
1: अखिया देखो करने का रही थी मार डाली भैया ही तो
0: तो देखो अब कितना बढ़िया एक पवित्र दिन का नाम लिए रान कि आज मदर डे है हर जितनी महतारी है उनके लिए बहुत मतलब ये ममता वाला दिन होता है हैं
1: अब ये ममता का होता चाची
0: अरे
1: ये तो कमता तो देखे ना ममता का होता है
0: देखियो
2: ममता माने माँ की ममता
0: मोहब्बत
2: मोहब्बत प्यार
0: प्यार माँ का
1: अच्छा मोहिया कहा तुमने
0: हाँ, मोह लागत
1: मोहिया मोह लागत
0: तो हाँ। एक छोटी भी अब गाना आवत रहा है तो
1: हाँ।
0: वो गाना हम सुना
1: हाँ।
0: और एक तो लड़ाई भई रहा है हमारे
1: हाँ।
0: अब वो लड़कवा रहा है नान मुनिक बच्चवा तनिक छोट सा
1: हाँ।
0: अतना बढ़िया गाना गावे बस हमका गनवो बढ़िया लगे
2: तब चाची सुनाए दो गाना आज
1: तब आज गाएं जा रहा
2: हाँ।
1: लेकिन सुनो चाची
0: हाँ।
1: एक बात कही हम पहले कह दी रोए ना बहुत खाली रोए लगे तू जूते
0: हाँ तब कहा करे तो मेरे रोए चुकन से हम बहुत समझाएं भैया हमसे बाझो ना बिना मतलब मां
1: हां
0: हाय किप तुका पालन जियाएं 9 महीना पेटे में रखें हाँ, तोहार गो मोत सब धोएं
1: हाँ पूरे भाई
0: अब तो हमसे ई में लड़त हो है
1: नहीं तो हमें से मौका मिली तो हम बहुत गलत
0: हाँ तनी समझाए भाई ने समझाए दियो
1: समझेबे ये बहुत गलत बात है का करते हो राइन
3: हाँ चाची
1: बता लड़कियों का पाल पोस बड़ा करो तब वैसे में जो
0: आजकल यह चल गया है कि लड़का महतारी बाप का कुछ समझते नहीं
1: समझते नहीं
0: हाँ।
1: वो है ये है
3: अरे चाची वही बतोहियन के चक्कर में
1: अरे पतोहियन के चक्कर में नहीं लड़का
0: भाई देखो आप पतोहियन से क्या मतलब है मतलब महतारी बाप से
2: ऐसा नहीं है अपना अगर खून सही है तो पतोही कुछ
0: नहीं कर
1: कुछ नहीं कर
0: पाए
1: बतिया कहते बहनी
0: अब हमें समझे पतोरिया कहाँ, हम पतोरिया तो नहीं दोष देते
1: हैं चाची, हम कहीं थे पतोरिया ना समझे, तू तो समझो तू का
0: और कोई का मतलब है महतारिक समझो, चार दिन की जिंदगी बची है तने इज्जत कर लो
1: और का
0: हाल चाल पूछो, यहाँ बहुत है,
1: यहाँ हमारे लोग के लिए यहाँ बहुत है,
0: हमें ना तुहार पैसा चाहिए ना तुहार धन दौलत चाहिए,
1: तू कमाओ खाओ नहीं के रहो
0: बस, यहाँ आशीर्वाद दे थे लेकिन जब कोई चुभत भाई बात बोल देता है
1: पूरे घर
0: तब बहुत गुस्सा लगा
1: थे, हम ढोलिया उठाए नहीं लाए पतोरिया दे गए
0: है, हाँ तो चलो
1: गाओ चुगाए दो माता वाला
0: गाई थे, एक तो वो लड़कवा गावत रहा
3: चाची, हम यारे पिक्चरवा में देखे ना एक तो वह आवत है,
1: ए मरी चाची जैसे मुंबई जाए वही दूसरी नहीं
0: हम सुनाई थे, सुनो तो बहनी बहुत तू तू सुनियो तो बहुत अच्छा लगे,
1: मरी चाची जब से
0: पता लगा तू सुना बहुत लड़त हो ना
3: इनके मोबाइल लिए लगे भागे जुगाड़ करी
0: था, नहीं नहीं कम तो तू सुनियो है बहनी, हम धीरे धीरे गाय पाए भाई समझ लियो सब।

0: बहुत नीक गायो चाची आज
1: बहुत बढ़िया
2: बहुत दुखी रहन अब लड़का हां जैसे वो गाना देखे
3: हमार फोन आवत है तनी सा रुक जाती हूं
0: इनकाई बहनी एक ठो फोन का पाइन ही
2: उठाए लाई है लगा तो
0: जिन है बकर बकर जब तब से लाई तब से
2: तिवारी जी का उठाए लाई पुनवा
0: यहाँ
2: भागी है
0: हाँ भागी है हमें जान पड़ती को चुराई लाई पुनवा
2: ना ही चुराई ना ही लेकिन हाँ लागत है तिवारी फोन है ही
0: हाँ
2: हाँ तिवारी फोन है
0: भागी ही
2: सवेरे से हम सुनित रहा है ना लड़ाइया होत रहा है
0: तेरे मैया
2: फोन
0: ये कहाँ गए तिवरिया
2: गई है फनवा आवा हुई तिवारी को एक मोबाइल से करीर हुई है
0: हाँ,
2: जाने के लिए कि हमारे मोबाइलिया कहाँ है
0: हाँ,
2: हाँ, तब्बे भागी है
0: तब्बे भागी
2: हाँ, डरात ना ये तिवारी तिवारी कौन मेरे मनई
0: है कि नहीं डराती हूँ कोई डराती
2: हाँ, अब्बे आई देखो पता नहीं क्या बताई
0: अब्बे कुछ बतवाई बे करी हाँ कुछ बताई देखो
2: लड़ाता रहा तो पतरका वहाँ से भी
0: है पतरका वहाँ के बहुत बाजा है वो कहो तिवराइन का कहीं तिवारी तिवारी खुनवा रहा
3: अरे नहीं चाची एक ठो बिटिया हुए कचुआए ही हम मैं
0: ले का कहती बिटिया
3: अरे ये आवत है मेरे घर आने उता करे बगल में
0: हां
3: बिया है
0: तब का कुछ मांगती कपड़ा लगता
3: कपड़ा ना है कह रही कि तोरे यहां आई रुक जाई तो उनके यहां चली जाबे राती मां
0: तब तोरे यहां रुकी जाई
3: हां
0: तब इनका पतरका भी यहाँ जाओ साथ रही है
3: हम न ले जाओ वो
0: क्या करो पूरी जाए तो अरे घर आई के
3: हमारे घरे वो बहुत सुखी रही
0: हाँ
3: बहुत सुखी रही वो तो बनवाई बो
0: बनवाई
3: ना बहनी एक रात खाती आवाई हो
0: हाँ
3: ये तो रात ही खाती आती हो उसे बनवाई क्यों का खवाई
0: अरे वो चाची हम देख खा के का करी हो तो यार अमावा कहाँ से लाई रे
3: अरे वो खेतवा से बीन लाए ना लाए
0: तो हरे किया तो नहीं दूर लाई है मवाई
3: पता नहीं चाची हम देखो ना आए गए ना खेतवा अपने
0: अरे लड़ा से छुट्टी मिली तब तो देखबो अपन खेतवा लड़ाई वे कई लेबो खूब
2: अरे चलो अब रहा दो रहा
3: अरे हुस गवाई ले चाची गावत गावत मरी जाए तब बात
2: नहीं देखो तेराइन तोहार तो गाना हम सुना है और पूरे गाँव में तू फेमस हो इतना बढ़िया गाओ
0: चाची ये फेसम का होता है
2: फेमस कहा है फेमस
0: ई का होता है
2: फेमस माने सब जानत है ना कि गाना गाई थी मसूर
0: मसूर के दलिया
3: चाची हो
0: हाँ। मसूर के दलिया कहा
3: मसूर
2: मसूर
3: मसूर
2: मसूर
3: मसूर सुन लियो चाची
0: महसूर
2: हाँ महसूर
0: अच्छा महसूर
3: जल्दी सम गाय दे बिटिया अब बहरवा खड़ी
0: गाओ गाओ गाओ गाओ सुनी सुनी तब हम भी जाए हम ठुआ के देबे गाओ
3: अब एक ठो हम गजल सुने नहा
0: ई बहनी गजल का होते गजर गाजर
3: यही मोबाइल पे फुल लड़का हमें सुनाई रहा
0: दो लाइन गाजर गाजर
3: हां दो लाइन वहां जाने था
0: तो गजरियो गाय दियो
3: तो वहां गाय देबे
0: हां गाय दियो चलो पहले वो गाओ महतारी वाला नहीं
3: तो ये के दो तीन लाइन हम भूली था ये कल वो गाय पाए
0: ये बहनी तू एक के गाओ एक के हम लोग गवाई लेबे पुरवाई हो
3: तो

0: ऐसा लगा था कि कोनो ऐसा छोट छोट लड़का होता था खिचिया ले आए
1: आज जोने बहुत नीक गाय है गनवा जाए के शिवमो सुनवाई दी
2: हो हे चाची बहुत दो लेनिया सुनाई दी गजलवा
1: गजलवा
2: हां गजलवा कहे
1: तो हे बनी
0: गजलवा गजलवा
1: गजलवा अब सुन ले भाई हमारे भूख लगा के हमें कुछ खवाई दो पहले
0: हम हो चलो ठीक है खा लो
1: हां तो रुकी जाओ ब्रेक मार दो
0: आज बहुत बढ़िया चीज बनाए हैं
1: हां तो ब्रेक ले लेते
0: तो ले लो ब्रेक हवा हाँ। बे खवाई था ब्रेक ले लो भाई ब्रेक
1: हां ब्रेक ले लो

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: अच्छा ये बताओ।
3: हाँ सर।
2: तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है?
3: हाँ बिल्कुल किया ना सर।
2: क्या किया?
3: एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया।
2: oh,
3: और
2: no.
3: जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया।
4: किरमुआ भात।
5: हाँ
4: किरमुआ, हम बिल पाता मिलगा हमें
5: किरमुआ।
4: हाँ अब मैं नहीं जान पाई तू कह रहा है।
5: हम तो जाने इनकी पालक का ही साग हो।
4: पालक ना हो, किरमुआ का साग हो।
5: बड़ा नीक बनाए रे चाची, बड़ा चटपटा।
4: लैया
5: ने बने बना की पतोहिया बनाई।
4: नहीं हम ही बनाए वाला है। पतोहिया हो तो ये सब पुरान सब्जी है ना, उनके पल्ले ना पड़ी। कोई तो आए दिन पनीर खाई है ना।
5: अरे चाची पनीर अब नहीं खाए लायक है।
4: अरे खूब खाती पनीर, जब देखो तब। पापा जी पनीर ले आइएगा और सुनिए थोड़ी सी मटर भी ले आइएगा। रोज है उनके पनीर मटर घुसा रहा था। हाँ अब कही थे कि आजकल का पनीर जो है बहुत बढ़िया ना ही होते है, सब सिंथेटिक दूध का बना होता है।
5: का होते चाची सिंथेटिक?
4: भाई हम उनका समझावा कि दुलारी के यहाँ से जइया दूध हम पाए जाए।
5: हाँ,
4: तो
5: घर के बनाए
4: हम
5: पनीर,
4: घर ले पनीर बनाए लो घर में।
5: हाँ।
4: लेकिन ना ही उनका तुरंत खा रहा था, तब तुरंत जो है मिठवाए लागत थी। पापा जी ले आइएगा
5: बस, लोटन चाचा हमारे सी जाए।
4: तो वो उनका वही तो पतोहिया जौन कह दे
5: तो
4: की नुकसान वाली चीज है। हाँ। फायदे वाली लाई के धर दी है।
5: बताओ
4: हम, हमरे लिए लाए ये करमुआ का साग, कही नीमा बहुत आयरन होत है।
5: आयरन का होत है?
4: आयरन अरे कौनो चीज विटामिन होत है उमा पाता में।
5: अच्छा
4: हाँ, कहीं तू ये खावा करो।
5: साग। अच्छा अच्छा,
4: तो आज हमारा बड़ा मन करा तुम बढ़िया बनाए ना, और भतवा भी अच्छा लगा है।
5: बहुत निक लगा चाची, हमें तो जैसे कि घी पड़ा है खुद।
4: हाँ तो घी तो डाला जाता है, चलो तो घी डाला रहा है।
5: तो बड़ा निक
6: लगा। अरे वो बिटिवा आए गए रहे वही बैठा।
5: अरे भवानी इनके ऊपर तो कहा कही हम,
4: तो हर हिस्सा रख दिया है, अबे खा लियो।
6: तो हमें दे दो चाची, हम घरे बांध लिया।
4: तो ले जाओ दादा, हम तो निकाल दिया।
5: खा लियो, दठियो में धरा है, निकाल लो खुले।
6: ला तब खाई ली।
5: हाँ थोड़े खा लो, आओ बांध ले जाओ चाची। खियाओ तब नीचे थो के आओ, खाओ बांधो वल्लो।
4: आज कल तो भाई देखो चटनी कितनी बढ़िया नीक बनी है।
5: बहुत बढ़िया, ये तो आम चटनी है।
4: हाँ वो देना, अब है अमुआ टिकोरा मंगा लिया।
5: हाँ,
4: छोट छोट रहा।
5: हाँ, हाँ,
4: हाँ। अबे गुठलिया तो पड़ी ना ही ढंग से।
5: हाँ,
4: अब बढ़िया सिला पीस लिया, तब वो डाल के धनिया और पुदीना।
5: हाँ,
4: और तनी जीरा नाय दिया,
5: तनी
4: मिठात रही है।
5: मिठात रही,
4: गुड़ डाल दिया पीसत।
5: वाह
4: समय तनी गुड़ डाल दिया, बढ़िया
5: चाची का बहुत कला।
4: तो तनी अगर गुड़ डाल दे तो थोड़ी खट्टी मीठी चटनी।
5: खाना बनाओ बहुत कलाबाज ही है।
4: का करी जब पेट नहीं माना थे पेटवा। हाँ, तो फिर
5: बड़ा नीक
6: कलाकार ही चाची।
5: हाँ, वाह कलाबाज।
6: अरे गुनी ही गुनी।
5: हाँ, वाह कलाबाज है कहा जाते हैं हमरे सबके बाहर।
4: ऐसे खावत रहो, हम बनावत रहे, हमें तो यह नीक लागत है भाई। सबे खाओ और बढ़िया से रहो।
5: हम हाँ, तो दुई लहनिया अमवे के ऊपर गनवा याद आएगा।
4: पहले तो इनका सुन लियो का है।
6: पहले तू ही
4: गाजर नाई, गोजर नाई, गजल गजल गजल कहा था।
5: अच्छा
4: जानो तन भात भात के गानो होते है तो मैं एक गजल होते है।
5: हाँ
4: वो सुनाई है गजल। हाँ बढ़िया।
5: अच्छा,
6: हमें
5: अच्छा।
6: पता ना है चाची, लेकिन सुनना तो याद है।
5: एक तवरनिया बहुत कुल चीज जानती
4: है। जानत है भाई।
5: हाँ
4: लड़ाई को
5: ये कठो हमारे दुई लनिया याद होते
4: लड़े जानत है और बाकी और सब जानत।
5: हाँ कुल जानत है, लड़े तो जानता है।
6: हाँ अम्मा तो ही रहन चाची हम
5: कुली सुनतो ही दादा
6: सुनता बहुत तेज
5: हां कनो तेज हां दाओ सुनाई
6: सुनाओ सही।

0: अपन गोजर सुनाई दो
1: भाई, हमरे ऊपर हंसबो हमो कैसे आवत है दो लाइनिया
0: तो तुहार गोजर हो वैसे
1: है सांप हुए मार गोजर
2: कुछ
1: सुनाई चाची डर ला थे
0: लड़ाई करे तो ना डराती
1: तू पतरका ना बोला करो
0: काहे ना बोला कर
1: हमारे मेरे गाय ना पैबो
2: अरे गाय दे भाई गाँव गाँव बहने गाँव ना लड़ो दादा ना लड़ो बहुत जिया अकता
0: करो अगली दाई से बर्फ दू पेटी मंगा के बैठाई दी जाये
1: ठीक है तो चाची सुन लिया फिर हम जाये बिटिया हमारे इंतजार करत हुए
0: अच्छा जाओ बहनी गाँव गाँव

0: ऐसे लगा।
1: अरे बहनी हमें याद है ना आवत है सुनने तो मोबाइल लेके दौरी रहन के
2: कमता कहा था ना आग लगा कि जमालो दूर हुई गए वह हाल है आग लगा दे और जमालो दूर और तू हाँ ना कहो तू हो वह
0: तब हमें हाँ। याद नहीं आवा आज हम वह गायन है बहनी हम तो देखो अमवा के महीनवा अभी चली चार महीना
2: तब तब तो तब... एक एक लाइन सुनाइयो का चार महीना
3: नहीं चाची ऐसे सुनाएंगे एक दिन एक लाइन लंगड़ा एक लाइन दशहरिया एक तोतापुरी और एक मल्लिका कोयली
0: तो आप जो और एक ठो गाय तो हमारे हथवा फरकत है वो तू ये लेनी है एक ठो गाँव नहीं की आओ रावत अगर गई बात ऐसे गरीब बो
2: एक या गाँव तो और महतारी वाला एक सुनाए रहा
0: था हाँ तो चाची
1: अमावा अलग अनावा है लेकिन वो एकदम अमावे पर ना है
0: अमावे का है बहनी अमावे पर
1: ना है हम गायब जोन
0: आए
1: तू ही सीखे तू ही से सीखे रहा पर कब हम चराए ली नहीं
0: नहीं काम को हम ना कहे आज ना कहे गाय लो
1: अब ना देर होते इनका ना है वो बैठी रही बिट्टी वा समझदार ही
0: लड़क
2: लाख करी
0: करे
2: फिर
0: एक
2: लड़की होई गई एकदम भरी बैठी रहा था
0: जी हमें तो हाथ ही पड़ा था लाग आज तू तिवारी से मारे खाबो जान लो आज तुम्हें तिवारी मारी देनी है
2: काहे आता तिवारी बार बार फोन कर रहे हैं तो उठाए लाओ ना उनका फोन आज
0: चुरा लाई है
1: चाची लड़कवन के हुए उठाए लाए
2: आज सवेरे काहे लड़त रही कि हम अतु फुनवा लिए घूमा तो हमरे लगे फुनवा ना हमें चाहिए
1: फोटो खींचे रहा
2: अच्छा फोटो
0: गाओ बहनी
1: ठीक है गाय
0: गाओ।

0: वाह वाह बहुत नीक सुनायो है।
1: ये पतरकिन खत्ती हम गाए रह चाची।
2: हाँ तब हम कहे थे इनके पतर का
1: पतरका वो
3: ताना ना दियो बताए नहीं था
2: ताना ना दियो का नहीं बहुत जान नो मारी बरबाई करी तू
4: ताना ना दियो बाना दियो
1: बाना ना इन्हें हम कुछ ना दे
3: तो हमका कुछ तरीबा ना करी तू से।
1: हाँ पछताबो के नैनी चाची रही उनसे इठत रहे
3: तुझे हम पछताइबे ना।
0: ए बहनी बहने ये अखाड़ा ना ही हो हमार घरा हो तू लोग ऐसे लड़ते जैसे कुश्ती करे जा रही हो।
2: अरे हा? चाची लड़े तो इनका सबका का करिए सबके।
0: अरे नहीं भाई देखो हम दोनों जनी बड़ी चढ़ी हुई कि नहीं
2: हाँ।
0: तो हमार धर्म है कि इनका समझावे का
2: सब धर्मवा तो है पर हमें बड़ा मजा आवत है।
0: नहीं देखो अब लड़ा कबो कबो हुई जात है ना
2: हाँ।
0: लेकिन हमेशा ना ही नीक लागत बहनी तनी बड़े छोटे के लिहाज रखा करो आए ई तो हर काकी लागे
3: तो चाची तो लड़ा कराते ही हम
1: वो चाची कुछ ना समझती
3: काहे ना समझी तू ही लड़ासी रहा
1: हम तुसे ना लड़ी तो हमरे में से आम ना चोरो
0: ना ही देखो त्योहार
1: खेत भर ना काटती
0: तो राइन
3: के हम छोट हन तो कई सकी थन ना काहे ना तू चलो हमरे
1: तू छोटी तो खेत काट सकत हो
3: काहे ना काट सकी थन
1: ता टंगवा तोड़ देबे
3: टंगिया तोड़बो तो हम तोरा टंगवा तोड़ देबे।
0: हे भगवान ना लड़ो हाथ जोड़ी दे हाथ तोरे लोगन के गोर कहो पड़ ले
3: ना ना चाची गोर ना पड़ो
2: ना, तो
0: ना देखो कतना बढ़िया गाना गावत है त्योराइन सीख लो बहने तो
2: बाबू नीक गावत ही
0: ससुराल जाए है कहे दूसरे घर जाए कहे
2: की ऐसे जाबो की ना जाबो
3: नहीं हम ना जाबे
2: वो जावे ना करी
0: ये मार मार मा चोर भगैया
3: लेकिन
2: क्या
1: ससुरारी अपने
2: ससुरारी नहीं जे इनका मारिन डाली जान
0: सुनो कोनो बिटिया अपने घर में चाहे जितने बड़े राजा महाराजा बिटिया हो वो अपने घर ना ही रहा थी उनका जाय पर थी हाँ ये दुनिया दस्तूर हो जाय तो पर तू का है अच्छी अच्छी चीजें सीखो और दूसरे घर में जाए के कम से कम हमारे हमारे लोगों का नाम हमारे अपने गगुआ का नाम अपने महतारी बाप का नाम कम से कम रोशन करो बढ़ाओ
3: चाची। लेकिन इनसे कह दो कि हमसे लड़े ना तो इनसे हम ना लड़े
0: त्योराज ना बोला करो हाँ
1: ठीक है बहनी अब कान पकड़ी थे ऐसे हम बोलबे ना करब
3: हाँ तो हम कान पकड़े हम तू से ना कट्टी ना पट्टी होएगा
2: ये बहनी कट्टी का हुआ था
1: अरे लड़कों का हम सीख लिया ने बहनी
0: देखो हर आदमी के अंदर एक बच्चा छिपा रहा था
2: हाँ।
0: वह इन दोनों के ज्यादा कुछ बच्चा छिपा है
2: तो इनके बच्चों का कहीं मारा जाए हमने लोग बच्चिकाए जाए ये
0: तो चलो भाई
1: ही अरे तू चाची
2: अरे तुम्हारे मोलबलिया पाए गए हैं तब हेरे लागे एक ठो हमारे गाँव नहीं आज आवत है जान चुका चाची
1: तो
0: सुनाई चला चला एक बढ़िया नेक गाना कोनो
2: आप भाई हम थोड़े दुए ले आज रचनवा ना आए है ना।
1: अरे माइकुल गई नहीं कंप्यूटर सिखाए
2: कंप्यूटर चली गई बताओ कहना यहाँ चली आयो तो कंप्यूटर चली गई उड़के कुल एक गनवा बड़ा नीक गावत ही चाची।
1: हाँ चाची हम हूँ सुने रहा
2: है ना जमहान ये है कि ऐसे होके रहनिया रहनिया तो अब याद कर ले भाई गनवा होके ऐसे है केक

0: बड़ा नीक गाना हो।
1: तो आप भाई एक ही लेनी है याद है गए बत ऐसा तू कहबो
2: एक ही लेनी हमो के याद आवत है चाची।
1: हां
2: अब तो दोनों हमरी होती है हक भर में लेते हैं।
1: हां और आए बहनी थोड़े थोड़े याद आएगा
2: चाची ना
1: बस यही एक ही गाय दे एक ही गाय
2: चलो गाय दे
1: हां नहीं बाबा हमरे होते तो नीक घर ढूंढते
2: और सब कैसे है
1: चाचा हमरे
2: ढूंढे दुआज हो
1: दुआज हो
2: भाई हमरी
1: होती
0: बहुत बहुत नीक
1: चलो शुरू कर दे।
0: हां शुरू कर दे।

0: वाह चाची, बहुत बढ़िया
1: गाना है चाची।
2: हम तो भाई आज के दिन जितने हमारी माताएं हैं, हमारी बहनी हो, सबका हम बहुत बहुत बधाई दे थे इस दिन के लिए है। और कौनो का कहूँ कोई प्रकार का दुख ना हो,
1: सब माता जी सुखी रहे,
2: सबे सुखी रहे। कहे से कि लड़का बच्चा का भी समझे चाहे कि हाँ। हमारे माँ बाप जो है उनका पालन पोषण बड़ा कीन है
1: हाँ।
2: और तो उनका जरा मान सम्मान रखी,
1: मान सम्मान और का देखो
2: तो और माता कुछ नहीं चाहिए
1: हाँ। हाँ, माता जी का कुछ चाहिए ना
2: चाहिए,
1: खाली मान सम्मान मिले
2: हाँ।
1: बस दूछो रोटी परी रहे किनारे, दूछो रोटी मिले, मान सम्मान कपड़ा मिले।
2: देखी थे ना हमका चाचा लेके गए तो हर लोटन चाचा
1: हाँ
2: वृद्धाश्रम लेके गए।
1: अरे महिनी
2: हाँ।
1: रे बहिनी, तो हाँ,
2: जान जान के लड़का जो है अपनी महतारी का छोड़ गए हैं
1: हाँ।
2: तो हम उन सभी उन लड़कन से कही था कि अस ना करे चाहिए
1: हाँ।
2: हाँ।
1: हाथ
2: बस दुई रोटी, हाँ, रोटी खात है उनका हाँ। प्रेम से दुई रोटी चाहिए और तुसे कुछ ना चाहिए,
1: कुछ ना चाहिए।
2: इस तरह से उनका बिल्कुल एकांतवास में वहाँ छोड़ जाओ
1: पूरे
2: है, तो ये ना करे चाहिए। हमारे सबसे यह विनती है और चली
1: सबका मदर मदर देके
2: बहुत
1: बधाई दे, सब मातारी सुखी रहें, खुश रहें,
2: खुश रहें बस
1: हाँ भाई। अच्छा भाई, राम राम काकी,
2: राम राम,
1: राम राम।
2: और सुनत रहो ज्ञान स्त्री 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की
1: धड़कन
2: धड़कन
1: धकड़न
2: धकड़न कहा थी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

सही बात है। और गुंडा मैसेज मसाला की शुरुआत करते हैं मोहब्बत के इस सफर से, और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत।

0: गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: डिलीशियस
2: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
8: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत।

अरे This is my story. This is what I feel every day. So lonely.

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। जी हाँ, आज पुराने गीतों की बारिश लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूँ मैं। जी हाँ, आप सभी हमारे साथ, मेरे साथ भाई मनीष शर्मा जी हैं। हेलो, कैसे हैं मनीष शर्मा जी? और आज ये सोनी जी को बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ गोपालगंज से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। मुकेश यादव जी अपने पुराने अंदाज में है, गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू, और सॉन्ग प्लेलिस्ट ब्यूटीफुल, क्या बात है भाई। जी हाँ, चाहते हैं गीत तो आपको अच्छे ही सुनाए जाए, और ये चाहत इसलिए भी होती है कि हो सकता है भाई नए गीतों को आपने सुना, काफ़ी दिन तक सुनते रहे, और सुनने के पश्चात ये हुआ कि नहीं भाई, अब सप्ताह में एक दिन तो होना ही चाहिए जिस दिन हम पुराने गीतों का भी आनंद उठाएं। तो जी बिल्कुल, नए और पुराने इन दोनों गीतों को आप सुनते हैं, नए गीतों को आप रोज़ सुनते हैं, और पुराने गीतों को सुनने का वक्त रविवार को होता है। हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, हमको रोजी खींच लाई शहर के सहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गई सब गांवों में, आज शोहरत के सफर में याद आता है वो पल, आज शोहरत के सफर में याद आता है वो पल, अपना दिल रखा था हमने जब किसी के पाँव में। वास्तव में इंसान का जो बचपना होता है ना, वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है। और अगर हम बचपने की ओर जाएं, तो किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा लगाव किस चीज से होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं किससे होता होगा। किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा लगाव होता है खिलौनों से। आइए आपको ले चलते हैं आपके बचपन की ओर, और जी हाँ, खिलौने वाला खिलौना लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है। बचपन की यात्रा कराते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गुंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल चलते हैं आपके बचपन के दिन की ओर, और खिलौने बेचने वाला आपके दर पर है।

एक बार पूछा गया था एक कवि से एक इंटरव्यू में कि कहा जाता है कि कविता लिखने के लिए, शायरी लिखने के लिए, गजलें लिखने के लिए इंसान का दिल टूटना बहुत जरूरी होता है। क्या यह सच है? उन कवि ने बहुत शानदार उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था इसका मतलब यह हुआ कि दिल है तभी तो टूटा है। जिसके पास एहसास ही नहीं है, दिल ही नहीं है, वो टूटेगा क्या? तो दिल टूटना अच्छी बात है, इससे साबित होता है कि दिल है हमारे पास। और अगर है तो फिर तो इस अंदाज से भी है कि लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना है, लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना है, जो भी मैं गा दूं वही सारा जमाना गाए, फिर भी एक गीत है जो प्राणों में चुपचाप पड़ा, फिर भी एक गीत है जो प्राणों में चुपचाप पड़ा, कई जन्मों से मेरे होठों पे आना चाहे, आखिरी गीत वही, बस एक गीत वही, मुझसे गवा दो लोगों, आखिरी गीत वही, बस एक गीत वही, मुझसे गवा दो लोगों, इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दो लोगों। जी हाँ, ये शानदार सी महफिल आपके शुभ संध्या की प्रतीक्षा में है। जी हाँ, ऐसा जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो लोग सुन रहे हैं भाई, और अभी तक उनका चैट बॉक्स में कमेंट नहीं आया है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो अपनी हाजिरी लगवा दें कि यस सर आई एम हियर। और कुछ भाई, आज तो विश्व हास्य दिवस है, हंसने का दिन है, तो हंसने का दिन है तो फिर इस दिन को बहुत इंजॉय किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से खुशियां बटोरने का दिन है। और एक बात मैंने सीखी कि जिस दिन को आप अपनी जिंदगी में हंसकर गुजार लेते हैं वही त्योहार हैं, बाकी सब कैलेंडर की डेट्स हैं, आती हैं और चली जाती हैं। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं मन्ना डे का एक प्यारा सा गीत, और उस वो गीत है जो अमर हो गया, फिल्म का नाम सीमा। और निवेदन भी करते हैं ऊपर वाले से, और ये कहते हैं कि अगर इस दुनिया में सबसे अच्छी कोई चीज है तो मोहब्बत है, इबादत ही है, वो इबादत के जैसी है। तो आइए आपको सुनाते हैं मन्ना डे की आवाज में एक पैसा गीत होगा, और प्रतीक्षा है चैट बॉक्स में आपके शुभागमन की। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये

तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। बहुत ही प्यारा सा गीत हमने आप सभी के साथ एंजॉय किया। और जिंदगी है साहब, दुनिया है। अगर आप कहें कि दुनिया क्या है, तो कोई कहता है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं। गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं। फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। उसके बाद जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जब हम सुख और दुख इन दोनों से परे हो जाते हैं। और वो स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत अनुभव, जिंदगी के सारे तजुर्बात आपके सामने होते हैं। आप सोचते हैं कि क्या हम ऐसा कुछ करें कि सुख और दुख हमारे ऊपर प्रभाव न छोड़ सके। लेकिन इंसान है साहब, हम देवता नहीं है। परेशान करती हैं मुश्किलें, परेशान करती हैं। और उसमें जब आप मुश्किल घड़ियों में हो, तो ऐसी स्थिति में दो चीजें हैं जो आपको किसी भी मुसीबत से निकालती हैं। पहला, आपका विश्वास। नहीं टेके अभी घुटने, जरा सी आस बाकी है। नहीं टेके अभी घुटने, जरा सी आस बाकी है। धड़कता दिल है धीरे से, जरा सी सांस बाकी है। समंदर लाख है गहरा, समंदर लाख है गहरा। मेरी कश्ती भी है टूटी, टिकी साहिल पे है आंखें, किनारे पर टिकी साहिल पे है आंखें। मेरा विश्वास बाकी है। आपका यकीन नहीं टूटना चाहिए स्वयं से और उस पर जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। हमेशा कहता हूं मैं कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं इसी पर एक प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है कोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
1: हाँ हाँ सुनाओ।
0: अरे अरे अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
1: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
0: खुशी? किस बात की खुशी?
1: न जाने क्यों।
0: राजू तुम बहुत अच्छे हो।
1: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
0: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

0: मैं बहुत खुश हूँ।
1: अच्छा,
0: चाहती हूँ दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाए, वक्त ठहर जाए।
1: वक्त कभी नहीं ठहरता,
0: लेकिन धीरे धीरे तो चल सकता है।
1: सच?

जी हाँ, प्रतीक्षा है जिसको, जिसकी वो घड़ी आ गई है जी। अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में। पलों को दिन में दिन को काटकर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर। हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतजार करेंगे आपके फोन का। आपका दूरभाष क्रमांक वही है साहब, 6393-31-64-29। और पहली फरमाइश हमारे पास आ चुकी है, जी हाँ बिल्कुल आ चुकी है, अनु जी की बेलसर से। और गीत के बोल हैं, तेरा मेरा प्यार मर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ अनु जी के इस प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए, बजाते रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गुना शहर की।

जी हाँ, इतना प्यारा मौसम है और फिर तेरा मेरा प्यार भी हमारे, और हमारे मुशीफ जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मामला कुछ गड़बड़ है, और मामला ये गड़बड़ है कि कोई लड़की है जो किसी के हाथ नहीं आ रही है। जी हाँ, मुशीफ जी भी प्रयास में हैं, लेकिन गीत उन्होंने भेज दिया है, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। जी हाँ, चालबाज फिल्म श्रीदेवी है पर्दे पर अपने चिर परिचित अंदाज में।

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता राजेश सिंह जी, जा प्यारे नहीं बल्कि जानकार भी, हसीन जुल्फों का रंग दे दो। और उसके पश्चात प्रबल मिश्रा जी ने तुरंत कह दिया कि जैसे आप रंग देंगे वैसे मेरा दिल दीवाना हो जाएगा। बीच में धर्मेंद्र मोहन जी कहते हैं मोहब्बत की झूठी कहानी पिरोए, और इधर कायनाथ जी ने साफ साफ कह दिया है आंखों से तूने क्या कह दिया, आप किसने किससे क्या कह दिया। लेकिन जो सीक्वेंस बन रहा है ये बहुत बढ़िया बन रहा है। जी हाँ, आइए सीक्वेंस में गाने सुनते हैं एक के बाद एक लगातार।

जी हाँ, गीत पर गीत और शानदार गीत भाई कान्हा जी का गीत ने सुना। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, बहुत ही प्यारा गीत। अब चलते हैं मुकेश यादव जी की फरमाइश है, कितनी हसरत है हमें, और उसके बाद जी हाँ श्रीमती शशि की फरमाइश है, दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं।

यहाँ बढ़ते हैं भाई अपनी बहुत ही प्यारी श्रोता श्रीमती शशि सिंह जी की तरफ। फरमाइश है दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, और उसके बाद जहान के गीत की फरमाइश है तेरा दिल हुआ बेईमान। क्या बात है।

जी हाँ, बिल्कुल। अगली प्रस्तुति श्री संतोष जी की है, जो हमको सुनते हैं गिलौली से, और गीत बहुत प्यारा चुना है, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को। दुआ कीजिए। वाह, क्या अदा है भाई राजेश खन्ना की।

दिल के चैन। जी हाँ बिल्कुल, आपके दिल को चैन आ जाएगा और ये दुआ हमारी भी है। और अब चलते हैं भाई हमारे निब्बल जी, जिनकी आवाज़ में मिश्री जैसी मिठास है, राज की बात कुछ कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं ये निब्बल जी का ये गीत बताएगा।

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रेंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
8: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने यह संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

हाँ राज की बात राजमी में रही है। अब चलते हैं भाई, आकाश यादव जी की फरमाइश आएंगी, याद तुम्हें मेरी वफाएं कभी मुझे भूल ना पाओगे। भाई एल्बम का गीत है लेकिन गीत बहुत शानदार है।

जी हाँ, अगला गीत चलते हैं भाई। हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री नरेंद्र द्विवेदी जी, और गीत की फरमाइश है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।

जी हाँ, आप मेरी जान लीजिए एक बार, मेरा कहा मान तो लीजिए और चलते हैं भाई आज के श्रीवास्तु जी की तरफ। हम सभी के बहुत ही आदरणीय पूजनीय और हम उनको गोंडा के किशोर कुमार कहते हैं। जी हाँ, आप परेशान न होइए श्री आर के श्रीवास्तु जी, हमको पता है कि आपके नाम की कोई गलत आईडी बनाकर ऐसी बात कर सकता है। हम आपको जानते हैं कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। रेडियो गणसली 89.6 एफएम परिवार हमेशा आपकी लॉयल्टी पर विश्वास करता है। आइए अब आपका पसंदीदा गीत सुनाते हैं आपको, लाल दुबट्टा मलमल का।

0: ये कौन गा रहा है?
1: है कोई प्यार के गीत गाने वाला, जंगल जंगल घूमता है प्यार के नए नए गीत लेकर, कभी दर्द भरे तो कभी खुशी के।

0: जी हाँ भाई, लाल दुपट्टा मलमल का। जिसके बाद चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे और बुलंद आवाज के श्रोता मुमताज अंसारी जी की तरफ। चांद से पर्दा कीजिए।
1: ठीक है, मैं गाता हूँ।

0: आजकल तो भाई डीजे वाले बाबू हम हैं और गाना बजा रहे हैं मनीष शर्मा जी की फरमाइश पर।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा कहीं, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, खुलूस बोलते हैं मोहब्बत को। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कहां चिराग जलाएं कहां गुलाब रखें, कहां चिराग जलाएं कहां गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है, अजाब बोलते हैं पाप को, ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम है। जबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता। चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है, बीनाई कहते हैं देखने को। चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशा नहीं मिलता। जी हाँ, ये अशआर जिनके हैं, जिनको आज की महफिल में हम लेकर आए हैं, उनका नाम है निदा फाजली। एक ऐसा नाम जिनको लगभग लगभग सभी गजल के गायकों ने गाया, और ये उनकी गजल तो आपने सुनी होगी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जी हाँ, ये वो शख्स जो मुशायरे की दुनिया में आए और दोहा लेकर के आए। इन्होंने कहा, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। यानी कहना ये चाहते हैं कि ऊपर वाले ने हम सबको बनाया और एक ही थैले में, मतलब एक ही शरीर में आंसू और मुस्कान, ये दोनों देकर के उन्होंने हमको भेजा। उनकी ये दोहों की बात करें तो दोहा निकल कर सामने आता है कि निर्मल निश्चल प्यार था या हाथों का स्वाद, हर सब्जी हर दाल में माँ आती है याद। तो बहुत प्यारे शब्दों में और बहुत कम शब्दों में बहुत ऊंची बात कह देने का हुनर निदा फाजली साहब का। कई सारी इनकी शेर इनके फिल्मों में लिखे गए। जी हमारे साथ मौजूद हैं दीपांशी जी, हमारे साथ मौजूद हैं भाई मनीष शर्मा जी, और आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है, वंदन है, नमन है। आइए अब आपको ले चलते हैं गज़लों की दुनिया में। जी हाँ, बहारे गज़ल में आपको आज पहली गज़ल सुनाते हैं कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। फ़िलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, बात कर रहे हैं निदा फाजली साहब की। उन्होंने मैंने बताया आपको कि मुशायरों की दुनिया में वो दोहों को लेकर आए, और वास्तव में जो दो पंक्तियां दोहों की होती थीं वो हृदय स्पर्शी होती थीं, हृदय तल की गहराइयों को छूती हुई, जिंदगी के कई सारे मौजूआत को स्पर्श करती हुई वो लोगों के हृदय में उतरती थी। उन्होंने कहा कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। कभी कभी होता है आप महसूस करेंगे अपनी लाइफ में कि एक दूसरे की जो वाइब्स होती है, जो विचारधाराएं होती हैं, अगर आप किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हो तो पता नहीं ऐसा लगता है मुझको कि वो व्यक्ति भी आपके बारे में ऐसी विचारधारा बना लेता है, और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सामने वाले की विचारधारा भी आपके प्रति सकारात्मक ही होती है। निदा फाजली की बात करें तो उन्होंने कहा, जिंदगी का फलसफा दिया, जिंदगी की कहानी दी, और कहा कि सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो। मतलब धूप का मतलब यहां दर्द से है, सफर मतलब जिंदगी का सफर। सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। देखिए, बीइंग अ पार्ट ऑफ मॉब इज नॉट गुड, भीड़ का हिस्सा होना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। हाँ, अगर भीड़ आपके पीछे चल रही है तो आप एक सफल व्यक्ति की गिनती में आते हैं। तो सफर में धूप तो होगी ही, दुख तो मिलेगा ही, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। सूरज का मतलब यहां पर प्रसन्नता से है, इंसानियत से है। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। और अंतिम दो पंक्तियां हमारे हृदय को छूती हुई जाती हैं, पता नहीं आपके हृदय को कहां तक छुएंगी। उन्होंने कहा, यही है जिंदगी, परिभाषित कर दिया, दो शब्दों में जीवन को डिफाइन किया, हयात को डिफाइन किया निदा फाजली साहब ने। कहा है, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। जिस दिन इंसान की जिंदगी से ये दो चीज चली जाएगी वो आत्महत्या कर लेगा। या तो आपके पास ख्वाब हो या तो उम्मीद हो, इन दोनों के एब्सेंस में, इन दोनों की अनुपस्थिति में हयात या जिंदगी संभव नहीं है। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। जी, इसी यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब है, कुछ उम्मीदें हैं। और आप, हम और आप अगर अपने हृदय पर हाथ रखकर देखेंगे तो हमको यही मिलेगा कि जो हमको जलाए हुए हैं वो या तो हमारे ख्वाब है या हमारी उम्मीदें हैं जिनके दम पर हम जी रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है दीपांशी तिवारी जी, आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मनीष शर्मा जी, आपको भाई प्रणाम करते हैं, आपका प्रणाम भी स्वीकार करते हैं। रमेश यादव जी हैं, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश यादव जी आपको। और इसके पश्चात भाई, जी जी जी, दीपांशी ने लिखा, भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी, अरे अभी गुड नाइट, अरे
अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। नहीं साहब, गुड नाइट कहने का अधिकार श्रोताओं को नहीं है, हमने ये अधिकार उनसे ले रखा है। इस गुड नाइट पर सिर्फ हक हमारा है, शब्बा खैर हम ही कहेंगे, आप प्रोग्राम सुन कर जाएंगे। जी हाँ नीना जी हैं, नमस्कार सर जी, आदाब, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और चलिए फिर चलते हैं आपको गज़लों की दुनिया में, और उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल भी आपको उतनी ही पसंद आएगी जितनी पहले वाली आई थी। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की लड़कन। जी हाँ, और स्वर की मल्लिका मतलब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालकिन नेहा जी हमारे साथ हैं। आदाब करते हैं आपको नेहा जी, और सुनाते हैं आपको ये प्यारी सी गज़ल।

फिर तुम और फिर तू। जिंदगी में जो रिश्ते खास होते हैं वो ऐसे ही सफर तय करते हैं, आपसे शुरू होंगे और तुम पर आएंगे और उसके बाद तू। अच्छा, और आप यकीन मानिए कि आपके अपने अगर आपको आप कहें तो आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हो गई। हमारे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, अगर हमारे वालिद वालिदैन कहें और मनु जी आप कैसे हैं, तो हमको लगेगा मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। महसूस किया होगा आपने, मतलब वो टोन बदलती है। एक शेर है कि अरे से ओ से अबे से जनाब हो गए क्या, अरे से ओ से अबे से जनाब हो गए क्या, अभी अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। तो कभी कभी जिनसे सम्मान नहीं मिलता, जिनसे तुम सुनने को मिलता है, अगर उनसे आप सुनने को मिल जाए तो लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है जी। और भाई गज़ल है, और गज़ल का एक हुनर है जो आपकी आंखों को आना चाहिए, हम सबकी आंखों को आना चाहिए। गज़लों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, गज़लों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। आप गज़ल से ये हुनर सीख सकते हैं। नेहा जी लिखते हैं ज़रा नवाजिश का शुक्रिया। नहीं नहीं, चांद को चांद, सूरज को सूरज, हीरो को हीरा कहा जाता है तो कहा ही जाएगा भाई। और तीर्थ प्रसाद सुनी जी हैं, सभी भाई, आप सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम भाई, क्या बात है जी। और मनी शर्मा जी हैं भाई हमारे साथ उपस्थित बने हुए हैं और लगातार जी। हाँ मनी कैसा जी, आप 2 बजे तक रहिए, बिल्कुल हम भाई हम 2 बजे तक रहेंगे। बस ये है कि खाने पीने का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा क्योंकि अभी भूखे हैं हम जी। हाँ, आपके यहाँ भजन का प्रोग्राम कब होता है जी? सुबह होता है भजन हमारे यहाँ। और आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं निदा फाजदी साहब की ओर। उन्होंने लिखा कि दुनिया जिसे कहते हैं, उन्होंने भी जिंदगी परिभाषित की थी कि यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। अब देखिए दुनिया क्या है, शायर अपनी निगाह से दुनिया को देखता है। तो निदा फाजली जी कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। हमारी भी जिंदगी में कभी ध्यान से देखिए आप तो महत्वपूर्ण चीज वही है जो हमारे पास नहीं है। इन आवर लाइफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट वी हैव नॉट, जो हमारे पास नहीं है वही अच्छा है, वही हमको चाहिए। जबकि संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज द हाईएस्ट हैप्पीनेस कहा जाता है। जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट हैं तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। क्यों रो रहे हैं साहब, जिंदगी है, आइए। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गाम पे पहरा है फिर भी इसे खोना है, हर कदम पे पहरा है। अब देखिए जिंदगी क्या है कि
गम हो कि खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं। गम हो कि खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है ना रोना है। आप देखेंगे तो एक निश्चित उम्र तक गम और खुशी का असर आपके ऊपर रहता है, हम सभी के ऊपर। उसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, सामान्य। फिर जिंदगी जीते चले जाना है, ना हंसना है ना रोना है, बस जीवन को जीना है। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है। और कभी मैंने भी कहा था कि माटी की देह मिली राख का बिछौना, जिंदगी मिली है जैसे कांच का खिलौना। ऐसी जिंदगी है साहब, ऐसी जिंदगी जहाँ प्यार करने के लिए वक्त कम है, जहाँ पर भाईचारे के लिए वक्त कम है, वहाँ पर लोग पता नहीं कैसे नफरत कर पाते हैं। मोहब्बत की सरजमी है साहब, मोहब्बत का देश है। हम तो यही चाहेंगे कि जिंदगी के जितने दिन हैं उनको अगर सकारात्मक विचारधारा के साथ और प्रसन्नता के साथ बिताया जाए तो शायद जिंदगी का फलसफा अच्छा हो जाएगा। जी हाँ भाई, गुड इवनिंग सर। आई हो मुकेश यादव जी हैं, लव यू, आई टू लव यू भाई। नेहा लिखते हैं, हर चीज़ की वैल्यू मिलने से पहले और खोने के बाद होती है। बिल्कुल सही बात है, मिल जाए तो कद्र नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने। मनीष शर्मा जी ने बहुत सारे स्टार्स दे दिए भाई, नीना जी भी स्टार्स दे दिए, क्या बात है भाई। और मनीष शर्मा जी के इतने दिल हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी और गज़ल, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: आप बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सुन रहे थे रेडियो गणेशली 89.6 FM और अभी भी लगातार सुन रहे हैं जी हाँ, एक से बढ़कर एक गजलें आपने सुनी। और शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो कल फिर आपसे इसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी जिसका नाम है बहार गजल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: हेलो एवरीवन, फिर हम सब आ चुके हैं आपके पास, हम और आपकी अपनी आरजे सिंपल। यस, आरजे सिंपल। और आज आप और हम फिर से एक साथ हैं, और साथ होना भी मतलब मुझे लगता है कि एक किस्मत का कनेक्शन होता है ना, यू नो, किस्मत ने हमें लाके यहाँ बिठा दिया है,
3: वो भी एक साथ एक ही पॉडकास्ट में। वाओ।
2: यस, और मुझे लगता है कि मिलना तो रहता ही है, लेकिन मिलने के साथ साथ मैं ये बहुत पॉइंट आउट कर रही हूँ कि हर बार एक नए ब्लेजर में, हर बार एक नए लुक में आप दिखती हैं। और लुक से मुझे भी याद आ रहा है कि यार मैं आजकल बहुत शॉपिंग करने लगी हूँ, और शॉपिंग का मतलब मुझे ऐसा क्रेज हो गया कि हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदते रहना, ऑनलाइन देखती रहती हूँ, अच्छा लाओ ये मंगा लेती हूँ, ये वाले ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग मंगा लेती हूँ, और पहनने का तो फुर्सत ही नहीं, उसको देखो पुराना लगने लगता है।
3: जैसे हमें फास्ट फूड की क्रेविंग्स होती है ना, पहले होती थी कि बर्गर खा लेते हैं, चॉकोलावा केक खा लेते हैं, लेकिन जब तक नहीं खाते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं करते हैं, डिलीवर नहीं होता, तब तक ही जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो गया भर जाता है। ऐसे ही हो गई है हमारी आजकल की ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे वो सनस्क्रीन की हो, चाहे आप जो ब्लेजर की बात कर रही हैं उस ब्लेजर की हो, चाहे शूज की हो।
2: लेकिन मुझे लगता है ऐसा आज सिंपल कि ये बात सिर्फ चीजों तक नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग तक नहीं है। ऐसा होता है क्या कि कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा तुमसे मन भर गया है, क्या ऐसा सच में होता है क्या?
3: हाँ, ये मैंने रील भी देखा है, तो ऐसा बंदा बोलता है कि अच्छा जाना, तेरा तो मेरे से मन भर गया होगा। भाई रिश्तों से भी मन भरता है क्या किसी का?
2: पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब लोग कहते हैं तो ऐसा होगा ही।
3: खैर, ऐसा होने से मुझे याद आया कि आपने कभी सोचा है कि जिस हाथ ने आपको सुबह की चाय दी हो, वही हाथ आपके कब्र खोद रहा हो, आपको दफन करने की पूरी प्रक्रिया कर रहा हो?
2: मुझे लगता है जिसका मन भर गया होगा। जैसे हमने अभी बात की ना कि मन भर जाता है, तो मन भरने के बाद इंसान किसी हद तक किसी से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर लेता है।
3: और वैसे भी हम अक्सर अंधेरी गलियों और नकाबपोश अजनबियों से डरते हैं, लेकिन हकीकत में तो सबसे खौफनाक वही होते हैं जो हमारे बगल में सोफे पे बैठ के हमारे साथ में टीवी देख रहे होते हैं और साथ में चाय की प्याली भी हाथ में होती है।
2: बगल में छोरा टाइप्स। और मुझे लग रहा है कि आज की जो आप कहानी लेके आई है, इसकी भी मुझे लगता है कि स्टोरी बैकग्राउंड कुछ ऐसी है, जिसकी जो स्माइल है वो काफी ज्यादा इनोसेंट है, और ऐसा लगता है कि मतलब कितनी प्यारी सी स्माइल है जिसकी आप कहानी बताने वाली हैं। लेकिन इंसान की स्माइल में एक ऐसी खुशबू है जो आपको शायद मौत के कुएं तक ले जा सकती है।
3: बिल्कुल अर्जबिना, यही तो इस केस की सबसे डरावनी बात है।
2: आपने जब मुझे इसकी तस्वीर दिखाई, मतलब मैं तो दीवानी हो गई कि ये कौन सी लव स्टोरी की कौन सी अदाकारा है, बट जब बाद में बात होनी शुरू हुई, ओ माय गॉड।
3: हाँ, क्योंकि उनका चेहरा, मींस नैनी डॉस का चेहरा देखकर कोई भी उसे अपनी पसंद का केक बनाने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ बहुत ही बढ़िया शेफ थी, और अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे केक्स के जरिए, डिनर के जरिए, लंच के जरिए, और पता नहीं कौन कौन से डिशेस के जरिए वो लोगों को जहर का निवाला देती थी।
2: तो जी हाँ लिसनर्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नैनी डॉस की कहानी, जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। और बात है 1905 की अलबामा। नैनी का बचपन बहुत ही खुशहाल नहीं था। उसके पिता जेम्स हेजल एक सनकी और कंट्रोलिंग इंसान थे, मतलब अपने अकॉर्डिंग उन्हें हर चीज चाहिए होती थी। वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बजाय खेत में काम करवाते थे। उन्हें लगता था कि बेटियां जो होती हैं वो काम करने के लिए या हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आती
3: होती है।
2: और साथ ही साथ मेरा मानना है कि जब आप किसी बच्चे का बचपन छीन लेते हैं तो उसके अंदर एक गहरी नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है आरजे सिंपल कि बचपन वो टाइम होता है जो हर किसी की लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है।
3: सही कह रहे हो आप। जैसे मेरी एक नीस है, वो मेरे से बोलती है, बुआ आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, मुझे देखो मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ, हमेशा मजे किया करती हूँ। तो बचपन होता ही है टेंशन फ्री रहने के लिए, मजे करने के लिए।
2: एंड अगर वही बचपन एकदम वर्स्ट, बेस्ट से वर्स्ट बन जाए तो उसके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन सा आ जाएगा ना।
3: हाँ, और आपको पता है कि जब नैनी टॉस 7 साल की ही थी तब उसका एक ट्रेन हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था।
2: माय गॉड।
3: नैनी के सिर पर एक लोहे की रोड से चोट लगी थी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का टर्निंग पॉइंट था। डॉक्टरों का कहना है कि उस चोट ने उसके दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर दिया था जो पछतावा महसूस कराता है, मींस उसको रिग्रेट होना ही बंद हो गया था।
2: ये बात बिल्कुल सही है आरजे सिंपल की, हमारा जो दिमाग है वो हमारे हर अच्छी बुरी सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उस सोच का क्या जो बचपन से मुझे लगता है नैनी डॉस के मन में आ रही थी, जो उसके पेरेंट्स ने, उसके पिता ने उसके मन में डाली थी, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था नैनी डॉस के लिए। पहला तो वो अंदर अंदर से टूटी थी,
3: वैसे ही ऑलरेडी वो एक इंसिडेंट से गुजर ही रही थी अपने घर के अंदर,
2: और इस बार जो हुआ था वो कहीं ना कहीं फिजिकली उसको डैमेज करने वाला था, और मुझे लगता है अब उसकी जिंदगी में कुछ और होने वाला था। बस यही था टर्निंग पॉइंट नैनी का। नैनी ने अपनी जिंदगी को उस रोमांस मैगजीन की तरह बनाना शुरू कर दिया था जो वो छुप छुप कर पढ़ा करती थी। 16 साल की उम्र में उसकी शादी चार्ली ब्रेग्स से हुई थी, लेकिन असल जिंदगी मैगजीन जैसी तो नहीं होती है। बिल्कुल रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो डिफरेंस है, वैसे ही मैगजीन लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। 1927 में उसकी दो बेटियों की अचानक मौत हो गई, उस वक्त किसी ने शक नहीं किया उस पर।
3: आरजे बिना उस दौर में बच्चों की मृत्यु दर मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। लोगों को लगा कि ये पेट की कोई बीमारी है, लेकिन सच तो ये था कि नैनी को अपनी जिम्मेदारियां बोझ लग रही थी।
2: ओह माय गॉड।
3: मेरी राय में वो एक ऐसी महिला थी जिसे सिर्फ प्यार का नाटक पसंद था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैगजीन्स में होता है, सीरियल्स में हम देखते हैं, मूवीज में हम देखते हैं, रोमांस देखते हैं, टाइम स्पेंड करना देखते हैं साथ में, डेट पे जाना, मूवीज, एवरीथिंग, लेकिन हम काम करते हुए कभी नहीं देखते हैं ना।
2: ये बात तो सही है।
3: तो उसको जिम्मेदारियां नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था,
2: और वो बस ऐसा सोचती थी कि जो चीज मेरे लिए जब तक सही है ठीक है, लेकिन जब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा तो शायद वो उस चीज को बर्डन फील करने लगती,
3: पीछे हटने लगती थी।
2: चार्ली खुशकिस्मत था जो वहां से भाग निकला, लेकिन इसके बाद नैनी ने लोनली हार्ट्स विज्ञापनों का सहारा लिया। उसने फ्रैंक हैरल्स से शादी की। ये जो मैगजीन्स होती थी, ये जो विज्ञापन होते थे, इसमें जो लड़के होते थे वो अपने लिए प्रपोजल देते थे कि मेरे से कोई शादी करना चाहता है। फ्रैंक एक शराबी था। एक रात नैनी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया। फ्रैंक की तड़प तड़प कर मौत हो गई और नैनी बस पास खड़ी उसे देखती रही।
3: ये उसका दूसरा हस्बैंड था।
2: यस yes।
3: पहला तो भाग निकला, उसकी खुशकिस्मती थी शायद, लेकिन दूसरे ने अपनी जिंदगी गवा दी। वो भी कौन से विज्ञापन का भी आपने नाम लिया है?
2: लोनली हार्ट्स।
3: ओह माय गॉड, लोनली हार्ट्स ने एकदम से लोनली कर दिया। खैर, और आपको पता है अर्जिबीना, फ्रैंक के बाद उसकी अपनी माँ लूसा और उसकी बहन डावी भी उसके रास्ते में आई। नैनी को अपने बीमार माँ की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था। उसने अपनी माँ के खाने में आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक, वही चूहे मारने की दवा। मुझे ये सोचकर भी घिन आती है कि कोई अपनी माँ को धीरे धीरे मरते हुए कैसे देख सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने आराम के लिए, ताकि उनको उनकी सेवा ना करनी पड़े। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कहाँ की सोच है और ये कौन सी साइकोलॉजी है?
2: मुझे लगता है आरजे सिंपल, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये एक तरह की मानसिकता होगी जो इंसान मतलब अपने अनुभवों से बनाता है। उसने बचपन में देखा कि उसे सब परेशान करते थे, अब उसको लग रहा था कि अब वो सबको परेशान करेगी। अब बारी थी कुछ प्रेम पत्रों की। जी हाँ, उन प्रेम पत्रों की बात कर रही हूँ जिसे वो अपना अगला शिकार बनाने वाली थी। वो रिचर्ड मार्टन और अर्ली लैनिंग जैसे मर्दों को लिखती थी खत। मैं तुम्हारे लिए हर दिन मीठा हलवा बनाऊंगी, तुम्हारे घर को खुशियों से भर दूंगी। ये पढ़कर कोई भी अकेला आदमी उसके जाल में फंस जाता था। मतलब इनडायरेक्टली, जैसे फेसबुक पे हमने एंजल आकांक्षा, एंजल पल्लवी, ऐसे करके नाम बहुत सुने होंगे जो फेक नाम होते थे, लड़के होते थे और लड़कों को ही फंसाते थे। लेकिन यहाँ पे ये खुद ही लड़की बन के एक लेटर लिख लिख के लोगों को फंसा रही थी, वो भी अपनी मीठी मीठी बातों से। और मुझे लगता है कि ये एक तरह का छलावा था लोगों के लिए, और उस छलावे से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी।
3: बिल्कुल, रिचर्ड मॉर्टिन को लिखे खतों में वो खुद को एक ममतामयी और अकेली औरत, मींस लोनली, और पता नहीं लोनली वोल्फ की तरह बताती थी। लेकिन जैसे ही शादी होती और पति उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, वो अपनी रसोई से और सैनिक निकाल लेती, और मुझे लगता है कि वो एक एडिक्ट बन चुकी थी हत्या करने के लिए, और जो भी अपने रिश्ते पे खरा नहीं उतरता था वो उसको मौत के घाट उतार देती थी।
2: और मुझे लगता है कि इंसान को जब आदत पड़ जाती है तो वो आदत कभी सही नहीं होती। किसी इंसान की आदत है कुछ लिखने की, तो वो आदत उसकी बन जाएगी, उसको दीवार भी मिलेगी तो वो उस पे भी लिख देगा। अर्ली नोनिंग की मौत के बाद नैनी की सास भी उसके घर रहने आई। नैनी को अपनी सास का दखल देना पसंद नहीं था। कुछ ही दिनों में उसकी सास की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मेरा विचार है कि नैनी ने जहर देने की कला को इतनी महारती से यूज करना शुरू कर दिया था कि कोई समझ ही नहीं पाता था कि मौत कोई हत्या है या किसी तरह की प्राकृतिक। और मुझे लगता है कि अगर कोई किसी काम में प्रोफेशनल हो जाता है तो उसकी जो आदत है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
3: लेकिन ये भी तो कहा गया है ना कि रोज का चोर एक दिन तो जरूर पकड़ा जाता है।
2: डेफिनेटली पकड़ा जाना भी चाहिए।
3: तो ऐसे ही हर अपराधी की तरह आता है नैनी डॉस का भी दिन। एक दिन नैनी डॉस भी पकड़ी जाती है। नैनी का आखिरी पति था सैमुअल डॉस। सैमुअल एक बहुत ही अच्छा आदमी था, एकदम मेरी तरह और आरजे बीना की तरह। नैनी का मैगजीन पढ़ना और बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे उसके फादर को नहीं पसंद था। नैनी ने उसे भी जहर दे दिया। उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया और मिरेकल ऐसा हुआ कि वो बच निकला।
2: मुझे लगता है जिसको भगवान बचाना चाहते हैं तो वो बच ही निकलता है। और यही थी नैनी की सबसे बड़ी गलती। उसने उसी रात उसे भारी मात्रा में जहर वाला प्रून्स खिला दिया। सुबह सैमुअल मृत मिला। डॉक्टर जेलिगमैन को शक हुआ क्योंकि सैमुअल पूरी तरह ठीक हो चुका था। उन्होंने पोस्टमार्टम किया और जो मिला उसने इतिहास ही बदल दिया।
3: बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सैमुअल के लीवर और किडनी में आर्सेनिक की इतनी मात्रा थी कि वो किसी भी साइंटिस्ट के पैमाने से बाहर थी। पर्सनली मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ साइंस ने उस मुस्कुराते हुए चेहरे को हरा दिया। पुलिस ने जब नैनी से पूछताछ की तो वो अपनी कहानियां सुनाते हुए छोटी बच्ची की तरह गिगल कर रही थी।
2: मतलब खिलखिला के हंस रही थी वो।
3: जी हाँ बिल्कुल। उसने अपने हर एक मौत के बाद में जितने भी रिश्तों को उसके दफनाया गया है, लास्ट अंतिम संस्कार वाले टाइम पे भी वो लोगों से मुस्कुराते हुए मिल रही थी।
2: और मुझे लगता है आरजे सिंपल, ये जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने वाकई में लगता उसको पछतावा करने जैसा मतलब महसूस कराना ही बंद कर दिया था।
3: या हम लोग किसी से फालतू में नाराज भी हो जाते हैं तो 2 मिनट बाद हमें पछतावा होता है कि नहीं इतना भी नहीं बोलना चाहिए था।
2: हाँ बिल्कुल, किसी से रूडली बात करते तो तुरंत हमें रिग्रेट होता है, यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसकी जगह मैं ये भी कह सकता था या कह सकती थी। और मुझे लगता है अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे लगता है कि मुझे आपको और लिसनर्स को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। कानून के हिस्से पर आते हैं। नैनी पर 11 हत्याओं का शक था, लेकिन मुकदमा सिर्फ सैमुअल डॉस की मौत पर चला। ये एक प्रोसिक्यूटोरियल स्ट्रेटजी थी। ओक्लाहोमा के अधिकारियों को पता था कि अगर वे सभी केस खोलेंगे तो पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। उन्हें बस उसे जेल के पीछे डालना था।
3: बिल्कुल, और एक और कानूनी पेश था, इंसेनिटी प्ली, मींस पागलपन का बचाव। उसके वकीलों ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन कोर्ट ने देखा कि नैनी ने बहुत सफाई से सबूत मिटाए थे। इसका मतलब था वो पूरी तरह होश में थी।
2: और मेरी राय में उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन उस समय की जूरी एक मुस्कुराती हुई दादी का इलेक्ट्रिक चेयर पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे उम्र कैद मिली। वो जेल में भी कैदियों के लिए खाना बनाना चाहती थी।
3: ओह माय गॉड।
2: लेकिन जेल प्रशासन इतना डरा हुआ था कि उन्होंने उसे रसोई के पास भटकने भी ना दिया।
3: तो ये थी नैनी डॉस, एक ऐसी औरत जिसने रोमांस की काल्पनिक दुनिया को पाने के लिए हकीकत के 11 जिंदगियों को लाशों में तब्दील कर दिया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक जहर शीशी में नहीं बल्कि उन मीठी बातों में होते हैं जो हम रोज सुनते हैं।
2: बिल्कुल आरजे सिंपल, और मुझे लगता है कि आसपास बोलने वाले लोग हमें लगता है कि बहुत ही शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है ये हमें अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नैनी तो 1965 में कैंसर से मर गई, लेकिन उसका वो गिगल आज भी उन बंद कमरों में गूंजता है जहां लोग अपनों पर अंधा विश्वास करते हैं। नैनी के लिए मौत सिर्फ एक रेसिपी थी जिसे वो बार बार दोहराना चाहती थी।
3: ऐसे तो आरजे बिना हमें घर के अंदर भी अपने रिश्तों से भी डर लगने लगेगा ना, कि जैसे हमारी बुआ ही हमारे लिए हंसते हुए चाय लेके आ रही हैं, उन्होंने सालों में ऐसा ना किया हो लेकिन सालों भर बाद पहली बार वो हमारे लिए एकदम खिलखिलाती हुई हंसी के साथ में एक कप चाय लेके आ रही है, क्या मुझे पीना चाहिए कि नहीं, मुझे तो तुरंत नैनी डॉस याद आएंगी।
2: अब ये तो हमने कहानी सुन ली है, लेकिन देखिए ये हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इस दिमाग से हम सोचेंगे तो हमें हर इंसान कल्प्रिट दिखेगा। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना है और ऐसी जगह हमें शक करना है जहां लगे कि कुछ गड़बड़ है। हर जगह हमें शक नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अचानक से आपके लिए खाना बना के ले आएगा, और ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई दवा लेके चला आएगा।
3: लेकिन नैनी डॉस तो ऐसा ही करती थी ना, वो पहले हल्का सा दवा देती थी, मींस हल्का सा जहर देती थी स्वादिष्ट खानों में, फिर उसके बाद में वो बीमार होने के बाद में उसी मरीज की सेवा भी करती थी, मालिश करती थी, नहलाती थी,
2: क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार भी थी। तो मानसिक रूप से बीमार इंसान कुछ भी कर सकता है, इवन वो चाकू लेके आपको भोंक भी सकता है। तो सिंपली हमें ये सोचना है कि आसपास जो भी जहरीली चीजें या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में विज्ञान भी जानता है, तो उनको तो आसानी से किसी को भी ना दिया जाए, क्योंकि ये मेडिसिन या कोई भी ऐसी जहरीली, वैसे जहरीली कोई भी चीज हो सकती है जिसका कोई भी चीज का ओवर यूज किया जाए, जिसमें कोई केमिकल ऐसा टॉक्सिक हो, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब चीजों को मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मानसिक रूप से विकलांग होगा उसी के साथ ऐसा होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम नैनी डॉस बनने का जो सफर है उसको शुरू से रोकें। हम बाद में जाने के बजाय, उसकी पर्सनैलिटी को स्टडी करने के बजाय, उसके साथ शुरू में क्या हुआ उस पे ध्यान दें। हमारे घर में कोई बच्चा है जिसके साथ हो सकता है, कभी कभी क्या होता है सिंपल, के घर में कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा, तो उसके साथ हम बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, भाई तुम पढ़ते नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं हीन भावना में चला जाएगा। उसके किसी भी क्वालिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए।
3: लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो हमें उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, हम उसका इलाज करा लेते हैं, हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, हम उसका ट्रीटमेंट झट से करा लेते हैं, लेकिन ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं, ये जो मानसिक स्थितियां होती हैं, इनके सिम्टम्स क्यों नहीं दिखते लोगों को, क्यों नहीं समझ में आते? और आज के टाइम पे भी जब मुझे ऐसा लगता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिप्रेशन में जूझ रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टेज पे, तब भी हम इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इंसान मेंटली स्टेबल है कि नहीं है?
2: आरजे सिंपल, अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने एक हेल्दी पर्सन की एक बड़ी सी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इंसान अगर तीनों रूप से फिट है तो ही वो हेल्दी है। अब इमोशनली और सोशली ये कौन सा टर्म है? इमोशनली मतलब कि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। कोई इंसान बहुत जल्दी रोने लग रहा है तब भी उसके साथ यानी कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, ओवर हंस रहा है। जैसा आपने बताया था कि जब वो किसी को मतलब अंतिम संस्कार करने जाती थी या उसके मतलब दफनाने के लिए अपने पेरेंट्स या जिनके भी साथ जाती थी तो वो हंसती थी, वो एक साइन था हमें पहचानने का कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है।
3: लेकिन लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया सिर्फ ये देखते हुए कि वो सेवा भी करती है, खाना भी खिलाती है, इसके बाद में ये ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती है।
2: हर सेवा करने वाला, खाना खिलाने वाला इंसान बहुत नॉर्मल हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसे कि हंसना, बहुत ज्यादा चुप रहना, बहुत ज्यादा बोलना, किसी के साथ इंटरैक्ट करना, कोई इंसान मतलब इंटेंशनली किसी को बहुत मैसेज कर रहा है, या किसी वर्क प्लेस पे कोई इंसान एक ऐसा है जो हर दिन हर किसी को रोज मैसेज कर रहा है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सोशली और इमोशनली ये दो एस्पेक्ट पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस हमें भी थोड़ा सा अवेयर होने के, हर चीज को नॉर्मल नहीं समझना है, हर किसी को कोना नहीं बना देना है। अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हो सकता है हमारे लिए यूजफुल ना हो इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान तो है ना।
3: ऑब्वियसली मैं भी यही हमेशा लोगों से कहती हूँ कि कमियां तो सब में होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन इंसान की अच्छाई को पहले देखना चाहिए, बुराई क्या पता उस अच्छाई के साथ ही चली जाए, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ और ना शायद समझ पाऊंगी।
2: बिल्कुल, और इसके लिए बस हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किसी नैनी डॉल्स को बनने ही ना दें, हम उसकी किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका ही ना आने दें कि वो किसी के लिए इतना नफरत फील करे।
3: मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आपको रोड पे चलते हुए कोई अकेला इंसान रोता हुआ जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपके पास टाइम है और अगर वो जगह सही है, एटमॉस्फेयर ठीक है, तो आपको से भी रुक के पूछना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप रो क्यों रही हो, क्योंकि इंसानियत तो इतना होना ही चाहिए आजकल के टाइम पे। आप इतना बिजी हो गए हो अपने वर्क कल्चर को लेके, अपने मतलब स्केड्यूल को लेके हम बहुत स्टिफ हो चुके हैं, और साथ ही साथ जैसा कि हमने बचपन देखा नैनी डॉस का कि उसके फादर ने उसको एक बेसिक नीड जो कि पढ़ाई पे हर किसी का हक है, एजुकेशन उसको नहीं दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। हाँ, ये बात और है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन किसी की जान तो नहीं ले सकती, लेकिन वो तब घातक हो जाती है जब वो ओवर हो जाती है। तो बस हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे किसी के भी मन में किसी के लिए भी हीन भावना है। आज के एपिसोड को यहीं पे करते हैं क्लोज और मिलते हैं अगले अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, एक और भीगी रात, बारिश की वो धीमी फुहारे, खिड़की से टपकती बूंदें और दिल में उठती वो मीठी सी कसर। मैं हूँ आपकी सुकून, ठंडक, गर्मी, बरसात और हर मौसम और हर मिजाज की आपकी रेडियो साथी अनोखी। और आज भूले बिसरे गीत के इस खास मानसून स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीत के सफर पर, जहां हर बूंद के साथ एक याद, एक झोंके के साथ एक तराना जुड़ा है, जो रात के सुरीले और भीगे भीगे मूड को समर्पित है। और दोस्तों, आपकी अनोखी ने तो आज के एपिसोड का नामकरण तक कर रखा है। हाँ जी, हमने नाम रखा है आज के एपिसोड का भीगी रातों के तराने, एक यादगार सफर। तो चलिए पहली बूंद के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो खुद बारिश की तरह हर दिल को छू जाता है। आज के शो का पहला सॉन्ग भीगी भीगी, हाँ जी भीगी भीगी क्या, भीगी भीगी रातों में। और ये सॉन्ग है आवाज से जिसको सजाया है आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं ये नगमा। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनते हुए इन ख्यालों में जरूर डूबिएगा। ख्याल कुछ यूं है, रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी। रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी, उसके साथ बिताई हर शाम की याद इन बूंदों में बह रही थी। वो भीगी हुई रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, वो अधूरे ख्वाबों का गीत था। और दिल कह उठा, क्या भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, हल्की बरसातों में, कैसा लगता है। जैसा भी लगता है आप खुद ही एंजॉय करिए ना इस गाने के माध्यम से।

तो अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि बताएंगे नहीं, चलिए एक प्रश्न की ओर रुख करते हैं और उसके बाद में थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी भीगी किसी का इंतज़ार किया है, या किसी के साथ बैठकर खामोशी से बारिश को महसूस किया है? बस यही एहसास बनता है ये अगला नगमा, जिसका आनंद अभी आपने लिया। और अब सुनिए एक और तराना जो बारिश में भीगी एक महस जो बारिश में भीगी एक मासूम सी लड़की की कहानी कहता है। सॉन्ग है, सॉन्ग बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं। एक लड़की जो भीगी भी है और शायद भीगी हुई और भागी हुई भी है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, पर एक बात का पूरा पता है कि इस बारिश ने उसे और भी हसीन बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो भीगी सी है, भागी सी है, हवा में लहराती एक कहानी सी है। उसकी आंखों में कुछ अनकहे पल हैं जो किसी मुलाकात का जिक्र करना चाहते हैं। जी हाँ, और वो सॉन्ग कोई और नहीं, वो सॉन्ग है एक लड़की भीगी भागी सी, और आवाज से इसको सजाया है किशोर कुमार जी ने। आइए चलिए सुनते हैं और लुत्फ़ में खो जाते हैं इस सॉन्ग के साथ।

सजन दूर था पर सावन पास था, बदन में जैसे हर बूंद के साथ उनके होने का एहसास था, सांसों में उनकी यादें और इस मौसम का जादू। अब अगला गीत कुछ शरारत लिए, कुछ अदाएं लिए आपसे मिलना चाहता है और गुनगुनाता है

ये वो सॉन्ग है जो बदन में सिहरन दौड़ा दे और असली सावन के जादू को याद दिला दे। मीठी सी तड़प और मिलन की दरकार के एहसास के साथ 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज का सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए एंजॉय करते हैं मिलकर।

श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं उस गीत की ओर, जो गीत ना सिर्फ अपनी ओर खींचता है बल्कि बारिश को रुमानी बना देता है। और जब हवाएं चलती हैं और बारिश के साथ पत्तों की सरसराहट होती है, तब दिल गाता है। हाँ जी, दिल गाता है। क्या गाता है? सावन का महीना पवन करे शोर। इस गाने में ना जाने कितनी बार हमारे हीरो ने, यानी सुनील दत्त साहब ने, हमारी अदाकारा के अल्फाजों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन हम बिना सुधारे ही गा सकते हैं? गा नहीं सकते, तो साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की ओर। एक ऐसा गीत जो पनघट की हंसी, झूले की टुनक, सावन का शोर जैसे दिल की धुन को साथ ले चले। पवन बोले पेड़ गाए, ये गीत गांव के हर आंगन में छाए। शोर मूवी से किशोर दा और लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग।

अब मैं आपसे जिस गीत की बात करने वाली हूँ, उस गीत में छुपा है गांव का वो सौंदर्य, वो कच्ची सड़कें, वो पनघट, वो बारिश के संग झूमती प्रकृति जो मन के भीतर मयूरी बन नाच उठती है। और जब बात झूमने की हो तो ये आया सावन झूम के, गीत कैसे पीछे रह सकता है। झूले पत्तों पे झूमे, बच्चे गलियों में घूमे, दिल ने फिर से सपना बुना, आया सावन झूम के, प्यार हर दिल में चुपके से घूमे, के आया सावन झूम के।

0: तो अभी हमने इस गीत के माध्यम से उस पल को महसूस किया जो सावन का मौसम जैसे ही आता है, अपने साथ बचपन की यादें, पहली बारिश, भीगे पैर और वो नाचते हुए घर लौटना, सब कुछ लौटा आता है। अब एक ऐसे मस्ती भरे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें दिल धड़कता है और कहता है, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई गवारे। हाँ जी, आज तो दिल सच में सावन बना बैठा है, ये ना जाने क्या हुई गवा है, ना जाने सावन में कौन सा जादू है, हर कोई दीवाना, हर चेहरा बावला बन बैठा है। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ में लता जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: हाय राम।

0: बूंदों की ताल पे झूमे हैं अरमा, हर एक बूंद में छिपा है एक गुमनाम अंजाम। रिमझिम राग मन का साज, बारिश ने छेड़ा वो मीठा अंदाज। क्या गजब बात है, बारिश और मस्ती एक साथ आ जाए तो बस दिल भीग जाता है। और अब एक गीत जिसमें बारिश मन की हर तार को छूती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों की हर लय से निकले सुर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं हमारे खुश होने का कारण, जिसमें बरखा बहार के साथ आती है और बूंदे अपनी फ्रेंड रिमझिम जी के साथ, जिसको अपनी आवाज के जरिए मिलाने का काम किया है लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए हम भी मिल लेते हैं इस प्यारे से गीत से।
1: ओ सजना

घटाएं घिरी थी जैसे यादें मुड़ी हों, सांवली सी वो शाम जिसमें उसके कहे बिना सब कह दिया था मैंने, और दिल ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी। तो बिना देरी किए चलिए एंजॉय कर लेते हैं ये वाला सॉन्ग, जिसमें आप याद करेंगे अपने उन दिनों को जब किसी के साथ में आपने एक प्यारी सी शाम बिताई होगी।

इतने सारे सॉन्ग्स तो हमने एंजॉय कर लिए जी हम मॉनसून स्पेशल वाले शो में। और मॉनसून स्पेशल शो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक जो सॉन्ग है वो मेरे जहन में यूं आया था कि हमने किसी से फरमाया कि जनाब हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वक्त तो बनता है ना आपके साथ में, बिल्कुल कॉफ़ी बनती है, चाय बनता है और थोड़ा घूमना शूमना भी बनता है। लेकिन जनाब ने इनकार कर दिया, और इनकार करने का कारण वही जो आमतौर पे हर एक आजी हर एक महापुरुषों का होता है, नॉर्मल पुरुष तो ना नहीं करते हैं। हाजी तो उन्हीं में से थे वो जिनसे हमने दरकार की। लेकिन जब हमको ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हमने कहा कि इस सॉन्ग को भी आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और इस सॉन्ग के जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, हाँ हाँ हाँ वही वाला सॉन्ग कि तेरी दो टकिया दी नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए। वैसे सावन केवल लाखों का नहीं होता है जनाब, इतना कीमती होता है ना कि बस उसका कोई भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल बढ़ते हैं इस सॉन्ग की ओर। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये उम्दा वाला सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे रेडियो गानसले 89.6 एफएम पे अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे गीत तो होते हैं लेकिन उस दौर के उस जमाने के जो आपको अपने तक बुला ही लेते हैं और हम कहीं जाके गुम से हो जाया करते हैं। और आज का सफर यहीं पे हमको कहता है कि थोड़े से थम जाते हैं ताकि फिर से हम आपसे आके किसी नए सफर पे आपको ले चलें। आज की ये भीगी रात और ये भूले बिसरे तराने उम्मीद है आपके दिल को भी भीगो गए होंगे। मैं आरजे अनोखी अब लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आज कहूंगी, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात और हर पुराने गाने में हमारी अधूरी बात। तो ये अधूरी बात हम कंप्लीट करेंगे लेकिन बतौर तोहफा ये वाला सॉन्ग स्पेशली आपके लिए, जो कि बहुत बहुत बहुत बहुत आला है। और इसी के साथ भीगी बातों के साथ शुभ रात्रि और प्यार भरी बारिश की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त और एक नए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं